0: बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लात।
3: एशियन गेम्स में आज भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल्स जीतने का शानदार मौका। हॉकी के फाइनल में महिला टीम का चाइना से मुकाबला, बॉक्सिंग और तीरंदाजी में भी संभावना। जापान से लौटे पदक वीरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत, ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच हुए फूलों की बरसात। चेन्नई में भी एथलीट्स का शानदार सम्मान। आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल, अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। तो वहीं ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित 6 टीमें शामिल। देशभर में आज मनाई जा रही है महात्मा गांधी की 157वीं जयंती। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वें जन्म दिवस पर देश कर रहा है नमन। बॉक्स ऑफिस पर आज सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 मचाएगी धूम। तो वहीं जोरदार एडवांस बुकिंग के कारण धमाकेदार ओपनिंग तय, वीर पहाड़िया की प्रेम कीटाणु से है टक्कर। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी से रंगीन हुआ आसमान। चीनी नेशनल डे के उत्सव में 23 मिनट के शो का करीब 400,000 लोगों ने दीदार किया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

हनुमान जी के लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं सुनो, माया के गुलाम मत बनो। तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है, माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी। और एक बात,

चिंता सबको खाती है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है तुम्हें महान बनना है तो याद रखना, आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलो, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है। साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है, एक ही उपाय है, क्या? प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज, आप कोई उपाय बताइए कि भगवान को पाया जा सके। अरे उपाय क्या बताना, बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? एक है हमारी नजर में पोस्टमैन, जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकते, तुम्हारी खबर को आदान प्रदान कर सकते। कौन?

0: चर्चा हनुमान जी से। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है, खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम राम राम राम राम राम कहता हुआ, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। है? महात्मा जिसका सपोर्ट कर दे परमात्मा, उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। सच बात यह है, हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाहे। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो, जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन हैं। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम राम राम राम राम राम जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। पांच चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण, पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में। और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया और जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और पांचवी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? आहाहा, पांचवी बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं, बानर भालू अंगद दधीमुख केहरी नल नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा, गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन, वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा, मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा, क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा, आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया, रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले भैया हनुमान सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सम में रखा होगा। जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सम में नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। आहा, गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसल है, तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या? बोले द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं, और हनुमान जी जिसकी बाह पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोला। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी हैं पोस्टमैन। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसीलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कलियों में इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए भैया, अगर भारत के लोग और भारत के युवान और भारत में रहने वाले प्रियजन अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक।
1: क्या बृहस्पति भी कभी शादी नहीं होने देता? क्या बृहस्पति वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा करता है? क्या बृहस्पति भी लोगों के चरित्र को कमजोर कर देता है? विवाह और वैवाहिक जीवन पर क्या है बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: पास व्यक्ति गया

0: मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा, भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, तीरंदाजी में आ गया एक और गोल्ड मेडल, महिला रिकर्व टीम ने रचा इतिहास। एशियन गेम्स में आज भारत के पास चार और गोल्ड मेडल जीतने का शानदार मौका है। हॉकी के फाइनल में महिला टीम का चाइना से मैच, बॉक्सिंग में तीन स्वर्ण पदक पर निगाहें। जापान से लौटे पदक वीरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े की गूंज के बीच हुई फूलों की बरसात, चेन्नई में भी एथलीट्स का शानदार सम्मान हुआ। आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल, अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित 6 टीमें शामिल। और चलिए वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का, लेकिन उससे पहले एक शानदार खबर आपको बता दें, एशियन गेम्स से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज तीरंदाजी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और इस तरह आर्चरी में भारत को इस बार चौथा मेडल हासिल हो चुका है। आपको बता दें आज वुमेन्स रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें अंकिता कीर्ति और कुमकुम की तिगड़ी ने फाइनल में मजबूत दक्षिण कोरिया को 5-3 से हरा दिया और इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार रिकर्व महिला टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। महिलाओं की यहां पर शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत को एक गोल्ड मिला है। इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 67 मेडल्स हो चुके हैं, जिसमें 11 गोल्ड, 23 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। और चलिए अब देखते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: आईसीसी ने मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी किया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया करेगा वर्ल्ड कप की साझा मेजबानी। सात अक्टूबर 2027 को भारत का पहला मुकाबला होगा केप टाउन में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच होगा। दस अक्टूबर 2027 को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जोहान्सबर्ग में होगा, भारत पाकिस्तान का मैच। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर और दूसरा 18 नवंबर को होगा, जबकि फाइनल 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में 6-6 टीमों के दो ग्रुप्स में बांटी जाएंगी, 12 टीमें 2 अक्टूबर से शुरू होंगे ग्रुप मैच। ग्रुप ए में है भारत। एशियन गेम्स में गोल्डन पंच से एक कदम दूर है लवलीना बोरगोहेन, महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में आज चाइना की बॉक्सर बाओ जी से होगा मैच। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में आज भारतीय मुक्केबाज परवीन हुड्डा का भी फाइनल मैच, ताइपे को की चेन नियन चिन से होगी टक्कर। पुरुषों की कैटेगरी में भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल का कोरिया के मिनसोंग किम से फाइनल मैच, दोपहर 2:45 बजे होगा पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग का फाइनल मैच। एशियन गेम्स में विमेंस हॉकी फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना होगा चाइना से, इन गेम्स में डिफेंडिंग चैंपियन है चाइना की टीम। 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतना और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 का सीधा टिकट हासिल करना है भारतीय महिला टीम का लक्ष्य। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों को पहनाई गई फूल मालाएं, भारत माता की जय के लगे नारे। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाली अमनदीप का भी हुआ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, अपनी जीत को बताया देश की।

0: देश के लिए सोना और चांदी जीतने वाली खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने एक साथ दिया पोज, अपने अपने मेडल्स हाथ में लेकर जाहिर की खुशी। खिलाड़ियों के स्वागत में किसी ने पहनाई फूल माला तो किसी ने करेंसी नोट की विशाल माला पहनाई, किसी ने खिलाड़ी को कंधे पर बिठाया। अक्टूबर की पहली सबसे बड़ी रिलीज फिल्म दृश्यम 3 अजय देवगन की दृश्यम द कंक्लूजन में इस बार मुख्य भूमिका में जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे। रिलीज से पहले जबरदस्त एडवांस बुकिंग के साथ मजबूत ओपनिंग की उम्मीद, रिलीज से पहले ही कमा डाले करीब 20 करोड़। 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस सस्पेंस थ्रिलर में अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, इशिता दत्त और रजत कपूर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। दृश्यम 3 के साथ बॉक्स ऑफिस पर हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म प्रेम की टानू भी दे रही है दस्तक, दिल्ली NCR की पृष्ठभूमि पर फिल्म। निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की ने किया है डायरेक्शन, जिसमें वीर पहाड़िया, आफिया सईद, अपार शक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय जैसे कलाकार नजर आएंगे। मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी और विक्रम सिंह चौहान की फिल्म पूजा मेरी जान Z5 पर रिलीज, नवजीत गुलाटी ने किया है सस्पेंस क्राइम थ्रिलर का निर्देशन। सीरीज दोपहिया का सीजन 2 प्राइम वीडियो पर रिलीज, सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे और स्पर्श श्रीवास्तव निभा रहे हैं मुख्य किरदार। सिनेमा हॉल्स में छाने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज ओ माई डॉग, इंसानों और कुत्तों के बीच के रिश्ते की भावुक कर देने वाली कहानी है। एक मॉडर्न डिजिटल रोमांस पर आधारित फिल्म लव नेटफ्लिक्स पर रिलीज, मुख्य किरदार में हैं ऐश्वर्या लक्ष्मी और अर्जुन दास। फॉर्मूला 1 फैंस के लिए खास डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर हो रही है रिलीज, माइकल शुमाकर की करियर पर बनी है शुमाकर 94 द बर्थ ऑफ अ लेजेंड। गुलशन देवैया और रसिका दुगल की फिल्म लिटिल थॉमस का ट्रेलर जारी, गोवा के एक परिवार की प्यारी और मजेदार कहानी है ये फिल्म। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का पहला लुक जारी हुआ, 23 अक्टूबर को फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का पहला गाना रिलीज हुआ, 16 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म 3 की टेली रिलीज डेट 2027 के बदले अब साल 2028 में रिलीज होगी। साउथ के स्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज की जबरदस्त कमाई देखने को मिली, पहले हफ्ते में 150 करोड़ के पार हुई कलेक्शंस। अमरावती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, निकाली गई विदर्भ के राजा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा। बीस फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, केसरिया झंडों और फूलों की बारिश के बीच बापा का स्वागत किया गया। करीब 16 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद बापा की विदाई के लिए निकाली गई शोभा यात्रा, विदर्भ के अलग अलग जिलों से आए 12 से ज्यादा ढोल पथक हुए शामिल। अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे ढोल पथकों ने अपनी खास ताल और धुनों से माहौल से में भरा जोश, महिला ढोल पथक रहे विशेष आकर्षण का केंद्र। संभल में SP और ASP ने RRF, PAC और पुलिस फोर्स के साथ निकाला 6 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च, और आगामी त्योहारों को लेकर दिया शांति का संदेश। देश भर में आज मनाई जा रही है महात्मा गांधी की 157वीं जयंती, देश भर में बापू के आदर्शों को किया जा रहा है याद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी 122वां जन्म दिवस आज, देश कर रहा है नमन। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला रबी 2026 का आयोजन हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन किया। सीकर के दौरे पर खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। विधि विधान से की पूजा अर्चना, राज्य की खुशहाली के लिए मांगा वरदान। उज्जैन में महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम तेज हुआ। बाबा के भक्तों की सुविधा का रखा जा रहा है खास ख्याल। भारतीय सेना ने डोडा में अग्निवीरों और टेरिटोरियल आर्मी के अभ्यर्थियों को कोचिंग देने की शुरुआत की। सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित होना है उद्देश्य। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नए MBBS बैच के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से MBBS के लिए सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 किए जाने के बाद GMC राजौरी का यह पहला बैच है। ग्रेटर नोएडा के घंटाघर चौक पर CRPF ने चलाया सफाई अभियान, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागलपुर में NDRF और SDRF ने 16 नावें तैनात की। विक्रमशाला सेतु बंद होने के कारण गंगा रूट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया कदम। प्रयागराज के बरगद घाट हनुमान मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया है। कैप्टन स्मिथ मछार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की गई। कैप्टन स्मिथ मछार के जल्दी स्वस्थ होने को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष अनुष्ठान, गंगा आरती में विशेष प्रार्थना का आयोजन। लोगों ने कैप्टन मछार के समर्पण भाव को नमन किया। संकट की घड़ी में अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और मानवता का परिचय देने वाले कैप्टन को बधाई दी। अयोध्या में भी संत कर रहे हैं कैप्टन स्मिथ मछार के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। कैप्टन की जज्बे की तारीफ की। मुंबई में स्मिथ मछार के घर के बाहर लगा बधाई देने वालों का तांता। हाथों में कैप्टन की फोटो लेकर लोगों ने मनाया जश्न।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। ज्यादातर महिलाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाता है अपने विवाह के लिए और अपने वैवाहिक जीवन के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पतिवार व्रत की महिमा क्या है और इसको रखने के नियम क्या हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। बृहस्पतिवार व्रत का महत्व क्या है? देखिए, हर दिन का संबंध होरा के अनुसार एक ग्रह से होता है। उस दिन उससे संबंधित ग्रह की पूजा करके और उपवास रख करके आप उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जब आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो मुख्यतः श्री हरि यानी भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा आपको मिल सकती है। और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन श्री हरि की पूजा करते हैं तो श्री हरि की कृपा से संपत्ति और संपन्नता दोनों मिल सकती है और बृहस्पति देव की कृपा से संतान और विवाह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत अगर नियम से रखा जाए, अगर समझ करके रखा जाए तो ये व्रत हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि जीवन में प्रदान करता है। बृहस्पतिवार के व्रत पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना लाभकारी होगा, कौन से लोग अगर ये व्रत रखें तो उन्हें बहुत फायदा होगा। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति कमजोर हो, ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन खराब हो, उनको भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, संतान प्राप्ति की या संतान सुख की, उनको भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए।
जिनको पेट की या मोटापे की कोई भी समस्या हो, ऐसे लोगों को भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। बालिकाओं के, महिलाओं के जीवन का सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है बृहस्पति। इसीलिए महिलाओं के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना हर प्रकार से अच्छा होता है, उनको फायदा और लाभ पहुंचा देता है। बृहस्पतिवार के व्रत पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत रखने का तरीका क्या है, कैसे रखना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं आज बृहस्पतिवार का व्रत रखूंगा या रखूंगी। इसके बाद जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद अगर घर में केले का पौधा है तो केले के पौधे में जल अर्पित करिए। बृहस्पति देव के मंत्रों का इसके बाद जप करिएगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। अगर आप चाहें तो बृहस्पति व्रत की कथा कह सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो दिन में केवल जल और फल खाकर उपवास रखें। शाम के समय पुनः बृहस्पति देव की पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें। अब ये जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। जहां तक हो सके जल और फल ग्रहण करके आपको उपवास रखना चाहिए। अगर एक समय आपको आहार ग्रहण करना है तो नमक का सेवन नहीं करेंगे। सूर्यास्त के पहले मीठी पीली चीज का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप या घर में कोई भी बृहस्पतिवार का व्रत रखता है तो घर में पवित्रता बनाए रखें। सामान्यतः इस दिन घर में मांस मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। देखिए, बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है, इसीलिए सामान्यतः अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके घर वाले या पुरोहित ऐसी सलाह देते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो, तुम्हारा विवाह जल्दी होगा। लेकिन बृहस्पतिवार का व्रत रखने से हर बालिका का विवाह जल्दी नहीं होता। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति महत्वपूर्ण है और शुभ फल नहीं दे पा रहा है, अगर ऐसी बालिकाएं, ऐसी कन्याएं बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है, हर कन्या का नहीं। इसी तरह से अगर कोई महिला है, उसके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है और अगर वो महिला बृहस्पतिवार का व्रत रखती है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में सुधार होगा।
लेकिन हर महिला के वैवाहिक जीवन में नहीं, जिस महिला के जीवन में बृहस्पति के गड़बड़ होने की वजह से विवाह होने में दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी महिला बृहस्पति वार का व्रत रखे तो उसके वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन में बीमारियों से बचना चाहते हैं, बड़ी स्वास्थ्य की समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो हर अमावस्या को निर्धन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की वस्तु का दान करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, तीरंदाजी में आ गया एक और गोल्ड मेडल, महिला रिकर्व टीम ने रचा इतिहास। एशियन गेम्स में आज भारत के पास चार और गोल्ड मेडल जीतने का शानदार मौका, हॉकी के फाइनल में महिला टीम का चाइना से मुकाबला, बॉक्सिंग में तीन स्वर्ण पदक पर निगाहें। जापान से लौटे पदकवीरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत, ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच हुई फूलों की बरसात, चेन्नई में भी एथलीट्स का शानदार सम्मान। आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल, अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित 6 टीमें। देश भर में आज मनाई जा रही है महात्मा गांधी की 157वीं जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वें जन्म दिवस पर देश कर रहा है नमन। बॉक्स ऑफिस पर आज से सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 मचाएगी धूम, जोरदार एडवांस बुकिंग के कारण धमाकेदार ओपनिंग तय, वीर पहाड़िया की प्रेम कीटाणु से है टक्कर। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी से रंगीन हुआ आसमान, चीनी नेशनल डे के उत्सव में 23 मिनट के शो का करीब 4 लाख लोगों ने दीदार किया।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अगर आपके विवाह में या वैवाहिक जीवन में कोई बाधा बन रहा है तो इसका प्रभाव क्या है और इसे ठीक करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ये तमाम बातें पंडित जी से आज के इस शो में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वक्त हो चला है आज का गुड लक मंत्र जान लेने का।
5: जिन लोगों को या जिन लोगों के रोजगार में निरंतर समस्या रहती हो, ऐसे लोगों को ब्लैक इंक से काली स्याही से लिखना चाहिए। अगर आप ब्लैक इंक का प्रयोग करेंगे तो आपका शनि प्रबल होगा, आपके रोजगार में, आपके करियर में दिक्कतें नहीं आएंगी।
4: और चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
5: दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:15 तक, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं 3:40 तक, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड के अपने विषय की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे बृहस्पति की विवाह में भूमिका क्या होती है, क्या बृहस्पति भी विवाह में समस्या देता है?
5: जी, आज के कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे शुभ ग्रह, सबसे पवित्र ग्रह बृहस्पति क्या विवाह में दिक्कतें देता है, क्या ऐसा करता है? देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना बृहस्पति की कृपा के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता, और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, पुरुष के वैवाहिक जीवन को बैलेंस करता है। अगर बृहस्पति विवाह में बाधा दे तो विवाह का होना और विवाह का निभना दोनों चुनौती हो जाता है, विवाह होता भी नहीं और अगर हो गया तो निभता नहीं। बृहस्पति की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं। उन स्थितियों को जानकर और समझकर अगर उपाय किए जाएं तो चीजें बेहतर कर सकते हैं।
4: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
5: मेष राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, परिवार में अशांति से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
4: और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। ये जान लेते हैं कि बृहस्पति की पहली स्थिति कौन सी है जो विवाह में बाधा उत्पन्न करती है।
5: देखिए बृहस्पति की अलग अलग स्थितियां विवाह और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। पहली स्थिति कौन सी है? बृहस्पति की पहली जो नकारात्मक स्थिति है वो है नीच का बृहस्पति। अगर बृहस्पति मकर राशि में हो, कुंडली में जहां 10 नंबर लिखा है अगर वहां बृहस्पति हो तो ये बृहस्पति नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसके विवाह में विलंब होता है और कभी कभी व्यक्ति के अंदर असंतोष का भाव आ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि विवाह करके करना क्या है, होना क्या है, एक डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है। और नीच का बृहस्पति हो तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में दिक्कतें आती हैं। यानी अगर बृहस्पति नीच राशि में है तो पहले तो विवाह होने में ही झंझट होगी और जब शादी हो जाएगी तो शुरुआत में शादी को निभा पाना, शादी को चला पाना बड़ा कठिन होगा। अब अगर बृहस्पति कुंडली में नीच का है, विवाह नहीं होने दे रहा या वैवाहिक जीवन में झंझटें दे रहा है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करें और जिसकी भी पूजा उपासना करते हैं उसकी उपासना जरूर करिएगा। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाइए, प्रयोग करिए। अपनी तर्जनी उंगली में, अपने इंडेक्स फिंगर में सोने या पीतल का छल्ला धारण करिए। एक हल्दी की गांठ पीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करें। और अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल धारण ना करें।
4: और चलिए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
5: कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक बना रहेगा, अतिथि का आगमन होगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या कन्या राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपका सवाल ले लेते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला प्रश्न किसका लेने वाले हैं।
5: जी आज का पहला प्रश्न अर्पित विश्वकर्मा ने हमें लिखा है, ये लिखते हैं जौनपुर से, 8 दिसंबर 2004 का जन्म है, 4:45 प्रातः जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैंने आईटीआई की पढ़ाई की है लेकिन बीच में मेरे पिताजी का देहांत हो जाने की वजह से मेरे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं, तो क्या आगे मैं प्राइवेट नौकरी में जाऊं या सरकारी नौकरी की तैयारी करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अर्पित जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली कहती है कि अभी आप प्राइवेट नौकरी के लिए कोशिश करिए, अभी आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी और साथ में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साल 2028-29 में आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, उसके पहले प्राइवेट नौकरी में ही कोशिश करना बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के आपके दूसरे सवाल का, पंडित जी आज का दूसरा प्रश्न किसका होगा।
5: जी अगला प्रश्न प्रतीक कहार ने हमें लिखा है, बड़ोदरा गुजरात से लिखते हैं, 16 दिसंबर 1995 का जन्म है, 10:10 रात को बड़ोदरा गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है तो क्या मुझे भविष्य में व्यापार करना चाहिए और अगर व्यापार नहीं कर सकते तो नौकरी को बेहतर कैसे करें, कैसे अपनी नौकरी में स्थिरता ले आएं। प्रतीक, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कन्या राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। कर्क लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो करियर और जीवन पे असर डालता है वो मंगल है और आपके मंगल के कमजोर होने की वजह से दिक्कतें ज्यादा बन रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: और चलिए पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है कि बृहस्पति की दूसरी स्थिति कौन सी है जो विवाह में बाधा पैदा करती है और इसको ठीक करने के उपाय कौन से हैं।
5: देखिए बृहस्पति की पहली निगेटिव स्थिति है नीच का बृहस्पति, आपको बताया। बृहस्पति की दूसरी स्थिति जो विवाह में बाधा पैदा करती है वो कौन सी है? बृहस्पति की दूसरी नकारात्मक स्थिति है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग हो, राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो, तो इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, व्यक्ति के अंदर चंचलता और भटकाव पैदा करता है। व्यक्ति गंभीर नहीं होता और विवाह का समय बीतता चला जाता है और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में लॉयल्टी ईमानदारी नहीं रहती। गुरु चांडाल योग जिनकी कुंडली में हो ऐसे लोग अपने जीवन साथी के अलावा कहीं अन्य भी जुड़ जाते हैं या कहीं अन्य भी उनके प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। तो अगर गुरु चांडाल योग की वजह से विवाह होने में या विवाह चलने में दिक्कत हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए, सुबह शाम दोनों समय कम से कम 27 बार मांस मदिरा इत्यादि का सेवन मत करिएगा। सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण करें अच्छा होगा। दाढ़ी और बाल ये आपको बड़े नहीं रखने हैं, पवित्रता सात्विकता और साफ सफाई से आपको रहना है।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
5: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो बृहस्पति की पहली और दूसरी स्थिति के बारे में जान लेने के बाद अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति की तीसरी स्थिति कौन सी है जो विवाह में बाधा पैदा करती है और इसके उपाय कौन से हैं।
5: तो पहला मामला हो गया नीच का बृहस्पति, दूसरा मामला हो गया बृहस्पति राहु यानी गुरु चांडाल योग, तीसरा क्या होता है? बृहस्पति की तीसरी निगेटिव स्थिति जो विवाह के लिए होती है वो है सप्तम स्थान में बृहस्पति। सातवां भाव, सातवां खाना विवाह का खाना है, विवाह का भाव है। बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है और सातवें स्थान का बृहस्पति विवाह के लिए काफी खराब होता है, खास तौर से महिलाओं की कुंडली में। पुरुषों में उतना निगेटिव नहीं।

0: या सातवें भाव में बृहस्पति हो तो वैवाहिक जीवन में ईगो की वजह से अहंकार के कारण समस्या पैदा हो जाती है, बेवजह का अहंकार, बेवजह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठे महिला की कुंडली में तो पहले तो शादी होना ही मुश्किल है, और अगर शादी हो गई तो ईगो प्रॉब्लम की वजह से, अहंकार की वजह से विवाह टूट सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? पहली बात तो ये कि देर रात तक जगने से बचिए, रात में जल्दी सोने का प्रयास करिए, माथे पर या अपने कंठ पर तिलक जरूर लगाइए, सप्ताह में एक दिन श्रीमद् भगवद् गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए या सुनिए, और भूल कर भी पीला पुखराज धारण मत करिएगा। सातवें स्थान में अगर बृहस्पति है तो एक ओपल धारण करने से आपको विशेष लाभ होगा।
1: और चलिए, वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा प्रश्न किसका रहेगा।
0: जी, अगला प्रश्न राजेंद्र सिंह खत्री जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। अपनी

0: पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 फरवरी 2002 12:27 दोपहर में नई दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का करियर किस दिशा में रहेगा, उसका विवाह कब होगा और कैसा होगा। राजेंद्र जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और धनु राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी बेटी की कुंडली में स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं है। इनको मानसिक चिंताओं से, मेंटल डिप्रेशन से बचना होगा और अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। जहां तक करियर की बात है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनका करियर बनेगा। साल 2027 में सरकारी नौकरी शिक्षा क्षेत्र में इनको मिलेगी। विवाह में अभी विलंब है, साल 2029 में इनके विवाह की संभावना बनती है इनकी अपनी इच्छा से। फिलहाल ऐसा करें कि इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और चौथे प्रश्न की ओर। पंडित जी, चौथा प्रश्न आप किसका लेंगे?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न कशिश जायसवाल ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। 14 जनवरी 2006 का जन्म है, 8:10 प्रातः कानपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं BCA कर चुकी हूं लेकिन परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं MCA नहीं कर पा रही हूं। आगे मेरा करियर और मेरा जीवन कैसा रहेगा? कशिश, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, अभी BCA के बेसिस पे नौकरी करने का प्रयास करिए, आपको नौकरी मिलेगी, सामान्य नौकरी, और आगे चल करके 2029-30 में आप फिर से MCA कर पाएंगी, यानी आगे आपकी पढ़ाई पूरी होगी। प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर्स में आपके सफलता की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, करियर और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी, संपत्ति और वाहन के लाभ के योग बन रहे हैं और जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए, वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है ये जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि क्या स्वास्थ्य खराब होने पर पलंग पर लेट कर भी मंत्र का जप कर सकते हैं? देखिए, विशेष स्थितियों में लेट कर भी मंत्र जप किया जा सकता है। केवल ये ध्यान रखना होगा कि जप करते समय लेट कर भी पीठ एकदम सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप पंडित जी से जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 2 अक्टूबर शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की 7:30 का क्या हाल है। आज की गुडलक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इस समय आपकी 7:30 उतर रही है, इसलिए प्रभु अगर आपकी राशि कुंभ है तो बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा।
1: और चलिए आज पंडित जी से अपना अंतिम प्रश्न ले लेते हैं और जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या होने वाला है।
0: जी,

0: कुंडली में शेयर बाजार से लाभ के योग हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा है। तो अगर शेयर बाजार में लाभ लेना चाहें तो क्या करेंगे? स्नान करते समय जल में जरा सा गोमूत्र डालकर स्नान करिए और इसके बाद ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और नीले कपड़े में लपेटकर सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखिएगा। ऐसा करने से आपको लाभ तो जरूर होगा, आप नुकसान से भी बच पाएंगे।
1: पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो, और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और चलिए अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की, जिसमें माँ दुर्गा के आवाहन के लिए भक्त तैयार हैं। माता रानी के स्वागत के लिए जगह जगह पर चल रही तैयारियां तेज हो चुकी हैं और माँ की भव्य प्रतिमाओं को मूर्तिकार पूर्ण करने में जुटे हैं, तो कारीगर पंडालों के निर्माण में लगे हुए हैं। पूर्व बर्धमान से लेकर मुंबई तक में दुर्गा पूजा को लेकर चल रही तैयारियों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए।

0: भक्ति और कला का अद्वितीय उत्सव, आस्था, भक्ति और एकता की भावना से जुड़ा अद्भुत पर्व, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। माता रानी के आवाहन के लिए भक्त तैयार हैं। माँ का दरबार सजाने संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को तेज गति से आकार देने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं को 11 अक्टूबर की प्रतीक्षा है, जब माता रानी विराजेंगी और अपना आशीष देना शुरू करेंगी। पूरे वातावरण में अगले 9 दिनों तक माँ के जयकारे गूंजते रहेंगे। मंदिरों से लेकर पंडालों तक में हर दिन उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी और भक्त अलग अलग छवि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 9 दिनों तक चलने वाले माता की उपासना के पर्व नवरात्र को पश्चिम बंगाल और पूर्वी में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विशेषकर बंगाल में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, कला और सामुदायिक एकता का भव्य संगम है, इसलिए वहां तैयारियां भी बड़े स्तर पर चल रही हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान की हैं, जहां दुर्गा पूजा के लिए इसी तरह जगह जगह पंडाल बनाने का काम चल रहा है। कारीगर पंडालों को भव्य रूप देने में जुटे हुए हैं, ताकि श्रद्धालु उन्हें निहार कर माँ की भक्ति में डूब जाए। यहाँ जो माता का दरबार सज रहा है, ये लालटू स्मृति संघ का है, जो अपने आकर्षक थीम और बड़े बजट के लिए जाना जाता है। इस वर्ष यहाँ बालाजी की थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसलिए कारीगर तेजी से काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं।
1: अभी हम लोग जुटे हुए हैं, इसको एक जो इसको रूप है उसका कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो डेकोरेटर है, बड़ा डेकोरेटर है, वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। पूरा हम लोग देर से स्टार्ट किया, क्योंकि ये जगह थोड़ा देर से हम लोग लिए हैं, तो हम लोग का आशा है जो महालय का दिन इसका कंप्लीट हो
2: जाएगा।
1: त्रिकुटी बालाजी जो मंदिर है बालाजी का, उसी का थीम है।
0: मूर्तिकार तेजी से देवी माँ की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं, साथ ही मूर्तियों के रंग रोगन का काम भी चल रहा है। मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ी हुई है, वो मिट्टी को गूंथ कर अलग अलग आकार की मूर्तियां गढ़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि मिट्टी अब इन्हें महंगी मिल रही है, लगभग 2 गुना दाम पर, लेकिन सवाल माता रानी का है तो ये मूर्तियों को समय से तैयार करने में पूरे मन से लगे हुए हैं।
3: आगे तो 80-100 रुपया में मिल जाते थे, अभी तो 150-200 रुपया हो गया, डबल हो गया, लेकिन ठीक समय में मिलता नहीं है। बनाना तो पड़ेगा, दिक्कत है तो तब भी बनाना पड़ेगा। वो सब खर्चा ये प्रतिमा के अंदर तो लग जाएगा ना, प्रतिमा के दाम बढ़ जाएगा, लेकिन पार्टी तो नाराज हो जाता है।
2: इस बार आप लोगों को बनाने के लिए ऑर्डर मिला है?
3: दुर्गा प्रतिमा 21-22 तो है।
2: बर्धमान का है या फिर बाहर?
3: ना, थोड़ा ये इधर उधर भी जाता है, 40 किलोमीटर तक जाता है।
2: कितने कारीगर काम कर रहे हैं?
3: 6-7 जो है।
0: पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में भी नवरात्र को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह तस्वीरें मुंबई के परेल इलाके की है, जहां गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्र की तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, और ये परेल इलाके की तस्वीरें हैं, जहां मूर्तिकार तेजी से हाथ चलाते हुए माता की प्रतिमाओं को आकार देते दिख रहे हैं। कोई मूर्तियों के लिए ढांचा तैयार कर रहा है, कोई प्रतिमाओं को रगड़कर उसे चिकना बनाने में जुटा है, तो कोई प्राइमर या लेप लगा रहा है। गणेश उत्सव के ठीक बाद नवरात्र का समय आ चुका है, इसलिए मूर्तिकार तेजी से काम कर रहे हैं।
4: मुंबई के सबसे बड़े कारखाने में देवी को आकार देने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखें आकार जिस तरीके से देवी को देते हैं, देवी की मूर्ति बनाने का भी काम बड़े ही जोरों शोरों में शुरू है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुँचा है मूर्ति का काम और क्या कुछ मांग रहे हैं लोग?
5: इस साल का गणेशोत्सव बहुत अच्छा गया, और जैसे गणेशोत्सव गणेश विसर्जन हुआ, विसर्जन के दूसरे दिन ही नवरात्र का काम चालू हो गया। एंड अभी काम है जोरों शोरों में है, अभी तो शुरू हुआ है, एक 10 दिन में हमें काफी सारे ऑर्डर पूरे करने हैं।
6: क्या डिमांड है राजू भाई, क्या मांग रहे हैं लोग, किस तरह की देवी, किस तरह का अवतार होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए?
5: इस साल ज्यादा अष्टभुजा देवी बहुत ज्यादा है, मुंबई ऊंची मूर्तियों के लिए फेमस है और वो ट्रेंड अभी देवी में चालू हो गया है।
6: गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से बीता है और अब नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। कई ऐसे कारखाने हैं जहां पर देवियों को बनाने का काम शुरू हो रहा है, उनको आकार देने का काम शुरू हो रहा है।
0: जहां जहां माता रानी की प्रतिमाएं बनती हैं, वहां अधिकतर ऑर्डर मिल चुके हैं और मूर्तिकार अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वो तेजी से मूर्तियां तैयार करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी डिलीवरी समय पर की जा सके, जिससे भक्त भी भारतीय संस्कृति से जुड़े इस उत्सव का हिस्सा बन सके। पूर्व बर्धमान से सुजाता मेहरा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब आपको कुछ ऐसे वायरल वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल कर देने वाले।
8: दो बड़े बॉल और दो नन्हे हाथ, बैलेंस बनाना है, दोनों हाथों को एक्टिव रखना है और सामने आई गेंद को दूसरे हाथ को पास करना है। जरा सी चूक और आप गेम से आउट, इसलिए सबकी निगाहें एकदम निशाने पर है। बॉल आते ही हाथ से दूसरी तरफ मोड़ दी जा रही है, कोई देरी नहीं, कोई चूक नहीं। संभव है ये मोटर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग बच्चों में एकाग्रता लाने, फोकस बढ़ाने के लिए करवाया जा रहा है, पर ये एक्सरसाइज है इतना मजेदार कि यकीनन बच्चों को इसका इंतजार रहता होगा। दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, सनातन परंपरा, कला और संस्कृति का अनूठा संगम भी है। नवरात्र शुरू होने वाला है, देवी का आगमन बस होने ही वाला है। उससे पहले कलाकार के भावों की अभिव्यक्ति देखिए, माँ के स्वागत की ये तैयारी लोगों का दिल छू रही है। बंदर तो बंदर है, वो कहीं हो और अपनी उपस्थिति दर्ज न कराए ऐसा हो नहीं सकता। अब यही देख लीजिए, भालू और कुत्ते की दोस्ती से इन्हें भला क्या परेशानी थी, देखा नहीं गया इनसे इतना प्यार, एकदम से टपक पड़े और फिर तो देख ही रहे हैं इनके कारनामे, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें दूर करने की, और जब जी भर गया तो निकल पड़े, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है करो। हम तो बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं, बंदर कुत्ते को बचाने आया था या दोनों की केमिस्ट्री से जल रहा था, अब ये तो वही जाने। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ जड़ हो या चेतन, हर किसी को सम्मान मिलता है और ये परंपरा प्यार, मूल्यों और उदाहरणों के जरिए आगे बढ़ती है। यहाँ देखिए, एक बेटी अपने पिता से कैसे सीख रही है अन्न का सम्मान करना, मंदिर में खाना कैसे खाना है, कैसे सम्मान जताना है और कैसे संस्कारों को आगे ले जाना है। वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इनकी इस मासूम अदा पर कौन न दिल हार जाए, मुस्कान देखिए जरा चेहरे पर, पारंपरिक लिबास में नन्हे नन्हे कदम बढ़ाती, मुस्कुराती और साथ में अपने दोस्त को सिर पर बिठाकर खुश होती इस प्यारी बच्चे का वीडियो लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान ला रहा है।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है, बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी, क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।

0: के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो। भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो, मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: एशियाई खेलों में आज भारत की शानदार शुरुआत, तीरंदाजी में आ गया एक और गोल्ड मेडल, महिला रिकवर टीम ने रचा इतिहास। जापान से लौटे मेडलिस्ट का दिल्ली एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े की गूंज के बीच हुई फूलों की बरसात, चेन्नई में भी एथलीट का शानदार सम्मान। थूथुकुड़ी में नवरात्रि से पहले गोलू गुड़ियों की अनोखी प्रदर्शनी, रंग बिरंगे भगवान की प्रतिमाओं से सजा मेला, देखने के लिए लग रही है लोगों की भीड़। अयोध्या राम मंदिर में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रस्ट ने उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भी मांगी डिटेल। पितृपक्ष पर गया जी के देवा घाट में श्रद्धालुओं की भीड़, दुनिया भर से जुट रहे श्रद्धालु पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन।

0: हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी से रंगीन हुआ आसमान। चीनी नेशनल डे के उत्सव में 23 मिनट के शो का करीब 4 लाख लोगों ने दीदार किया।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपकी साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: शुभ समाचार की शुरुआत एशियन गेम्स के साथ करेंगे, जहां से हर दिन अच्छी खबर आ रही है। आज भी जापान में भारत के लिए मेडल बरसे। भारत ने अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक, यानी कुल 67 पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारतीय महिला रिकर्वस तीरंदाजी टीम ने खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया।
2: और इस बीच नवरात्र की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दुर्गा पूजा का काउंटडाउन चल रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। उससे पहले शहर शहर तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। माँ दुर्गा की भी इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। तो नवरात्र की तैयारियों के ये रंग भी आपको आगे दिखाएंगे।
0: साथ ही आपको बुलेटिन में नोएडा के गूगल बॉय से मिलवाएंगे। नाम है अभियुक्त सिंह, जिन्होंने अपनी असाधारण मेमोरी और पहचानने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आखिर अभियुक्त ऐसा क्या करते हैं, ये आगे आपको बताएंगे।
2: इधर अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शानदार एडवांस बुकिंग के कारण फिल्म की शानदार ओपनिंग तय है, लेकिन फिल्म कैसी है इसका रिव्यू हमें जानने की कोशिश है और आगे आपको दिखाएंगे।
0: इसके अलावा हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया है। आखिर किस मौके पर हुआ और कैसे जमा रंग, ये सब आगे आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे के नौगन न्यूज का।
2: आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज 13वां दिन। आज की शुरुआत गोल्डन मेडल की जीत के साथ हुई। तीरंदाजी में भारत को चौथा गोल्ड मेडल मिला है। विमेंस रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की तिकड़ी ने फाइनल में मजबूत दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर इतिहास रच दिया।
0: एशियन गेम्स मेडल जीतकर और तिरंगा लहराकर स्वदेश लौटने वाले खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है। एयरपोर्ट पर पदकवीरों के इस्तकबाल की तस्वीरें गवाह हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान गर्व से झूम रहा है। खिलाड़ियों की एक और झलक पाने और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए प्रशंसकों में भी खासा उत्साह दिखा। हर कोई अपने चैंपियन के साथ इस यादगार पल को कैमरे में कैद करना चाहता है।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 157वीं जयंती है। दिल्ली में उनकी समाधि राजघाट पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया, जिसमें नेता और लोग शिरकत कर रहे हैं। महात्मा गांधी के अलावा आज लाल बहादुर शास्त्री की भी 122वीं जयंती है। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में यूपी के मुगलसराय में हुआ था।
0: गणेशोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन ही हो गया, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में करीब 16 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद बप्पा की विदाई की गई। 16 दिनों के बाद 20 फीट ऊंचे विदर्भ के राजा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 12 से ज्यादा ढोल मंडलियां शामिल हुई। ढोल की थाप, पारंपरिक वेशभूषा, केसरिये झंडे और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष से पूरा अमरावती भक्ति में नजर आया।
2: देश में अभी से शारदीय नवरात्र की रौनक दिखने लगी है। यूपी के झांसी में मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार करने में जुट गए हैं। झांसी में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से काफी पहले से ही शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं को ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैली में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहां पर खास डिमांड है।
0: झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारत सरकार की योजनाओं को रंगोली के माध्यम से दर्शाने के अनोखा प्रयास किया है। छात्रों ने रंगोली कलर्स के जरिए 100 फीट से अधिक एरिया में विकसित भारत की ऐसी तस्वीर बना दी कि देखने वाले दंग रह गए। इसके जरिए बताने की कोशिश की गई है कि देश में चल रहे विभिन्न योजनाओं का भारत में विकास में कितना योगदान है। इस काम को फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के 80 छात्रों ने 30 घंटों में बनाकर तैयार किया।
2: आईसीसी ने मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया वर्ल्ड कप की साझा मेजबानी करेंगे। 7 अक्टूबर 2027 केप टाउन में भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर और दूसरा 18 नवंबर को खेला जाने वाला है, जबकि फाइनल 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में होगा।
0: फिल्म के दीवानों के लिए गुड न्यूज है। आज फिल्म दृश्यम 3 रिलीज हो चुकी है। अजय देवगन की दृश्यम द कंक्लूजन में इस बार जयदीप अहलावत का भी अहम रोल है। इस सस्पेंस थ्रिलर में तब्बू, श्रिया सरन, प्रकाश राज, इशिता दत्त और रजत कपूर भी हैं।
2: दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है। इसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शंस प्रदर्शित कर रहे हैं। पेरिस के ट्रोकडेरो फाउंटेन के पास खुले में आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी नजर आ रहा है।

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज के साथ करेंगे। एशियन गेम्स में भारत की दमक लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है और देश की झोली में लगातार पदक आ रहे हैं। भारत ने अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक यानी कुल 67 पदक अपने नाम कर लिए हैं। लेकिन इन पदकों के बीच भारतीय महिला रिकर्वर तीरंदाजी टीम की ऐतिहासिक जीत ने देश का नाम रोशन कर दिया। भारतीय तीरंदाजों ने खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया। यह जीत सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं है बल्कि भारतीय तीरंदाजी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत की इस पदक यात्रा में हर खिलाड़ी की अपनी कहानी है। कोई पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरा है तो कोई वर्षों के अनुभव के साथ देश के लिए पदक जीत रहा है, लेकिन लक्ष्य एक है, तिरंगे को सबसे ऊंचा करना। तो आज एशियन गेम्स 2026 में महिला हॉकी फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है। इसमें गोल्ड मेडल के साथ साथ 2028 ओलंपिक कोटा भी दांव पर होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम 44 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने के लक्ष्य के साथ उतरने वाली है। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन समेत 3 भारतीय मुक्केबाज गोल्ड मेडल मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे, तो वहीं 3 भारतीय मुक्केबाज गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें, ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन महिला 75 किलोग्राम फाइनल में चाइना की जी बाओ के खिलाफ मुकाबला करने जा रही हैं। वहीं बात करें परवीन हुड्डा की, तो महिला 65 किलोग्राम फाइनल में चीनी ताइपे को ओलंपिक पदक विजेता चीन नियन चिन से वो भिड़ने वाली हैं, जबकि अंकुश पंघाल पुरुष 80 किलोग्राम फाइनल कैटेगरी में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के मिनसोंग किम का सामना करने जा रही हैं। कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में भी 4 वर्गों में पदक दांव पर होने वाला है। पुरुष फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में सुजीत कलकल और महिला 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक पर नजरें टिकी रहने वाली हैं। इसके अलावा पुरुष फ्री स्टाइल 125 किलोग्राम में रजत रूहल और महिला 50 किलोग्राम में दीपांशी भी पदक की दौड़ में रहने वाली हैं। आपको बता दें, इस टकराव में भारत पुरुष क्वाड्रेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पहले ही पदक पर पक्का कर चुका है भारत, और अब उसकी नजर पदक का रंग बदलने पर होने वाली है। महिला टीम भी पदक की दौड़ में बनी हुई है। बात करें ट्रैक साइकिलिंग की, तो इसमें भी 3 स्पर्धाओं में पदक दांव पर है।

2026 में आज कौन कौन से मुकाबले होने जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आज कई मेडल्स पर, खासतौर से गोल्ड मेडल्स पर भारत की नजर टिकी रहने वाली है। कुश्ती में आज 4 मेडल दांव पर लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, कई खेलों में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज पर आज भारत की नजर टिकी रहने वाली है। बात करें ट्रैक साइकिलिंग की, तो दांव पर आज 3 पदक लगे हुए हैं। तो जापान में एशियाई खेलों में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पदकवीर जब स्वदेश लौटे तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। खिलाड़ियों के स्वागत में ढोल नगाड़े बजे, फूलमालाएं पहनाई गई और पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। देखिए खास रिपोर्ट।

0: भारत माता के जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की बरसात, कोई फूल मालाएं पहना रहा है तो कोई मुंह मीठा करा रहा है। क्योंकि ये मौका खास है। ये तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हैं। जापान के आईची नागोया एशियाई खेलों में मेडल जीतकर और तिरंगा लहराकर जब एथलीट्स स्वदेश लौटे तो पूरा माहौल ही खुशी से सराबोर हो गया। गले में देश की शान बढ़ाते चमचमाते मेडल्स और चेहरे पर जीत की मुस्कान एशियाई खेलों में कामयाबी की कहानी साफ बयां कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर प्रसन्नता इस बात की है कि अपने ही देश की धरती पर इतना भव्य स्वागत हो रहा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है और सभी इकट्ठे हो रखे हैं मेरे लिए। मेरे को पता नहीं था कि इतना सभी इकट्ठे होंगे।
0: ये वो पल है जिसके लिए इन एथलीट्स ने परसों पसीना बहाया और अब जब मेडल लेकर ये स्वदेश पहुंचे हैं तो इनकी खुशी देखते ही बनती है।
1: परफॉर्मेंस देनी थी मैं वैसी तो नहीं दे पाई, पर खाली आज से अच्छा मेरी जिद बस यही थी कि मेरे को पोडियम पे खड़ा होना है और मैं अपने देश के लिए मेडल जीत के लाई।
2: बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला एशियन गेम्स था और मैं पहले एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल के साथ आई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
3: मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछली बार भी मैं एशियन गेम्स में गई थी तो वहाँ भी मेरा सिल्वर था और इस बार भी हम लोगों का टीम का सिल्वर मेडल है तो मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एयरपोर्ट पर पदक वीरों के इस्तकबाल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान गर्व से झूम रहा है। खिलाड़ियों की एक झलक पाने और उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए प्रशंसकों में भी खासा उत्साह नजर आया। हर कोई अपने चैंपियन के साथ इस यादगार पल को कैमरे में कैद करना चाहता था।
4: बहुत अच्छा लग रहा था पर मुझे था भी मैं गोल्ड जीतूंगा। सिर्फ 17 सेंटीमीटर से मेडल गोल्ड चला गया। बारिश भी बहुत हो रही थी पर मैं देश के लिए मेडल आया, मुझे खुशी आई। मेरी जो सिलेक्शन थी ना इंटरस्टेट पे, मैं थर्ड रह गया था काफी इंजरी की वजह से। बहुत लोग सवाल कर रहे थे इससे क्यों लेकर जा रहे हो, मैं इसलिए बोला था तू ही हियर। टाइगर अभी जिंदा है।
5: बहुत बहुत खुशी वाली, मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है अभी मैं अपने देश के लिए मेडल जीत पाया और बस आगे ही और अच्छी मेहनत करेंगे और देश के लिए मेडल जीतेंगे।
6: बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दो मेडल आए हैं एशियन गेम में। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है और हम दोनों ने ठीक किया वहाँ पे और दो हमारे देश के लिए मेडल जीत सके। दो
0: इन खिलाड़ियों के गले में सजे पदक सिर्फ जीत की निशानी नहीं बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और देश के लिए किए गए शानदार प्रदर्शन की कहानी भी बयां कर रहे हैं।
7: सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और इस बार मैं अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाई हूँ एशियन गेम में, लेकिन मैं नेक्स्ट एशियन गेम में और आने वाले कॉम्पिटिशन में प्रयास करूँगी कि मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाऊँ।
8: बहुत खुशी हो रही है कि इतने टाइम बाद इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेके आया हूँ, काफ़ी खुश हूँ। स्पोर्टिंग सर हम लास्ट दो मंथ से US में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो AFI ने स्पोर्ट करके हमें वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा, सो काफ़ी एक्सपीरियंस कुछ सीखने को मिला वहाँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एलीट एथलीट्स के साथ। सो काफ़ी कुछ हेल्प कर दी उसने कि टैक्टिक्स और टेक्निकल रेस कैसे भागी जाती है। सो
9: बहुत अच्छा क्योंकि अभी आप रिसेंटली कॉमनवेल्थ में मिस हो गया मेरा मेडल, तो ये मेडल मेरे लिए बहुत खुशी लेके आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, कॉम्पिटिटर्स है लेकिन हाँ ये है कि भी हमें हमारे पास एक और मौका है कि भी हम बेटर करें और आगे के टाइम में और अच्छा करके मेडल का रंग बदले।
0: एयरपोर्ट पर पहुंचे खिलाड़ियों के परिजन भी उत्साह से लबरेज नजर आए।
10: बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, वो मेरी भतीजी हैं पिंकी वलारा, मैं उनकी बुआ जी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम उसके स्वागत के लिए यहाँ आए। ऐसी भतीजी बेटी भगवान सबको दे, हमें बहुत ज़्यादा गर्व है उस पर और मतलब हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है मतलब कि उसने हम यहाँ तक भेजा हमें और अपने भारत के लिए जो है मेडल लेके आई है।
0: एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर लौटे पदक वीरों का सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि चेन्नई में भी शानदार स्वागत हुआ। बीती रात जब ये एथलीट चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे तो धूमधाम से इनकी अगवानी की गई। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के अधिकारी भी इस अवसर पर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। देश का नाम रोशन कर लौटे इन खिलाड़ियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर परिजनों के अलावा भारी तादाद में खेल प्रशंसक भी मौजूद रहे। पारंपरिक तरीके और ढोल नगाड़ों के साथ पदक वीरों का अभिनंदन हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा और इन खिलाड़ियों को भी आने वाले वक्त में और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए हौसला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और इस मौके पर आज दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। तो वहीं राष्ट्रपति और पीएम के अलावा विपक्ष के नेताओं समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, सत्य और अहिंसा के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने वाले गांधी जी को देश भर में आज याद किया जा रहा है। आज गांधी जयंती के अवसर पर तमाम नेता राजघाट पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्प सुमन अर्पित करते हुए दिखाई दिए।

और दुर्गा पूजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। उससे पहले शहर शहर तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं झांसी की रिपोर्ट, जहां बंगाली शैली में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और उनकी डिमांड भी खूब है।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व करीब आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर पिछले करीब 34 वर्ष से एक बंगाली परिवार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। अहम बात यह है कि प्रतिमाओं के निर्माण और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सामान कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
1: यहाँ पे जो भी मूर्ति बनता है सब प्योर मिट्टी का बनता है, ना पीओपी यूज होता है, ना कुछ मतलब जो हार्मफुल वाला जो कलर होता है उस टाइप का कोई कलर भी नहीं यूज करते। हम पूरा जो इको फ्रेंडली कलर होता है उस टाइप का कलर भी यूज करते हैं, पूरा मिट्टी का बनाते हैं। और जो हमारा सिंगार वगैरह भी जो होता है वो सब कलकत्ता से आता है। और मिट्टी वगैरह हम जो 4-5 प्रकार का मिट्टी यूज करते हैं उसमें से 2-3 प्रकार का मिट्टी हम कलकत्ता से ले आते हैं, बाकी जो काली मिट्टी और इधर का लाल मिट्टी वो इधर से ही लेते हैं। और इसीलिए हम लोगों का मिट्टी और मूर्ति क्या है जो भी होता है वो ज्यादा से ज्यादा घास और मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें ना कोई पीओपी का यूज है, हल्का भी होता है और पानी में जाने के साथ साथ एक गल भी जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए हम लोगों का मूर्ति में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं यूज होता है इसमें।
0: झांसी की इस वर्कशॉप में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कम से कम 12-14 कारीगर इसमें लगे रहते हैं। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैलियों में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहाँ पर खास डिमांड है।
2: मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ के अब जाएगा ना ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। अर्जुन कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
0: मूर्तिकारों की माने तो इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा की करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इनमें से लगभग 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की इन प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में भी है। लिहाजा माँ दुर्गा की ये प्रतिमाएं इस बार इलाके के ज्यादातर पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: यूं तो गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन ही हो गया, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में करीब 16 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद बप्पा की विदाई की गई। 16 दिनों के बाद अमरावती में न्यू आजाद गणेश उत्सव मंडल के 20 फीट ऊंचे विदर्भ के राजा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में विदर्भ के अलग अलग जिलों से आई 12 से ज्यादा ढोल मंडलियां शामिल हुई। ढोल की थाप, पारंपरिक वेशभूषा, केसरिया झंडे और गणपति बप्पा

0: की बारिश पूरे आयोजन का खास आकर्षण बनी रही। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं बड़े पर्दे पर दृश्यम 3।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: सर, कैसे फास्ट?
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं

0: दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो। भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: एशियाई खेलों में आज भारत की शानदार शुरुआत, तीरंदाजी में गोल्ड और एक सिल्वर मेडल, अब तक भारत के खाते में कुल 68 पदक। जापान से लौटे मेडलिस्ट का दिल्ली एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच हुई फूलों की बरसात, चेन्नई में भी एथलीट्स का शानदार सम्मान। थूथुकुड़ी में नवरात्रि से पहले गोलू गुड़ियों की अनोखी प्रदर्शनी, रंग बिरंगे भगवान की प्रतिमाओं से सजा मेला, देखने के लिए लग रही है लोगों की भीड़। अयोध्या राम मंदिर में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रस्ट ने उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भी मांगी डिटेल। पितृपक्ष पर गया जी के देवघाट में श्रद्धालुओं की भीड़, दुनिया भर में इससे जुट रहे श्रद्धालु पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी से रंगीन हुआ आसमान, चीनी नेशनल डे के उत्सव में 23 मिनट के शो का करीब 4,00,000 लोगों ने दीदार किया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और फिल्म की एडवांस बुकिंग ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है। बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग के संकेत भी दे रही है, कहीं फैंस फिल्म के पोस्टर के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं तो कहीं थिएटर के बाहर फिल्म के डायलॉग्स और पिछले दोनों पार्ट्स की यादें ताजा की जा रही हैं। वैसे तो शानदार एडवांस बुकिंग की वजह से फिल्म की धमाकेदार ओपनिंग होना तय है, लेकिन अगर आप फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये फिल्म कैसी है और क्यों देखने लायक है, क्या ये दृश्यम 1 और 2 से बेहतर है, इस फिल्म में क्या खास है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम सिनेमा घरों में पहुंची और लोगों से बातचीत की। देखिए दृश्यम 3 की फर्स्ट रिपोर्ट हमारी संवाददाताओं के साथ।
5: मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ यहाँ पर है स्पॉइलर, बट मैं जेएनडी की ऑडियंस का, फैंस का मूड स्पॉइल नहीं करूंगी, बट सिर्फ एक बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगी अनदर मास्टरपीस, एक ऐसी फिल्म जो आपको थिएटर में आके ज़रूर देखनी चाहिए। प्लीज़ वेट मत कीजिएगा कि कभी आएगी, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप देखेंगे। यू हैव टू कम टू द थिएटर एंड वॉच दिस फिल्म, ऑसम।
6: दृश्यम के इस खेल में हमने इतने दृश्य देख लिए कि हम प्रोसेस ही कर रहे हैं कि हम क्या देख के आए हैं। अ मस्ट मस्ट वॉच फिल्म, जितनी मुझे लगता है ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है, इस देश की एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से, ज़रूर पूरी होने वाली है। भाई हमारी तो पूरी हो गई है, मतलब हम भी प्रोसेस ही करें कि हम क्या देख के आ गए एग्जैक्टली.
5: कई बार ना लाइफ में ऐसे होता है ना कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है. आपको समझ में नहीं आता कि एक सिचुएशन में से निकलेंगे, दूसरे में पहुंचे, तीसरे में पहुंचे, चौथे में पहुंचे, फिर करें क्या. ये फिल्म आपको बताएगी आपके दिमाग के साथ खेलना कैसे है, उसके बाद कंक्लूड कैसे करना है. एक फैन मिल गए हमें, हार्ड कोर डाई हार्ड फैन ऑफ अजय देवगन जो पहले भी मिले थे. कैसी लगी मूवी?
7: जैसा मैंने बोला था एकदम कमाल है, सुपर डुपर है, फुल पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल है.
5: अच्छा, विदाउट गिविंग देम एनी स्पॉइलर, मुझे ये बताओ कि ये मूवी देखने क्यों आए?
7: मूवी देखने इसलिए आए क्योंकि दृश्यम 1 दृश्यम 2 डिसअपॉइंट नहीं करती, ये वाली तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं.
5: अजय देवगन कैसे लगे?
7: अजय देवगन बहुत अच्छे लगे. मैं एक चीज एड ऑन करना चाहता हूँ, फिल्म छोटी है और क्रिस्प है. मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ब्रेक ले लें, आप अपने फोन को चला लें, आप स्क्रीन से चिपक के बैठे रहते हैं.
5: कैसी लगी मूवी?
8: बहुत बढ़िया, मजा आ गया.
5: 10 में से कितने मार्क्स देंगे?
8: 5 में से 5.
5: पार्ट 1 पार्ट 2 देखा था?
8: देखा था, बहुत अच्छा था, वो भी अच्छा था, मजा.
5: लेकिन पार्ट 3 से जितने एक्सपेक्टेशंस थी उस पे खरे उतरे?
8: खरे उतरा, ठीक है. मतलब सस्पेंस दिखाया ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया. मैं सोच रहा था मतलब कि पकड़े जाएंगे या इनका परिवार जेल में जाएगा, अब केस हार गया. लास्ट मोमेंट तक लगता रहा, हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन जो उसने पासा पलटा है ना, बॉडी भी वहाँ पे आ गई और मतलब कि परिवार ही बच गया, केस भी जीत गए और वो हार गया, तमड़ा वकील हार गया. मतलब मजा आ गया.
5: देखिए एक्साइटमेंट इज ऑन द पीक क्योंकि हम निकल आए हैं थिएटर के बाहर. थिएटर के मतलब राइट आउटसाइड द थिएटर. मूवी देखकर मैं और प्रांजलि जितने एक्साइटेड है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. हम रेडी हैं आपको स्पॉइलर देने के लिए, बट हम देंगे नहीं क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर फैंस हैं. सर आपका नाम?
9: मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है.
5: जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ फ्रेम में हैं. जितेंद्र जी कैसी लगी मूवी?
9: कैसी क्या लगी, बहुत जबरदस्त लगी, समझ लो.
5: कितनी जबरदस्त लगी?
9: पहला पार्ट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, भाई बांधे रहा इस फिल्म ने मुझे. हर 2 मिनट बाद लगता था क्या होगा पता नहीं फिल्म के अंदर. अजय देवगन के लिए तो भाई जय है.
5: मैं पता क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अजय देवगन ना विदाउट हैविंग मच डायलॉग्स इन द फिल्म, हालांकि डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं, उन्होंने आंखों से जो कमाल कर दिया है, आंखों से जो अदाकारी की है उन्होंने, एक्सप्रेशन दिए, उसके बारे में जरा बताइए.
9: देखिए आंखों से तो काजल का, उसने आंखों का काजल चुरा लिया तो हमारा भी दिल चुरा लिया. एक्चुअली अजय देवगन की जो एक्टिंग है, जो उसकी आंखों का देखने का जो स्टाइल है ना, हम तो वहीं फिदा हो जाते हैं. मैं तो सच में उसी को देखने आया था इस बार, किसको धोया है उसने इस फिल्म के अंदर.
5: वही रिएक्शंस पे रिएक्शंस, एक्साइटमेंट पे एक्साइटमेंट, अनकंट्रोलेबल है ये. जिनिया है मेरे साथ. जिनिया कैसी लगी मूवी?
10: यार मूवी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद
5: जिंदाबाद. अरे सबसे अच्छा क्या लगा?
10: यार मुझे, मैं सच बताऊँ, मुझे जयदीप अहलावत इस बार बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार. इतने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं ना, जो बेइज्जती हुई है ना उनके, मजा ही आ गया.
5: मैं सच्ची बताऊँ, व्हाइट शर्ट में क्या लगे हैं और उनकी एंट्री, ओए होए होए
10: यार. चाहे उनका फेस जैसा भी लगता हो बट ऑरा है भाई बंदे का, स्वैग है.
5: अच्छा पार्ट 1 पार्ट 2 देखा था?
10: हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 देखा था.
5: 3 ने एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया?
10: देखो याद दिला देती हूँ गाइस, हम 2 अक्टूबर को पणजी गए थे स्वामी चिन्मय जी के आश्रम, वहाँ पे हमने उनका सत्संग सुना, फिर हमने पाव भाजी खाई, फिर हमने मूवी देखी और फिर उसके बाद हम 3 अक्टूबर को पणजी से वापस आए जहाँ पे हमने ATM से पैसे निकाले. ये कहानी थी.
5: एक काम करो इनको जरा कास्ट कर दो मूवी में क्योंकि सारे के सारे डायलॉग जीनिया को याद है. जीनिया, अजय देवगन और जयदीप अहलावत में से कौन बेस्ट लगा?
10: यार अजय देवगन के जो आईज इंटेंस और उनकी वो जो शरारती वाली स्माइल है ना, जब सबकी बैंड बजती है और जब सबकी बेइज्जती होती है, वो एक स्माइल शैतान वाली, वो अच्छी लगी. बट जयदीप ने जो, यार जयदीप अच्छे लग रहे हैं.
5: जयदीप पे ना आपका दिल आ जाएगा, मैं सच्ची कह रही हूँ, हम लड़कियों का दिल जयदीप अहलावत पे आ जाएगा, ये कभी सोचा नहीं.
10: अभी नहीं, मेरे को जयदीप अच्छे लगते हैं, नो डाउट. मुझे वो OTT में जैसा काम करता है ना, मुझे वो पसंद आते हैं.
4: पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है. लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंस ने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया. सेंट लॉरेंस ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड गोल्ड लुक क्रिएट किया है जिसने सबका दिल जीत लिया.

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के शानदार डिजाइन की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेड स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे होने का।

0: Bureau Report, Good News Today.
1: चाइना में इन दिनों संस्कृति और जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन हो या रात, देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहार भी रौनक में हैं और इसकी वजह है चाइना का राष्ट्रीय दिवस, जो वहां के लिए किसी त्योहार से कम नहीं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जिससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है।

0: चीन में इन दिनों उत्सवी माहौल है। एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियों को बनाने के लिए देश भर में खास कल्चरल टूरिज्म इवेंट्स शुरू किए गए हैं। इनमें पुरानी वास्तुकला, लाइट शो, पारंपरिक लालटेन और त्योहारों वाली लाल सजावट का मेल देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को राष्ट्रीय झंडे और फूलों से सजाया गया है और रात में शानदार आतिशबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का शो हुआ। 23 मिनट के इस शो को देखने के लिए शहर के वाटरफ्रंट पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। इन रंग बिरंगी रोशनियों ने हार्बर की आसमान को जगमगा दिया। लोग आतिशबाजी से रंगीन आसमान की तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखे। इसमें स्थानीय लोगों के साथ विदेशों से आए पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के तांगजुए गांव में रोशनी वाली बड़ी बड़ी मछली के आकार की लालटेन का जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस गांव के ऐतिहासिक इलाकों से गुजरा। ये जुलूस गांव की सांस्कृतिक विरासत और रात के समय होने वाले कार्यक्रमों का एक अनूठा संगम है। चीन में एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियां दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इस समय को जिन्हें गोल्डन वीक कहते हैं, इस दौरान बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सैलानी चीन की यात्रा पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब एक ऐसे गॉड गिफ्टेड बच्चे से आपको मिलवाते हैं जो अपने माता पिता के साथ नोएडा में रहते हैं। ये 6 साल के हैं और नाम है अभियुक्त सिंह, जिन्होंने अपनी असाधारण मेमोरी और पहचानने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अभियुक्त ने महज 1 मिनट में देश विदेश के 40 प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की पहचान कर ये उपलब्धि हासिल की है।

0: कुशल मेंडिस।
1: खेलने में इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट है?
2: क्रिकेट खेलने में।
1: खेलने में, देखने में नहीं?
2: नहीं, क्योंकि जब देखता हूँ ना तब मैं बोर हो जाता हूँ।
1: तो इतने सारे प्लेयर्स के नाम कैसे पता है अभियुक्त को फिर?
2: क्योंकि मेरी मम्मा ने सिखाया है।
3: नोएडा के रहने वाले अभियुक्त सिंह के छोटे कदम जरूर हैं, लेकिन उनकी मंजिल बहुत बड़ी है और अपनी काबिलियत और माता पिता की मेहनत के बूते बहुत तेजी के साथ वो कामयाबी बेमिसाल पा रहे हैं।
1: अभी पढ़ने में मजा आता है? कुछ पढ़ाई करने में अच्छा लगता है?
2: हाँ, थोड़ा थोड़ा।
1: थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बच्चा है, बहुत छोटा है, अभी सिर्फ 6 साल का है, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड अभियुक्त के नाम है। अभी हाल ही में 3 गिनीज रिकॉर्ड उसके नाम बैक टू बैक आए हैं और बहुत सारी चीजें ये 2 साल की उम्र से ही कर रहा है।
3: यानी जब अभियुक्त 2 साल 9 महीने के हुए तब 1 मिनट 48 सेकंड में उन्होंने 50 विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को पहचानने का रिकॉर्ड बनाया था। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। इसी उपलब्धि के लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी दर्ज किया गया। इसके बाद महज 4 साल 9 महीने की उम्र में अभियुक्त ने 100 देशों के झंडों की पहचान सिर्फ 86 सेकंड में कर दी। इस अचीवमेंट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। जब अभियुक्त 5 साल 1 महीने के हुए तो उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त के रिकॉर्ड भी बढ़ते गए। इस उम्र में उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में 90 देशों के झंडों की पहचान की। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। वहीं जब अभियुक्त 5 साल 4 महीने के हुए तो उन्होंने सिर्फ 43.35 सेकंड में 50 डायनासोर्स की पहचान की। इस उपलब्धि को लेकर अभियुक्त का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। अचीवमेंट्स की इतनी लंबी फहरिस्त, बेशक अभियुक्त ईश्वर की बख्शी हुई नेमत ही है, लेकिन उनकी माँ कहती है कि आज जहाँ उनका बच्चा है वहाँ तक पहुँचने के लिए कभी कभार उसको रिजेक्शन भी झेलनी पड़ी। फिलहाल तो इस होनहार बच्चे का आगे बढ़ने का सफर जारी है। आंखों में सपने हैं, सपने बड़े हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जोश और उत्साह भी है और माता पिता का साथ भी।
1: अभी अभियुक्त क्या प्लान कर रहा है, आगे क्या बड़ा करने वाला है?
2: मैं तो आगे जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं ना वो, उनका रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ।
1: ठीक है।
3: अभियुक्त की छोटी उम्र है, छोटे कदम है, लेकिन मुकाम बड़ा है और मंजिल अभी दूर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए जोश भरपूर है।
1: अच्छा लगता है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपका फोटो आ रहा है। हाँ, और अभी आप टीवी पे भी आने वाले हो।
2: टीवी में आने वाला हूँ?
1: नहीं पता था।
2: पहले तो फोन में आता हूँ, अब तो टीवी में आने वाला हूँ।
1: अच्छा लग रहा है तुम्हें?
2: बहुत मजा आ रहा है, मतलब मैं जब देखूंगा ना तो मुझे इतना अच्छा फील होएगा कि मैं टीवी में आ रहूं सामने।
3: बिल्कुल अभियुक्त, हम तो चाहेंगे ही कि देश ही नहीं दुनिया भी आपकी काबिलियत को सलाम करे। और इस छोटी सी उम्र में बड़ी सोच, यही तो आपका असली कमाल है।
1: ये सच बात है कि हम ऐसे बच्चों से उम्मीदें बहुत कर लेते हैं, लेकिन आप लोग के लिए सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो बच्चा खुद आपको लीड करता है, आपको पहचानना है उसे। दूसरी बात कि अभियुक्त की मम्मी ने बताया कि वो कभी भी उसे फ़ोन नहीं देती हैं, मतलब वो फ़ोन में नहीं है, वो रील में नहीं है। पूरी बात का कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे की एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करते हैं तो हर बच्चा स्पेशल है। बाकी अभियुक्त के लिए हम यही कह सकते हैं कि ये शायद ईश्वर का एक तोहफा है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
4: और इस वक्त की शानदार खबर एशियन गेम्स से जुड़ी हुई। आपको बता दें, आज तीरंदाजी में भारतीय टीम ने गोल्ड के बाद सिल्वर मेडल जीत लिया है। मिक्स्ड रिकर्व टीम कुमकुम मोहन और धीरज बोमा देवरा ने सिल्वर मेडल जीता। एशियन गेम्स के मिक्स्ड रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत का ये पहला मेडल है और इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 68 मेडल्स हो चुके हैं, जिसमें गोल्ड 11 हैं, सिल्वर 24 हैं और 33 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। तो भारत के खाते में 68 मेडल्स आ चुके हैं। शानदार प्रदर्शन आज एक बार फिर से तीरंदाजी में किया गया है, पहले गोल्ड और अब सिल्वर मेडल भारत के खाते में। और चलिए अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए डॉली चावला की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला?
6: मैंने नहीं बोला कि वो बोला।
5: तो तूने क्या बोला?
6: मैंने बोला कि वो बोला।
5: लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला।
0: हाँ वो नहीं बोला।
5: और तूने मुझे बोला कि वो बोला।
0: मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। मरोगे आज मरोगे।
4: तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: बृहस्पतिवार के व्रत का महिलाओं से क्यों विशेष संबंध है? बृहस्पतिवार के व्रत में किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और बृहस्पतिवार के व्रत में किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी? क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो, और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
16: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
4: एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत, तीरंदाजी में गोल्ड एक सिल्वर मेडल, अब तक भारत के खाते में कुल 68 पदक। जापान से लौटे पदकवीरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत, ढोल नगाड़े की गूंज के बीच हुई फूलों की बरसात, चेन्नई में भी एथलीट्स का शानदार सम्मान। थूथुकुड़ी में नवरात्रि से पहले गोलू गुड़ियों की अनोखी प्रदर्शनी लगी, रंग बिरंगे भगवान की प्रतिमाओं से सजा मेला, देखने के लिए लग रही है लोगों की भीड़। अयोध्या राम मंदिर में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रस्ट ने उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भी मांगी डिटेल। पितृपक्ष पर गया जी के देवघाट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, दुनिया भर से जुट रहे हैं श्रद्धालु, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन।
16: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क बीएलडीसी फैंस,
17: अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। ज्यादातर महिलाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाता है अपने विवाह के लिए और अपने वैवाहिक जीवन के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पतिवार व्रत की महिमा क्या है और इसको रखने के नियम क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशि फल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:15 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 3:40 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। बृहस्पतिवार व्रत का महत्व क्या है? देखिए, हर दिन का संबंध होरा के अनुसार एक ग्रह से होता है। उस दिन उससे संबंधित ग्रह की पूजा करके और उपवास रख करके आप उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जब आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो मुख्यतः श्री हरि यानी भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा आपको मिल सकती है। और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन श्री हरि की पूजा करते हैं तो श्री हरि की कृपा से संपत्ति और संपन्नता दोनों मिल सकती है और बृहस्पति देव की कृपा से संतान और विवाह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत अगर नियम से रखा जाए, अगर समझ करके रखा जाए तो ये व्रत हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि जीवन में प्रदान करता है। बृहस्पतिवार के व्रत पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, परिवार में अशांति से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, अतिथि का आगमन होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना लाभकारी होगा, कौन से लोग अगर ये व्रत रखें तो उन्हें बहुत फायदा होगा। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति कमजोर हो, ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन खराब हो, उनको भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, संतान प्राप्ति की या संतान सुख की, उनको भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनको पेट की या मोटापे की कोई भी समस्या हो, ऐसे लोगों को भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। बालिकाओं के, महिलाओं के जीवन का सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है बृहस्पति, इसीलिए महिलाओं के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना हर प्रकार से अच्छा होता है, उनको फायदा और लाभ पहुंचा देता है। बृहस्पतिवार के व्रत पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में लाभ के योग हैं, रिश्तों में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत रखने का तरीका क्या है, कैसे रखना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं आज बृहस्पतिवार का व्रत रखूंगा या रखूंगी। इसके बाद जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद अगर घर में केले का पौधा है तो केले के पौधे में जल अर्पित करिए। बृहस्पति देव के मंत्रों का इसके बाद जप करिएगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। अगर आप चाहें तो बृहस्पति व्रत की कथा कह सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो दिन में केवल जल और फल खाकर उपवास रखें। शाम के समय पुनः बृहस्पति देव की पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें। अब ये जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। जहां तक हो सके जल और फल ग्रहण करके आपको उपवास रखना चाहिए। अगर एक समय आपको आहार ग्रहण करना है तो नमक का सेवन नहीं करेंगे। सूर्यास्त के पहले मीठी पीली चीज का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप या घर में कोई भी बृहस्पतिवार का व्रत रखता है तो घर में पवित्रता बनाए रखें। सामान्यतः इस दिन घर में मांस मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में आपके सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है, इसीलिए सामान्यतः अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके घर वाले या पुरोहित ऐसी सलाह देते हैं कि बृहस्पति वार का व्रत रखो, तुम्हारा विवाह जल्दी होगा। लेकिन बृहस्पति वार का व्रत रखने से हर बालिका का विवाह जल्दी नहीं होता। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति महत्वपूर्ण है और शुभ फल नहीं दे पा रहा है, अगर ऐसी बालिकाएं, ऐसी कन्याएं बृहस्पति वार का व्रत रखें तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है, हर कन्या का नहीं। इसी तरह से अगर कोई महिला है, उसके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, और अगर वो महिला बृहस्पति वार का व्रत रखती है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लेकिन हर महिला के वैवाहिक जीवन में नहीं, जिस महिला के जीवन में बृहस्पति के गड़बड़ होने की वजह से विवाह होने में दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी महिला बृहस्पति वार का व्रत रखे तो उसके वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन में बीमारियों से बचना चाहते हैं, बड़ी स्वास्थ्य की समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो हर अमावस्या को निर्धन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की वस्तु का दान करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

जी के लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं सुनो, माया के गुलाम मत बनो। तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है, माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी।

सदा सबको खाती है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमारी प्रार्थना है तुम्हें महान बनना है तो याद रखना, आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलों, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है, साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है, उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है, एक ही उपाय है, क्या? प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज,

राम जी की चर्चा हनुमान जी से। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है, खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम राम राम राम राम राम कहता हूं, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। है? महात्मा जिसका सपोर्ट कर दे, परमात्मा उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। बुरा ना मानना, सच बात यह है, हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाहे। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन हैं। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम राम राम राम राम राम जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक वो राम जी से मिल

ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। पांच चर्चाएं आईं पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया, रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण, पहली बार सुग्रीव जी को किया, विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का, दूसरी बार विभीषण जी के पास में, और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम, जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया, सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया, अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया, और जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठा कर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। एक संत जी हमसे कहते थे बड़ी विचित्र बात, तन

ज्यादातर लोग तन से पूजा करते हैं, मन का पता नहीं कहां घूम रहा। पता लगा कि मन घूम रहा सांचौर की चाट खा रहा है, फुल्की पी रहा है। फिर बाद में मिलते हैं, गुरु जी इतने दिन हो गए हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे है? हनुमान जी की कृपा पानी है तो तन से पूजा की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए मन से पूजा की आवश्यकता है। एक आदमी और हमें मिला, यही राजस्थान का, हमारे बागेश्वर धाम पे आया। हमने कहा और बताओ सब ठीक है? बोले कहां ठीक है, सब बेकार है। हम कहे नहीं बेकार तो है, और हनुमान जी की भक्ति करो ठीक हो जाएगा। अरे बोले 20 साल से कर रहे हैं, रोज प्रसाद चढ़ाते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कुछ नहीं हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। हमने कहा प्रसाद में क्या चढ़ाते हो? बोले नारियल। हमने कहा सीधा चढ़ाते हो या फोड़ते हो? बोले नहीं नहीं फोड़ते हैं। हमने कहा तुम्हारी ठटरी भरे। बोले क्यों? हमने कहा खोपड़ी तुम हनुमान जी को चढ़ा जाते हो, गरी गोला अपनी लुगाई को खिलाते हो। आओ, आओ, आओ, खोपड़ी तुम हनुमान जी को दे जाते हो, गरी गोला तुम खुद खाते हो, लुगाई को खिलाते हो, और कहते हो कि हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है। हम प्रार्थना ये करना चाह रहे हैं, हनुमान जी नारियल से प्रसन्न नहीं होंगे। नारियल तो एक समाधान है, एक माध्यम है। नारियल फोड़ने से भगवान की कृपा नहीं होती, नारियल जैसा बन जाने से कृपा होती है। कि बाहर भले ही कठोर रहो पर अंदर तो नारियल जैसा कोमल होना चाहिए। ये नारियल का महत्व है। नारियल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है, कई लोग, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, अब हम ही को फंसते हैं क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी। हमने कहा हाँ जी। बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हमका हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी और महंगी बिकवानी होगी तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था, अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
18: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
19: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
20: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
21: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
2: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
22: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
18: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर। राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
22: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
22: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
15: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
23: एशियाई खेलों में आज भारत की शानदार शुरुआत, तीरंदाजी और महिला बॉक्सिंग में भारत ने जीता गोल्ड मेडल, पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत। थूथुकुड़ी में नवरात्रि से पहले गोलू गुड़ियों की अनोखी प्रदर्शनी, रंग बिरंगे भगवान की प्रतिमाओं से सजा मेला, देखने के लिए लग रही है लोगों की भीड़। अयोध्या राम मंदिर में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रस्ट ने उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भी मांगी डिटेल। पितृपक्ष पर गया जी के देवघाट में श्रद्धालुओं की भीड़, दुनिया भर से जुट रहे हैं श्रद्धालु, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 197वीं जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि।

0: और इस वक्त की शानदार खबर, एशियाई खेलों से लवलीना बोरगोहेन ने एशियन गेम्स में महिला 75 किग्रा वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराया। इस जीत के साथ ही लवलीना एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बन गई। लवलीना आज 2 अक्टूबर 29 साल की वो हो गई हैं। अपने जन्मदिन पर उन्होंने देश को शानदार गिफ्ट इसी के साथ दिया है। इसके साथ ही वह एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बन गई। उनसे पहले 2014 में इंचियोन एशियन गेम्स में मैरी कॉम ने यह उपलब्धि हासिल की थी। एशियन गेम्स में आज भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। भारत ने महिला सेलिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेत्रा कुमानन ने कमाल किया। भारत ने आज 4 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 70 मेडल हैं, जिसमें 12 गोल्ड, 24 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज शामिल हैं। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसी के साथ एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार है और महिला बॉक्सिंग में भारत ने गोल्ड जीत लिया है। और अब वक्त हो गया है फटाफट खबरों का, यानी कि जेएनटी एक्सप्रेस का।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
0: एशियन गेम्स 2026 में आज भारत की हुई गोल्डन शुरुआत, बॉक्सिंग और तीरंदाजी में आए गोल्ड मेडल। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने किया कमाल, 75 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल किया अपने नाम। फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराया। एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बनी। आज है लवलीना का बर्थडे। 29 साल की लवलीना ने अपने जन्मदिन पर देश को दिया जीत का गोल्डन गिफ्ट। तीरंदाजी में भी आज भारत ने साधा गोल्ड पर निशाना। विमेंस रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की तिकड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर इतिहास रचा। तीरंदाजी में भारत को 4th गोल्ड दिलाया। भारत के लिए तीरंदाजी में गोल्ड के बाद रजत पदक भी आया। रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने कमाल किया। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से पदक तालिका के अंडर 5 क्लब में शामिल हुआ भारत। अब तक आए 12 गोल्ड, 24 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज। महिलाओं ने 65 किलोग्राम वर्ग में आज भारतीय मुक्केबाज परवीन हुडा का फाइनल मैच। ताइपे की चेन नेन चीन से होगी टक्कर। पुरुषों की श्रेणी में भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल का कोरिया के मिनसोंग किम से फाइनल मुकाबला। दोपहर 2:45 बजे पुरुषों के 80 किग्रा वर्ग का फाइनल मैच। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। खिलाड़ियों को पहनाई गई फूलमालाएं, भारत माता की जय के नारे लगे। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाली अमनदीप का को भी एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत मिला। अपनी जीत को बताया देश की जीत। देश के लिए सोना और चांदी जीतने वाली खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने एक साथ दिया पोज, अपने अपने मेडल हाथ में लेकर जाहिर की खुशी। खिलाड़ियों के स्वागत में किसी ने पहनाई फूलमाला तो किसी ने पहनाई करेंसी नोटों की माला। किसी ने खिलाड़ियों को कंधे पर बैठाया, खिलाड़ियों के साथ सेल्फी ली। आईसीसी में मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 का स्केड्यूल किया जारी। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया करेगा वर्ल्ड कप की साझा मेजबानी। 7 अक्टूबर 2027 को भारत का पहला मुकाबला होगा केप टाउन में, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच। 10 अक्टूबर 2027 को भारत पाकिस्तान के बीच मैच, जोहान्सबर्ग में होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर और दूसरा 18 नवंबर को होगा, जबकि फाइनल 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में 6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटी जाएंगी 12 टीमें। 2 अक्टूबर से शुरू होंगे ग्रुप मैच। ग्रुप ए में है भारत। फिल्म के दीवानों के लिए गुड न्यूज, फिल्म दृश्यम 3 हुई रिलीज। अजय देवगन की दृश्यम द कंक्लूजन में जयदीप अहलावत की अहम भूमिका। दर्शकों में दृश्यम द कंक्लूजन का क्रेज, एडवांस बुकिंग के जरिए रिलीज से पहले ही कमा डाले करीब 20 करोड़। सस्पेंस थ्रिलर में अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रेया सरन, प्रकाश राज, इशिता दत्त और रजत कपूर जैसे कलाकारों का भी जलवा। दृश्यम 3 के साथ बॉक्स ऑफिस पर हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म प्रेम कीटाणु के दस्तक, दिल्ली एनसीआर की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म। निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की ने किया है डायरेक्शन। फिल्म ने वीर पहाड़िया, आफिया सईद, अपार शक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय की अहम भूमिका। मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी और विक्रम सिंह चौहान की फिल्म पूजा मेरी जान Z5 पर रिलीज। नवजोत गुलाटी ने किया है सस्पेंस क्राइम थ्रिलर का निर्देशन। सीरीज दुपहिया का सीजन 2 प्राइम वीडियो पर रिलीज। सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे और स्पर्श श्रीवास्तव निभा रहे हैं मुख्य किरदार। सिनेमाघरों में छाने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ओ माई डॉग, इंसानों और कुत्तों के बीच के रिश्ते की भावुक कर देने वाली फिल्म की कहानी। एक मॉडर्न डिजिटल रोमांस पर आधारित फिल्म लव नेटफ्लिक्स पर रिलीज। मुख्य किरदार में है ऐश्वर्या लक्ष्मी और अर्जुन दास। फॉर्मूला 1 फैंस के लिए खास डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर हो रही रिलीज। माइकल शुमाकर के करियर पर बनी है शुमाकर 94 द बर्थ ऑफ द लेजेंड। गुलशन देवैया और रसिका दुग्गल की फिल्म लिटिल थॉमस का ट्रेलर जारी। फिल्म में गोवा के एक परिवार की प्यारी और मजेदार कहानी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का पहला लुक जारी। 23 अक्टूबर को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का पहला गाना रिलीज। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म स्त्री की टली रिलीज डेट 2027 से बदले अब साल 2028 में होगी रिलीज। साउथ स्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज की जबरदस्त कमाई। पहले हफ्ते में कलेक्शन 150 करोड़ के पार। अमरावती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। निकाली गई विदर्भ के राजा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा। 22-20 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। केसरिया झंडे और फूलों की बारिश के बीच बप्पा का स्वागत। करीब 16 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद बप्पा की विदाई के लिए निकली शोभा यात्रा। विदर्भ के अलग अलग जिले से आए 12 से ज्यादा ढोल पथक हुए शामिल। अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे ढोल पथकों ने अपनी खास ताल और धुनों से माहौल में भरा जोश। महिला ढोल पथक ने खींचा सबका ध्यान। संबल में एसपी और एएसपी ने आरपीएफ, पीएसी और पुलिस फोर्स के साथ निकाला 6 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च। आगामी त्योहारों को लेकर दिया शांति संदेश। देशभर में आज मनाई जा रही है महात्मा गांधी की 157वीं जयंती। देशभर में बापू के आदर्शों को किया जा रहा है याद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी 122वां जन्मदिवस आज। देश कर रहा है नमन। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला रबी 2026 का आयोजन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। सीकर दौरे पर खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। विधि विधान से की पूजा अर्चना। राज्य की खुशहाली के लिए मांगा वरदान। उज्जैन में महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ तेज। बाबा के भक्तों की सुविधा का रखा जा रहा है ख्याल।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरि का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरि है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरि आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं

0: जाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: एशियाई खेलों में आज भारत की शानदार शुरुआत, तीरंदाजी और महिला बॉक्सिंग में भारत ने जीता गोल्ड मेडल, पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत। तूतुकुड़ी में नवरात्रि से पहले गोलू गुड़ियों की अनोखी प्रदर्शनी, रंग बिरंगे भगवान की प्रतिमाओं से सजा मेला, देखने के लिए लग रही है लोगों की भीड़।

0: अयोध्या राम मंदिर में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। ट्रस्ट ने उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भी मांगी डिटेल। पितृपक्ष पर गया जी के देवघाट में श्रद्धालुओं की भीड़, दुनिया भर से जुट रहे श्रद्धालु पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वें जयंती पर देश कर रहा है नमन।
1: तूने बॉडी सेवियों से ली थी,
2: सर हार्ट अटैक लो हो जाए।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। कहीं फैंस फिल्म के पोस्टर के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं तो कहीं थिएटर्स के बाहर फिल्म के डायलॉग्स और पिछले दोनों पार्ट्स की यादें ताजा की जा रही हैं। वैसे तो शानदार एडवांस बुकिंग के कारण फिल्म की धमाकेदार ओपनिंग तय है, लेकिन अगर आप फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये फिल्म कैसी है और क्यों देखने लायक है, क्या ये दृश्यम 1 और 2 से बेहतर है और इस फिल्म में और क्या कुछ खास है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम सिनेमाघरों में पहुंची और लोगों से बातचीत की। देखिए दृश्यम 3 की फर्स्ट रिपोर्ट हमारी संवाददाताओं के साथ।
3: मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ यहाँ पर है स्पॉइलर, बट मैं J&K की ऑडियंस का फैंस का मूड स्पॉइल नहीं करूँगी, बट सिर्फ एक बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगी अनदर मास्टरपीस, एक ऐसे फिल्म जो आपको थिएटर में आके ज़रूर देखनी चाहिए। प्लीज़ वेट मत कीजिएगा कि कभी आएगी बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप देखेंगे, यू हैव टू कम टू द थिएटर एंड वॉच दिस फिल्म, ऑसम।
4: दृश्यम के इस खेल में हमने इतने दृश्य देख लिए कि हम प्रोसेस ही कर रहे हैं कि हम क्या देख के आए हैं। अ मस्ट मस्ट वॉच फिल्म, जितनी मुझे लगता है ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है, इस देश की एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से, ज़रूर पूरी होने वाली है। भाई हमारी भी पूरी हो गई है, मतलब हम अभी प्रोसेस ही कर रहे हैं कि हम क्या देख के आ गए। एग्जैक्टली,
3: कई बार ना लाइफ में ऐसे होता है ना कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता कि एक सिचुएशन में से निकलेंगे, दूसरे में पहुंचे, तीसरे में पहुंचे, चौथे में पहुंचे, फिर करें क्या। ये फिल्म आपको बताएगी आपके दिमाग के साथ खेलना कैसे है, उसके बाद कंक्लूड कैसे करना है। ज्यादा स्पॉइल नहीं करते,
4: ज्यादा स्पॉइल नहीं करते, अब आपको ऑडियंस के रिएक्शन हम बताएंगे कि उनको फिल्म कैसी लगी है। आइए चलते हैं,
3: ऑडियंस के रिएक्शन लेते हैं, ऑडियंस से पूछते हैं कि मूवी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, प्रांजलि को बहुत अच्छी लगी। जरा लोगों को सर्च करते हैं और पकड़ के लाते हैं। एक फैन मिल गए हैं हमें, हार्ड कोर डाई हार्ड फैन ऑफ अजय देवगन जो पहले भी मिले थे। कैसी लगी मूवी?
5: जैसा मैंने बोला था एकदम कमाल है, सुपर डुपर है, फुल पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल है।
3: अच्छा, विदाउट गिविंग देम एनी स्पॉइलर, मुझे ये बताओ कि ये मूवी देखने क्यों आए?
5: मूवी देखने इसलिए आए क्योंकि दृश्यम 1 दृश्यम 2 डिसअपॉइंट नहीं करती, ये वाली तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं।
3: अजय देवगन कैसे लगे?
5: अजय देवगन बहुत अच्छे लगे। मैं एक चीज एड ऑन करना चाहता हूँ, फिल्म छोटी है और क्रिस्प है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ब्रेक ले लें, आप अपने फोन को चला लें, आप स्क्रीन से चिपक के बैठे रहते हैं।
3: विजय सलगांवकर ने कमाल किया या नहीं किया?
5: कमाल तो नहीं कर पाए, धमाल कर दिया, लेकिन धमाल कर दिया उन्होंने,
3: कमाल धमाल सब कर दिया है ना। अहलावत जी की एंट्री ने महफिल लूटी या नहीं?
5: जो एक स्वैग होता है ना, भौकाल जिसको कहते हैं हम लोग, वो भौकाल था उनका, और मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छी तरीके से जयदीप ने उसको रिप्रेजेंट भी किया है, जिस तरह से वो एक क्राइम ब्रांच, वो लगते हैं क्राइम ब्रांच वाले, उस तौरे में रहते हैं, उस ऑरा में रहते हैं।
3: भौकाल मचा दिए भाई, इन्होंने तो हेड्स अप दे दिया है, तो आपको ये मूवी जरूर देखनी है, हमारी तरफ से भी हेड्स अप है, क्योंकि 10 out of 10 दे दें।
5: मैं तो कहूँगा 10 out of 100 दे दो।
3: यू हैव टू गो एंड वॉच दिस फिल्म। कैसी लगी मूवी?
6: बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
3: 10 में से कितने मार्क्स देंगे?
6: 5 में से 5।
3: पार्ट वन पार्ट टू देखा था, लेकिन पार्ट थ्री से जितने एक्सपेक्टेशन थी उस पे खरे उतरे?
6: खरे उतरा, ठीक है, मतलब सस्पेंस दिखाया ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं सोच रहा था मतलब कि पकड़े जाएंगे कि इनका परिवार जेल में जाएगा, अब केस हार गया, लास्ट मोमेंट तक लगता रहा हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन जो उसने पासा पलटा है ना, बॉडी भी वहां पे आ गई और मतलब कि परिवार भी बच गया, केस भी जीत गए और वो हार गए, तमड़ा की वकील हार गया, मतलब मजा आ गया।
3: अच्छा मुझे ये बताओ, विजय सलगांवकर ने जैसे पहले कहा था कि अपने परिवार को बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है ना, तो वो किसी भी हद तक चले गए है ना?
6: तड़ चले गए, मतलब कि अपने परिवार को बचाने के लिए जो उन्होंने किया है ना, पूरा जान लगा दी और केस ही पलट दिया, मतलब मजा आ गया, मजा आ गया।
3: और जब अहलावत जी की एंट्री हुई तब कैसा लगा?
6: उसकी जो एंट्री हुई तो मजा आ गया, सुपर मजा आ गया था, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, मतलब कि लेकिन अजय देवगन का सब हल्के पड़ गए, अजय देवगन आगे सब हल्के पड़ गए, जो उसकी बात अलग थी।
3: अहलावत जी खा गए?
6: नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, नहीं खा गए, उनका केस हल्का पड़ गया, अजय देवगन खा गया सबको।
3: चलिए थैंक यू
4: भाई। पार्ट वन पार्ट टू और अब भाई है पार्ट थ्री की बारी, जो कि हम देख के आ चुके हैं। मेरे साथ फिर से वही हैं जिन्होंने शुरू में हमें कुछ चीजें बताई थी, और अब फिल्म खत्म हो चुकी है। विभू, फिल्म कैसी लगी? पार्ट थ्री द कंक्लूजन फाइनल।
7: यार बैंग ऑन है, मतलब ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आप सीट से आगे आके देखते हो, ये वो वाली मूवी है पूरी, मतलब आपको बांधे रखेगी मूवी पूरा,
4: मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ही है, एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरी है फिल्म।
7: हां फुल एक्सपेक्टेशंस से पूरी खड़ी उतरी है। जयदीप अहलावत
4: बिल्कुल देखिए
3: यहाँ पर ना एक्चुअली एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि मैं सोचा कि जीएनटी की पूरी टीम खड़ी हो जाए। आप कंटिन्यू कीजिए जरा।
4: मैं तो इनसे ये पूछ रही थी भाई, पार्ट वन पार्ट टू इतना अच्छा गया, इनकी एक्सपेक्टेशंस ये खड़े उतरे हैं, फिल्म खड़ी उतरी है इनके एक्सपेक्टेशंस पे कि नहीं, तो उसी का जवाब दे रहे थे।
7: हाँ फुल एक्सपेक्टेशंस पूरी खड़ी उतरी है, जितनी स्टार कास्ट थी, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, अजय देवगन, तब्बू, रजत कपूर, बैंग ऑन।
4: इतने आईजी, हम तीसरे आईजी देख रहे हैं, तब्बू, अक्षय खन्ना, जयदीप अहलावत, कौन बेस्ट लगा?
7: आई गेस जयदीप अहलावत इस बार।
4: चल ओवर टू यू गुप्ता।
3: चलिए अब मेरे साथ हैं राजकुमार जी, मेरे साथ फ्रेम में आ गए हैं। राजकुमार कैसी लगी मूवी?
8: हम तो वेटिंग ही करते हैं, क्योंकि जब भी अजय देवगन की कोई मूवी आने वाली होती है तो कुछ हटके आते हैं, हमें पता है, क्योंकि अजय देवगन की जो भी मूवीज होती है, रोल जो प्ले होते हैं वो काफ़ी एक्टरों से डिफरेंट होते हैं, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, पर मूवी की, चाहे शॉर्ट मूवी क्यों ना हो, बट उनके जो एक्टिविटीज़ है फिल्म के अंदर वो काफ़ी हटके है।
3: अच्छा एक बात बताओ, पार्ट वन पार्ट टू देखा था?
8: पार्ट वन भी देखा था, बट पार्ट टू और अच्छा लगा मुझे, बट इसमें कुछ नेगेटिविटी जो है, मैं आपको बता दूं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो डेड बॉडी को निकाला गया, कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिटी को थ्रेट करता है।
3: ठीक है चलिए उसको छोड़ के ये बताइए कि अजय देवगन कैसे लगे?
8: बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट है।
3: अहलावत जी कैसे लगे?
8: जो एसपी का रोल दिया, अलग ही लेवल के।
3: मैं आपको बता दूं, जब उनकी एंट्री हुई है ना तो सीटियां बजी हैं थिएटर में, कैसे उन्होंने एंट्री की है, बट कहानी में जो ट्विस्ट हम सोच रहे थे वो ट्विस्ट मिला देखने को?
8: बिल्कुल मिला। देखो अजय देवगन के आगे ये जो एसपी का रोल किया है, मुझे नहीं लगता है अजय देवगन के आगे फीका पड़ गया, क्योंकि अजय देवगन भाई उसकी अलग ही पहचान है उनकी, क्योंकि उनकी जो भी मूवीज होती हैं, चाहे कोई भी अच्छे से अच्छा आईपीएस आईजी आई लेवल का जो भी मतलब रोल देंगे ना, पर अजय देवगन आगे फेल हो जाता है, बिकॉज उनका माइंड क्रिमिनल माइंड सेट है, मतलब मूवीज में जो रोल देते हैं ना काफ़ी एक्टरों से हटके, और मूवी लेट आती है इनकी, साल में दो साल में एक बार आती है, बट अच्छी आती है।
3: अच्छा एक और चीज़ मैं ये कहूँगी कि विदाउट हैविंग मच डायलॉग्स इन द फिल्म, अजय देवगन ने आंखों से जो कमाल किया है, आंखों से जो अदाकारी की है, उसके बारे में क्या कहेंगे?
8: मेरा भी कहना वही है, क्योंकि जो उनका आईज का अट्रैक्शन है ना, वही पब्लिक को आकर्षित करता है अपनी ओर, और जो उनके डायलॉग से बेटर जो है ना, उनका फेस का लुक और उसके इंप्रेशन जो पड़ता है ना आईज का, वही मूवी को जरा हिट करता है मेरे तरफ से।
3: पर बता दो जरा क्यों देखने जाएं ये लोग मूवी?
8: मूवी अच्छी है, एक नई सीख भी देती है पब्लिक को, आजकल की जनरेशन को, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी में ऐसे कोई क्लिप्स गलत भी नहीं है कि फैमिली के साथ नहीं देख सकते, फैमिली के साथ देखना चाहिए इस मूवी को, अच्छी मूवी है, और रेटिंग भी मेरे तरफ से 5 पूरी देता हूँ।
3: 5 में से 5
8: पूरी।
3: तो जितने लोगों को पूछो कोई 5 में से 5 दे रहा है, कोई 10 में से 10 देख रहा है, अब और कितने रीजंस चाहिए आपको? जाइए बुक कीजिए टिकट और कल के कल ये मूवी जरूर देखिए। चलिए देखिए एक्साइटमेंट इज ऑन द पीक, क्योंकि हम निकल आए हैं थिएटर के बाहर, थिएटर के मतलब राइट आउटसाइड द थिएटर, मूवी देखकर मैं और प्रांजलि जितने एक्साइटेड है ना मैं आपको बता नहीं सकती। हम रेडी हैं आपको स्पॉइलर देने के लिए, बट हम देंगे नहीं क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर फैंस हैं। सर आपका नाम?
9: मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है।
3: जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ फ्रेम में है। जितेंद्र जी कैसी लगी मूवी?
9: कैसी क्या लगी, बहुत जबरदस्त लगी समझ लो।
3: कितनी जबरदस्त लगी?
9: पहला पार्ट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, भाई बांधे रहा इस फिल्म ने मुझे। हर दो मिनट बाद लगता था क्या होगा पता नहीं फिल्म के अंदर। अजय देवगन के लिए तो भाई जय है।
3: मैं पता क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अजय देवगन ना विदाउट हैविंग मच डायलॉग्स इन द फिल्म, हालांकि डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं, उन्होंने आंखों से जो कमाल कर दिया है, आंखों से जो अदाकारी की है उन्होंने, एक्सप्रेशन दिए, उसके बारे में जरा बताइए।
9: देखिए आंखों से तो काजल का, उसने आंखों का काजल चुरा लिया तो हमारा भी दिल चुरा लिया। एक्चुअली अजय देवगन की जो एक्टिंग है, जो उसकी आंखों का देखने का जो स्टाइल है ना, हम तो वहीं सीधा हो जाते हैं। मैं तो सच में उसी को देखने आया था इस बार, किसको धोया है उसने इस फिल्म के अंदर। आपको पता है किसको धो दिया, दो धुरंधर चले गए इसमें है ना।
3: अच्छा, जयदीप अहलावत के बारे में जरा प्रांजलि।
4: देखिए आईजी, तीसरा आईजी जो है अब इसमें चेंज हुए हैं, पहले तबू रही अक्षय खन्ना रहे, अब जयदीप अहलावत। तीनों में से किसको वोट देना चाहेंगे आप?
9: जयदीप।
4: उसका रीजन?
9: बेहतरीन एक्टर है, उसको हम देख चुके हैं, पर इस फिल्म में यार कुछ कर नहीं पाए जयदीप जी, अफसोस है जयदीप जी मुझे आपके बारे।
4: कुछ विजय ही कर गए, जयदीप क्या करेंगे इस फिल्म में। बट आपको लगता है जो विजय ने किया, आप उनकी जगह होते तो वही करते?
9: बिल्कुल भाई, अपनी फैमिली के लिए हमेशा इंसान को वही करना चाहिए जो विजय ने किया।
3: अच्छा एक बात बताओ, 10 में से अगर आपको मार्क्स देने हो तो कितने दोगे?
9: अरे भैया 11 दूंगा सच में। अभी तक मैं किसी को मार्क्स नहीं देता, लेकिन अजय भाई तुम्हारे लिए, तुमसे मिल भी चुका हूँ, अजय भाई के लिए 11।
3: पर जरा बोल दीजिए कि मूवी देखने क्यों जाएं सभी?
9: देखिए एक अच्छी फिल्म है और इंस्पायर भी करती है, फैमिली फिल्म है, तो मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों के साथ देखने जाना चाहिए, और ऐसी फिल्में बहुत कम आती हैं आजकल के टाइम में। आप देख रहे हैं ना, धमाकेदार फिल्मों से हटके थोड़ी अच्छी फिल्में भी देखें, बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिली के साथ जाएं।
3: मैं कहूँगी कि जीवन का सार है कि इंसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। हाँ गलत को आप गलत ज़रूर कहिए, लेकिन
9: देखिए मैं गलत और सही का यहाँ पे कोई व्याख्यान नहीं करूँगा, परंतु एक पिता का क्या फ़र्ज होता है अपनी फैमिली के अंदर, बखूबी अजय भाई ने दिखाया। सैल्यूट
3: देखने चाहिए ये मूवी डेफिनेटली। थैंक यू सर। जीनिया भाई रिएक्शंस पे एक्साइटमेंट अनकंट्रोलेबल है ये। जीनिया है मेरे साथ, जीनिया कैसी लगी मूवी?
10: यार मूवी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद
3: जिंदाबाद। अरे सबसे अच्छा क्या लगा
10: यार मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे जयदीप अहलावत इस बार बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार, इतने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं ना, और जो बेइज्जती हुई है ना उनके मजा ही आ गया।
3: मैं सच्ची बताऊं व्हाइट शर्ट में क्या लगे हैं, और उनकी एंट्री ओए होए होए ना
10: यार, चाहे उनका फेस जैसा भी लगता हो बट ऑरा है भाई बंदे का, स्वैग है।
3: अच्छा पार्ट वन पार्ट टू देखा था?
10: हाँ पार्ट वन पार्ट टू देखा था।
3: थ्री ने एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया?
10: देखो याद दिला देती हूँ गाइस, हम 2 अक्टूबर को पंजी गए थे स्वामी चिन्मय जी के आश्रम, वहाँ पे हमने उनका सत्संग सुना, फिर हमने पाव भाजी खाई, फिर हमने मूवी देखी, और फिर उसके बाद हम 3 अक्टूबर को पंजी से वापस आए, जहाँ पे हमने ATM से पैसे निकाले। ये कहानी थी।
3: एक काम करो इनको जरा कास्ट कर दो मूवी में, क्योंकि सारे के सारे डायलॉग जीनिया को याद है। जीनिया, अजय देवगन और जयदीप अहलावत में से कौन बेस्ट लगा?
10: यार अजय देवगन के जो आईज इंटेंस, और उनकी वो जो शरारती वाली स्माइल है ना, जब सबकी बैंड बजती है और जब सबकी बेइज्जती होती है, वो एक स्माइल शैतान वाली, वो अच्छी लगी। बट जयदीप ने जो, यार जयदीप अच्छे लग रहे हैं,
3: जयदीप पे ना आपका दिल आ जाएगा, मैं सच्ची कह रही हूँ, हम लड़कियों का दिल जयदीप अहलावत पे आ जाएगा, ये कभी सोचा नहीं।
10: नहीं मेरे को जयदीप अच्छे लगते हैं, नो डाउट, मुझे वो OTT में जैसा काम करता है ना, मुझे वो पसंद आते हैं।
3: अच्छा एक बार बता दो जरा ऑडियंस को देखने क्यों जाएं, विदाउट गिविंग देम एनी स्पॉइलर।
10: यार अगर आपको एक अच्छी स्टोरी देखनी है ना, तो आप ये जरूर देखें, क्योंकि जिसने 2 पार्ट देखे वो तो जरूर देखेगा, क्योंकि 3rd के बिना तो नहीं चलेगा। अब सैम की बॉडी मिली है या नहीं मिली है वो आके देख लो,
3: मेमे बनाने पड़ जाएंगे अब हमें।
10: वो तो है, लेकिन बॉडी बहुत जरूरी है ढूंढना भाई, तब्बू की बैंड बजी है, हम छोटे से बड़े हो गए, वो छोटी सी बड़ी हो गई, तब्बू बूढ़ी हो गई, लेकिन बॉडी नहीं मिल पा रही है भाई।
3: इसके लिए काम कीजिए, थिएटर में जाइए, मूवी जरूर देखिए। एवरी फैन इज सेइंग द सेम थिंग कि गो एंड वॉच द
10: फिल्म, और 5 में से 4 स्टार।
3: भाई हम दोनों ने मूवी देखी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों क्लोजिंग रिमार्क आपको ना दें? प्रांजलि को मैं पूछूंगी, प्रांजलि आउट ऑफ 10 हाउ मेनी मार्क्स फ्रॉम योर साइड?
4: ऑनेस्टली मेरी तरफ से 9 नंबर इस फिल्म को, 9 नंबर में लेना चाहूंगी। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो आपको 11 दे रहे होंगे, 100 दे रहे होंगे, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माय साइड इट्स 9. ऐसा नहीं था कि फिल्म में हमेशा हर फिल्म में कोई ना कोई कमी रहती है, मुझे भी थोड़ी बहुत लगी, बट ओवरऑल द फिल्म इज़ अ ब्लॉकबस्टर. पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, पार्ट 3, फाइनली द कंक्लूजन जिसको सबका वेट था, सबने इसका वेट किया, पूरे देश ने इसका वेट किया, आपको निराशा नहीं होगी, आपको मज़े पूरे धमाका मिलेगा आपको.
3: मैं ये कहूँगी कि 10 out of 10 मैं देना चाहूँगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मैंने देखे हैं. पार्ट 3 से जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी एज इंडिविजुअल, मैं अपना फीडबैक दे रही हूँ, वो सरपास कर दी है इस मूवी ने. एक बार ज़रूर जाइए इस मूवी को देखने के लिए. अगेन आई एम सेइंग विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉइलर फ्रॉम आर साइड, आई एम गोइंग टू से अजय देवगन बैंग ऑन, जयदीप अहलावत बैंग ऑन, प्रकाश राज बैंग ऑन. कहानी हम नहीं बताएंगे, आपको जाना पड़ेगा उसके लिए थिएटर में, क्योंकि ये मूवी आपको थिएटर में आपके पैसे वसूल अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप थिएटर में पहुंचिए और इस मूवी को जरूर देखिए. यू आर गोइंग टू लव दिस मूवी.
4: बिल्कुल ओटीटी का वेट मत करिएगा, अपने नियर बाय थिएटर्स में जाइए और मूवी देखिए. हर एक सीन में आपको सस्पेंस मिलेगा, और ऐसा नहीं कि क्राइम मूवी है, सस्पेंस है तो बिल्कुल बहुत सीरियस रहेगा, हंसी के फुल ढहाके भी मिलने वाले हैं, बहुत हंसेंगे, बहुत तालियां मारेंगे और बहुत सीढ़ियां भी मारने वाले हैं. तो बिल्कुल जाइए और इंजॉय करिए इस फिल्म को.
3: एक चीज कहना चाहूंगी, जयदीप अहलावत ने ओए होए होए होए व्हाइट शर्ट में जो दिल जीता है हमारा, हैट्स ऑफ टू द स्क्रिप्ट्स, टू द एक्टर्स, टू एवरीबॉडी हु इज एसोसिएटेड विद द फिल्म. जस्ट गो एंड वॉच द फिल्म, दैट्स फ्रॉम आवर साइड. देखते रहिए GNT, साइनिंग ऑफ.
1: तूने बॉडी सेवियो से ली थी,
2: सर हार्ट अटैक लो हो जाए.

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में तमाशे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है। लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट ने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया। सेंट लॉरेंट ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड लुक भी क्रिएट किया, जिसने सबका दिल जीत लिया।

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट की शानदार डिजाइन्स की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर्ड टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेड स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे होने का प्रतीक था।

Bureau Report, Good News Today. और चीन में इन दिनों संस्कृति और जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन हो या रात, देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहार सी रौनक है और इसकी वजह है चीन का राष्ट्रीय दिवस, जो वहां के लिए किसी त्योहार से कम नहीं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जिससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है।

0: चीन में इन दिनों उत्सवी माहौल है। एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियों को मनाने के लिए देश भर में खास कल्चरल टूरिज्म इवेंट्स शुरू किए गए हैं। इनमें पुरानी वास्तुकला, लाइट शो, पारंपरिक लालटेन और त्योहारों वाली लाल सजावट का मेल देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को राष्ट्रीय झंडे और फूलों से सजाया गया है और रात में शानदार आतिशबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का शो हुआ। 23 मिनट के इस शो को देखने के लिए शहर के वाटरफ्रंट पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। इन रंग बिरंगी रोशनियों ने हार्बर की आसमान को जगमगा दिया। लोग आतिशबाजी से रंगीन आसमान की तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखे। इसमें स्थानीय लोगों के साथ विदेशों से आए पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के तांगयुए गांव में रोशनी वाली बड़ी बड़ी मछली के आकार की लालटेन का जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस गांव के ऐतिहासिक इलाकों से गुजरा। ये जुलूस गांव की सांस्कृतिक विरासत और रात के समय होने वाले कार्यक्रमों का एक अनूठा संगम है। चीन में एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियां दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इस समय को जिन्हें गोल्डन वीक कहते हैं, इस दौरान बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सैलानी चीन की यात्रा पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियाई खेलों में आज भारत की शानदार शुरुआत, तीरंदाजी और महिला बॉक्सिंग में भारत ने जीता गोल्ड मेडल, पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत। थूथुकुड़ी में नवरात्र से पहले गुड़ियों की अनोखी प्रदर्शनी लगी, रंग बिरंगे भगवान की प्रतिमाओं से सजा मेला देखने के लिए लग रही है लोगों की भीड़। अयोध्या राम मंदिर में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रस्ट ने उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भी मांगी डिटेल। पितृपक्ष पर गया जी के देवघाट में श्रद्धालुओं की भीड़, दुनिया भर से जुट रहे हैं श्रद्धालु, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन।

0: भारतीय पायलट स्मिथ मछार से फोन पर बात की पीएम ने, साहस की तारीफ की, घटना के बारे में जानकारी ली। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। पटना में कई घाट पानी में डूबे, महावीर घाट पर बैरिगेटिंग कर लोगों के आने जाने पर लगाई गई रोक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: सच गई है। खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। लंच टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नई है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: एशियन गेम्स 2026 में आज भारत की हुई गोल्डन शुरुआत, बॉक्सिंग और तीरंदाजी में आए गोल्ड मेडल। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने किया कमाल, 75 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल किया अपने नाम। फाइनल में लवलीना ने चीन को बायोजी को 5-0 से हराया। एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बनी। आज है लवलीना का बर्थडे। 29 साल की लवलीना ने अपने जन्मदिन पर देश को दिया जीत का गोल्डन गिफ्ट। तीरंदाजी में भी आज भारत ने साधा गोल्ड पर निशाना। विमेन्स रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की तिकड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हरा कर इतिहास रच दिया। तीरंदाजी में भारत को चौथा गोल दिलाया। भारत के लिए तीरंदाजी में गोल्ड के बाद रजत पदक भी आया। रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा की फाइनल में कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने कमाल किया। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से पदक तालिका में छठे स्थान पर पहुंचा भारत। अब तक आए 12 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स। देशभर में आज मनाई जा रही है महात्मा गांधी की 157वीं जयंती। देशभर में बापू के आदर्शों को किया जा रहा है याद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी 122वां जन्म दिवस आज देश कर रहा है नमन। पटना के मनेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, दियारा इलाके के निचले हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांव प्रभावित। पटना सिटी के घाटों पर पिछले 2 दिनों से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भद्रघाट महावीर घाट पर बैरिगेटिंग कर लोगों के आने जाने पर लगाई गई रोक। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, राहत और बचाव के कामों का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी के साथ बहकर पहुंचे करीब एक दर्जन हिरणों को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया। बाढ़ से जिले की 3 तहसीलें प्रभावित, प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा।
2: भारतीय सेना ने डोडा में अग्निवीरों और टेरिटोरियल आर्मी के अभ्यर्थियों को कोचिंग देने की शुरुआत की। सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नए एमबीबीएस बैच के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से एमबीबीएस के लिए सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 किए जाने के बाद जीएमसी राजौरी का ये पहला बैच है। ग्रेटर नोएडा के घंटाघर चौक पर सीआरपीएफ ने चलाया सफाई अभियान, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागलपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 16 नावें तैनात की। विक्रमशिला सेतु बंद होने के कारण गंगा रोड पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम।
0: फिल्म
2: फिल्म के दीवानों के लिए गुड न्यूज, फिल्म दृश्यम 3 हुई रिलीज। अजय देवगन की दृश्यम द कंक्लूजन में जयदीप अहलावत की भी अहम भूमिका। गुलशन देवैया और रसिका दुग्गल की फिल्म लिटिल थॉमस का ट्रेलर जारी। फिल्म में गोवा के एक परिवार की प्यारी और मजेदार कहानी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का पहला लुक जारी। 23 अक्टूबर को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का पहला गाना हुआ रिलीज। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म। साउथ स्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज की जबरदस्त कमाई। पहले हफ्ते में कलेक्शन 150 करोड़ के पार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: तो बच्चों, अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। एशियन गेम्स में आज भारत की शानदार शुरुआत हुई। तीरंदाजी और महिला बॉक्सिंग में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत। जापान से लौटे पदकवीरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत हुआ। ढोल नगाड़े की गूंज के बीच हुई फूलमालाओं की बरसात। चेन्नई में भी एथलीट्स का शानदार सम्मान। आईसीसी ने जारी किया वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। अगले साल 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आयोजन। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सहित 6 टीमें शामिल। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 197वीं जयंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। फिल्म के दीवानों के लिए आई गुड न्यूज, फिल्म दृश्यम 3 हुई रिलीज। अजय देवगन की दृश्यम द कंक्लूजन में जयदीप अहलावत की अहम भूमिका।

0: लंच टाइम में आज सबसे पहले बात देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाली खबर के साथ। खबर जापान की धरती पर चल रहे एशियन गेम्स की, जिसमें भारत की चमक और धमक लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज भी भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाले हैं। बॉक्सिंग में लवलीना ने गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम बढ़ाया। मैरी कॉम के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो दूसरी भारतीय बॉक्सर हैं। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम की ऐतिहासिक जीत ने भी देश का नाम रोशन कर दिया है। भारतीय तीरंदाजों ने खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया। ये जीत सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं बल्कि भारतीय तीरंदाजी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज के डबल गोल्ड के साथ ही भारत ने अंक तालिका पर लंबी छलांग मारते हुए टॉप 5 में धमाकेदार एंट्री कर ली है। इसी के साथ ही भारत ने अब तक 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक यानी कुल 70 पदक अपने नाम कर लिए। भारत की इस पदक यात्रा में हर खिलाड़ी की अपनी कहानी है। कोई पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरा है तो कोई वर्षों के अनुभव के साथ देश के लिए पदक जीत रहा है, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, तिरंगे की सम्मान बढ़ाना।
1: तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, जुनून और दमदार खेल के दम पर पदकों की झड़ी लगा दी है। एशियन गेम्स के 13वें दिन अब तक भारत के खाते में 5 मेडल्स आई, जिसमें 2 गोल्ड और 1 रजत पदक के साथ 2 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। एशियन गेम्स में भारत ने आज तीरंदाजी में गोल्ड के साथ दिन की शुरुआत की, जिसमें अंकिता, कीर्ति और कुमकुम की तिगड़ी ने दक्षिण कोरिया को मात देते हुए ये गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही बॉक्सिंग में लवलीना ने आज को 2रा मेडल हासिल कर लिया है। आपको बता दें उन्होंने चाइना के बायोजी को 5-0 से मात दी। तो वहीं तीरंदाजी के रिकर्व मिक्स्ड में भारत ने रजत पदक हासिल किया है। महिलाओं की सेलिंग और स्क्वॉश में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नए पदकों के साथ भारत के खाते में अब कुल 70 मेडल्स आ चुके हैं, जिसमें 12 गोल्ड शामिल हैं, 24 सिल्वर हैं, 34 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और इसके साथ ही भारत मेडल की तालिका में, मेडल के बोर्ड में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के खाते में अब टोटल 70 मेडल्स आ चुके हैं, जिनमें 12 गोल्ड शामिल हैं, 24 सिल्वर हैं और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। हर दिन भारत लगातार मेडल्स की छड़ी लगा रहा है और भारत की झोली में अब 70 मेडल्स हो चुके हैं। महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिनमें अंकिता, कीर्ति और कुमकुम की तिकड़ी ने दक्षिण कोरिया को मात दी और गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज तीरंदाजी में भी शानदार प्रदर्शन भारत का देखने को मिला है और इसी के साथ 70 मेडल्स के साथ अब मेडल्स के बोर्ड में भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। जापान में एशियन गेम्स जारी है और भारत का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हर बीतते दिन भारत का दमदार प्रदर्शन और भारत का डंका एशियन गेम्स में बज रहा है। अब आपको बता दें 5वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। तो वहीं भारतीय महिला एथलीट्स का, तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बॉक्सिंग में लवलीना ने आज 2रा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।
0: और अब बात 9/11 जैसे हमला टालने वाले भारत के बहादुर पायलट स्मिथ मछार की, जिन्होंने 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमान फ्लाई दुबई में जाबाजी की मिसाल पेश की और क्रू मेंबर समेत 180 यात्रियों की जान बचाई। पीएम मोदी ने अभी अभी कैप्टन स्मिथ मछार से बात की है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कैप्टन स्मिथ ने पीएम मोदी को पूरी घटना की जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मछार की वो बातचीत।
2: स्मिथ नमस्ते।
3: नमस्ते सर,
2: कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है?
3: सर सब ठीक है, सर सब ठीक है।
2: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
3: यस सर,
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया, और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोलता था, आप मेरे सबसे बड़े एक्ट्रेस हैं, और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी अफसोसाई कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं 17 साल से जहाज उड़ा रहा हूँ, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मित कर दे दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे, और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मरने दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सावधानी में भी यहाँ पे तो पढ़ के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर, आई एम जस्ट, मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, और अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी कि आपके सामने रो रहा हूँ सर।
2: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा, कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी, सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
3: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
2: सही बात है।
3: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
2: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने गांवों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
3: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा।
2: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, एंड बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान अपनी कठिन ड्यूटी के साथ खेलों में भी कमाल कर रहे हैं, और इसी कड़ी में अब दिल्ली पुलिस के 3 जवानों ने पहली बार ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा के मधुबन में हुई प्रतियोगिता में 3 हेड कॉन्स्टेबल्स ने अलग अलग कैटेगरी में मेडल्स जीते। देखिए रिपोर्ट।

0: ये तस्वीरें भले ही किसी प्रोफेशनल जिम की लग रही हैं, परंतु यहाँ पर पसीना बहा रहे ये लोग आम बॉडी बिल्डर नहीं है। ये तो दिल्ली पुलिस के वो जवान हैं जो एक समय वर्दी पहनकर कानून व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन ड्यूटी के अलावा इनकी एक और पहचान है, और वो पहचान है बॉडी बिल्डर की। दिल्ली पुलिस के इन तीन हेड कांस्टेबल ने पहली बार 75वीं ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और शानदार ट्रॉफी भी जीत ली।
1: दिल्ली पुलिस हर चीज में आगे है, ये दिख गया है। पहली बार कंपटीशन में पार्ट लिया और गए थे और आए तो ये मेडल्स के साथ और इस ट्रॉफी के साथ। ये ट्रॉफी भी देख लीजिए कितनी शानदार आपको नजर आ जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ढेर सारी ट्रॉफीज जो है अपने नाम की है, लेकिन जब बात बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की हो, वो भी पहली बार हरियाणा में जाकर दिल्ली पुलिस ने अपना ही फतेह हासिल करी है, शानदार प्रदर्शन दिया, कैसा लगा जब ये ट्रॉफी के साथ वापस आए? सोचा था पहले, ये बताइए।
2: नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब एक कॉन्फिडेंस तो था, क्योंकि हालांकि मैं पहले भी खेल चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन, कई सालों से खेल रहा हूँ, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से पहली बार मौका मिला है, पहली बार दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी कंपटीशन में गया हूँ, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए गोल्ड मेडल और ये ट्रॉफी ले पाया।
0: प्रतियोगिता में हेड कांस्टेबल नरेंद्र यादव ने 100 किलोग्राम तक की कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं हेड कांस्टेबल कुलदीप तनवर ने 100 किलो तक की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद ने 85 किलोग्राम तक की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी की जिम्मेदारियों के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग करना और इसकी चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुमकिन कर दिखाया है।
3: मैं भी पहले स्टेट चैंपियनशिप खेली है, मैंने जीती है, पर लेकिन जब मुझे पता लगा कि दिल्ली पुलिस पहली बार बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है और हमें वो मौका मिला जाने के लिए, तो एक अंदर से जुनून, मतलब कुछ करना है, बस मैंने सोच लिया था। बस ड्यूटी भी थी, ड्यूटी आपको पता ही है कितनी पुलिस की हैक्टिक होती है, लेकिन अपना टाइम निकाल कर मैनेज करके अपना वर्कआउट करना है, और सोच लिया था कि मेडल लाना है। अपनी तरफ से पूरा 100% दिया मैंने,
1: पूरा 100% दिया है
3: उसके लिए। उसके बाद ही मुझे मेडल ये मेरा अचीव किया।
4: मैंने पहले स्टार्ट की थी जब डेट फिक्स हो गई थी ऑल इंडिया पुलिस की, तो और पता चला था कि अक्टूबर में ये कंपटीशन होगा, लेकिन जब डेट आई तो ये 2 वीक और एडवांस हो गए, सितंबर में हुआ। लेकिन फिर हमने वो अपने प्रोटोकॉल जो भी था सारा चेंज करके सितंबर के हिसाब से अपनी तैयारी करी और अपना 100% दिया। और हैक्टेक होती है पुलिस की नौकरी, लेकिन हमने अपने आप को डाल लिया इसमें, ठीक है। अब 12 साल मुझे हो गए, नरेंद्र भाई को 15-16 साल हो गए, तो एक मैनेजमेंट है कि भाई कब डाइट लेनी है, कैसे लेनी है, शर्माना नहीं है, रोड पे खड़े हैं तो लेनी है, तो मतलब एक लाइफस्टाइल बन चुका है और इंजॉय कर रहे हैं। हम ड्यूटी को भी इंजॉय करते हैं, गेम को भी इंजॉय करते हैं।
0: मेडल जीतने के पीछे महीनों की मेहनत लगी है, जिम में घंटों ट्रेनिंग और शरीर को प्रतियोगिता के स्तर तक तैयार करने की लगातार कोशिश करनी होती है। वहीं इस तैयारी के साथ पुलिस की ड्यूटी भी जारी रहती है। इसके अलावा इनकी कोशिश ये भी है कि अपने साथियों के साथ साथ बाकी

0: कि इसके आगे भी जाना है।
1: लेकर बॉडी बिल्डिंग के इस मंच तक इन तीनों हेड कॉन्स्टेबल्स की कहानी बताती है कि किस तरीके से पुलिस ड्यूटी के साथ साथ फिटनेस को भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। एक गोल्ड और दो ब्रॉन्ज तो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, विनिंग ट्रॉफी हासिल कर चुके हैं, अब इनका लक्ष्य कुछ और भी ज्यादा है, कुछ बहुत बड़ा है। दिल्ली पुलिस सबसे आगे। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीष लड्डा, दिल्ली।
2: इस वक्त की शानदार खबर एशियाई खेलों से, भारत ने तीरंदाजी में एक और सिल्वर मेडल जीता है। भारत को एशियन गेम 2026 में आर्चरी के रिकर्व पुरुष टीम धीरज बोमा देवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे इवेंट के फाइनल में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। भारत ने आज 5 मेडल जीते जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल 71 मेडल हो गए हैं जिसमें गोल्ड 12 है, सिल्वर 25 है और ब्रॉन्ज 34 शामिल है। पदक तालिका में भारत 6वें स्थान पर पहुंच गया है।
3: और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए उज्जवल निकम की एक्सक्लूसिव स्टोरी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में तमाशे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मचार से फोन पर की बात, पीएम ने की साहस की तारीफ, घटना के बारे में जानकारी ली। एशियन गेम्स में भारत का जलवा जारी, तीरंदाजी में गोल्ड के बाद जीता सिल्वर मेडल, महिला बॉक्सिंग में लवलीना ने जीता गोल्ड मेडल।

0: अयोध्या राम मंदिर में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। ट्रस्ट ने उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भी मांगी डिटेल। पितृपक्ष पर गया जी के देवघाट में श्रद्धालुओं की भीड़, दुनिया भर से जुड़ रहे हैं श्रद्धालु, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना में कई घाट पानी में डूबे, महावीर घाट पर बैरिकेडिंग कर लोगों के आने जाने पर रोक लगाई।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: और चलिए अब बात मुंबई अटैक पर बेस्ड अपकमिंग फिल्म प्रहार की कर लेते हैं। देखिए उज्जवल निकम के एक्सक्लूसिव।
2: 26 नवंबर को जब सीएसटी पर अटैक्स हुए थे वो याद है आपको?
3: अपने ईमान का हिसाब मुझे अपने रब को देना, आपको नहीं जाना।
2: हाँ तो उज्जवल निकम भी हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, मेरा हिसाब भी बजरंग बली लेंगे और मेरे दुश्मनों का भी।
3: मुझे केस जीतने की खुशी तब तक नहीं मिलती जब तक क्रिमिनल को उसकी गलती दिल में ना चुभे, और अगर तेरा कहीं दिल है ना कसाब, उसे ढूंढ निकालूंगा मैं।
4: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
2: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब ना कर दूं।

0: 26 ग्यारह 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले की वो घटना हम सभी के जहन में होगी। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। एक बार फिर ये घटना पर्दे पर उजागर होने जा रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम। जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है, ये फिल्म उज्ज्वल निकम की अनसुनी कहानी को सामने लाएगी। मतलब मुंबई अटैक के गुनहगारों और उनके आकाओं की कारगुजारी को उज्ज्वल निकम ने कैसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। ये फिल्म उन तमाम अनसुनी दास्तानों को सामने लाएगी। गुड न्यूज टुडे पर उज्ज्वल निकम खुद तमाम ऐसी बातों का खुलासा करेंगे जिसे शायद हम सब पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट।
1: 26 नवंबर को जब CST पर अटैक्स हुए थे, वो याद है आपको?
2: वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती।
3: पर्दे पर दस्तक देने जा रही है एक ऐसी फिल्म जिसका नाता हिंदुस्तान से है, हर एक हिंदुस्तानी से है।
1: जिसने आप पर आपकी माँ पर गोलियां चलाई थी, वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
3: घटना करीब 18 साल पुरानी है, लेकिन आज भी हर भारतवासी के जहन में ताजा है।
4: मिस्टर निकम, इस बार आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को नहीं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटायर वर्ल्ड प्रेस विल हैव इट्स आईज ऑन यू।
3: जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुंबई को दहलाकर रख दिया था।
1: संविधान है
4: क्या ये डिजिटल फोटोग्राफ्स मॉर्फ किए जा सकते हैं?
5: मेरी फोटोज मॉर्फ नहीं है।
4: इनमें से एक का साहब की AK-47 है, बता सकते हैं कौन सी वाली?
5: नो सर।
3: लश्करे तैयबा के 10 आतंकियों ने पूरे 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी को मानो बंधक बना दिया था। भारत के जाबाज जवानों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार 10वें आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया।
6: बात है कि गुस्सा भरा होगा गोविलकर साहब में।
3: मुंबई हमले की ये पूरी कहानी अलग अलग फिल्मकारों ने अपने अपने नजरिए से देश के सामने पेश की है, लेकिन अब प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम के जरिए पहली बार मुंबई अटैक की कहानी एक नए अंदाज में आने वाली है।
4: हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, मेरा हिसाब भी बजरंग बली लेंगे और मेरे दुश्मनों का भी।
3: ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बंदूक के बजाय संविधान और सबूतों की ताकत से आतंकवादियों की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
1: जीतने की खुशी तब तक नहीं मिलती जब तक क्रिमिनल को उसकी गलती दिल में ना चुभे, और अगर तेरा कहीं दिल है ना कसाब, उसे ढूंढ निकालूंगा मैं।
3: इस फिल्म के केंद्र में एक ओर है आतंकी अजमल कसाब, तो दूसरी ओर है देश के मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, जिन्होंने अजमल कसाब को कानून के जरिए उसके अंजाम तक पहुंचाया, उसे फांसी की सजा दिलवाई।
6: तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न कर दूं। और ये मेरा वादा है उन सैकड़ों लोगों से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। रोनर, ये वादा है मेरा।
3: प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम उन्हीं के जीवन और कानूनी संघर्षों पर आधारित एक फिल्म है जिसमें राजकुमार राव ने उज्ज्वल निकम की भूमिका निभाई है।
4: मैंने कुछ नहीं किया साहब।
3: गुड न्यूज टुडे पर आज उज्ज्वल निकम मौजूद हैं, जो बताएंगे हिंदुस्तान पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले और इस केस के पीछे की इनसाइड स्टोरी।
4: पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोलता है तू ही है टेररिस्ट। और एक बात साहब, मैं 17 साल का हूँ।
3: कैसे उन्होंने आतंकी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, किन किन चुनौतियों का सामना किया और राजकुमार राव को उनका किरदार पर्दे पर निभाने के लिए उन्होंने क्या कुछ टिप्स दिए, इन तमाम सवालों का जवाब आज आपके सामने होगा उज्ज्वल निकम एक्सक्लूसिव में।
7: फाउंडेशन ऑफ आवर लीगल सिस्टम,
4: हमारा कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता।
6: हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने।
8: तब बदलाव मानिएगा जब हम आपको बताएंगे बदल गए, तक आप भी बदलिए, हम भी बदलते हैं।
3: इन तमाम सवालों के जवाब आज आपके सामने होंगे, देखिए उज्ज्वल निकम एक्सक्लूसिव।
5: सर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे लगता है मैं कम से कम 3 बार ट्रेलर देखा है मैंने जी। आप संतुष्ट हैं क्या अपने खुद को फिल्मों में ट्रेलर के रूप में देखकर?
7: नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो ट्रायल केस मैंने चलाई वो सिर्फ अजमल कसाब के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, जंग नहीं थी, तो हमारे देश की जंग कसाब यानी पाकिस्तान से थी, मैं ऐसा मानता हूं। और मुझे खुशी इस बात क्या है कि हमारा संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, और हर कोई व्यक्ति में, वो कोई फर्क नहीं करता, हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है कि ये फॉरेन टेररिस्ट है, इंडियन टेररिस्ट नहीं। और इसलिए अजमल अमीर कसाब को भी हमने पूरी तरह से ये एक संधि दी थी कि तेरे बचाव के लिए उसके लिए 2 वकील थे, और ये ट्रायल ओपन कोर्ट में चली, आखिर अजमल अमीर मोहम्मद अमीर कसाब को फांसी पे जाना पड़ा।
5: बिल्कुल सर, ये ट्रेलर में मैं राजकुमार राव में काफी हद तक मैंने आपको भी देखा है, आपकी स्टाइल चलने की, बातों करने की स्टाइल, बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जिसे सुन के मजा भी आया और बहुत सीरियसनेस भी है। ये पूरी कहानी 26/11 के आसपास ही घिरी हुई है सर, दूसरे भी आपके बहुत ज्यादा केसेस है वो भी इस फिल्म में देखने मिलेंगे।
7: मेनली ये केस, ये जो प्रहार पिक्चर है, ये मेनली 26/11 का हमला और थोड़ा अंश 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का है, लेकिन ज्यादातर 26/11 का है। एक बड़ी विशेषता ये फिल्म है, इस फिल्म में असली नाम का इस्तेमाल यूज किए गए हैं। मुझे उज्जवल निकम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। मेरे मिसेस का किरदार है ज्योति, वो वामिका ने निभाया है। ये मेरे लड़के का नाम अनिकेत, वहां भी उसका किरदार है। शर्वरी, उनका भी किरदार है। तो और ये इसलिए उन्होंने ओरिजिनल नाम रखे ताकि इसमें किसी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन नहीं, एक बड़ी अहम जाज है। दूसरी बात तो ये महत्वपूर्ण है कि जो हमारे जहाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान दी, तुकाराम उमरे जी हो, करकरे जी हो, कामटे जी हो, साळसकर और ऐसे कई लोग जो ये हमले में 167 लोग मारे गए थे, आज मैं उनको पूरा तरह से न्याय मिला ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन विशेषता ये है कि हमारे ये संविधान की जीत है। ये उज्ज्वल निकम तो एक चेहरा था इस फिल्म के माध्यम का, लेकिन असली मेहनत हमारे पुलिस कर्मियों ने, जिन्होंने हमारे साथ दी, उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए।
5: अनिकेत जी, कैसे कैसा लगा आपको ट्रेलर, थोड़ा सा आप ही बताएं।
9: बहुत ही बढ़िया था ट्रेलर, और रोंगटे खड़े कर देने वाला था ये ट्रेलर। और जिस तरह से राजकुमार राव जी ने, वामिका गब्बी जी ने और सारे जो एक्टर्स है, जिस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब शूटिंग चलती थी तो कभी कभी मैं खुद शूटिंग के दिनों वहां जाता था, और पर्टिकुलरली जब ये कोर्ट सीन्स शूट हुए जहां पापा का फाइनल आर्गुमेंट हुआ, उस समय मैं मौजूद था। मतलब मैं 2008 में भी मौजूद था और इस शूटिंग के समय भी मौजूद था। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने निकम जी का कैरेक्टर पकड़ा है तो बहुत ही लाजवाब है। और मैं चाहता हूं कि लोगों को जब ये 16 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आएगी पिक्चर।
5: अच्छा, जब मेकर्स आए होंगे तो आप लोगों से पूछा ही होगा कि अरे उज्जवल निकम तो बहुत बड़ा नाम है, और ज्यादातर सर आपको लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल में सुना है, लेकिन जिस तरीके से आप अदालत रूम में जाकर के बहस करते हैं और थोड़ा सा अपने अंदाज में दूसरों को प्रेशर दे देते हैं, पसीने निकल आते हैं, वो चीजें अब फिल्मों द्वारा होगी, तो राजकुमार राव ही क्यों सर, आपको क्यों लगा कि यही?
7: देखिए, मैं अविनाश अरुण को इसका क्रेडिट देता हूँ। 3-4 साल पहले अविनाश अरुण और मैडॉक के जब मुझे मिले थे तो थोड़ा मैं साशंक था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि राजकुमार राव आपका कैरेक्टर। मैं भली बात ही ज्यादा पिक्चर नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने राजकुमार राव का नाम सुना तो पहले मेरे जहन में तो यह सवाल आया था कि क्या राजकुमार जी मेरा कैरेक्टर निभा कर सकते हैं। और असल में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और फिल्म तो बन रही थी उस टाइम में, फिर बाद में भी फिल्म भी मैंने देखी थोड़ी, तो आई वॉज शॉक्ड। राजकुमार राव इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, सही ढंग में वो एक्टर है। और जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में, वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूं, कॉपी मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे कैरेक्टर में चले गए। इसलिए चले गए कि जिस तरह से संवाद करना, जिस तरह बातचीत करना, जिस तरह से कोर्ट में एक यूनिफॉर्म वॉइस में अपना कंटेंशन सबमिशन रखना, पूरी तरह से अच्छा उन्होंने निभाया।
5: मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मेरी तरह बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे, जो अदालत की सीन से 26/11 और जो कसाब के साथ में आपकी बातचीत वगैरह हुई है, ये बाहर लाने की ये ठीक समय है? आपको लगता है कि लोगों को ये बातें जाननी चाहिए कि अदालत में किस तरीके से बहस होती है, कसाब ने क्या कुछ बोला है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी?
7: नहीं देखिए, ये ठीक होना ना ठीक होना ये इसमें कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 3 दिन अटैक चल रहा था, उसके लाइव तस्वीरें आ रही थी पेपर में, कसाब का चेहरा आ रहा था, फिर भी उसको जल्दी में फांसी क्यों नहीं है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
5: अच्छा, प्रहार का ट्रेलर तो मैंने बताया 3 बार मैंने देखा, क्या आप भी दिखेंगे इस पूरे फिल्म में, किसी एक सीन में आप और सामने राजकुमार राव को मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा होने वाला है?
7: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर है, हम तो एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को न्याय दिया है, ऐसा मैं कहूंगा।
5: सर, जो आपका किरदार है इस दुनिया में और उस पर अब फिल्म भी बन रही है, मतलब एक स्पेशल है, आप आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आप पर फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्मों से कितना जुड़े हैं, पसंद है फिल्में देखते हैं आप?
7: मैं बहुत कम फिल्म देखता हूँ, ये तो बात है।
5: कौन सी देखी थी सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी?
7: कौन सी देखी तो
5: मतलब ना
7: देखा है, पर इतना मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा, उसी वक्त
10: थिएटर्स में ज्यादा जाते नहीं है, वो जो जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी पे जो लगती है कभी कभार देख लेते हैं हम सब मिल करके।
5: अच्छा, नहीं 26/11 पे सर काफी फिल्में बनी हैं, काफी वेब सीरीज बने हैं, आपने कभी ट्राई करा कि नहीं देख लूं भाई कुछ?
7: नहीं, मैंने वो नहीं देखी है। अच्छा। क्योंकि ये देखो, ये फिल्म ऐसी है प्रहार, ये रियल उन्होंने इंसिडेंट फैक्ट बताए जो मेरे लाइफ में घटना हुई है, चाहे मैं 26/11 के हमले के दिन कहां था, चाहे मेरा अनिकेत तो छोटा था उस वक्त, उसका मेरा बर्ताव घर में कैसा, ज्योति मिसेस जो है वो किस पे थी, क्या थी, लड़की शर्वरी, इनका ये दिखाया है, ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा, ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ कई बार ऐसा है लोगों को रियल फैक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी रहता है, क्या हुआ इस केस,
5: नहीं होते अगर वकील उज्जवल निकम तो क्या होते,
7: नहीं होते वकील तो बड़ा सवाल, मुश्किल है ये कहना, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था।
5: अच्छा।
7: पिताजी की माँ की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा वकील बनना है।
5: हाँ।
7: फिर इतना ही कहूंगा मैं कि बदले तुमने रंग बहुत बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
5: क्या बात है सर, क्या बात है सर, ऐसे ही एक से बढ़कर एक डायलॉग हमने ट्रेलर में भी देखे सर। एक और था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि मैं हनुमान जयंती के दिन ही पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी की कसम सर, वो डायलॉग सिर्फ राजकुमार राव ने कहा है, क्या आप भी कह सकते हैं, आपने सुना देखा क्या कहेंगे?
7: देखिए उस वक्त जो डायलॉग अब तक मुझे याद है पूरी तरह से कि थोड़ा फिल्मी डायलॉग है, कसाब को वकील ऐसी बात करता है, तो उस वक्त मैं था, अरे मेरा जन्म भी हनुमान जयंती का है, मैं पूरा दिल फाके दिखा दूंगा। और दूसरा एक था उनका, आई उज्जवल निकम अस अक्यूज उज्जवल अमीर कसाब शुड बी हैंग टिल हिज डेथ, ये जो है मैं जिस अंदाज में मैंने कोर्ट में बयान किया उसी अंदाज में राजकुमार राव ने ये फिल्में दिखाई।
11: जनाब निकम, अपने ईमान का हिसाब मुझे अपने रब को देना है, आपको नहीं जनाब।
12: तो उज्जवल निकम भी हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, मेरा हिसाब भी बजरंग बली लेंगे और मेरे दुश्मनों का।
5: आपका एक ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और लूंगा सर, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। अनिकेत जी, आपके कितने इनपुट हैं इस पूरी फिल्म में, क्योंकि आपने भी जाकर ट्रेलर बनते हुए देखा होगा, आपने बताया शूटिंग सेट पे भी आप चले जाते थे, आपको कभी कुछ ऐसा लगा कम है या फिर मेरे पापा इस तरह?
13: जिस दिन पहली बार मैं राजकुमार राव जी को मिला तो जैसे पिताजी ने कहा, राजकुमार राव जी शूटिंग करने से पहले कभी उन्हें मिले नहीं, और जिस दिन मैं पहली बार मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ऐसी आदतें बताइए आपके पिताजी की जो बहुत पेक्यूलर है, जो आर्ग्यूमेंट करते समय वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या फिर कोई उनकी पर्टिकुलर आदत जो बहुत कॉमन है और पेक्यूलर है, तो फिर मैंने उनको जो जो मुझे पता था वो बताई मैंने। फिर मैंने उन्हें पूछा कि आपने फिर पिताजी को मिले क्यों नहीं अगर आपको उनका किरदार निभाना है, तो उन्होंने जवाब ही दिया कि जब ये हादसा हुआ था 2008 में, अब पिताजी की उम्र 52-53 साल की थी और अब पिताजी की उम्र 72 साल की है, तो मैं उस किरदार का रोल कर रहा हूँ जो 20 साल पहले थे, तो मैं उस वजह से नहीं उनको मिलना चाहता था क्योंकि अब भले उज्ज्वल निकम जी और तब भले उज्ज्वल निकम जी में कुछ फर्क हो सकता है। तो मैंने कहा सिर्फ बाल उनके सफेद हुए हैं, बाकी फर्क कुछ
5: फर्क हो ही नहीं है,
13: तो वैसे ही है। तो वो टहाके लगी कि वो भी हंसे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने
7: ये भी अभी काले
13: तो उन्होंने यूट्यूब पे जाकर उस समय जो उनके वीडियोस थे, इंटरव्यूज थे, वो सब उन्होंने देखे, अध्ययन किया और फिर उन्होंने वो किरदार निभाया।
5: बहुत बधाई फिर से एक बार आपको और आपकी पूरी टीम को। तो 16 अक्टूबर को प्रहार देखने के लिए तैयार हो जाइए, पूरे देश भर में फिल्म ये रिलीज हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
14: 26 नवंबर को जब CST पर अटैक्स हुए थे वो याद है आपको?
11: अपने ईमान का हिसाब मुझे अपने रब को देना, आपको नहीं जाना।
12: ना तो उज्ज्वल निकम भी हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, मेरा हिसाब भी बजरंग बली लेंगे और मेरे दुश्मनों का भी।
1: मुझे केस जीतने की खुशी तब तक नहीं मिलती जब तक क्रिमिनल को उसकी गलती दिल में ना चुभे, और अगर तेरा कहीं दिल है ना कसाब, उसे ढूंढ निकालूंगा मैं।
15: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
6: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब ना कर दूं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और इस मौके पर दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के नेताओं समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सत्य और अहिंसा के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने वाले गांधी जी को देश भर में याद किया जा रहा है।

0: कार्यकलापों को रिद्धि सिद्धि।
1: और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लंच टाइम में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में तमाशे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: पीएम मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मछार से फोन पर बात की, पीएम ने की साहस की तारीफ, घटना के बारे में जानकारी ली। एशियन गेम्स में भारत का जलवा जारी, तीरंदाजी में गोल्ड के बाद जीता सिल्वर, महिला बॉक्सिंग में लवलीना ने जीता गोल्ड मेडल। पितृपक्ष पर गया जी के देवघाट में श्रद्धालुओं की भीड़, दुनिया भर से जुट रहे हैं श्रद्धालु, पितरों के मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। गांधी जयंती पर जेनजी पहुंचे यमुना घाट, यमुना नदी में साफ सफाई की, देश के युवाओं को दिया स्वच्छता का संदेश। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर, पटना में कई घाट पानी में डूबे, महावीर घाट पर बैरिकेडिंग कर लोगों के आने जाने पर लगाई रोक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: पीएम मोदी ने फ्लाइट दुबई के जाबाज पायलट स्मिथ मछार से वीडियो कॉल पर बात की, यूनाइटेड अरब अमीरात में मछार की चल रही है इलाज। कैप्टन स्मिथ ने घटना के दौरान अपने अनुभव और उन्हें हिम्मत देने वाली बातों के बारे में बताया। पीएम मोदी से कहा, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। घटना का जिक्र करते हुए स्मिथ मछार ने बताया कि उस वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उनके मन में यही चल रहा था कि सबको मरने नहीं दे सकते। पीएम मोदी के साथ बातचीत में मछार ने कहा कि वे भले ही देश से दूर हैं लेकिन अपनी संस्कृति से नहीं। मछार ने बताया कि हमले के बीच उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला। पीएम ने मछार की हिम्मत, सूझबूझ और मुश्किल वक्त में संयम बनाए रखने की तारीफ की। पीएम मोदी ने मछार से कहा कि पूरा देश उनके साथ है। पीएम ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कैप्टन स्मिथ मछार दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट उड़ा रहे थे और उसी दौरान उनके को पायलट ने उन पर हमला किया और विमान को क्रैश कराने की कोशिश की। घायल होने के बावजूद मछार ने हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद यात्रियों और क्रू के सदस्यों ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर पायलट को काबू किया। देश भर में आज मनाई जा रही है महात्मा गांधी की 157वीं जयंती, देश भर में बापू के आदर्शों को किया जा रहा है याद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी 122वां जन्मदिवस आज देश कर रहा है नमन। एशियन गेम्स 2026 में आज भारत की हुई गोल्डन शुरुआत, बॉक्सिंग और तीरंदाजी में आए गोल्ड मेडल। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने किया कमाल, 75 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल में लवलीना ने चाइना को किबाओ जी को 5-0 से हराया। एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बनी। आज है लवलीना का बर्थडे, 29 साल की लवलीना ने अपने जन्मदिन पर देश को दिया जीत का गोल्डन गिफ्ट। तीरंदाजी में भी आज भारत ने साधा गोल्ड पर निशाना। विमेंस रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की तिकड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर इतिहास रचा। तीरंदाजी में भारत को चौथा गोल्ड दिलाया। भारत के लिए तीरंदाजी में गोल्ड के बाद रजत पदक भी आया। रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने कमाल किया। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से पदक तालिका के अंडर 5 क्लब में शामिल हुआ भारत। अब तक आए 12 गोल्ड, 25 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स। भारत को आर्चरी के रिकर्व पुरुष टीम इवेंट के फाइनल में मिला सिल्वर मेडल। धीरज बोमा देवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगी का कमाल देखने को मिला। महिलाओं की 65 किलोग्राम वर्ग में आज भारतीय मुक्केबाज परवीन हुड्डा का फाइनल मैच ताइपे क्यू चेन नियन चिन से होगी टक्कर। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को पहनाई गई फूल मालाएं, भारत माता की जय के लगे नारे। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाली अमनदीप का भी हुआ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। अपनी जीत को बताया देश की जीत। देश के लिए सोना और चांदी जीतने वाले खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने एक साथ पोज दिया, अपने अपने मेडल्स हाथ में लेकर जाहिर की खुशी। खिलाड़ियों के स्वागत में किसी ने पहनाई फूल माला तो किसी ने पहनाई करेंसी नोट की माला। किसी ने खिलाड़ियों को कंधे पर बैठाया, खिलाड़ियों के साथ सेल्फी ली। आईसीसी ने मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी किया। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया करेगा वर्ल्ड कप की साझा मेजबानी। सात अक्टूबर 2027 को भारत का पहला मुकाबला होगा। केप टाउन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच खेला जाएगा। 10 अक्टूबर 2027 को भारत पाकिस्तान के बीच मैच होगा। जोहान्सबर्ग में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर और दूसरा 18 नवंबर को होगा, जबकि फाइनल 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में 6-6 टीमों के दो ग्रुप से बांटी जाएंगी 12 टीमें। 2 अक्टूबर से शुरू होंगे ग्रुप मैच, तो वहीं ग्रुप ए में है भारत। अमरावती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, निकाली गई विदर्भ के राजा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा। 20 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। केसरिया झंडों और फूलों की बारिश के बीच बापा का स्वागत किया गया। करीब 16 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद बापा की विदाई के लिए निकली शोभा यात्रा। विदर्भ के अलग अलग जिलों से आए 12 से ज्यादा ढोल पथक हुए शामिल। अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे ढोल पथकों ने अपनी खास ताल और धुनों से माहौल में भरा जोश। महिला ढोल पथक ने खींचा सबका ध्यान। संभल में एसपी और एएसपी ने आरआरएफ, पीएसी और पुलिस फोर्स के साथ निकाला 6 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च। आगामी त्योहारों को लेकर दिया शांति संदेश। भारतीय सेना ने डोडा में अग्निवीरों और टेरिटोरियल आर्मी के अभ्यर्थियों को कोचिंग देने की शुरुआत की। सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नए एमबीबीएस बैच के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से एमबीबीएस के लिए सीटों की संख्या 100 से बढ़कर 150 किए जाने के बाद जीएमसी राजौरी का यह पहला बैच है। ग्रेटर नोएडा के घंटाघर चौक पर सीआरपीएफ ने चलाया सफाई अभियान, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागलपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 16 नावें तैनात की। विक्रमशिला सेतु बंद होने के कारण गंगा रूट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया कदम। झांसी में शक्ति पर्व की तैयारियां शुरू। मां दुर्गा की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मूर्तियां बनाने के लिए कोलकाता से मंगाई जा रही है मिट्टी और श्रृंगार के अन्य सामान। मिट्टी और भूसे से तैयार की जा रही है मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। पूरे बुंदेलखंड में है प्रतिमाओं की विशेष मांग। मां दुर्गा के साथ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकी की प्रतिमाओं को भी किया जा रहा है तैयार। महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप भी तैयार हो रहा है। पिछले 34 सालों से एक बंगाली परिवार झांसी में बना रहा है बंगाली शैली की प्रतिमाएं। हर साल 150 से 200 मूर्तियां तैयार करते हैं। पटना के मनेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। दियारा इलाके के निचले हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांव प्रभावित हुए। पटना सिटी के घाटों पर पिछले 2 दिनों से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भद्रघाट, महावीर घाट पर बैरिकेडिंग कर लोगों के आने जाने पर लगाई गई रोक। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, राहत और बचाव के कामों का जायजा लिया। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में मुजफ्फरपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के साथ बहकर पहुंचे करीब 1 दर्जन हिरणों को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पारू और साहिबगंज इलाके में इन हिरणों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू किए गए हिरणों में 4 नर और 8 मादा शामिल हैं। एक घायल हिरण का उपचार किया जा रहा है। बक्सर में बाढ़ से बड़ी समस्या, तो वहीं गंगौली से बलिया जाने वाला मार्ग हुआ बंद। रास्ते पर चढ़ा गंगा का पानी। रास्ते पर पानी के बावजूद लोग खतरनाक तरीके से यात्रा कर रहे हैं, कभी भी हो सकता है हादसा। प्रशासन अभी तक नहीं लगा पाया है रोक। नेपाल के पानी का भारत में आने का असर दिखने लगा है। बिहार में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर में दिख रहा है असर। पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज विधानसभा में बाढ़ से तबाही मची। चंपारण तटबंध पर बने एक बांध से रिसाव से हड़कंप मचा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारी। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया। बाढ़ से जिले की 3 तहसीलें प्रभावित हुई। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा। जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति अभियान में शामिल होने के लिए पहुंची फ्रांस की एयर एंड स्पेस टीम। 4 राफेल समेत 9 विमान जोधपुर पहुंचे। फ्रांस ने 2024 में भी तरंग शक्ति एक्सरसाइज के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था। 12 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में देश के पहले आधुनिक बायो पॉलीमर प्लांट की स्थापना की तैयारी चल रही है। बीच रास्ते में आए फुट ओवर ब्रिज को हटाया जा रहा है। विशालकाय ट्रक वाराणसी के चांदमारी फेज 2 पहुंचा। फुट ओवर ब्रिज हटाने का काम हो रहा है। विशाल ट्रक को देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। चीनी प्लांट पर लगाया जाएगा बायोपॉलीमर प्लांट। चीनी उद्योग से मिलने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल कर बायोपॉलीमर किए जाएंगे तैयार। पीएम करेंगे इसका उद्घाटन। करनाल में पराली जलाने वालों पर होगा ड्रोन का पहरा। कृषि विभाग पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। करनाल में 25% धान कटाई का काम पूरा हुआ। प्रशासन की सख्ती के चलते फिलहाल अभी तक पराली जलाने को कोई मामला सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने का फैसला। हटाए जाएंगे अरबी और फारसी मूल के शब्द। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स का अनोखा प्रयास। 100 फीट एरिया में बनी रंगोली। 80 स्टूडेंट्स ने 30 घंटे में बनाकर तैयार की रंगोली, विकसित भारत की तैयार की पेश तस्वीर की, तो वहीं विशाल रंगोली देखकर लोग हैरान हुए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में तमाशे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर, जहां पर रेलवे स्टेशन पर जान देने की कोशिश कर रही महिला की जान बचा ली गई। और बताया जा रहा है कि महिला चलती ट्रेन के सामने कूदने जा रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर और उसके बच्चों की तत्परता से महिला को बचा लिया गया। कहा जा रहा है कि स्टेशन पर खड़ी ये महिला ट्रेन का इंतजार कर रही थी ताकि वो इसके सामने आकर आत्महत्या कर सके। आसपास खड़े ये दोनों इसके बच्चे हैं जो उसे लगातार रोक रहे थे, लेकिन जब उसने बच्चों की नहीं सुनी और ट्रेन बेहद करीब आने तो बच्चे पीछे हट गए और असहाय नजरों से मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक शख्स आता हुआ नजर आया। बच्चों ने फौरन उन्हें इशारा किया और तत्परता दिखाते हुए ट्रेन आने से पहले उसे खींच लिया गया। घटना रायपुर के उरकुरा रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है, और इस महिला की जान बचाने वाले शख्स और कोई नहीं वहां के स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय थे, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ और यहाँ वक्त रहते महिला की जान बचा ली और उन असहाय बच्चों की मदद की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पीएम मोदी ने भारतीय पायलट स्मित मछा से फोन पर बात की, पीएम ने की साहस की तारीफ, घटना के बारे में जानकारी ली। एशियन गेम्स में भारत का जलवा जारी, तीरंदाजी में गोल्ड के बाद जीता सिल्वर मेडल, महिला बॉक्सिंग में लवलीना ने गोल्ड मेडल जीता। पितृपक्ष पर गया जी के देवघाट में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, दुनिया भर से जुट रहे हैं श्रद्धालु, पितरों की मोक्ष कामना के लिए तर्पण कर रहे हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश नमन कर रहा है। गांधी जयंती पर जेंजी पहुंचे यमुना घाट, यमुना नदी में साफ सफाई की देश के युवाओं को स्वच्छता का संदेश दिया। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पटना में कई घाट पानी में डूबे, महावीर घाट पर बैरिकेडिंग कर लोगों को आने जाने पर रोक लगाई गई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
5: ईशा और सूरज की शुरू होगी नोकझोंक, दिखेगा रिश्तों का ड्रामा। आरंभी पर लगेगा कत्ल का इल्जाम, सलाखों के पीछे जाएगी आरंभी। सीरियल वसुधा में समर की होगी वापसी, बढ़ेगी चंद्रिका और वसुधा की परेशानियां। सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा को पड़ेगा थप्पड़, परेशान होंगे घर वाले। हाई वोल्टेज ड्रामा, राध्या पर लगेंगे फिर एक बार इल्जाम। और एक्ट्रेस रूमा शर्मा करवाएंगी अपना फोटोशूट, देखेंगे रूमा के नए अंदाज सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: धारावाहिक मन अति सुंदर में अंतरा की चालें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रथम के करीब जाने का दिखावा और राध्या को नीचा दिखाने का ड्रामा घर में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर चुका है। हद तो इस बात की है कि दादी भी अंतरा का साथ दे रही हैं और राध्या पर गुस्सा कर रही हैं। अब ऐसे में राध्या अंतरा को कैसे बेनकाब करती है, देखना दिलचस्प होगा।
6: अंतरा आराम करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी।

0: बढ़िया ही ध्यान रखने वाली, अभी बताती हूँ।
1: ये लो अंतरा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ।
0: बेचारी राध्या, एक और मौका दे दिया। अब देख इस पानी को मैं जहर अपने लिए कैसे बनाती हूँ और इसका सारा इल्जाम तुम पर कैसे लगाती हूँ।
2: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में थे।

0: ये चलता रहता है कि कैसे वो राध्या को फंसाए और उस पर इल्जाम लगाए।
1: आप आराम कीजिए, हम आपके लिए पत्ते का पानी बना देंगे। वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हें घर के बहुत सारे काम होंगे तुम वो कर लो, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। चाहिए
0: तभी तो जब राध्या अंतरा के लिए ये ड्रिंक लेकर आई तो उसने वो पी तो ली, लेकिन शुरू कर दिया ड्रामा, खुद पर लिपस्टिक से ये निशान बनाए और इल्जाम राध्या पर लगा दिया।
1: इसकी क्या जरूरत थी अंतरा जी, घर पे आपका ख्याल रखने के लिए तो रुके हैं, आप ही पी लीजिए उसके बाद आराम करो।

0: और दादी को तो बस मौका चाहिए और आज फिर एक बार उसे मौका मिल गया, वो भी अंतरा के चलते। ऐसे में दादी राध्या से अंतरा के पैर छुआ कर माफी मंगवा रही थी, लेकिन इससे पहले कि राध्या ऐसा करती, सही समय पर वहाँ रजनी आ जाती है जो राध्या को ऐसा करने से रोक लेती है और दादी के इरादों पर पानी फिर जाता है।
1: दादी जी ना, आंटी जी सही तो कह रही है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो मेरे और प्रथम के होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए राध्या इस बात का ना ध्यान रखना।

0: मात्रा अपने कमरे में तो आ जाती है, लेकिन उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है। तभी तो वो चीजें यहाँ वहाँ फेंक रही है, कभी कपड़े तो कभी अपना पर्स फेंकती। तभी वहाँ पर एकता और बाकी के घर वाले भी पहुँच जाते हैं।
1: दीदी, अगर इस घर में मैं और रुकी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी।
2: तो हुआ क्या है बताओ कुछ? राधे से फिर से कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं दीदी, लेकिन जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, मेरी लाइफ ही खत्म हो गई है। बस सुबह उठो, खाना खाओ, आराम करो, फिर उठो, खाना खाओ, आराम करो, बस यही करती हूँ मैं। बस रोज एक सेम बोरिंग रूटीन। मेरे लाइफ में ना कोई पर्पस है, ना कोई एक्साइटमेंट।

0: बात क्या है अंतरा?
1: घर की सारी औरतें हाउसवाइफ्स हैं, मेरी सिचुएशन कोई नहीं समझेगा।
0: पर अंतरा हुआ क्या है?
2: ऐसे में फिर एक बार अंतरा को मिलता है मौका प्रथम के करीब आने का, क्योंकि वो सबके सामने ये बात कह देती है कि उसे घर में बोर हो रहा है और उसे काम करना है, जिस बात पर राध्या कह देती है कि वो प्रथम का ऑफिस ज्वाइन कर सकती है।
1: प्रेगनेंसी के पहले मैं एक वर्किंग वुमन थी, इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी मैं। आई नो कि सरोगेसी का फैसला मेरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कंपनी मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं करने देगी, इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। अब ना पूरा दिन घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ मैं।
0: अरे तो तुम मंदिर गई थी ना, अगर तुम चाहो तो हम आज तुम्हें घुमाने ले जाते हैं।
1: नहीं आंटी जी, मुझे घूमना फिरना नहीं है, मुझे कोई ऐसा काम करना है जिससे मेरा माइंड एक्टिव रहे।
3: अंतरा जी ऐसी बात है तो प्रथम जी का ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, उनकी मदद कर दीजिएगा।
4: अंतरा आईटी फील्ड में काम करती है और हमारा मिठाइयों का बिजनेस है, उस फील्ड से कोई लेना देना।
1: लेकिन प्रथम तुम क्लाइंट्स के प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, उनको आइडियाज पिच करते हो, तो मैं तुम्हें उसमें हेल्प कर दूंगी। प्लीज मुझे ऑफिस ले चलो, मेरा ना माइंड फ्रेश रहेगा और मैं मेरा माइंड भी एक्टिव रहेगा।
3: अंतरा को ऑफिस ले जाया करो, इस बेचारी का मन भी बह जाएगा और तुम्हारी भी काम में मदद हो जाएगी।

0: ठीक है सर,
1: मैं भी कल से तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी।
0: अंतरा थकी हुई लग गई, उसके लिए ना पानी है। तुम ऑफिस कल से नहीं परसों से ज्वाइन कर लेना। वो क्या है ना, कल रात है का बर्थडे था और मैं पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहता हूँ।
2: तो भाई अब अंतरा प्रथम के साथ ऑफिस जाएगी, लेकिन राध्या का बर्थडे मनाने के बाद अब देखना होगा कि राध्या के इस बर्थडे सेलिब्रेशन में और कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल जगधात्री में जगधात्री की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जाह्नवी शिवाय के करीब आने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है लिली, और इस बात से जाह्नवी चिढ़ रही है। पर उसे और शिवाय को जरा भी खबर नहीं कि सामने खड़ी लिली ही असल में जगधात्री है। देखते हैं ये मजेदार सीन।
2: शिवाय के करीब आने की जाह्नवी की कोशिश है। जगधात्री बनती शिवाय और जाह्नवी के बीच दीवार।
4: धड़कन दिल के परमाणु भेजे। घर में आए हुए दो दिन नहीं हुए। बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कैसे?
2: शिवाय को हुआ लिली पर शक।
1: एक्चुअली वो क्या है ना कि छोटा बच्चा लोगों का बहुत ही प्योर सोच होता है। वो अच्छा ह्यूमन है, उसके साथ एकदम अटैच हो जाता है।
2: टीवी के सीरियल जगधात्री में आज मामा और भांजी के बीच मस्ती भरे पल देखने को मिल रहे हैं। असल में शिवाय अपना काम कर रहा है और गुंजन आकर अपने मामा की तस्वीरें खींच रही है। बस फिर क्या, अपनी भांजी को इस तरह तस्वीरें खींचते देख शिवाय हो जाता है खुश और पहुंच जाता है गुंजन के पास अपना प्यार और लाड़ जताने के लिए।
5: देखो

0: वह एक नन्ही बच्ची ने न सिर्फ शिवाय को थका दिया बल्कि शिवाय का तो दर्द होने लगा। और ये देख वहाँ पहुँच जाती है जाह्नवी और देखिए कैसे वो कोशिश करती है शिवाय के करीब जाने की। वो तो शिवाय का काम बांटने के लिए शिवाय की फाइल भी ले लेती है लेकिन शिवाय वो जाह्नवी से फाइल वापस ले लेता है क्योंकि उसमें शिवाय के कुछ पेपर्स हैं जो वो नहीं चाहता कि जाह्नवी को पता चले। लेकिन शिवाय का सर दर्द होता देख जाह्नवी देखिए कैसे उसका सर दबाने के लिए पीछे पड़ जाती है। शिवाय तो भाग ही रहा है लेकिन जाह्नवी जिद पर आ गई है। इससे पहले कि वो शिवाय के करीब जाती वहाँ पर पहुँच जाती है जगधात्री लेकर कहानी में ट्विस्ट। फिलहाल तो कुछ पल के लिए जगधात्री ने जाह्नवी को शिवाय से दूर तो किया, इतना ही नहीं वो तो शिवाय को भी डांटने लगी क्योंकि शिवाय बच्चों की तरह भाग जो रहा था। खैर उसने आइस पैक शिवाय को पकड़ा दिया और अपने सर पर खुद ही रखने के लिए कह दिया। ये देख जाह्नवी हैरान हो रही है कि एक मैनेजर घर वालों का ख्याल इतना क्यों रख रही है। इसी बीच जाह्नवी को सुनाई दे जाती है तस्वीर खींचने की आवाज़। ऐसे में वो गुंजन के पास जाती है और कोशिश करती है शिवाय सिंह अपनी तस्वीर खिंचवाने की। इतना ही नहीं वो तो लिली को मोबाइल भी दे देती है तस्वीर खींचने के लिए। ऐसे में जगधात्री उर्फ लिली मोबाइल ले तो लेती है लेकिन सेटिंग चेंज कर देती है, लगा देती है फिल्टर और तो और बुला लेती है वापस गुंजन को और कहती है उससे इनकी तस्वीर खींचने के लिए। ऐसे में अनजाने में जाह्नवी शिवाय के करीब आकर पोजेस देने लगती है और गुंजन तस्वीर खींचने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जगधात्री और गुंजन दोनों वो तस्वीर देखकर हंसने लगते हैं।
1: देखो
2: ये फिल्टर क्यों हटा तुमने? हम क्या कर सकते हैं, बच्चा क्लिक कर रहा था ना फोटो और क्या समझेगा वो, है ना, वो तो बच्चा है। मुझे ज्यादा स्मार्ट है, आई मीन टू से गुंजन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सॉरी मेरा हिंदी ऊपर नीचे है ना।
0: भाई लिली को इस तरह से गुंजन के साथ दोस्ती का व्यवहार देखकर शिवाय हैरान हो रहा है और उसका शक बढ़ता जा रहा है कि लिली ही जगधात्री है। तभी तो वो लिली से सवाल करने लगता है।
2: वो अच्छा ह्यूमन बींग्स के साथ एकदम अटैच हो जाता है, तुम नहीं समझे, बड़ा लोगों की तरह ज्यादा दिमाग नहीं लगाता।
0: खैर शिवाय तो लिली का सच पता लगा कर ही रहेगा लेकिन उसे ये नहीं पता कि लिली यहाँ तपस्या की जासूसी करने के लिए ही आई है। तभी तो देखिए कैसे जब तपस्या का पार्सल आता है तो तपस्या अकेले में वो पार्सल खोलने की कोशिश करती है और उसे किसी के आने की आहट होती है। ऐसे में वो पार्सल झटपट छिपा देती है और उसके कमरे में होती है एंट्री जगधात्री की जो लेकर आई है तपस्या के लिए कॉफी। इतना ही नहीं सच जानने के लिए जगधात्री वो कॉफी गिरा देती है और गलती से जगधात्री के मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है जिसे तपस्या को लगता है कि ये उसकी बहन जगधात्री है। लेकिन जगधात्री भी कम नहीं, बातों को घुमाना तो कोई उससे ही सीखे।
3: क्या कहा बे तुमने, फिर से बोलो। ओह माय क्राइस्ट, आई एम सो सॉरी, मैं मुंह से आपका नाम निकला, आई एम सो सॉरी, वो तुम हर्ट हो गया, हम नर्वस हो गया, तुम्हारा नाम निकल के आई एम सो सॉरी, हम हाथ जोड़ के फॉरगिवनेस मांगता है, प्लीज वो गलती से मिस्टेक हो गया, मैं जाऊं, प्लीज आर यू ओके?
4: नहीं मैं ठीक हूं, तुम जाओ।
3: ओह माय क्राइस्ट, आई एम सो सॉरी मैडम, वो हमारे मुंह से आपका नाम निकल गया ना, आई एम सो सॉरी, वो अब हर्ट हो गया, हम नर्वस हो गया, आपका नाम निकल गया मेरे मुंह से, आई एम सो सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांगता है, प्लीज फॉरगिव मी मैडम, गलती से मिस्टेक हो गया।
4: हाँ ठीक है, फाइन, हम लाओ
3: देखो, एक सेकंड,
4: मैं ठीक हूँ।
0: खैर जगधात्री को पता है कि तपस्या ने वो पार्सल कहाँ छिपाया है, इसीलिए देखिए कैसे सफाई करने के बहाने वो आगे बढ़ती तो है लेकिन तपस्या उसे रोक लेती है और तो और उसे कमरे से बाहर जाने का आदेश भी देती है। ऐसे में न चाहते हुए भी जगधात्री को वहाँ से जाना पड़ रहा है, पर उसकी नज़र तपस्या के ऊपर ही है। अब देखना होगा कि जगधात्री उस पार्सल के बारे में पता लगा पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल मन्नत में आया है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां धैर्य के जिंदा होने का सच सामने आने से मन्नत और विक्रांत दोनों परेशान हो गए, क्योंकि धैर्य ने ही उनकी बेटी दुआ को किडनैप किया है, तो वहीं दुआ भी धैर्य को देख हैरान है। अब ऐसे में सीरियल में आगे क्या नया तूफान आने वाला है, चलिए देखते हैं।

दुआ के सामने आया धैर्य के जिंदा होने का सच। धैर्य ने फिर चली चाल, कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत अपनी टीम के पास पहुंच गई थी अंकित के अड्डे पर अपनी बेटी दुआ का पता लगाने के लिए, लेकिन अंकित और धैर्य जो बना हुआ है बहरूपिया वो उसकी नजरों से बचाकर दुआ को वहां से लेकर चले जाते हैं, लेकिन मन्नत ने हार नहीं मानी और देखिए कैसे वो पहुंच गई है दुआ और धैर्य के पीछे पीछे। लेकिन वहां पर मन्नत को लगा है जोरदार झटका, क्योंकि उसके सामने वो बहरूपिया किडनैपर नहीं बल्कि धैर्य निकला।

0: भाई मन्नत ही नहीं बल्कि दुआ के सामने भी धैर्य के जिंदा होने का सच आ गया है। ऐसे में दुआ हैरान है और वो तो अपने बाबा के लिए तड़प रही थी और उसकी तड़प का फायदा उठाते हुए धैर्य ने उसको फिर से गुमराह करना शुरू कर दिया। लेकिन विक्रांत ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और पहुंच गया दुआ को सारा सच बताने के लिए। इतना ही नहीं, दुआ को सच बताने के बाद विक्रांत ने अपना गुस्सा धैर्य पर भी दिखाया।
1: How does it feel? तकलीफ हो रही होगी कि अब तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी, उसे पता लग चुका है कि तुम किस तरह के इंसान हो। बट यू नो वॉट, लेट मी टेल यू समथिंग, तकलीफ ना उस इंसान को होती है इसके सीने में दिल। यू हैव नथिंग सीने में दिल नहीं, कुछ नहीं, पत्थर।
0: फिलहाल तो विक्रांत दुआ के सामने धैर्य से बातों से ही नाराजगी जता रहा है और तो और उसके करीब जाकर ये भी बता रहा है कि वो खुद ही अपने कर्मों को कबूल कर ले। लेकिन धैर्य वो भी कम ढीठ नहीं और ऐसे में विक्रांत धैर्य की ढीठता समझ भी जाता है। बस फिर क्या, गुस्से में आकर विक्रांत धैर्य पर अपना सारा गुस्सा उतार देता है। लेकिन धैर्य वहाँ पर भी हार नहीं मानता। पिटने का नाटक कर वो दुआ को बस यही बता रहा है कि विक्रांत और मन्नत दोनों ही उसे उसके बाबा से दूर करना चाहते हैं।
2: हमको हेल्प करने का सिर्फ मीना तक किया। आपको पता, सुन, जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने इनका सिर्फ हेल्प करने का नाटक किया, आपको बता सकती हूँ ये सच नहीं है कि दोनों आपको भड़का रहे हैं। मैं आपको मार सकता हूँ, मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। आप मेरे मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। ये दोनों आपको बढ़ा रहे, ये लग नहीं चाहता कि मैं आपकी जिंदगी में रहूं। यही सच है, ये लोग आपको मुझसे दूर करना चाहते हैं। यही सच है, अरे बोलो ना कि सच है कि नहीं है।
0: भाई आज तो ना विक्रांत धैर्य का झूठ बर्दाश्त करेगा ना ही मन्नत। देखना होगा कि विक्रांत क्या अपनी बेटी दुआ के सामने धैर्य का सच लाकर रहेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा और सूरज के बीच नोकझोंक का नया दौर शुरू हो चुका है, जहां खर्राटे भरते सूरज को ईशा एक सच बताती है। लेकिन क्या वो सच सूरज के कानों तक पहुंचा या गलत फहमी ने ले ली है नई जगह? इसके अलावा घर में चल रहे हैं तरह तरह के ड्रामे। चलते हैं सीरियल के सेट पर।
4: ईशा की परेशानी।
5: सूरज उठो ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी।
4: सूरज से बयां किया सच।
5: मैं कहना चाहती थी कि आजकल मैं आकाश के अंदर काम कर रही हूँ, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी चार्ज करने की।
4: शुरू हुआ रिश्तों का अनोखा खेल। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आए दिन कोई ना कोई तमाशे होते ही रहते हैं और आज फिर एक बार हो रही है खट्टी मीठी बातें ईशा और सूरज में, जहां ईशा सूरज को नींद से जगाने की कोशिश कर रही है लेकिन सूरज है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे।
5: कल घर बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही मजे ले रही है।

0: जो भी हो, ये काव्या की जिंदगी का सवाल है, कुछ सूरज को पता नहीं। अभी एक बार
1: क्या बात है ईशा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे?
2: असल में ईशा को सूरज को आकाश के बारे में कुछ बात बतानी है। उसे ये बताना है आकाश ने ईशा को अपने अंडर रखा है और देखिए कैसे वो सोते हुए सूरज को ये सारी बातें बता भी देती है और अचंभे से सूरज उठ भी जाता है और साथ ही ये भी कह देता है कि इसमें ईशा की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब सूरज ने वाकई ये बात सुनी है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ईशा को तो लग रहा है कि सूरज ने बात भी सुनी है और वो मान भी गया है।
3: ईशा जी क्या सुबह सुबह पटका पटकी कर रही है, सोने दीजिए ना मुझे।
4: सूरज उठो ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सूरज वो मैं ये कहना चाहती थी कि आजकल मैं आकाश के अंदर काम कर रही हूँ, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज होने की।

0: messages. It's not hard to get.
1: So much. Thank you, मुझे समझने के लिए. I promise. अब हमारे बीच में कभी trust issue नहीं रहेगा.
2: ये चीज ये होती है कि सूरज को मैं नॉर्मली जगाने आती हूँ तभी मुझे लगता है कि बंटी का मैसेज आया होगा, बट तभी आकाश का मैसेज आता है, आकाश का वही मंत्री है तो कि टाइम पे आ जाना, मुझे घर का खाना पसंद है, घर से बना कर लाना, ये सारी चीजें. तो ईशा इरिटेट हो जाती है एंड फोन फेंक देती है. फिर ईशा को एक टाइम पे लगता है कि मुझे सूरज को बता देना चाहिए ये सच कि मैं आकाश के अंडर कब से काम कर रही हूँ, क्योंकि पता चलेगा तो सूरज बहुत गुस्सा करेगा एंड उसे उसका गुस्सा मतलब अनदर लेवल. सो ईशा कहती है, ट्राई करती है, वो सूरज हाँ भी करता है एंड आई डोंट नो, सूरज को भी नहीं पता, ईशा को नहीं पता कि सूरज ने सुना या नहीं, क्योंकि टी का कैटल सब गिर जाता है. ईशा को लगता है गुस्सा हो गया है क्योंकि ईशा ने बता दिया है कि मैं आकाश के अंडर काम कर रही हूँ उसकी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बनके, जो कि बहुत बड़ी बात है सूरज को पता चली. तो सूरज कह देता है नहीं ईशा जी, आपकी क्या गलती है इसमें कि आपने तो कुछ भी नहीं किया. तो ईशा वो खुश हो जाती है, पहले वो डर सी जाती है कि बुरा लग गया सूरज को, ऑफकोर्स बहुत बड़ी बात होगी, बट ईशा को लगता है एक वजह से वो अंडरस्टैंडिंग बन गया, अंडरस्टैंड उसने समझ ली है बात. तो ईशा ये कहती है अब हमारे बीच में कोई कभी बात नहीं छुपेगी, हमारे बीच में ट्रस्ट इशू कभी नहीं होगा. तो मतलब वो एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात ईशा ने कह दी. बट लेट्स सी, सूरज ने सचमुच सुना है या नहीं सुना है, सुना है तो इतने कम में रिएक्ट कर दिया या बाद में कुछ धमाका होगा, बट धमाका तो होगा, आकाश ऐसे ही नहीं बचेगा.
3: वहीं दूसरी तरफ काव्या परेशान है, ऐसे में वो ईशा के पास आई है और वो बंटी के बारे में ईशा को कुछ बातें बताती है. ऐसे में अब ईशा ने ठाना है कि वो बंटी से मिलेगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी.
1: मैं लेट हो गई, वो काफी इतना सब कुछ चल रहा है ना, इसलिए क्यों काव्या, क्या चल रहा है काव्या, वो ऋषि कृति छोड़ो ना.
3: तभी तो ईशा सूरज से छुपकर बंटी से फोन पर बात कर रही है. ईशा नहीं चाहती कि सूरज को ये सब कुछ पता चले, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि काव्या बंटी की वजह से परेशान है तो सूरज बंटी को छोड़ेगा नहीं. तभी तो वो अकेले में ही बंटी से बात करती है, लेकिन वहाँ सूरज भी आ जाता है. लेकिन बड़ी चालाकी से ईशा सिचुएशन को संभालती है.
1: तुम यहाँ कैसे आ गए?
4: जैसे आप आ गए ईशा जी,
1: जासूसी कर रही थी.
4: बाप रे बाप, मरना है क्या आईपीएस बीवी की जासूसी करके? मैं तो यहाँ ये लेने आया था. ईशा जी आप मुझे बताइए या ना बताइए, आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ अगर बंटी से आप मिलेंगे ना तो एक खींच के रख देना मेरी तरफ से.
1: क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो?
4: अरे पता नहीं आजकल कहाँ खोया रहता है, जब फोन करो तो स्विच ऑफ पता था. दरअसल बात ये है ना ईशा जी कि आपने मुझसे मेरे दोस्त को चुरा लिया. अरे हमेशा आपके ही गुण गाते रहता है, आपके ही सुनता है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है उसे. चलिए ईशा जी आप जल्दी से नीचे आ जाइए, गोभी के पराठे और पुदीने की चटनी खिलवाता हूँ आपको.
1: सूरज को पता चल गया कि काव्या बंटी की वजह से परेशान है तो बंटी की क्लास लगा देगा. सबसे पहले मुझे बंटी से मिलकर पता लगाना पड़ेगा कि बात क्या है.
2: जैसा कि आप सबको बॉन्ड बहुत पसंद है देवर और भाभी का, तो उसमें ये होता है कि काव्या का फोन आता है ईशा को कि कुछ तो है गड़बड़, बंटी अलग अलग सा बिहेव कर रहा है. तो ईशा ऑफ कोर्स जाती है, मतलब बात करने की कोशिश करती है बंटी से, बंटी को कॉल कर रही है, बंटी का फोन बंद आ रहा है, बार बार बंद आ रहा है. तो बंटी का एक मैसेज ड्रॉप होता है कि हाँ भाभी मुझे कॉल करिए, तो मैं इसलिए ऊपर जाती हूँ एंड बंटी से बात करती हूँ कि कहाँ पर हो, क्या हुआ, तुम कुछ फोन बंद करके बैठे हो, ये सारी चीजें. क्योंकि ईशा को पता चल चुका है कि बंटी शराब और ये सारी चीजों में एंड पता नहीं अलग सा बिहेव कर रहा है, काव्या वहां परेशान है. तो ईशा बंटी को कहती है कि कल सुबह मुझे मिलना 10 बजे घर के पीछे. अब क्या बात है वो तो मिलके ही पता चलेगा बंटी से, बट कुछ तो बहुत मेजर गड़बड़ चल रही है एंड इसलिए कहीं ना कहीं रिया को भी डर है कि बंटी ने कुछ हमारे बारे में तो नहीं बता दिया. तो ये आई गेस ये क्या पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट ही होगा कुछ तो। एंड तभी सूरज भी आ जाता है, तो ईशा वो थोड़ा सा वो डर जाती है कि इसने सुन तो नहीं लिया, बिकॉज ऐसा छुपाने वाली बात तो नहीं, बट अगर सुन लेगा सूरज तो वो डायरेक्टली बंटी की क्लास लगा देगा कि तू काव्या को परेशान कर रहा है, वो सूरज कुछ सुनेगा नहीं अपने एंगर में। तो इसलिए ईशा भी बताना नहीं चाहती सूरज को, एंड सूरज भी ज़्यादा प्रोवोक करके पूछता नहीं है कि ईशा जी बताइए, कहते ठीक है आप लोग अपना देख लीजिए, आपने तो वैसे भी मेरे दोस्त को अपने साइड ही खींच लिया है एंड समथिंग, वो जीजा साला की बात करता है। तो ईशा भी कहती है अब जीजा को साला कहोगे तो ऐसा ही होगा ना, तो वो नखरे ही करेगा।
3: खैर यहाँ रिश्तों की उलझने तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ईशा और सूरज का मिशन भी जारी है ऋषि और कृति को सुधारने का। तभी तो आज वो ऋषि के लिए लेकर आए हैं ये नया टास्क।
5: इससे अच्छा तो वो जेल जाने का ही ऑप्शन चूज कर लेता, कम से कम वहाँ ऐसी जेलर तो नहीं होती

0: अब अच्छे से फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आराम से इस लैपटॉप पे एक मूवी देखूंगा। वैसे भी इन लोगों ने बहुत जुल्म करके रखे हुए हम लोग पर।
1: आकाश भैया ने की जितनी बैंड बजाए ना उतना कम है।
2: तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया।
3: जब से अबनी ने इसे पहना है तब से मेरा इसे पहनने का मन है। ऋषि से तुम
0: मैं क्या करूंगा?
4: कृतिका, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उसने मेहका का तमाशा बनाया था सड़क पे, उसे डांस करवाया था, तो ईशा को और सूरज को ये चीज पता चली, तो ईशा तब तक उनके साथ थी पहले, बट जब सारी चीजें पता चली तो ईशा ने दो ऑप्शन दिए, या तो जेल जाओ या घर में रहो, बट मैं जेल से बहुत बुरी सजा घर में दूंगी। तो ईशा ये सारी सजा का पार्ट है, उन्हें खाना बनाना है, अगर खाना खाना है तो सबसे पहले उठ के पूजा करनी होगी, उन्हें नहाना पड़ेगा जो वो नहाते नहीं है, ऐसी सारी चीजें। तो ये खाना बनाने, तो सूरज इसलिए एप्रन लाता है कि ये पहनो तुम। फिर ईशा भी कहती है कि अवनी, जब से अवनी ने पहना है मुझे पहनने का मन नहीं होता, तुम ही पहनो। अब इसके पीछे भी ईशा सूरज का एक लुक एक्सचेंज होता है कि अब कुछ और प्लान है, इन्हें और सताएंगे।
5: ऐसे में अब ईशा सूरज के रिश्तों में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे और कहानी में क्या क्या बदलाव, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: रियलिटी शो टेम्पटेशन आईलैंड और फिल्म जीना दिल से फेम एक्ट्रेस रूमा शर्मा ने हाल ही में करवाया अपना ब्राइडल फोटोशूट। तो चलिए हम शामिल हो जाते हैं रूमा के इस ब्राइडल फोटोशूट में और देखते हैं उनका ये दुल्हन वाला अवतार।
7: आँखों में तेरी अजब सी अदाएं।
8: मिली है रूमा शर्मा से जो बन गई है राजस्थान की रानी।
7: ओ आँखों में तेरी अजब
8: भाई, क्योंकि ये करा रहे हैं रॉयल फोटोशूट
7: है।
8: फिर चाहे वो इनका पेस्टल लहंगा हो
7: पतंग सांसे ये तेरी वो,
8: या फिर लाल सुर्ख लहंगा।
7: आँखों में तेरी अजब सी अदाएं।
8: दोनों ही लुक्स में रूमा का रॉयल लुक दिखाई दे रहा है।
7: हो
8: जयपुर की इस खूबसूरत लोकेशन में रूमा शर्मा करा रही है अपना फोटोशूट और इनका मेकअप और हेयर किया है ग्वालियर के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट उसामा खान ने। उसामा और उनकी टीम लगी हुई है रूमा को रानी वाला लुक देने के लिए। आज उन्होंने दो अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने हैं और वो अलग अलग तरीके से इस फोटोशूट को शूट कर रही है जयपुर राजस्थान में, जिसका थीम है रॉयल्टी। भाई इसके लिए इस खूबसूरत पैलेस में रूमा रानी बनकर रेडी है। तो सीधा चलते हैं जयपुर के इस खूबसूरत पैलेस में जहाँ रूमा आ चुकी है रानी बनने के लिए। भाई सबसे पहले शुरुआत हुई हेयर मेकअप के साथ, रूमा का मेकअप और हेयर कर रही है उसामा खान और उनकी टीम। और फाइनली मेकअप और हेयर के बाद रूमा रेडी है शूट के लिए।

0: सवार।
1: हेलो एवरीवन, मैं हूं रूमा शर्मा, एक्टर, मॉडल एंड कंटेंट क्रिएटर। ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है और बचपन से शादी करने का शौक मुझे है, था, ऐसा डायलॉग में बोल सकती हूँ, बट हाँ, ये जो लुक आप देख रहे हैं, आज का हमारा लुक है जो हमने क्रिएट किया है, मैंने और मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने, एंड बहुत सुंदर लुक निकला है।
2: रूमा का लुक तो सेट है, लेकिन फाइनल टचेस देने जरूरी हैं, इसलिए उसामा खान उनको शूट से पहले फाइनल टचेस दे रहे हैं, फिर चाहे उनकी चुंदरी संभालनी हो, मेकअप के टचेस हो या हेयर के टचेस।
1: सो ही हैज क्रिएटेड दिस अमेजिंग लुक, स्पेशली ग्वालियर से ट्रैवल करके आए, सुबह 4 बजे निकले एंड यहाँ पहुंचे और उन्होंने बहुत सुंदर लुक बनाया। एज यू कैन सी, उसामा, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, ये लुक आपने कैसे क्रिएट किया, प्लीज हमारे सबको ऑडियंस को बताइए।
3: सो हमने ये लुक बहुत जल्दी चीज़ें अरेंज की हैं इस लुक के लिए, क्योंकि हमारा शूट बहुत वेरी अर्ली हम लोगों ने प्लान किया था। सो ये आउटफिट हमारा जो आया है वो आया है कमल भाई साड़ी वाले के यहाँ से, और ज्वेलरी हमारी है वो जो मेरा फेवरेट है जेजे इंटरनेशनल, वहाँ से जो आई है, और सारा जो मेकअप है हम लोगों ने सेटल मेकअप रखा है, लिप्स को सेटल डाउन रखे हैं,
1: इट्स अ पिंक मामी लुक,
3: आई मेकअप पे थोड़ा सा विंग लाइनर का टच दिया है, देन व्हाइट काजल के साथ और बहुत सेटल ग्लिटर के साथ हम लोगों ने आई मेकअप को कंप्लीट किया है, प्रॉपर आई क्लीन के साथ, देन ओपन हेयर, जो हेरिटेज आपने देखा होगा काफी ब्राइड्स को के वो ओपन हेयर ले रही है आजकल, तो उस टाइप का हम लोगों ने लुक क्रिएट किया है और रूमा बताएंगी आपको।
1: सो ये मैं पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत अनप्लान और बहुत जल्दी में शूट हुआ हम लोगों के लिए ये स्केड्यूल किया, बिकॉज मैं पुष्कर में आई थी एंड मुझे ये था कि मैं कुछ प्लान करूँ इस तरह से, मेरे माइंड में बहुत टाइम से था कि मैं कुछ इस तरह का यू नो राजस्थान का रॉयल लुक दिखाऊँ, लोकेशन इतनी सुंदर थी, मैं आपको अभी शूट पे दिखाती हूँ। एंड उसामा को मैंने कॉल किया, आउटफिट हमारे पास सिर्फ एक दिन में पहुंची है, वो भी दिल्ली से ट्रैवल करके, सो आई एम रियली थैंकफुल आप आए इतनी शॉर्ट नोटिस में, आपने इतना ब्यूटीफुल लुक यू नो क्रिएट किया, एंड ऑफकोर्स राजस्थान में थे तो राजस्थान के लिए हमें रॉयल लुक क्रिएट करना था, तो आज के लुक का जो थीम मैंने डिसाइड किया था वो था ये पिंक बार्बी लुक, जो इन्होंने एकदम बहुत सुंदर बनाया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ शूट पे, एंड गर्मी बहुत हो रही है तो प्लीज़ आप हाइड्रेटेड रहना और मुझे मोटिवेट करते रहना कि मैं अच्छे अच्छे फोटोज और वीडियोस लूं। लेट्स गो।
2: तो रूमा रेडी है और पूरी टीम भी रेडी है, और देखिए शुरू हुआ रूमा का फोटोशूट। इस खूबसूरत पैलेस में रूमा ने अलग अलग रॉयल अंदाज में अपने लुक्स दिए।

0: मेरा आज का साथी जो कि हाथी नहीं है, घोड़ा है एंड लुकिंग परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल विद मी। सो इसका नाम पायल है और ये बहुत देर से, ये देखो मुझे प्यार भी कर रही है और मेरे लहंगे को भी कॉन्स्टेंटली देखे जा रही है। आई थिंक इसे लहंगा काफ़ी पसंद आया है एंड बहुत कॉपरेट किया इसने। कॉपरेट के नाम मेरे को पीछे चली गई हूँ। क्वीन की क्वालिटी कैसे कर सकता है। आई रियली हेट जो यात्रा पे जाते हैं भगवान की और वो एनिमल्स पे ऐसे चढ़ते हैं और उनको इतना नुकसान पहुँचाते हैं। आई मीन लुक एट देम, देयर सो ब्यूटीफुल एंड देयर सो लवेबल। हम ये सिर्फ हमसे प्यार चाहते हैं, सी। तो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी ये शो देख रहे हैं, प्लीज़ आप जब भी यात्रा पे जाए भगवान की, चाहे अमरनाथ, केदारनाथ या और भी किसी यात्रा पे, प्लीज़ आप घोड़े खच्चे पे नहीं चढ़े। उनको बहुत तकलीफ होती है एंड ऑल दे नीड इज जस्ट लव।
1: इसके बाद रूमा ने इस लुक में अपना वीडियो शूट किया, यानी कुछ रील्स बनाई।

0: और उसामा खान उनकी टीम दे रही थी उनके मेकअप हेयर को फाइनल टचेस।
1: उतना इजी है नहीं, मतलब हम, मैं सुबह 6 बजे उठी, हम पारी पूरी टीम सुबह 6 बजे उठे हैं, वी हैव स्टार्टेड आवर शो अराउंड 10 o'clock बिकॉज मेकअप हेयर एवरीथिंग। लकली सन बहुत हार्श था सुबह, पर भगवान जी को लगा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठे और ऐसा इतना प्रिटी लुक बनाया था, सन नहीं है अब थोड़ा सा।
0: फाइनली स्पीच पिंक लुक में रूमा का लुक नंबर 1 का शूट हुआ कम्प्लीट।

अब बारी है नेक लुक के लिए। इसमें ज्वेलरी भी बदल गई, थोड़ा मेकअप और हेयर भी बदल गया, क्योंकि अब रूमा ने पहननी है लाल सुर्ख ड्रेस। इस बार उन्होंने चोटी बनाई है जिस पर फूल लगे हैं और नाक में नथ पहनी है, ताकि उनका लुक पूरा राजस्थानी है। और रूमा ने कुछ इस अंदाज में इस रेड लुक को पूरा

0: सीरियल तू ही रे दिल में मेन आया है एक बड़ा मोड़, जहां फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद कई मजदूर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और पुलिस ने संजय को हिरासत में ले लिया है। जहां एक तरफ नाराज मजदूर धरने पर बैठ गए हैं, वहीं स्वाति और वृंदा उन्हें समझाने में जुटी हैं। अब देखना है कि कैसे स्वाति और वृंदा संजय को बेकसूर साबित कर जेल से बाहर निकालती हैं।
1: ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह सबसे घटिया मशीनरी और सस्ते मशीन से।
2: अरे बात सुन ब्रो, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
3: तू मुझे भागने को कह रहा है? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ही हूँ संजय पटेल।
4: आपके फैक्ट्री में घटिया मशीनरी पार्ट्स लगे हुए थे,
3: वो पार्ट्स हमने कभी ऑर्डर ही नहीं।
1: अब जो भी बात होगी पुलिस स्टेशन में होगी।
5: सर एक बार बात तो कर लीजिए।
6: वृंदा को पड़ा थप्पड़। मजदूरों का आंदोलन। मुश्किल में फंसा संजय। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट, जहां संजय को पुलिस उठाकर ले गई है। असल में फैक्ट्री में हो गया था हादसा, जिसका इल्जाम मालिक संजय पर ही आ गया है। ऐसे में संजय अब पुलिस स्टेशन में है और यहां मजदूर कर रहे हैं आंदोलन कि संजय को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फैक्ट्री की मशीनों पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसे में सभी लोग आंदोलन करने में लगे हुए हैं और वहां परेशान हो रहे हैं स्वाति और वृंदा, क्योंकि ये आंदोलन संजय के खिलाफ जा सकता है, जिस वजह से संजय को बेल नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इन मजदूरों को समझाने के लिए आगे आती है वृंदा, जो अपनी ही कहानी सुनाती है। बताती है कि वो भी गाँव से आई है, एक गरीब है जिसे स्वाति और उसके परिवार ने सहारा दिया है। लेकिन यहाँ पर ये महिला सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसका पति अस्पताल में जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में गुस्से में आकर वो महिला वृंदा को थप्पड़ भी जड़ देती है और चुपचाप वृंदा थप्पड़ खा भी लेती है।
5: वो इंसानियत ना, सिर्फ इंसानियत थी जो इनके अंदर थी, जो मुझे अस्पताल लेके गई, मेरा इलाज किया, वो भी मुफ्त में, सिर्फ इलाज नहीं, जब निकल के लेके मेरे पास लेने का कोई ठिकाना नहीं, मुझे अपनी बहन का दर्जा दिया, अब इनकी गिरी बात गांव में लड़की का जीवन बचा।
6: वहीं दूसरी तरफ स्वाति की माँ माधवी स्वाति को बताती है कि अगर संजय को बेल दिलवानी है तो उन्हें मजदूरों को यहाँ लेकर आना होगा, आंदोलन रुकवाना होगा, तभी संजय जेल से बाहर आ सकता है।
7: तरीका तो है स्वाति, लेकिन मुश्किल है। अगर वर्कर्स अपनी कंप्लेंट वापस ले लें और एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दें कि उन्हें संजय पे पूरा भरोसा और ये जो भी कुछ हुआ उसमें संजय की कोई गलती नहीं है, सिर्फ तब कुछ हो सकता है।
6: ऐसे में देखिए स्वाति वर्कर्स को लेकर जेल पहुंच जाती है, यानी कि अब संजय जेल से बाहर आ सकता है। अब देखना होगा कि कैसे स्वाति और वृंदा मिलकर संजय को बचाते हैं और निर्दोष साबित करते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: रुक करते हैं मनोरंजन की उस रंगीन दुनिया का, जहां से हम खास आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ रॉकिंग और कुछ शॉकिंग खबरें। ये मसालादार खबरें यकीनन आपके चेहरे पर भी ले आएंगी एक हल्की सी मुस्कान। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की रॉकिंग न्यूज़।

पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं पति पत्नी यानी कि दीपिका और उनके हस्बैंड रोहित की, जहां पति पत्नी और पंगा के सेट पर मनाया गया रोहित राज गोयल का बर्थडे। देख लीजिए सेलिब्रेशन के ये वीडियोज़।

0: चीजें जो पति पत्नी को सिर्फ खुश रखने के लिए दिल में पत्थर रख के करते हो।
1: सासू माँ को
2: साथ ही साथ नजर डाल लीजिए पति पत्नी और पंगा के इस खास प्रोमो पर, जहाँ पर शुरू हो गई है मस्ती अनलिमिटेड।
3: गिराओ
0: दरिंदा दामाद।
2: 10 अलग अंदाज में इशिता दत्ता और मृणाल कर रहे हैं प्रमोट दृश्यम द कंक्लूजन को। देखिए कैसे वो स्ट्रीट्स पर पाव भाजी एंजॉय करते नजर आए।

0: अगर किसी को रोते हुए हमने देख ही लिया वो आपको कैसे क्रिंज लग सकता है?
1: गुल्लू के साथ जो जबरदस्ती का बेबी
2: बॉस का नया झगड़ा देख लीजिए, जहाँ पर उदिति और लव में शुरू हो गई है नई लड़ाई।
0: फील हो रहा है आपकी स्पाइन दिखती नहीं है।
3: हम शो पर क्या करने आए हैं?
1: ये ड्रामा करने आए हो? फेक पर्सनालिटी दिखाने आए हो?
3: पर्सनालिटी हमारी आपको जलप होने में महीना लगता है, मुझे नहीं लगता।
1: यू नीड टू लर्न अ लॉट इन लाइफ।
3: लेट्स सी कौन रियल है कौन नहीं है।
1: बेवकूफ लड़की।
4: मिस संधू, क्या आप नवाब से डिवोर्स चाहती हैं?
2: नजर डाल लीजिए टू जूलियट जर्दी के आने वाले नए ट्विस्ट पर, जहां पर तलाक के बीच खुद को एक और मौका देंगे हीर और नवाब।
4: शादी को एक चांस और दें।
5: कोई दुख कोई डर, तुम अकेले नहीं सोओगी हीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ।

ऋतिक रोशन और सबा के रिलेशन को 5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने शेयर की हैं ये तस्वीरें। साथ ही साथ ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन ने भी ये पोस्ट डाला है।

इशरत बरूच के फ्रेंड्स के लिए है शॉकिंग न्यूज। बाली में वो शूटिंग कर रही थी और इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज है। उन्हें कुछ इंजरी हुई है लेकिन वो ठीक है।

0: ट्विस्ट और टर्न से भरी होती है टीवी सीरियल्स की दुनिया, जहां हर मोड पर एक नया ड्रामा दर्शकों को हैरान करता है। किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना काफी मजेदार होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल्स की इस दिलचस्प दुनिया में।
1: अनुपमा

टॉपलेस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा की जिंदगी की नई सुबह हो गई है और सुबह होते ही अनुपमा के चेहरे की रौनक और बढ़ गई है क्योंकि आज अनुपमा का नहीं बल्कि मां डे है और ये डे सेलिब्रेट करने का फैसला लिया है उसके बच्चों ने और यही बात सोच कर अनुपमा बेहद खुश नजर आ रही है। इतना ही नहीं उसने तो अपने हाथों से गाना भी चला दिया है और गाना बजा है अनुज के पसंद का। ऐसे में देखिए कैसे वो अनुज की यादों में खो जाती है।

0: भाई बाबूजी के आने से अनुपमा के इन रोमांटिक पलों पर ब्रेक तो लग जाता है, लेकिन अनुपमा की खुशी देखकर बाबूजी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि कई अरसे बाद अनुपमा के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान जो आई है। खैर, अनुपमा तैयारी तो कर रही है मांडे की, पर उसे ये नहीं पता कि मांडे के पीछे उससे भी बड़ी चाल चल रहा है अनुपमा को नीचे गिराने की। हालांकि आरवी धीरे धीरे सभी से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अनुपमा की कमजोरी है क्या। ऐसे में आज वो प्रेम से जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेम वो तो अपनी सासुमा के गुण गा रहा है, जिससे कहीं न कहीं आरवी को चिड़ भी मच रही है।
1: और अब मम्मी को ही देख लीजिए, उन्होंने लव यू जिंदगी कैफे में कुछ बनावटी नहीं किया। घर का खाना, माँ के हाथ का स्वाद और वही वॉर्म्थ जो उनमें हमेशा से है। वो अपने कस्टमर्स से भी वैसे ही बात करती है जैसे कि हमसे, उतने ही प्यार से। उनका कैफे सिंपल है, आई थिंक इसीलिए हिट है। लेकिन अब आपके साथ मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि अनुज कैफे का बिजनेस भी बढ़ेगा।
2: तुम देना साथ मेरा।
3: कुछ ऐसी लड़की का शुद्धिकरण नहीं किया जाता मौसी, उसकी पूजा की जाती है।
0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में आज अपराजिता के ससुराल में बवाल मच गया है। भाई सत्यनारायण की पूजा होनी थी, लेकिन सत्यनारायण की पूजा के बहाने अपराजिता की शुद्धिकरण की पूजा हो रही थी, और यही बात अपराजिता और रक्षित दोनों को पता चल गई, जिस बात पर रक्षित अपनी माँ पर नाराज हो रहा है। ऐसे में अपने बच्चे की नाराजगी देखते हुए सुधा ने अपराजिता को ही ताने कसने शुरू कर दिए।
4: किसी को नहीं छोड़ा तुमने, ना मेरे बेटे को, ना मेरे पति को, ना मेरे पूरे परिवार को, सबको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया तूने। मैंने तेरे बारे में जो सोचा था ना, वो उससे तो बहुत ज्यादा शातिर निकली तुम। दो कौड़ी की औकात रखने वाली लड़की, नीच गिरी हुई लड़की, आज तूने बहुत ही घटिया हरकत की है। घर पर तेरी परछाई पड़ती है ना, उस घर की सुख शांति सब पर अंधेरा छा जाता है। ग्रहण लगाया है तूने मेरे घर की खुशियों पर, छीन लिया इस घर की हंसी तूने। लेकिन ये तो तेरे लिए बहुत ही मामूली सी बात है ना, यही तो करना जानती है तू। पहली शादी में भी इसने यही किया था।
3: मौसी, प्लीज।
4: नहीं रक्षित, तुम्हें सुनना होगा। अपनी पहली शादी में भी ग्रहण लगाकर पूरे परिवार को जला दिया था इसने।
0: भाई सुधा तो एक के बाद एक कड़वी बातें अपराजिता को सुना रही है, और अपराजिता चुपचाप खड़ी सारी बातें सुन रही है और उसके आंसू बह रहे हैं। लेकिन रक्षित अपनी माँ को अल्टीमेटम देता है। हालांकि रक्षित की माँ यानी कि सुधा रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसे में अपराजिता अपने दिल पर पत्थर रखते हुए पहुँच जाती है अपनी सासू माँ के सामने, और देखिए कैसे वो उन्हीं से ही सवाल करने लगती है, जिस सवाल के चलते घर में बड़ा बखेड़ा शुरू होने वाला है।
5: एक बार सोचिए, आपकी बेटी होती है वो एक ऐसे रिश्ते में होती है जहाँ हर रोज उस पे हाथ उठाया जाता, उसे बेइज्जत किया जाता, सताया जाता। आप उसे कहती उस रिश्ते में रहने के लिए, अगर वो हिम्मत करके वो रिश्ता तोड़ के आपके पास आती, अपनी माँ के आंचल के छांव में सर छुपाना चाहती, वो आंचल छीन लेती आप उससे, उसके मुंह पे अपने घर के, अपने दिल के दरवाजे बंद कर देती आप। अगर आपकी बेटी मेरी तरह अपनी शादी में तड़प रही होती, दम तोड़ रही होती, रो रही होती, उसे कहती आप रिश्ता निभाने के लिए, या उसे उस रिश्ते में मरने के लिए अकेला छोड़ देती, उसे देती ये सारे ताने आप, कि एक आदमी का साथ छोड़ के दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लिया, कि वो चलती फिरती बन होती कि आपकी बेटी ने किसी और के घर को निकल लिया।
4: बदतमीज
0: जी। भाई अपराजिता के इस कदम ने सुधा को हिला दिया है। कुछ भी कह लो, अब अपराजिता अपराजिता नहीं बल्कि अपराजिता 2.0 है। खैर, अपराजिता ही नहीं बल्कि अब रक्षित भी अपराजिता के साथ घर छोड़कर जाने का फैसला लेगा।
5: के हाथ की मार नहीं खाऊंगी, मुझे पता है मैं आपकी बीवी हूँ, इस घर की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपराजिता हूँ, मुझे अपराजिता के लिए लड़ना होगा।
3: जिस घर में मेरी अप्पू की इज्जत नहीं, वो मेरा घर है। मैं और अप्पू ये घर छोड़कर जा रहे हैं।
6: ये फितूर तेरा
0: एक्ट्रेस के सीरियल ये फितूर तेरा में रिदान और सौम्या का रोका है। ऐसे में आज सौम्या सच सवर रही है और जीत उसका दिल भी सौम्या के लिए धड़कने लगा है। हालांकि वो इस बात से अनजान है, वो तो उल्टा सौम्या की मदद कर रहा है और उसके लिए बिंदिया लेकर आया है। और सौम्या देखिए कैसे बड़े ही प्यार से बिंदी लगाती है और पर्दे के झरोके से ही जीत का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे में जीत भी वहाँ से जाने लगता है कि तभी उड़ते हुए पर्दों से उसकी नजर पड़ जाती है सौम्या के ऊपर और वो पहली बार सौम्या को इस तरह सजा सवरा देखता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है।
6: सीरियल आरंभी में आया है एक जबरदस्त ट्विस्ट, जहां आरंभी पर लग चुका है सनी के मर्डर का संगीन इल्जाम और वो पहुंच चुकी है सलाखों के पीछे। सिर्फ इतना ही नहीं, मनमीत ने भी उसके खिलाफ झूठी गवाही दे दी है। अब ऐसे में खुद को बेकसूर कैसे साबित करेगी आरंभी, चलिए देखते हैं।
0: आरंभी पर लगा इल्जाम,
7: मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होगा, सनी को धक्का मारा।
0: मनमीत की झूठी गवाही, सलाखों के पीछे पहुंची आरंभी।

0: कामयाब हुई डॉक्टर विश्वास की चाल। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी पर लग गया है सनी को मारने का इल्जाम। ऐसे में वो पहुंच गई है सलाखों के पीछे और रो रो कर हो रहा है उसका बुरा हाल। इसी बीच वहां पर पहुंच जाते हैं आरंभी के पापा भी, जिन्हें देखकर आरंभी बार बार अपनी बेगुनाही बता रही है।
1: तू ये सब मुझे क्यों बता रही बेटा? मुझे पता है कि तू ये पाप नहीं कर सकती, पर लेकिन बच्चा को पुलिस वाले वो कह रहे हैं कि वीडियो में तू ही दिखाई दे रहे हो सनी को, बता दे।
2: मुझे मुझे कोई फसा है, मैं क्यों मानूंगी सनी को? मेरा उसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो ढंग से छाते नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया।
1: तुझे कोई कुछ अंदाजा है कि कौन तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है?
2: मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विश्वास किसी लॉयर से बात कर रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं, वो लोगों से आ ही जाओगे।
0: आरंभी भले ही विश्वास पर विश्वास जता रही है, लेकिन ये सारा खेल तो विश्वास का ही है। खैर,

पर एक पल के लिए आरंभ ही को इस बात का विश्वास है कि आज वो बेगुनाह साबित हो जाएगी क्योंकि मनमीत उसका साथ देगी। ऐसे में वो मनमीत के सामने गुजारिश करती है कि इंस्पेक्टर के सामने सारा सच बता दे, लेकिन इंस्पेक्टर आरंभी पर ही नाराज होने लगता है क्योंकि मनमीत ने तो अपनी गवाही बदल दी है। ऐसे में इंस्पेक्टर सबके सामने फिर से मनमीत को उस गवाही को दोहराने के लिए कहता है। बस फिर क्या, मनमीत बताने लगती है और आरंभी चुपचाप खड़ी होकर सुनती है और सुनते के साथ ही हैरान रह जाती है।

0: You are. You can face that. दूसरों की लाइफ में तक कभी नहीं काट पाएंगे। देखो क्या नतीजा होगा।
1: भाई जिस प्यार से डॉक्टर विश्वास ने पासा पलटा है उससे किसी को शक भी नहीं होगा कि सनी का असली कातिल कोई और है। असल में सनी राज के हाथों मारा गया है और ये बात सिर्फ और सिर्फ विश्वास को पता है और राज को बचाने के लिए मनमीत ने झूठी गवाही दी है और ये सच ना ही आरंभी जानती है और ना ही ध्रुव। ऐसे में विश्वास मौके का फायदा उठाकर आरंभी को ही खरी खोटी सुनाने लगता है। इतना ही नहीं आरंभी तो वकील के आगे हाथ जोड़ने लगती है, गुजारिश करती है कि सच का पता लगाए और उसे जेल से छुड़वाए। ऐसे में आरंभी को भरोसा जताने के लिए विश्वास नौटंकी करना शुरू कर देता है।
0: ये वीडियो सुनता है? मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे वो क्यों फंसाएगी तुम्हें?

0: कोई रास्ता कोई तरीका है आरबी को बाहर निकालने का?
1: शोर जी, फिलहाल तो सारे सबूत और बयानात आरबी जी के खिलाफ है। बहुत ही कमजोर केस है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें आपकी कुछ
0: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: समझ नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करो ना डॉक्टर विश्वास। बीवी की बातों पर भरोसा नहीं।
3: अरे वो क्या भरोसा करेगा, उसी ने तो सारा खेल रचा है। खैर, मिलने का समय हो गया है, ऐसे में आरंभी को वापस सलाखों के पीछे जाना है। लेकिन आरंभी अब भी गिड़गिड़ा रही है, अपने बच्चे की कसम खा रही है। लेकिन विश्वास वहाँ पर भी सभी के सामने आरंभी को अल्टीमेटम देता है। भाई विश्वास ने तो मुंह फेर लिया, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा हट गया है ऐसा उसे लगता है। और आरंभी वो सलाखों के पीछे पहुंच गई है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा है। इतना ही नहीं, वो तो ऊपर वाले से गुजारिश भी कर रही है कि वो अपनी महिमा ऐसी दिखाए कि सच सभी के सामने आ जाए। अब देखना होगा क्या ऊपर वाला आरंभी की पुकार सुनेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा की जिंदगी में आई बड़ी राहत, जहां आखिरकार उन्हें पता चल गया कि उनकी लाडली बेटी मायरा कबीर के साथ कहां है। इस मुश्किल घड़ी में अरमान बने हैं अभीरा की हिम्मत। अब ऐसे में दोनों कैसे मायरा को मनाने की कोशिश करते हैं, देखना दिलचस्प होगा।
3: बेटी के लिए तड़प रही है अभीरा। अभीरा को संभालती हुई दादी सा

स्टारप्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। भाई मायरा भाग गई है, अब ऐसे में बेटी के भागने पर एक माँ का क्या हाल होगा। वही हाल अभीरा का हो रहा है और दादी सा अभीरा को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभीरा उसे अपनी बेटी की याद तो आ ही रही है लेकिन साथ ही साथ उसे आ रहा है गुस्सा भी। तभी तो देखिए कैसे दादी सा के सामने वो न सिर्फ आंसू बहा रही है बल्कि अपना गुस्सा भी दिखा रही है।

0: 12 साल की थी, आप भी, अरमान भी, क्या हम सपने में भी अपने घर वालों को इस तरह से टॉर्चर करने का सोच सकते थे? गलती उम्र की नहीं, गलती मायरा की है। सॉरी दादी साहब, मैं बार बार आपकी बात काट रही हूँ, पर बगावत मैं समझती हूँ, लेकिन बार बार घर से भाग जाना एंड ऑल दैट, ये क्या ड्रामा है दादी साहब? नहीं, आप मुझे बताइए कि हमने मंकी के सामने ऐसी कौन सी अनरीजनेबल सी डिमांड रख दी? हमने बस उसे यही तो बोला कि ये प्यार शादी से पहले करियर बना ले। बच्चे ना कभी पेरेंट्स से खुश रह ही नहीं पाते।
1: अगर ये पुरानी दादी सा होती ना तो बात ही कुछ और कहां से कहां पहुंच जाती। अब क्या है, माँ बाप इतने परेशान हैं तो उनको देख के दादी साहब भी है तो सही, वो गुस्सा, और गुस्सा नहीं एक हर्ट है, एक ऐसे लग रहा है कि घर की बेटी बार की तो लोग क्या कहेंगे, एक वो हर्ट है, एक वो फीलिंग है, दुख हो रहा है कि वो लड़की समझ क्यों नहीं रही, माँ बाप उससे इतना प्यार करते थे, ऑन द कंट्री दे वर सो ओपन विथ हर, दे वर लाइक फ्रेंड्स विथ हर, और उसी ने इनका दुख, इनका इनके दिल को दुखाया है। एंड दादी साहब ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू अभीरा अरमान, बट वो नहीं मान रहे, वो यही बोल रहे हैं कि हमने इतना कुछ, वो हमें कहती है और हम उसे समझा रहे हैं, यू मैरी बट यू मैरी एट अ राइट एज, लेकिन उसे फुतूर है शादी का जो इस उम्र में होता है। माँ बाप भी विलन लगते हैं, दादा दादी नाना नानी वो भी विलन लगते हैं, किसी की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। एंड सेम थिंग इज हैपेंड विद हमारी लिटिल मायरा के साथ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे कोई सुध-बुध नहीं है सिवाय कबीर के। तो यहाँ पे दादी साहब को समझ नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे बच्चों पे भी वो असर हो रहा है, अरमान की तबीयत ठीक नहीं है, अभीरा का ध्यान नहीं है, वो दुखी है, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिचुएशन विच इज़ वेरी अपसेटिंग।
2: भाई दादी साहब बखूबी समझती हैं, तभी तो देखिए कैसे वो अभीरा की ढाल बनकर उसका साथ दे रही हैं, उसे समझाने बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, इस वक्त अभीरा को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, इसीलिए वो अभीरा के साथ ही है। लेकिन अभीरा वो अपने दिल का गुबार दादी साहब के सामने निकाल रही है, और ये बात भी दादी साहब बखूबी समझ रही है।
1: का जो गम है वो गुस्सा हो चुका है, दुख भी है, गुस्सा भी है, वो करे क्या, उसको एक्चुअली उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसे गुस्सा है कि वो एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उसने लिखा है कि इस आपकी गलती है, और ऐसे माँ बाप तो उसे कभी मिलेंगे भी नहीं, बट जैसे मैंने कहा कि इस उम्र में ऐसा ही होता है। और फिर हम उसे ये भी समझाते हैं कि नहीं वो छोटी है, फिर वो कहती है कि नहीं वो छोटी है तो फिर क्या करें बताओ। तो हमें कहीं लगता है कि संस्कार जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, फैमिली के, कि कहीं ना कहीं जाके वो लड़की नहीं करेगी शादी थिंकिंग ऑफ हर पेरेंट्स के, उन पे क्या बीतेगी अगर मैंने भाग के शादी कर ली। चलो भागी है घर से एक रिटेलिएशन में।
2: भाई अभीरा का गुस्सा तो हद पार हो गया है, अब तो उसने तय कर लिया है कि मायरा खुद ही आएगी, वो अपनी बेटी मायरा को नहीं ढूंढेगी। वहीं दूसरी ओर अरमान सदमे में है, क्योंकि वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है, उसने तो अपना इलाज करवाना भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, वो तो इतना खामोश हो गया है कि उसकी खामोशी देखकर अभीरा बेचैन है और उससे बात करने की कोशिश कर रही है, उसे समझा रही है, माधव भी आकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट और मानव हीरा दोनों को पता चल जाता है उनकी बेटी मायरा कहाँ है। ऐसे में वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मायरा और कबीर दोनों भागकर पहुंच गए हैं मुंबई और ऐसे में कबीर के नए दोस्त भी बन गए हैं जिन्हें लेकर वो पहुंच गया है अपने घर में। और जैसे ही वो घर में आया मायरा ने उसकी हालत देखी और देखकर हैरान रह गई। इस बात पर कबीर ने उसे बताया कि उसे इंटर्नशिप मिल गई है। बस फिर क्या, मायरा की खुशी दुगनी होती है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। वो अपने दोस्तों को इशारे कर वहाँ से जाने को कहता है और फिर मायरा को सच बताता है कि वो इंटर्नशिप अनपेड है।
3: कांग्रेचुलेशंस कबीर,
4: पर वो अनपेड इंटर्नशिप है।
3: तुम ना या तो जल्दी से ठीक हो जाओ या फिर ये मार खाने वाली बातें मत किया करो।
4: पैसे तो नहीं मिलेंगे ना, लेकिन इस कंपनी में जॉब करने से मुझे एक्सपोजर
3: तो मिलेगा। कबीर, तुम मुझे क्यों सफाई दे रहे हो? I'm proud of you।
2: अपने साथी का हर कदम पर साथ देना, यही सिखाया है अभिरा ने। और कहीं न कहीं मायरा वो सीख लेकर आगे चल रही है, इसीलिए वो कबीर का साथ दे रही है। और इसी बात पर कबीर को मायरा बेहद पसंद है। खैर, दोनों अब इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि जब तक अनपेड इंटर्नशिप होगी तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा। और इसी टेंशन में मायरा अपने नाखून चबाने लगती है।
4: ओ, हेलो, तुम मिस गैलरी में, मिस चुनिया उतरने की आदत कहाँ से आ गई?
3: ओ, मैं ठीक हूँ।
4: मैंने तुमसे पूछा तुम कैसी हो।
2: भाई, जिस तरह से कबीर मायरा का साथ दे रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि भाई मायरा और कबीर दोनों का प्यार सच्चा है। और इस प्यार को अरमान अभिरा समझेंगे या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि कबीर दमानी परिवार का बेटा है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल वसुधा में आया है एक नया मोड़। वसुधा के ससुराल में फूल के लिए समर का रिश्ता आया है, लेकिन देव समर की असलियत जानता है और वो इस शादी के खिलाफ है। ऐसे में बिरजू और लाजवंती की नफरत के बीच देव और वसुधा कैसे लाएंगे समर का असली चेहरा और कैसे इस शादी को रोकेंगे, देखने के लिए चलते हैं सीरियल के सेट पर।
2: लौट आया समर, बढ़ा वसुधा का डर। देव ने दिया समर को अल्टीमेटम। जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज लाजवंती और बिरजू दोनों ही बहुत खुश हैं, क्योंकि आज उसके घर में फूल को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। ऐसे में समर के मम्मी पापा तो आ गए, लेकिन अब सभी इंतजार कर रहे हैं दूल्हे राजा के आने का। और देखिए कैसे स्वैग से हो रही है समर की वापसी। और तो और, समर के सच से अनजान लाजवंती अपने होने वाले दामाद की आरती उतारती है, उसका स्वागत करती है। लेकिन वसुधा और देव दोनों ही हैरान है समर की वापसी से। फिलहाल तो वसुधा ने देव को शांत रहने के लिए कहा है, क्योंकि ऑलरेडी लाजवंती और बिरजू देव से नफरत करते हैं और उन्हें लगेगा कि वो लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। ऐसे में वसुधा चुपचाप फूल को मिठाई की थाली पकड़ाती है और सभी के सामने लेकर जाती है। ऐसे में जैसे ही समर फूल को देखता है, देखिए कैसे फूल के मम्मी पापा के सामने अच्छा बनने का ढोंग रचता है।
3: जुड़ी देखकर
2: भाई लाजवंती ने तो तय कर लिया है कि वो फूल की शादी समर से ही करवाएगी। ऐसे में देखिए कैसे वो रिश्ता जोड़ देती है और अपने होने वाले दामाद को मिठाई खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन समर वो तो नई चाल लेकर आया है। ऐसे में वो मिठाई ले जाकर चंद्रिका को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रिका उसे सिर्फ घूर कर देख रही है और समर आंखों ही आंखों में टशन दिखा रहा है। यहाँ तक कि देव भी समर को टशन दिखा रहा है, लेकिन समर इस बात का फायदा उठा रहा है क्योंकि चंद्रिका और देव दोनों ही लाजवंती के सामने कुछ नहीं बोलेंगे।
6: देखो फॉर्मेलिटी छोड़िए, उमर सा नहीं बल्कि अपना बेटा बुलाइए मुझे, और आपका बेटा सबके सामने अपने पूरे होश और हवास में ऐलान करता है पसंदीदा जीवन साथी चल लिया। और वैसे भी मैं 10 दिनों में अमेरिका जाने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा था अगर तुमने मम्मी और एक हफ्ते में शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो।
2: अब जैसा समर ने कहा लाजवंती ने वैसा मान ही लिया है, यानी आने वाले दो दिन में जल्द से जल्द समर और फूल की शादी हो ही जाएगी। ऐसे में ये गुड न्यूज लेकर समर जाने लगता है कि देव जाकर समर को रोक लेता है। इतना ही नहीं, देव तो समर का कॉलर पकड़ उसको अल्टीमेटम भी देता है, लेकिन समर उसके इस अल्टीमेटम को टशन दिखाता है और दे देता है चुनौती कि ये शादी रोक सको तो रोक लो। देखना होगा कि अब वसुधा और देव कैसे समर का सच लाजवंती और बिरजू के सामने लाएंगे। वैसे इसी के साथ बता दे कि आगे चलकर कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा, वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी क्योंकि फूल मन ही मन देव से प्यार करने लगी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: ग्लैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको लिए चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।

शाम आने वाली फिल्म प्रेम कीटाणु की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें कई सारे सितारे नजर आए। वही खास मेहमान बनकर यहाँ पहुँचे सलमान खान, जो पहुँचे टीम को बधाइयाँ देने के लिए। इसी के साथ नजर आए कई और सितारे।

जाते हैं राइज एंड फॉल सीजन 2 की। भाई खबरों की माने इस सीजन में होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वाइल्ड कार्ड बनकर आएंगे जसवंत वो बन्ना। लेकिन अब तक कोई कन्फर्मेशन

0: जिस दिन आपने मिर्ची खिलाई थी मुझे सर, याद है आपको?
1: खतरों के खिलाड़ी का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर खतरों से खेलने के साथ साथ हर्ष ने शेयर किया एक इंसिडेंट भी।
0: मैंने कहा मम्मी मिर्ची मैंने तीखी खा ली बहुत आज। अरे कि रोहित सर ने कुछ नहीं बोला खाया, मैंने कहा उन्हीं ने खिलाई थी। तो कहती अच्छा, फिर वो समझ गई कि रोहित सर को तो कुछ कह नहीं सकते। तो कहती कि उनके जो फादर साहब थे आपके एमबी शेट्टी साहब, तो वो जब पिक्चरें देखनी मम्मी जवानी में जाती थी अपने हॉल वॉल में, तो कहती थी उनकी जब एंट्री होती थी ना, तो ना हम लोग बड़े एक्साइटेड होते थे कि विलन की एंट्री इतनी धमाकेदार हो रही है। तो उन्होंने बोला था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके बेटे के साथ मेरा बेटा खड़ा होगा। सर ये शो में उसी दिन जीत गया था।
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू।
1: जल्द आने वाला है अलायंस का सीजन 2, जो कि जनवरी 2027 में शुरू होगा, जिसके होस्ट होंगे कुणाल खेमू ही। आज के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: एशियाई खेलों में भारत का जलवा जारी, बॉक्सिंग में लवलीना के बाद परवीन ने जीता गोल्ड मेडल, भारत के खाते में कुल 73 पदक। झांसी में गूंजा मलखंब का डंका, 16 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, 3 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मित मछार से फोन पर की बातचीत, प्रधानमंत्री ने की साहस की तारीफ, घटना के बारे में ली उनसे जानकारी। जम्मू कश्मीर के चिनाब अंजी पुल पर रेलवे ने रचा नया रिकॉर्ड, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत, सफल हुआ स्पीड ट्रायल। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा नमन। गांधी जयंती पर जेन जी पहुंचे यमुना घाट, यमुना नदी में की साफ सफाई, देश के युवाओं को दिया स्वच्छता का संदेश। और चलिए इस वक्त की शानदार खबर आपको बता देते हैं, एशियाई खेलों से जुड़ी हुई ये खबर आपको सुनाते हैं। एशियन गेम्स की महिला 65 किलोग्राम बॉक्सिंग में भारत की परवीन ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला हुआ, फाइनल में उनका मुकाबला था चीनी ताइपे की चेन नियन चिन के साथ। परवीन हुडा ने चीनी ताइपे की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चेन नियन चिन को 3-2 से हराकर एशियन गेम्स में गोल्ड पदक अपने नाम कर लिया है। बॉक्सिंग में लवलीन के बाद परवीन हुडा ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स में आज भारत का जलवा लगातार जारी है। भारत ने आज 7 मेडल जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसी के साथ भारत के पास अब तक कुल मेडल की संख्या हो गई है 73, जिसमें गोल्ड मेडल हैं 13, सिल्वर मेडल हैं 25 और ब्रॉन्ज मेडल हैं 35। पदक तालिका में भारत पहुंच गया है 6 नंबर पर। उम्मीद यही है कि भारत इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा और एशियन गेम्स में भारत का ये जलवा लगातार कायम है। आज भारत ने जीते हैं कुल 7 मेडल। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: एशियन गेम्स में आज भारत का गोल्डन डे, आज 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। बॉक्सिंग और तीरंदाजी में आई गोल्ड, लवलीना के बाद परवीन ने जीता सोना। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने किया कमाल, 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल देश के नाम किया। फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराया, एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बनी। आज है लवलीना का बर्थडे, 29 साल की लवलीना ने अपने जन्मदिन पर देश को दिया जीत का गोल्डन तोहफा। तीरंदाजी में आज भारत ने साधा गोल्ड पर निशाना, विमेन्स रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोट की तिकड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हरा कर इतिहास रचा, तीरंदाजी में भारत को मिला 4th गोल्ड। भारत के लिए तीरंदाजी में गोल्ड के बाद रजत पदक भी आया, रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में कुमकुम मोहोट और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने कमाल किया। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से पदक तालिका में 6 नंबर पर पहुंचा भारत, अब तक आए हैं 13 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज। भारत को आर्चरी के रिकर्व पुरुष टीम इवेंट के फाइनल में मिला सिल्वर मेडल, धीरज बोमा देवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे का कमाल। बॉक्सिंग के 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में परवीन हुडा ने जीता गोल्ड मेडल, चीनी ताइपे की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चेन नियन चिन को 3-2 से हराया। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को पहनाई गई फूल मालाएं, भारत माता की जय के लगे नारे। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाली अमनदीप का भी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, अपनी जीत को बताया देश की जीत। देश के लिए सोना और चांदी जीतने वाले खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने एक साथ दिया पोज, अपने अपने मेडल हाथ में लेकर जाहिर करते हुए नजर आए खुशी। खिलाड़ियों के स्वागत में किसी ने पहनाई फूल माला तो किसी ने पहनाई करेंसी नोट की माला, किसी ने खिलाड़ियों को कंधे पर उठाया तो किसी ने ली सेल्फी। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाई दुबई के जांबाज पायलट स्मिथ मछार से वीडियो कॉल पर बातचीत की। यूनाइटेड अरब अमीरात में मछार का चल रहा इलाज। कैप्टन स्मिथ ने घटना के दौरान अपने अनुभव और उन्हें हिम्मत देने वाली बातों के बारे में बताया। पीएम मोदी से कहा, मुझसे जो हो सकता था वो किया। घटना का जिक्र करते हुए स्मिथ मछार ने बताया कि उस वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उनके मन में यही चल रहा था कि वो सबको मरने नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में मछार ने कहा, वो भले ही देश से दूर हैं, अपनी संस्कृति से बिल्कुल नहीं। मछार ने बताया कि हमले के बीच में उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला। पीएम ने मछार की हिम्मत, उनकी सूझबूझ और मुश्किल वक्त में संयम बनाए रखने की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने मछार से कहा कि पूरा देश उनके साथ है। पीएम ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कैप्टन स्मिथ मछार दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में एज अ कैप्टन तैनात थे। उनके दौरान उनके को पायलट ने उन पर हमला किया और विमान को क्रैश करने की कोशिश की। घायल होने के बावजूद मछार ने हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर पायलट को काबू कर लिया। देशभर में आज मनाई जा रही महात्मा गांधी की 157वीं जयंती। देशभर में बापू के आदर्शों को किया जा रहा याद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 122वां जन्मदिन है आज। देश उनको नमन कर रहा। दिल्ली में जेनजी पहुंचा यमुना घाट। गांधी जयंती पर की घाट की सफाई, यमुना से निकाला कचरा। 15 कॉलेजों के छात्र यमुना घाट पहुंचे। किसी के हाथ में झाड़ू थी तो कोई घाट से कूड़ा प्लास्टिक उठाता हुआ नजर आया। जामनगर में गांधी जयंती पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली। मंत्री रिवाबा जडेजा भी इसमें शामिल हुई। यूपी के चंदौली में रेल अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने साफ सफाई को लेकर जागरूकता रैली निकाली। एमपी के राजगढ़ में 12 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मॉनसून के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अंतिम चरण में पहुंची। चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी। टिहरी के प्राचीन बूढ़ा केदार मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। यात्रा मार्ग, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, स्थानीय व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर। राजस्थान में धौलपुर जिले के कंचनपुरा गांव के खेत में निकला 14 फीट का अजगर। अजगर को पकड़कर गांव से दूर जंगल में छोड़ा। बिहार के गया जी में अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर रूस, यूक्रेन, इटली और जर्मनी समेत कई देश के विदेशी श्रद्धालु भी देवघाट पहुंचना शुरू कर दिए। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में पहुंचा 8 फीट लंबा मगरमच्छ। 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू में आया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: ना कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए, क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है?

0: कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी बरसा सोना। झांसी में गूंजा मलखंब का डंका, 16 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, 3 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मछार से फोन पर की बातचीत, पीएम ने की साहस की तारीफ, घटना के बारे में ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के चिनाब अंजी पुल पर रेलवे ने रचा नया रिकॉर्ड, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत, सफल हुआ स्पीड ट्रायल। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी 122वीं जयंती पर देश कर रहा नमन। गांधी जयंती पर जेंजी पहुंचे यमुना घाट, यमुना नदी में की साफ सफाई, देश के युवाओं को दिया स्वच्छता का संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। एक ऐसा व्रत जिससे संतान होगी दीर्घायु, औलाद होगी संस्कारी। आज जानेंगे जीवित पुत्र का व्रत की महिमा के बारे में, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला रहकर अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही आपको माँ महालक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय भी बताएंगे। संतान की सुरक्षा के लिए, उन्हें संकटों से बचाने के लिए परम फलदायी है जीवित पुत्र का व्रत। तो क्या है इस व्रत की महिमा, कैसे करना चाहिए ये व्रत, जो किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाए वो स्थिति पर आखिरकार क्या कुछ कर सकते हैं, आइए जानते हैं।
5: संतान की मंगल कामना का पावन अनुष्ठान जितिया व्रत से संतान का होगा गुणगान। मातृभक्ति की शक्ति का अद्भुत व्रत, ईश्वर की अनुकंपा से संतान के सफल होंगे मनोरथ। उत्तम फल देने वाला माना गया है जीवित पुत्र का व्रत। आस्था कहती है कि जिस तरह से महिलाएं तीज और करवा चौथ का व्रत करती हैं, उसी तरह से संतान की उन्नति और दीर्घायु की कामना से किया जाने वाला व्रत है जितिया। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जो भी माता इस व्रत का पालन करती हैं, उनकी संतान की सदा रक्षा होती है। माना जाता है कि वो संतान जीवन की हर परीक्षा में सफल होती है, क्योंकि इस व्रत से जुड़ी है संतान की कीर्ति।
6: कहीं काल गणना के अनुसार कहीं सौर मास से ज्योतिषीय गणना की जाती है, कहीं चंद्र मास से ज्योतिषीय गणना की जाती है। हमारे उत्तर भारत में जिस गणना से की जाती है, उस जितिया में माताएं अपने पुत्र के लिए व्रत करती हैं। ये पौराणिक भी है और व्यवहारिक भी है। जितिया, तीज, ये सब जो हमारे यहाँ लोकाचार है, ये क्षेत्रीय परंपरा का व्रत है। वैसे जितिया सभी माताएं अपने पुत्र के बढ़ती उम्र की कामना के लिए भगवान की पूजा करते हुए इसको संपादित करती है।
5: आज हम आपको जीवित पुत्र का व्रत की कथा भी बताएंगे कि कैसे एक राजकुमार जीमूत वाहन के त्याग से माताओं के पुत्र को अभय का वरदान मिलने लगा। कथा कहती है कि जीमूत वाहन बचपन से ही दयालु, परोपकारी और सभी जीवों से प्रेम करने वाले थे। कथा कहती है कि एक समय नागवंश की रक्षा के लिए गरुण को प्रतिदिन एक नाग का आहार दिया जाता था। कथा कहती है कि जब शंखचूड़ नामक नाग की बारी आई, तो उसकी माता की विलाप को देखकर जीमूत वाहन का हृदय द्रवित हो उठा। तब शंखचूड़ की जान बचाने के लिए जीमूत वाहन स्वयं उसकी जगह वध शिला पर लेट गए। गरुण ने जब उन्हें अपना आहार बनाना चाहा, तो उनके असीम साहस, करुणा और निस्वार्थ भाव को देखकर गरुण चकित रह गए। कहते

0: हैं कि तब माता गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर जीमूत वाहन को वरदान दिया। कहते हैं कि तब से ही त्याग के स्मरण स्वरूप ही माताएं अपनी संतानों को दीर्घायु के लिए ये व्रत करती आ रही हैं। मान्यता है कि इस व्रत का पुण्य संतान के हर कार्य में अमृत बनकर घुल जाता है। विधान कहता है कि माताएं निर्जल रहकर संतान की मंगल कामना का व्रत करती हैं। संतान की उन्नति का व्रत। इस व्रत के प्रताप से संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, दुर्घटना से उसकी रक्षा होती है, संतान की तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। बच्चों के उत्थान के लिए माताएं ये कठिन व्रत करती हैं।
1: से पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए बहुत से व्रत किया, जैसे सीता जी ने राम को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती की व्रत करी, उसी प्रकार माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र स्वस्थ कामना के लिए भगवान की ही पूजा करती है कि भगवान उनके पुत्रों की लंबी आयु प्रदान करे।
0: माना जाता है कि इस व्रत के साथ साथ आप महालक्ष्मी की अपार कृपा भी पा सकते हैं, क्योंकि इसी तिथि पर होता है महालक्ष्मी व्रत का समापन। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखने की परंपरा है, इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि कैसे करना है जितिया व्रत। बिना आहार और निर्जल रहकर माताएं ये व्रत रखती हैं। संतान की दीर्घायु, आरोग्यता और सुखमय जीवन के लिए ये व्रत किया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं बिना लहसुन प्याज के सेंधा नमक से बना पकवान खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। अगले दिन अष्टमी की तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रताप से संतान का तो सर्वमंगल होता ही है, बल्कि सर्व कल्याण की भावना को भी ये व्रत आत्मसात किए हुए है।
1: हमारे दुर्गा सप्तशती में एक वाक्य आता है, शास्त्र श्रुति है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। माताएं अपनी प्राण त्याग सकती हैं, लेकिन अपने पुत्रों की सदैव रक्षा करती हैं। इसीलिए कोई भी व्रत, केवल जीवतिया व्रत ही नहीं, जिसमें हमारी सकारात्मकता सनातन वैदिक परंपरा में हम कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ हमारे यहाँ केवल पुत्र की कामना नहीं मानी गई है, वहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवति। ये हमारे यहाँ के सनातन वैदिक परंपरा की खूबसूरती है।
0: द्वितीय व्रत के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहीं पर गंधर्व राजा जीमूत वाहन को इस व्रत की उत्पत्ति का कारक माना गया है, तो कहीं पर महाभारत की कथा ने जनमानस के बीच इसे विस्तार दिया। चलिए आपको बताते हैं कि जीवित पुत्र का व्रत से जुड़ी महाभारत की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध में पिता की मौत से नाराज अश्वत्थामा ने 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देखकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। वो बालक बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा कहती है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। चलिए जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब के पास जाते हैं। वहां जाकर कुशा से राजा जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाते हैं, साथ ही चील और सियारिन की मूर्तियां भी गोबर से बनाते हैं। सबसे पहले जीमूत वाहन को कुशा से धूप, दीप, फूल और अक्षत चढ़ाएं। चील और सियारिन को सिंदूर से टीका लगाएं। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें। पूजन में पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, 5 सुपारी और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। अगले दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण करें। पारण में चावल, मडुआ या रागी की रोटी, तोरई, नोनी का साग खाया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत में प्रसाद और रंग बिरंगे धागे अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद संतान को सुरक्षा कवच के रूप में वही धागे पहना दिए जाते हैं। उनकी दीर्घायु की कामना करके उनको आशीर्वाद दिया जाता है। फिर अगले दिन किया जाता है व्रत का पारायण।
1: व्रत केवल उपवास को नहीं कहा जाता है, व्रत का अर्थ होता है समर्पण, व्रत का अर्थ होता है सदाचार, व्रत का अर्थ होता है संयम, संयम के साथ, सदाचार के साथ और अपने आत्मसमर्पणता के साथ जो भी हम भाव से भगवान के प्रति निवेदन करते हैं वो व्रत हो जाता है। व्रत का अर्थ होता है आत्मसंयम का पालन करते हुए दूसरों के मंगल की कामना करना ही व्रत है।
0: माना जाता है कि ये व्रत कुछ सीमित क्षेत्रों में आस्थाओं और मान्यताओं में जीवित है। ये व्रत मुख्य रूप से नेपाल के मिथिला, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में बिना पानी पिए कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको इस व्रत को नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन ना करें। व्रत के दौरान वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। गर्भवती महिलाएं ये व्रत ना रखकर सिर्फ पूजा कर लें तो बेहतर होगा। आगे हम आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा भी बताएंगे कि कैसे आप इस व्रत को करके माँ लक्ष्मी से असीम ऐश्वर्य का वरदान पा सकते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: कल 16 दिनों से चले आ रहे महालक्ष्मी व्रत का समापन भी है। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और धन संपदा में वृद्धि करते हैं। तो क्या है इस व्रत की महिमा, कैसे एक उपाय करके आप माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पा सकते हैं, आइए चलिए आपको बताते हैं।

0: पितृपक्ष में मिलेगा धन की देवी का वरदान। महालक्ष्मी व्रत से होगा आपका कल्याण। कैसे करें मां लक्ष्मी की पूजा का समापन? चमत्कारी पाठ से पूरा करें उद्यापन। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी पितृपक्ष के दौरान महालक्ष्मी व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत को माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत राधाष्टमी से शुरू होता है और ये व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। जानकार बताते हैं कि जो 16 दिनों तक ये व्रत नहीं कर सकता वो क्या करें, सुनिए क्या कहते हैं जानकार।
1: इस पितृपक्ष बहुत बड़ा संयोग मिल रहा है महालक्ष्मी पूजन का। इस व्रत में 16 दिनों तक शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। वैसे तो यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस व्रत को 16 दिनों तक नहीं कर पाता तो अपने व्रत सामर्थ्य के अनुसार जो है वो नित्य ये पितृपक्ष के प्रथम जो प्रतिपदा से 8 दिन तक जो है वो इस व्रत का आचरण अवश्य करे। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तक तो महालक्ष्मी का विशेष उन पर कृपा रहेगा।
0: माना जाता है कि अगर विधि पूर्वक और श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत पूर्ण किया जाए तो देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर धन के भंडार हमेशा भरे रहने का आशीर्वाद देती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस व्रत के पूजन का शास्त्रीय विधान क्या है।
1: महालक्ष्मी को तोरण इत्यादि घर में लगा करके महालक्ष्मी का आगमन करने के लिए भगवान गणपति का, महालक्ष्मी का, गजलक्ष्मी का चित्र स्थापित करना चाहिए। नित्य महालक्ष्मी को वो धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प आदि अर्चन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए महालक्ष्मी की आरती इत्यादि करके, और घर में जो है सायंकाल चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए।
0: एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित करें, दीप प्रज्वलित करें, महालक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाएं, माता महालक्ष्मी की स्तुति करें, धूप दीप फूल और चंदन के साथ देवी की आरती करें, देवी लक्ष्मी को फल और मिठाई का भोग लगाएं, चंद्रोदय होने पर अर्घ्य दें, फिर व्रत का समापन करें।
1: सर्वप्रथम प्रातः काल सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके साफ वस्त्र धारण करके घर के आंगन में अपना चावल के घोल से रंगोली बनाएं। रंगोली में महालक्ष्मी के पैर अवश्य बनाएं और हम महालक्ष्मी व्रत मैं करने जा रहा हूँ उसका संकल्प लेकर के उस दिन हाथ में भगवती का पूजन करके कलश स्थापन करके 16 गांठों वाला धागा जो है वो महालक्ष्मी को पूजन करके हाथ में बांधना चाहिए।
0: जानकार बताते हैं कि इस विधिवत पूजन करने से आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरस सकती है। माता के प्रताप से दूर हो सकती हैं आपकी सारी आर्थिक मुश्किलें। अगर आपने किसी कारण ये व्रत नहीं किया है तो एक खास उपाय आपकी तिजोरी भर सकता है। माता महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें, उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, माता को सफेद मिठाई अर्पित करें, माता को गुलाबी धागा भी अर्पित करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर 16 बार पाठ कर सकें तो बहुत ही उत्तम होगा। गुलाबी धागा अपनी कलाई या गले में धारण करें। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस दिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया था। इस व्रत को गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। आगे हम आपको धन की देवी को प्रसन्न करने के महाप्रयोग बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं। जिस पर माँ की कृपा बरस जाए तो उसके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी से वरदान पाने के महा उपाय।
0: पितृपक्ष में करें महा उपाय, महालक्ष्मी करेंगी सदा सहाय। माँ लक्ष्मी का कीजिए सत्कार, खुशियां दौड़ी आएंगी आपके द्वार। जब माँ लक्ष्मी देंगी धन का वरदान, आर्थिक मुश्किलों का होगा समाधान। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा को लेकर शुक्रवार के दिन को सबसे प्रभावशाली बताया गया है। कहते हैं कि धन की कामना रखने वाले लोग अगर माँ लक्ष्मी से जुड़े उपाय शुक्रवार के दिन करें तो उसका परिणाम अति शुभ होता है। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें, इससे धन की प्राप्ति भी होगी और धन की बचत भी होगी।
1: महालक्ष्मी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है और निरंतर रूप में वह बना रहता है। महालक्ष्मी व्रत करने वाले व्यक्ति के पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और निरंतर वो सब मनुष्य अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है।
0: अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है, प्रयास करने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा हो, कारोबार डूबता जा रहा हो और आर्थिक तंगी आ रही हो, तब कौन से ज्योतिषीय उपाय करें अगर कारोबार में धन पाना हो? शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। उसी इत्र को नित्य प्रातः प्रयोग करें, तब काम पर जाएं। माना जाता है कि इन महाउपायों से शीघ्र ही प्रसन्न होती है महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाएगा आर्थिक संकट। अब बात करते हैं उस महाउपाय की जिसे करके धन संपन्नता से भर जाएगी आपकी तिजोरी। क्या है वो अद्भुत उपाय, आइए जानते हैं। धन की बिल्कुल कमी ना हो, इसके लिए उपाय, एक स्फटिक की माला ले लें, उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगो लें। इसके बाद उसी माला से ओम श्रीम श्रीये नमः का 108 बार जाप करें। इस माला को धारण कर लें, आपको धन का अभाव नहीं होगा। जानकार बताते हैं कि जो भी साधक महालक्ष्मी व्रत का समापन विधिवत करता है, उसके घर में वैभव तो आता ही है, साथ ही सदा शांति और समृद्धि भी बनी रहती है।
3: तो पितृ की कृपा होने के कारण सबसे पहली बात तो घर में कलह नहीं होगी, अपने सामंजस्य के साथ सभी मनुष्य बंधुत्व के साथ जीवन जीते हैं। जिस घर में शांति है, जिस घर में समृद्धि है, उस घर में समझना चाहिए कि साक्षात पितरों की कृपा है, यही पितरों की कृपा है।
0: तो ज्योतिष के जानकारों द्वारा बताए गए ये उपाय अगर शुक्रवार के दिन किए जाएं, तो मिलने वाला फल कई गुना ज्यादा हो जाता है और इन उपायों से तुरंत प्रसन्न हो जाती है माँ लक्ष्मी। तो आप भी विधि विधान से करें माँ महालक्ष्मी की उपासना, माँ की कृपा से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: दुर्गा पूजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। उससे पहले शहर शहर तैयारियां भी जोर पकड़ने लगे हैं। आपको दिखाते हैं झांसी की रिपोर्ट, जहां बंगाली शैली में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और इनकी खूब डिमांड भी है।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व करीब आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर पिछले करीब 34 वर्ष से एक बंगाली परिवार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। अहम बात यह है कि प्रतिमाओं के निर्माण और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सामान कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
1: यहाँ पे जो भी मूर्ति बनता है सब प्योर मिट्टी का बनता है, ना पीओपी यूज होता है, ना कुछ मतलब जो हार्मफुल वाला जो कलर होता है उस टाइप का कोई कलर भी नहीं यूज करते। हम पूरा जो इको फ्रेंडली कलर होता है उस टाइप का कलर भी यूज करते हैं, पूरा मिट्टी का बनाते हैं। और जो हमारा सिंगार वगैरह भी जो होता है वो सब कलकत्ता से आता है। और मिट्टी वगैरह हम जो 4-5 प्रकार का मिट्टी यूज करते हैं उसमें से 2-3 प्रकार का मिट्टी हम कलकत्ता से ले आते हैं, बाकी जो काली मिट्टी और इधर का लाल मिट्टी वो इधर से ही लेते हैं। और इसीलिए हम लोगों का मिट्टी और मूर्ति क्या है जो भी होता है वो ज्यादा से ज्यादा घास और मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें ना कोई पीओपी का यूज है, हल्का भी होता है और पानी में जाने के साथ साथ एक गल भी जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए हम लोगों का मूर्ति में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं यूज होता इसमें।
0: झांसी की इस वर्कशॉप में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कम से कम 12 से 14 कारीगर इसमें लगे रहते हैं। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैलियों में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहाँ पर खास डिमांड है।
2: मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर आप जाएगा ना ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
0: मूर्तिकारों की माने तो इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा की करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इनमें से लगभग 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की इन प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में भी है। लिहाजा माँ दुर्गा की ये प्रतिमाएं इस बार इलाके के ज्यादातर पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है। लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट ने अपने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया। सेंट लॉरेंट ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड गोल्ड लुक भी क्रिएट किए हैं जिसने सबका दिल जीत लिया।

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के शानदार डिजाइन की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर्ड टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेट स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे होने का

0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: एशिया खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी बरसा सोना। झांसी में अखिल भारतीय मलखम प्रतियोगिता का शुभारंभ, 16 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया, 3 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मित मछार से फोन पर बात की, फ्लाइट के अंदर हुई घटना की जानकारी ली, प्रधानमंत्री ने की अतुलनीय साहस की तारीफ। जम्मू कश्मीर के चुनाव अंजी पुल पर रेलवे ने रचा नया रिकॉर्ड, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत, सफल हुआ स्पीड ट्रायल। महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर भी देश कर रहा उनको नमन। गांधी जयंती पर जेन जी ने स्वच्छता की ओर बढ़ाए कदम, यमुना नदी में की साफ सफाई, देश के युवाओं को दिया क्लीन इंडिया का संदेश।

अक्टूबर आया, अपार त्योहार लाया, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। उत्सव, उमंग और उल्लास से सजेगा पूरा महीना। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और लेकर आया है ये त्योहारों की सौगात, एक ऐसी कतार जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, यानी कि त्योहारों की सीरीज, त्योहारों की पूरी कतार। अभी फिलहाल पितृपक्ष चल रहा है, जब भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की कृपा पाने का समय है। इसके बाद माँ के नौ स्वरूपों की आराधना होगी। नवरात्र में माँ का दरबार सजेगा, गूंजेंगे जयकारे, हर तरफ दिखेगा भक्ति का रंग और माँ दुर्गा भी आएंगी। साथ ही आएगा विजयदशमी का पर्व, रामलीला, रावण दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। और इसके बाद सुहागिनों का पर्व करवा चौथ, सुहागिनों के सजने संवरने से लेकर चांद के दीदार तक इस पर्व की अपनी ही रौनक होती है। यानी अक्टूबर सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा, उमंग और उल्लास से भरा त्योहारों का एक पूरा मेला है। तो सजेगा माँ का दरबार न्यारा, लगेगा जयकारा उत्सव को, सब तैयार, जगमग होगा हर बाजार। नवरात्र से करवा चौथ महकेगा आस्था का पथ। तो अगले एक घंटे इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे।

0: बहुत सारे त्योहार इस महीने आ रहे हैं और इसी महीने त्योहारों का महीना अगर हम इसको कहें तो शायद गलत नहीं होगा। अक्टूबर में उत्सव ही उत्सव है। अक्टूबर में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और इसी महीने करवा चौथ। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 18 अक्टूबर को महाअष्टमी है तो 19 अक्टूबर को महानवमी होगी। वहीं 20 अक्टूबर को दशहरा है। इसके बाद 29 अक्टूबर को करवा चौथ भी आ रहा है। 6 नवंबर को धनतेरस है जबकि 8 नवंबर को दिवाली है और इस बार दिवाली रविवार को पड़ रही है। और इस बीच 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी तो 11 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही साथ 14 से 16 नवंबर तक छठ पूजा की रौनक दिखेगी। यानी कि अक्टूबर नवंबर में त्योहारों की एक लंबी सूची रहेगी। तो ऐसे में देश भर में इन सभी पर्वों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक माँ के दरबार सज चुके हैं। नवरात्र को लेकर पंडाल में खूब तैयारियां हो रही हैं और नवरात्र में रामलीला का क्रेज भी रहता है। इसके बाद दशहरा आता है जिसमें प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध को भी दिखाया जाता है। तो तीन तस्वीरें, 11 अगस्त से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। त्योहारों का ये पूरा महीना अक्टूबर और 29 अक्टूबर को करवा चौथ भी मनाया जाएगा। आस्था उमंग उल्लास से भरा हुआ पूरा महीना दस्तक दे चुका है। एक के बाद एक त्योहार है और हर तरफ सजावट, रौनक, उत्सव का माहौल रहेगा। यानी कि अक्टूबर का महीना अपने साथ ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर आया है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मंदिरों से लेकर घरों तक पूजा शुरू होगी। माँ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को सुहागिने पति की लंबी आयु के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए व्रत रखेंगी। सजना सवरना, पूजा की तैयारियां करना और फिर चांद के दीदार का इंतजार, ये सब कुछ रहेगा और इस पर्व की अलग ही रौनक रहती है। असल में अक्टूबर की यही खासियत है, त्योहार आते हैं और साथ में रिश्तों की गर्माहट, परंपराओं की खुशबू, खुशियों की एक नई वजह भी लेकर आते हैं।
1: अष्टमी तिथि की अभिवृद्धि है लेकिन नवरात्र 9 दिन का ही है। कारण 19 अक्टूबर को सुबह 9:35 तक नौवीं है, नौवीं लग रही है। नवरात्र व्रत की पारणा तथा विजयादशमी अपराह्न काल में मनाई जाएगी, साथ में ही सायंकाल में दुर्गा पंडाल का जो है विसर्जन भी होगा।
0: तो चलिए हम इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त नंदिता पांडे, साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खुशियों का पर्व और इस बार बहुत सारे त्यौहार, हम कहें कि सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है बल्कि खुशियों की सौगात है ये महीना जिसकी शुरुआत हो चुकी है। नंदिता जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। अभी देखिए पितृपक्ष चल रहा है, पितरों का आशीर्वाद पाने का समय है, भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, लेकिन इसके बाद माँ दुर्गा पधारेंगी, नवरात्र की शुरुआत होगी। किन मायनों में ये महीना और खास हो जाता है?
2: नमरजोत जी, आपको भी इस पूरे पर्वोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा उत्सव का माहौल आना शुरू हो गया है। जेएनटी के सभी दर्शकों को ये आने वाले उत्सवों की अनंत शुभकामनाएं कि आपके घर में भी वही रौनक और उल्लास रहे जिस तरह से पर्व अपने आने का संकेत दे रहे हैं। देखिए, पितरों का आशीर्वाद लेने के पश्चात हम कोई भी अच्छा शुभ कार्य शुरू करते हैं और ये रीति या ये विधि यहाँ पे भी आपको दिखाई देती है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। बहुत सुंदर समय पितृपक्ष में भी होता है जब आप अपने पूर्वजों का स्मरण कर उनके लिए चैरिटी आदि करते हैं, उनके मोक्ष की सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं और इन रिटर्न्स आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं। और वैसे भी सनातन संस्कृति में ये नियम है कि हम कोई भी पुण्य कार्य, चाहे शादी हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सबसे पहले अपने इष्ट देवता, कुल देवता, देवी और पितृदेव देवताओं का स्मरण कर, पितरों का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए ना कि पितृपक्ष खत्म हो रहे हैं, नवरात्रियां शुरू हो जाएंगी और नवरात्रियों के 9 दिनों में इतनी पावरफुल फेमिनिन एनर्जी पूरा संचार करती है पूरे इस धरती पर कि आप उस समय अगर उनसे कनेक्ट होकर के एनर्जीज में अगर आप व्याप्त हो जाएं तो आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं जो आजकल जेंटल की मैनिफेस्टेशंस वो पूरा होने के लिए समय अच्छा है। करवा चौथ का समय, दशहरा का समय, दशहरा का समय पूरे वर्ष भर में एक ऐसा दिन होता है जिसमें कोई दोष नहीं लगता। उसमें से दशहरा भी एक दिन होता है जिस दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे देवउठनी एकादशी है अभी तक का या नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि चतुर्मास में हम शुभ कार्य उस तरह से नहीं करते, लेकिन दशहरा के दिन आप ये कार्य संपन्न कर सकते हैं।
0: यानी सबसे बड़ा शुभ दिन हमको मिलता है।
2: जी बिल्कुल, अक्टूबर में मिल रहा है ये दिन और 20
0: वैसे सही मायने में ना नंदिता जी, अक्टूबर तो गुड न्यूज वालों का महीना है, हर दिन आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी और त्योहारों के रंग में हम सभी रंगे रहेंगे। डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए, इन त्योहारों के बीच बहुत सारी गुड न्यूज तो आएंगी नितिशा जी, लेकिन सबसे बड़ी जो गुड न्यूज होते हैं वो हमारे ग्रह देते हैं। इस बार जल्दी से बता दीजिए आगे बढ़े उससे पहले, पूरा ये जो त्योहारों का समय रहेगा इस दौरान ग्रह दशाएं कैसी रहेंगी, कितनी फेवरेबल रहेंगी?
3: थैंक यू नवजोत जी और जेएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, अक्टूबर आया और त्योहारों की सौगात लेकर के आया है, और कई लोगों को लगता है कि पितृपक्ष ऐसा होता है कि जब हम खरीदारी नहीं कर सकते, शॉपिंग या अच्छे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शुभ कार्य नहीं कर सकते क्योंकि ये जड़ों से जुड़ने का समय है, इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े, और साथ ही साथ इसके बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पराशक्ति की ऊर्जा एकाग्रचित हो जाएगी और अपने बच्चों को यानी हम मनुष्यों को अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग देगी। इसलिए ये वो समय है जब हम अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ के अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी हर विश को पूरा कर रहे होते हैं, और पितरों के बिना, अपनी जड़ों के बिना अपनी माँ देवी पराशक्ति से भी आशीर्वाद लेने के साथ साथ जब दोनों का आशीर्वाद हमें मिल जाता है तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ग्रहों की तो बात करूं तो देखिए, गुरु महाराज सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और त्रिग्रही राजयोग की स्थापना कर रहे हैं, यानी यहाँ पर त्रिशक्ति नवरात्रों में हमें मिलेगी। बुध महाराज, सूर्य महाराज और गुरु महाराज एक साथ रहने के कारण त्रिशक्ति इस समय हमें प्राप्त होगी, यानी गुरु और सूर्य का बुद्धादित्य राजयोग बने, गुरु और सूर्य का गुरु आदित्य राजयोग बनेगा, बुद्ध और सूर्य का बुद्धादित्य राजयोग बनेगा, और गुरु और बुद्ध का ज्ञानी राजयोग बनने के कारण ये समय अपनी ऊर्जाओं को, मैनिफेस्टेशन को, अपनी हर मनोकामनाओं को पूरा करने का है। और ये नवरात्र भी बहुत स्पेशल है नवजोत जी, क्योंकि पूरे 9 दिन, 18 तारीख को हम अष्टमी मना रहे हैं, लेकिन अष्टमी तिथि 19 तारीख 10:51 पर समाप्त हो रही है सुबह के समय, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। यानी आप अष्टमी तिथि अगर किसी कारणवश 18 को नहीं मना सकते तो आपके पास 19 का सुबह का समय भी रहेगा, जिस समय आप अष्टमी की पूजा कर सकते हो। उसके बाद नवमी तिथि, आप नवमी तिथि के समय अपनी महा सिद्धिदात्री को प्रसन्न करेंगे, कन्या भोजन करवाएंगे, हवन करेंगे, और उसके बाद पंडालों से माँ अपनी विदाई लेंगी। तो वो जो 19 तारीख है वो भी बहुत स्पेशल है, और 20 तारीख विजयदशमी जिसे कहा गया है, कहा जाता है अपनी, आपकी कोर्ट कचहरी, आपकी कोई भी केसेस है या आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, जब हम विजय यानी विजय की प्राप्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए जिस दिन को चुना जाता है वो है विजयदशमी। इस पे जोड़ा गया है कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, लेकिन विजयदशमी आपको सफलता की तरफ ले जाती है। उसके बाद करवा चौथ, दाम्पत्य शुक्र को, मिठास को, मंगल को, ग्रह को, सबको सही करने का वो समय जब आप अपने घर की ऊर्जाओं को बिल्कुल ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जोड़कर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एक एक करके, और हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज गुड न्यूज टुडे पर इस शो को करने का मकसद केवल त्योहारों की जानकारी देना नहीं बल्कि आपकी तैयारी भी कराना है, क्योंकि बाजारों में भी रौनक दिख रही है, अलग अलग जगहों पर पूजा पंडाल भी सजने शुरू हो चुके हैं, साथ ही साथ आपको तैयारी क्या करनी वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन डीपी शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी, जरा हमें एक बार समझा दीजिए तिथियां इस बार कहां कहां, कौन कौन सी तिथियां डबल हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तिथियों का इस बार?
4: नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो 11 अक्टूबर का नवरात्र शुरू हो रहा है वो चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में शुरू हो रहा है, और नवरात्र की सबसे बड़ी चीज है कि सब तिथि मिल रही है, और यहाँ तक कि 10 तिथि मिल रहा है, नवमी के बाद दसवीं भी परिपूर्ण रूप में मिल रहा है। जो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती जगत जननी है, बलाधिष्ठात्री, धनाधिष्ठात्री, विद्याधिष्ठात्री, जिनको बल के लिए, धन के लिए, ज्ञान के लिए नवधा भक्ति में हम नवरात्र के पूजन करते हैं, उसके पूर्व आजकल महालय या पितृपक्ष जो चल रहा है, ये पितृपक्ष में देवताओं से ज्यादा पितरों की तर्पण, पितरों के दान उपदान किया गया है। ये 15 दिवस जो लिया गया है, जो 10 तारीख को अमावस्या या महालय का पूजन होगा, इसमें देवता भ्या पितृवेश्या महायोग भी एवचा नमः स्वाहा स्वध्यायी नित्य में वो नमो नमः। पितृपक्ष में भी स्वाहा और स्वधा जो देवी हैं वो पूजी जाती है तर्पण के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, जो पितरों को पोषण करती हैं, जो देवताओं को पोषण करती हैं, वो पितरों को भी पोषण करती हैं। ये तो रहा महाले का, पितृ पक्ष का, बल्कि जो नवरात्र में शैल पुत्री से सिद्धि दात्री तक जो नवधा भक्ति है, उस भक्ति को भगवान राम भी किए हैं। राम अपने विजय के प्राप्ति के पूर्व शैल पुत्री से सिद्धि दात्री के ऋषि अगस्त गुरुदेव के कहने के बाद उन्होंने पूजा किया, पाठ किया, राम रक्षा स्त्रोत, दुर्गा पाठ, आदि त्रिदेव स्त्रोत्र सब पाठ करने के बाद नवमी तिथि में सब शक्तियां उनको वर प्रदान की, तब वो विजय दशमी में विजय के प्राप्ति किए थे। क्योंकि ये जो देवी है, इसमें हम प्रथम अध्याय से 13 अध्याय जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, मार्कंडेय जी जो दुर्गा सप्तशती में दिए हैं, ये 7 मंत्र है। इसके मंत्रों में प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि है, मध्यम चरित्र में विष्णु ऋषि है, और उत्तम चरित्र में भगवान शिव ऋषि है।
0: जी,
4: ये ऋषि परंपरा में देवता कहीं काली है, कहीं लक्ष्मी है, कहीं सरस्वती है। इनके छंद भी है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, यानी वेदों की पूजन है, मंत्रों की पूजन है, नवदा भक्ति की पूजन है, अभयवान बनाने के लिए, धनवान कीर्तिवान बनाने के लिए महामाई दुर्गा का पूजन। दुर्ग माने होता है किला, आपके व्यापार किला, धन की किला, बच्चों के जीवन की किला,
0: जी जी,
4: राष्ट्र की किला, सबके रक्षा दुर्गा करती है। इसीलिए नवदा भक्ति में आप पूरे नवरात्र पूजन करें, कहीं कुछ इसमें कमी नहीं है।
0: बिल्कुल,
4: बढ़ोतरी है।
0: संजय शर्मा जी के पास चलूंगी, शास्त्री जी लौटूंगी। हाँ, लौटूंगी आपके पास। संजय जी, एक तो इसी का जवाब रखिएगा कि इस बार कोई तिथि कंफ्यूजन तो नहीं है, और इस बार के नवरात्र किन मायनों में खास है ये भी बताते चलिए।
5: जी, सबसे पहले माँ आपके ऊपर सबके ऊपर कृपा करे, और कहा जाता है माँ दुर्गा का ध्यान कर लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शादी के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहा जाता है कि जो नवरात्र का समय होता है, कहते हैं कि इस बार जो माता है वो गज के ऊपर आ रही है, क्योंकि गज वाहनी है। तो गज के ऊपर जब माँ आती है तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कराती है। तो ये जो शरदीय नवरात्र है हमें सुख और आनंद देने वाले हैं, और इसमें जो कंफ्यूजन की बात तो नहीं है, पर जो सप्तमी तिथि है उस वो शनिवार और इतवार दोनों दिन जो है रहेगी। उसमें क्या है कि 2 दिन की है, वो 17 और 18 तारीख की है, दोनों दिन की जो है सप्तमी अष्टमी रहेगी। और ये जो नवरात्र हैं आपके जीवन को आनंद देने वाले, एक नया जीवन का संचार करते हैं। कहते हैं कि माँ के जितने 9 रूप हैं, जैसे शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि देती हैं। इसी प्रकार से अगर आप सिद्धि दायित्री की बात करें तो आपके जीवन में सिद्धि भर देती है जीवन का। कहते हैं कि कुछ भी सिद्धि चाहिए तो वो माँ से आपको जीवन में प्राप्त होती है। तो ये जो स्वरूप है माँ के, और जो विजयदशमी का दिन होता है, कहते हैं कि भगवान राम ने जो है रावण पर भी इसी दिन विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं दुनिया के अंदर, वो विजयदशमी के दिन उन सबका जो है अंत हो जाता है। तो ये समय ऐसा समय है जिसमें आप पूजा पाठ करें, और कहा जाता है कि जो शरदीय नवरात्र हैं इसमें अपनी भक्ति बढ़ाएं। अभी आप पूर्वज पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की को ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पितृवेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। कहा जाता है कि हे पितरों, आप हमारे जीवन में उजागरता लाओ। और ये समय ऐसा है कि पितृ तर्पण के लिए है, और नवरात्रे हमारे जीवन में एक नई एनर्जी प्राप्त करने के लिए है, जो माँ के 9 स्वरूप है। कहते हैं संतान नहीं है तो आप जो स्कंद माता की पूजा करें, तो सब नवरात्रे में माँ के 9 स्वरूप आपके जीवन में सुख और आनंद देने वाले हैं। तो इसलिए प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे थी, कुष्मांडी थी, चतुर्कम, पंचम स्कंद माती थी, सप्तम काल रात्रि, महागौरी चाष्टम। तो माँ के जो स्वरूप है इनका ध्यान करें, मेडिटेशन
0: अलग
5: करें,
0: अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग तरीके के उपाय होते हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक पॉजिटिविटी का महीना जिसकी शुरुआत हो गई है, एक ऐसा महीना जिसका इंतजार शायद हर किसी को रहता है, हर तरफ खुशियां होती हैं, हर तरफ सेलिब्रेशन होता है। नंता जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या खास होता है इस महीने में? शारदीय नवरात्र नाम सुनते ही हर कोई तैयारियों में डूब जाता है, हर कोई कहता है कि वाह अब तो बहुत अच्छा समय। और संजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पॉजिटिविटी का महीना एक तरीके से शुरू हो जाता है। दो सवाल है, एक तो यही कि इस बार के नवरात्र किन महीनों में खास है, कहीं तिथि डबल तो नहीं है तो वो भी बताइएगा, और तैयारी कैसे?
2: जी बहुत सुंदर प्रश्न अवजोत जी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखिए नवरात्रि ना तो ये सेलिब्रेशन का समय है, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा पूरी धरती पर डोलती है और आप कितना उसको इम्बाइब कर सकते हैं अपने जीवन में ये आपकी सकारात्मक सोच और सही तरीके से पूजा प्रवृत्ति पे भी निर्भर करता है। और GNT आई थिंक ये चीज को बहुत डिटेल्स में बताता है अलग अलग विद्वानों को लेकर के आके। अब देखिए नवरात्रियां 11 तारीख को शुरू हो रही हैं, लेकिन नवरात्रि के दिन जिस दिन शुरू हो रही है उस दिन चित्रा नक्षत्र है और वैदित्र योग है। इस समय घट स्थापना जो होता है उसको थोड़ा सा जेनली अवॉइड करते हैं। तो ऐसा अगर पूरे दिन नवरात्रि का पहला दिन है तो क्या किया जाए? तो इसमें शास्त्र ये कहते हैं कि अगर वैदित्र योग है, चित्रा नक्षत्र है, और ये सभी GNT दर्शकों के लिए, क्योंकि नवरात्रि में अधिकतर लोग अपने घर पे घट स्थापन करते हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त का सिलेक्शन करिए जो कि दोपहर के समय में आएगा, लगभग 12:15 बजे से लेकर के 12:30 के बीच में उस समय घट स्थापना करिए। तो आपकी पूरी नवरात्रि की शुरुआत जो है माता के आशीर्वाद से बहुत अच्छी रहने वाली है, अच्छी रहेगी। तिथि की जहां तक बात करें तो पंडित संजय जी ने बता ही दिया कि सप्तमी अधिक है यहाँ पे, क्योंकि हम उदया तिथि को भी मान करके चलते हैं। तो सप्तमी तिथि जो बन रही है वो 17 और 18 दोनों तारीख को बन रही है, अष्टमी और नवमी का समागम है। अष्टमी तिथि जो है वो 19 तारीख को और नवमी तिथि भी 19 तारीख को ही रहेगी, लेकिन नवमी का होम आप 19 को और 20 दोनों ही तारीख को कर सकते हैं। माना जाता है कि दशहरा में भगवान राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी, लेकिन नवमी के दिन उन्होंने माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया था और अपने कमल जैसे नयनों का वहां पे उन्होंने, जैसे ही वो कम हुए कमल जो 108 थे वो नहीं हो पाए, तो उन्होंने आंख अपनी कमल जैसे नयन बोलते हैं तो वो देने की कोशिश की, तब माँ सिद्धिदात्री सामने आई। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देने वाली माँ है, और पूरा जो आप शैलपुत्री माँ से शुरू होकर के लास्ट डे 9th डे तक का जब पहुंचते हैं तो स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिवेशन का टाइम होता है। आप मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आप सहस्त्र चक्र निर्वाण चक्र की तरफ जाते हैं जहाँ माँ सिद्धिदात्री आप पे कृपा करती हैं। तो भगवान राम पे उन्होंने इतनी एनर्जी दी कि वो उस एनर्जी को उन्होंने साथ लेकर के रावण का वध करने में वो वहां पे उन्होंने साधा उस चीज को। तो ये बहुत बहुत पावरफुल टाइम होता है, इस पावरफुल टाइम को आप कैसे अपने लाइफ में उसको इम्बाइब करके अच्छी चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हैं ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पूरे टाइम आप देखिए कोजगरी पूर्णिमा आएगी, तो पूर्णिमा तिथि जैसी आएगी तो पूर्णिमा तिथि के समय में आप जो है उस दिन माता लक्ष्मी जो है पूरी रात्रि भर पूरे दुनिया में घूमती है, और जो जो भक्त जन रात को उठ करके उनकी प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो आप देखिए माता रानी की इतनी विशेष कृपा होती है कि आपका घर धन धान्य से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, और उस समय आप जब खीर बना के बाहर रखते हैं उस खीर में उस चंद्र की रोशनी आती है, उस रोशनी से आपके अंदर वो हेल्थ की एनर्जीज जो होती है पॉजिटिव हेल्थ के लिए आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये चीजें जो है उस चीज को ध्यान रखना है। 25 अक्टूबर को कोजगरी पूर्णिमा रहेगी, करवा चौथ से थोड़ा पहले 29 को करवा चौथ है। तो आप देखिए पूरा प्रोसेस जो है वो आपको क्लेंज भी कर रहा है, डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है, एक्टिवेट भी कर रहा है आने वाले मौसम को साधने के लिए। साथ ही साथ पर्वों की जो खुशियां होती हैं तो जो भी रोग शोक दोष होते हैं उन्हें मिटा के सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने की, गुजरात में कहें तो गरबा होता है तो माता को आह्वान किया जाता है और माता के आह्वान में ही गरबा किया जाता है, उनकी जो साक्ष्य होता है उनकी जो एनर्जीज होती है उसको एक्टिवेट किया जाता है और उसमें नृत्य किया जाता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गरबा। तो वो जो होता है वैसे ही उस तरह के नृत्य उल्लास सब जगह होता है। नॉर्थ इंडिया में आप जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया में माता रानी को आह्वान किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, पूरी जिस तरह किसी भी तरह की नजर हो दोष हो कैसी भी चीजें हो नेगेटिव हो वो सब हट जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। तो बहुत सुंदर समय
0: तरीके
2: है,
0: बहुत अलग अलग होते हैं लेकिन कुल मिलाकर माँ की आराधना सेलिब्रेशन का दिन होता है। बहुत पॉजिटिव एक तरीके से कहा जाता है इस महीने को, जब इतने सारे सीरीज जो होती है, सीरीज ऑफ फेस्टिवल शुरू हो जाती है जिसको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी हम कहते हैं। बप्पा के आने के साथ ही इनकी शुरुआत हो जाती है। अब नितिशा जी आपके पास आती हूँ। नितिशा जी, एक तो यही तिथि कन्फ्यूजन को लेकर भी मैं चाहूंगी इसको क्लियर कीजिए, और साथ ही साथ करवा चौथ को लेकर भी इस बार किस तरह के योग बन रहे हैं। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। नितिशा जी, ये सवाल आपसे करूंगी, लेकिन संजय जी आपसे मेरा सवाल ये है कि हालांकि तिथियों के कन्फ्यूजन को हमने क्लियर कर लिया, लेकिन आप ये बताइए कि तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि कलश स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हालांकि पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन इसके बाद तैयारियां करनी है, तैयारियां किस तरह की, कब से कैसे की जाती हैं?
5: देखो, एक दिन पहले से, अमावस्या के दिन से ही आपको जो है शाम के वक्त से ही समान 12 बजे के बाद
0: उसका भी ड्यूरेशन बताइएगा, क्योंकि उस बहुत से लोग ये भी चाहते हैं, ये भी सुनना चाहते हैं कि भाई वो शुभ समय कौन सा रहता है जिस दौरान हम कलश लेकर आए या फिर अपनी शॉपिंग शुरू करें।
5: जी जी, देखो 12 बजे के बाद आप पितृ तर्पण कर दें और अपने पितरों को जो है, पूर्वजों को जो है आशीर्वाद लें और कहें परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म है दीना। तो उन्होंने हमें मनुष्य जन्म में जो भेजा है, इस प्रकार से कह करके और अपने पितरों को ओम पितृभ्यो स्वादिभ्यो नमः, पर पितृभ्यो दिनवा सर पितृभ्यो दिनवा, इस तरह से तर्पण कर दें और उनको विदा कर दें। उसके पश्चात जो है 12-1 बजे के बाद या शाम को 4 बजे के बाद आप अपना सारा सामान जो है लेना शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें, और कलश ले लें, नारियल ले लें और पत्ते ले लें और माँ दुर्गा की प्रतिमा ले लें, और सुबह की तैयारी जो है गंगा जल, धूप दीप और पुष्प माला इत्यादि, और आसन और चौकी जो है लेकर के और जौ लेकर के, और माँ का जो सारा सामग्री है वो इकट्ठी कर लें और एक दिन पहले से थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दें अपनी। और सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का मुहूर्त रहेगा 6:05 से लेकर के और 11 बजे तक का जो मुहूर्त है, 11:57 तक, उस बीच में आप जो है कलश स्थापना करें और माँ का आवाहन करें, माँ के सभी स्वरूपों का आवाहन करें, और आवाहन करने के पश्चात जो है कलश के अंदर जो है अगर हो सके तो चांदी का सिक्का या कोई कॉइन या कोई भी चीज रख दें, और कहते हैं कि पंच पल्लव जो है उनको स्थापित कर लें और नारियल चढ़ा दें माँ को और चुन्नी चढ़ाएं और पूरा श्रृंगार जो माँ का 16 श्रृंगार का जो सामान है वो अर्पित कर दें और घर में अंगारी करें, और अंगारी करने के बाद दुर्गा सप्तशती जो का पाठ करना चाहते हैं तो वो कवच कीलक अर्गला स्त्रोत्र का जो है पाठ करें। अगर जो ज्यादा पाठ नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा के 32 नाम जो है, दुर्गा दुर्गा तिशम्मी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गा निहंती, इस प्रकार से जो है वो करें, या सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र का पाठ कर लें, और जो दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में भी जो है पाठ कर सकते हैं, और हिंदी में जो अध्याय दिए हुए उनके में पाठ करें और दुर्गा के जो स्वरूप है उन सबका जो है मन में आवाहन करें। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम सिद्धिम वह स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। जब सोते हैं तो माँ
0: लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए एक बार जल्दी से नितिशा जी के पास जाऊंगी। अब नवरात्र में माँ का वेलकम कैसे करना है, तैयारियां कैसी करनी, उसकी बात हो रही, लेकिन जल्दी से क्योंकि इसी महीने करवा चौथ का पर्व भी आ रहा है। आपका फेवरेट त्योहार है ही, आप अक्सर गुड न्यूज टुडे पर आती हैं और बहुत भागम भाग आपको भी रहती है और सुहागिनों को तो इंतजार रहता ही है, स्पेशली चांद का, सजने सवरने का। मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगी, इस बार करवा चौथ को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
3: देखिए नहीं, इस बार करवा चौथ को लेकर
0: मायनों में ये भी बताते चलिए।
3: जी बिल्कुल, इस बार करवा चौथ को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हमारा करवा चौथ है वो 29 को ही सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन इस बार करवा चौथ और भी ज्यादा स्पेशल हो रहा है क्योंकि यहाँ हमें त्रिशक्ति त्रिग्रहों की ऊर्जा मिल रही है और गुरु ग्रह को बहुत शुभ प्लैनेट माना गया है। यहीं पे शुक्र महाराज भी हमें अपनी ही राशि से गोचर करते हुए नजर आ रहे, वो भी हमारे लिए सुख समृद्धि को लेकर के आ रहे हैं। तो ये वाला जो करवा चौथ है ये सभी महिलाओं के लिए बेहद शुभ है। दाम्पत्य जीवन को और मधुर बनाइए, बहुत सारे गिफ्ट लीजिए, बहुत सारे गिफ्ट दीजिए और बहुत सारी शॉपिंग करिए। मैं तो कहती हूँ हमारी एंजल्स को बहुत सारी शॉपिंग नवजोत जी करनी चाहिए, चाहे आप अनमैरिड हो चाहे आप मैरिड हो, दोनों ही तरफ से, क्योंकि जितनी हमारी पराशक्ति ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा जितनी सुंदर और जितनी ऊर्जावान रहेगी, उतना ही ब्रह्मांड, उतनी ही सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी। तो ये करवा चौथ बहुत स्पेशल आ रहा है जिस समय शुक्र, क्योंकि ये करवा चौथ शुक्र से रिलेटेड फेस्टिवल और मंगल से रिलेटेड फेस्टिवल माना जाता है, और मंगल महाराज भी सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये हमारे मंगल ग्रह के लिए भी बेहद शुभ समय रहने वाला है। तो यहाँ पे मंगल ग्रह की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती हुई नजर आ रही है। जी
0: बिल्कुल, तो चलिए बाकी तीज त्योहारों का भी जिक्र करेंगे, बात करेंगे। और इस दौरान अब जैसे नंदिता जी भी बता रही थी, नितिशा जी भी बता रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मनोकामना पूरी कैसे होगी, उसके लिए अभी से आपको क्या क्या उपाय करने हैं, ये सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: क्या कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: अक्टूबर आया, अपार त्योहार लाया और पॉजिटिविटी लेकर आया। सही मायनों में हम बार बार कह रहे हैं कि गुड न्यूज टुडे का महीना है, क्योंकि पूरा महीना आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, पॉजिटिविटी की डोज मिलेगी और हम और आप मिलकर मनाएंगे तमाम उत्सव सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, हमने नवरात्र का जिक्र भी कर लिया है, उस दौरान तिथि कन्फ्यूजन कोई ना हो इसको लेकर भी चीजें क्लियर हो गई, करवा चौथ को लेकर भी क्लियर हो गई, लेकिन फिर उसके बाद जो आता है वो है दिवाली की तैयारियां शुरू थी वहां पर, हालांकि वो नवंबर के महीने में है। मैं चाहूंगी कि अभी से बताइए, क्या इस बार तिथि कन्फ्यूजन इन बड़े त्योहारों को लेकर तो नहीं है?
1: देखिए, किसी त्योहार में अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी और वो मनाई जाएगी क्योंकि वो नक्षत्र भी इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाता है और तुला राशि में एक महीना रहता है उसमें बहुत सारा त्योहार आता है। नवरात्र की पूर्णावति होगी, विजयदशमी होगा, करवा चौथ आएगा, ये अश्विन पूर्णिमा होगा और उसी में दिवाली होगा, सब उसी में होगा। नीच के सूर्य में ही सबका आएगा। वो सूर्य भगवान विष्णु के पूजनीय है, लक्ष्मी के लिए पूजनीय है और राहु के नक्षत्र में ही लक्ष्मी का जन्म है, स्वाति नक्षत्र में ही लक्ष्मी का जन्म हुआ था। अमावस्या तिथि, चतुर्दशी तिथि जो पूजा जाता है, चतुर्थी के स्वामी भगवान शिव है और अमावस्या के स्वामी पितृदेव होता है, तो पितरों की तिथि में ही दिवाली पूजी जाती है। एक अमावस्या ऐसी तिथि है जो पितर के देवता, पितर के रूप और पितर के तिथि को भी महालक्ष्मी ने आशीर्वाद वरदान दे करके उसको दिवाली महापर्व में तब्दील कर दिया और दिवाली महापर्व मनाया जाता है। जब हम माँ के पूजा करते हैं तो हम ध्यान करते हैं या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्म लक्ष्मी पापात्मनाम कृतिदयाम हृदय सुबुद्धिम सरदा सतानुकूल जना प्रभवस्य लज्जाम तान त्वाम नतास्म सुरिपालयी देवी विश्वम। ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री, ब्रह्मांड के पूरे भरण पोषण करने वाली महालक्ष्मी का उत्सव दिवाली के दिन हम मनाएंगे और 8 तारीख को ही मनाएंगे। कमल के फूल से पूजन करें, सहस्त्र अर्चन करें, कनक धरा स्त्रोत्र के पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, भगवान विष्णु के सूक्त के पाठ करें, गोपाल सस्त नाम के जप करें, ये सब महालक्ष्मी के दिन किया जाता है। और अपने व्यापार के लिए, कारोबार के लिए धन लक्ष्मी, अष्टमा लक्ष्मी, कुबेर इत्यादि यंत्र का, श्री यंत्र का सिद्धि करते हुए दीपावली पे साल भर के कामना के लिए ये पर्व हम मनाते हैं। ये हमारे विशेष रूप में
0: बिल्कुल नंदिता जी, अब आपके पास लौटती हूँ। अब हम क्योंकि सबसे पहले नवरात्र के उत्सव को मनाएंगे, हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की आराधना होती है और आपने और नितिशा जी ने बताया था

0: इस दौरान आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, आप उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं। तो एक एक करके, सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हेल्थ वाइज कोई चाह रहा है कि इस नवरात्र माँ उनको यही आशीर्वाद देकर जाए, तो उसकी तैयारियां कैसे करनी है, किन माँ की आराधना करनी, ये भी बताते चलिए।
1: जी, बहुत सुंदर प्रश्न है नवजोत जी, लेकिन थोड़ा सा आपने क्योंकि दीपावली के बारे में बात की,
0: हाँ,
1: तो
0: चाहें तो
1: क्योंकि
0: उसको
1: बात
0: भी क्लियर कर दीजिए।
1: जी, तो पंच महादिवस होता है दीपावली का, और इस समय क्या है कि 8 तारीख तक का तो धनतेरस हो गया, या आपकी छोटी दिवाली हो गई, या दीपावली की महारात्रि हो गई, वो तो 6, 7, 8 को रहेगी, लेकिन अमावस्या तिथि जो है वो रात्रि भर होकर के 9 तारीख के दोपहर 12:30 बजे तक का है। इसलिए गोवर्धन पूजा जो होगी वो 9 तारीख को ना होके 10 तारीख को होगी। सो देयर इज 1 डे का गैप इन ये 5 डेज का जो सेलिब्रेशन होता है, और 10 को गोवर्धन पूजा, 11 को भाई दूज होगा। तो ये एक तो तिथियों का था दीपावली में, जब आप दीपावली कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: बाकी
0: इससे
1: पंडित
0: पहले एक एक एक एक सेकंड एक सेकंड आप सभी ने बताया कि इस बार नवरात्र में जो है वो तिथि कंफ्यूजन नहीं है, इस बार कोई तिथि बढ़ी हुई तो नहीं है? हाँ नंदा जी, आप ही से जानना चाह रही हूँ।
1: जी नहीं, सप्तमी तिथि है वो 2 दिन चलेगी,
0: ठीक
1: सप्तमी
0: है,
1: तिथि, और सप्तमी तिथि आपकी 17 तारीख और 18 तारीख को रहेगी, अक्टूबर को। और फिर अष्टमी तिथि जो है वो अष्टमी या नवमी का एक साथ संधि पूजन भी साथ में हो रहा है, तो वो तिथि जो है वो 19 को रहेगी। नवमी पूजन का जो होम होता है, हवन हम जो करते हैं वो जल्दी दोपहर में करते हैं, तो वो 19 को भी आप पूरे दिन कर सकते हैं, और आप 20th को भी 12:30 बजे से पहले कर सकते हैं। तो ये एक तिथि में जो डिटेलिंग, जो पूजा के समय के जो मुहूर्त है वो आपको बता रही हूँ। लेकिन जो सप्तमी तिथि है, माता कालरात्रि का विशेष आशीर्वाद रहेगा इस बार, तो वो 2 दिन तक का पूजनीय है इस नवरात्रियों में, तो आप 2 दिन तक उनकी पूजा कर सकते हैं। और माता कालरात्रि को शुभंकरी भी बोला जाता है, यानी कि शुभता देने वाली, आपके सारे कल्याण करने वाली, और बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। उग्र देवी दिखती है स्वभाव में, लेकिन बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। शनि का ये द्योतक है, तो शनि से संबंधित 7:30 है, ढैया है, या किसी भी प्रकार का शनि आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो आपको माँ कालरात्रि का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सारे नेगेटिविटी जीवन के हट जाते हैं, गुड़ का उनको भोग लगाएं, बहुत अच्छा रहता है, और एक पॉजिटिविटी आपकी आती है। देखिए, जो हर दिन है ना, माता शैलपुत्री से लेकर के माँ सिद्धिदात्री तक का, आप देखेंगे देवी का एक स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ एक उनका मैसेज भी है कि आप अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर के आ सकते हैं। वहीं स्पिरिचुअलिटी में अगर मैं देखूं तो माता शैलपुत्री वाले दिन, जो प्रथम दिन नवरात्रि का होता है, हम देवी का आवाहन करते हैं, देवी का आशीर्वाद मांगते हैं, और अगर स्पिरिचुअलिटी में या आगे बढ़ना है हमको मेडिटेशन में, तो उस दिन हम अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं, और ऐसे कर करके वहां पे सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि मूलाधार चक्र में गणपति का भी स्थान होता है, इसलिए प्रथम पूजनीय गणपति देव होते हैं। और गणपति देव आप जब देखेंगे तो हम गणपति बप्पा की ही पूजा के साथ साथ ये त्योहारों का पूरा समागम आगे बढ़ता जा रहा है और चीजें बनती जा रही है। तो ये जो 9 डेज होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल डेज होते हैं, बहुत मिस्टिकल डेज होते हैं, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप संक्षिप्त रूप में दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मध्यम चरित्र का जरूर पाठ करिए, नहीं तो कवच कील अर्गला पाठ कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते तो पीछे सिद्ध कुंजी का स्रोत है उसका पाठ अवश्य करिए। संकल्प लेके अपना नाम और गोत्र बोल करके पाठ करेंगे तो ज्यादा जल्दी आपको माँ प्रसन्न होकर के फल देती है।
0: बिल्कुल नितिशा जी, आपके पास आना चाहूंगी, स्टूडेंट्स के लिए इस बार कितना अहम है, और अगर उनको अपनी कोई इच्छा पूरी करनी तो क्या करना होगा उनको?
2: देखिए, जीएमटी ने अपना एक और काम किया कि गुड न्यूज फैलानी शुरू कर दी थी। इस बार सप्तमी तिथि बढ़ने के कारण अष्टमी और नवमी तिथि का भी समावेश के कारण हम 18 को भी अष्टमी मना सकते हैं, 19 को भी, और 19 को नवमी मना सकते हैं, और 20 को भी सुबह के समय भी नवमी की तिथि हमें मिल रही है, तो हम पूजा कर सकते हैं। और दीपावली भी जो अमावस्या है, जो लक्ष्मी पूजन का सबसे पवित्र महारात्रि मानी जाती है, जो दारुण रात्रियों में 5 महारात्रियों में एक आती है, वो भी तिथि बढ़ गई है। तो ये तो एक गुड न्यूज ने अपने व्यूअर्स को एक और मैसेज दे दिया कि और माँ लक्ष्मी का और महाकाल रात्रि का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन से निगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव करते हुए अपनी आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ा सकते हैं। तो गुड न्यूज ये काम करता रहता है, और जब गुड न्यूज एस्ट्रोलॉजर्स के साथ नहीं होता तो भी आप देखिए, चाहे सोशल वर्कर्स के साथ हो, चाहे टीचर्स के साथ हो, चाहे हॉस्पिटल डॉक्टर्स के साथ हो, तो मैं देखती हूँ आप वहां पे भी सोशलिज्म मतलब सोशल एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे होते हो, लोगों तक वो मैसेज पहुंचा रहे होते हो। और स्टूडेंट्स के लिए ये जो नवरात्रे है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि पितृपक्ष जब भी आता है तब सूर्य कन्या राशि में होते, उसके बाद वो तुला राशि में प्रवेश करते हैं नीच की राशि में। नवरात्रि की जो महानवमी है और जो दिवाली की रात है वो तुला राशि में हमें मिलती है। तो ये समय ऐसा होता है जब प्रकृति भी चेंज हो रही होती है, हम लोग शरदीय नवरात्रि की तरफ शरद ऋतु की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं, जब ठंडक बढ़ रही होती है, और इस समय अनाज की भी वो चेंज हो रही होती है, तो स्टूडेंट पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहूंगी ये वो समय होता है जब सूर्य शुक्र की राशि में प्रवेश करता है, और सूर्य बहुत ऊर्जावान है, और तुला राशि पृथ्वी तत्व की राशि और बैलेंस करने की राशि है। शिक्षा का ये सबसे अच्छा समय है, बल्कि घर में त्योहार होते हैं, त्योहार भी मनाइए, खुश भी रहिए, मिठाइयां भी खाइए, पटाखे भी बजाइए, पूजा भी करिए, लेकिन इसके साथ शिक्षा को लेने का भी सबसे ज्यादा पावरफुल समय यही रहता है, जो पितृपक्ष की अमावस्या तिथि से शुरू होकर के हमारा आगे बढ़ता है। क्योंकि दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा 10 तारीख को है, उस दिन हम अपनी कॉपी किताबों की, पेन की, इनकी पूजा भी करते हैं। इसलिए ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय आपको क्या करना है, गणेश अथवा शीश का पाठ डेली करें, नहीं कर सकते तो 3 बार 11 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें, गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं, और फिर अपनी अपनी टेबल पर बैठें, और टेबल पर अगर आप ग्रीन कलर का कपड़ा बिछाते हैं और साथ ही साथ कोई प्लांट या कुछ छोटा सा प्लांट रख लेते हैं जो फ्रेश एयर प्लांट हो, तो इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। ये वो समय है जब आप जो भी चीजें लर्न करते हो वो आप देखिए, पहले हमारे टाइम में इसी समय एग्जाम्स आया करते थे इसके त्योहारों के बाद ही, क्योंकि ये त्योहारों के समय ही हमें लर्न करने का समय मिलता था, बच्चों के एग्जाम इसी समय आ जाते हैं त्योहारों के आसपास ही, तो ये वो समय होता है जब आप जो लर्न करते हो वो आपको सही से लर्न हो जाता है। जल्दी उठे, अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, जो भी आपको याद करना है, सुबह का समय सबसे शुभ है, क्योंकि सूर्य महाराज कर्क राशि और तुला राशि दक्षिणायन होने जा रहे हैं, तो ये दक्षिणायन का वो समय है जब हम उनकी ऊर्जाओं से जुड़ के अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, अपने जो याद करने वाला लर्निंग का जो माइंड है वो पूरी तरह से सबकॉन्शियसली बढ़ा सकते हैं, तो आपका फोकस बहुत क्लियर होता है। तो सूर्य देव की आराधना भी इस समय करना, क्योंकि छठ पूजा भी आती है, तो इस समय हम सबको सूर्य देव की आराधना भी अपने फोकस को बढ़ाने के लिए करनी
0: चाहिए। संजय शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं, और ये समय भी बिल्कुल वैसा ही होता है, खास तौर पर दिवाली तक की अगर हम बात करें, कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो, इसके लिए क्या करना चाहिए?
3: देखो, दुर्गा का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करें। और ये नवरात्रों का समय ऐसा होता है उसमें आपको प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, जितना प्रसन्न रह करके माँ की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, उसके 9 रूपों की पूजा करेंगे, उससे आपके जीवन की नेगेटिविटी कट जाती है। कहते हैं कि दुख और दरिद्रता को अगर आपने त्यागना है जीवन में तो महागौरी की पूजा करने से, महागौरी की पूजा करेंगे तो आपका दुख और दरिद्र जो है दरिद्रता दूर हो जाएगी और लक्ष्मी की आपको अपने आप ही प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। अगर आप शादी चाहते हैं, जीवन के अंदर विवाह जरूर हो जाए, तो कात्यायनी की पूजा करें। संतान चाहते हैं, स्कंद माता की करें। और अगर रोगों से निवृत्ति चाहते हैं तो आप कुष्मांडा माँ की पूजा करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, सारे स्ट्रेस टेंशन सब जो पावर्स हैं वो सब खत्म हो जाए, उसके लिए माँ काली की उपासना करें। तो जो जिस रूप में माँ का स्वरूप को ध्यान करता है, अगर लक्ष्मी चाहिए तो आप लक्ष्मी का आवाहन करें और उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और सारी बाधाएं दूर करनी है तो सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्वता मनुष्य मित्र साधेन भविष्यति न संशया। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिकी मम सिद्धिम सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्ने सर्वप्रदर्शया विद्या रूपम, क्योंकि विद्या चाहिए तो विद्या का ध्यान करना है हमें। तो जो स्वरूप है माँ के, उन सारे स्वरूपों की आराधना करें जिससे कि माँ दुर्गा आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति सम्मान। कहा जाता है, अभी मावस की बात कर रहे थे हम लोग, मावस्या जब ही होती है जब सूर्य और चंद्रमा जब एक घर में आ जाते हैं तो अमावस्या तिथि हो जाती है। कहते हैं कि अंधकार और उजाला जब एक साथ जीवन के अंदर होगा तो जीवन के अंदर खुशी भी आएंगे गम भी आएंगे। तो मावस की रात के दिन जब आप प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के माँ की आराधना करते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए, तो आप दीप ज्योति का प्रज्वल प्रज्वल कर लेते हैं। और कहा जाता है दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हर्तु में पापम, प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते, शुभम करो तु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप नारायण नमो। तो इस प्रकार से आपको माँ की आराधना करनी है, पूजा करनी है, पाठ
0: हर रूप की आराधना आप कर सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। चलिए एक आखिरी सवाल चलते चलते नंता जी आपके पास आना चाहूंगी संक्षेप में। देखिए ये कहने को हमारे धार्मिक उत्सव है, लेकिन इसमें हर कोई शामिल होता है, हर धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। आप गुजरात देख लीजिए, बड़े बड़े पंडालों में डांडिया होता है। आप बंगाल चले जाइए, बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, हर पंडाल अपने आप में एक संदेश देता है। उत्तर भारत में मेले लगते हैं, लोग मेले में जाते हैं। एक तरीके से ये सोशल फेस्टिवल यानी कि सामाजिक फेस्टिवल है, ये क्या संदेश देता है पूरी दुनिया को?
1: ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बिकॉज ये पूरा जब हम गणपति बप्पा से शुरू करते हैं, फिर हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, फिर नव देवियां जो है नव दुर्गाएं आपके अंदर के अंदर की शक्ति को भी एक्टिवेट करती है, संचारित करती है, और आपके एनवायरमेंट यानी कि सोसाइटी की शक्ति को भी उसका भी समावेश लेके आती है कि नकारात्मक हटे पॉजिटिव आए। अब देखिए ये जेन जी से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी इसी से संबंधित, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव होकर के वही जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, परेशानियां आपको हैं, तो आप माँ शैलपुत्री का अवश्य आह्वान करें, उनकी पूजा करें। अगर आपको स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप आर्मी और पुलिस आदि में इंटरव्यू देना चाहते हैं, एग्रेशन वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें आप काम करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो आपने माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। नवरात्रि हैं, बहुत पॉजिटिव है, और बहुत क्विक क्विक मैं बता देती हूँ, लेकिन अगर आपकी लव लाइफ बिल्कुल खराब जा रही है और आपको एक स्टेडी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए, तो माँ चंद्र घंटा की पूजा अवश्य करिए, स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में।
0: नंदा जी अभी वक्त इतना ही है बिल्कुल, क्योंकि थ्रू आउट नवरात्र आप सभी लोग हमारे साथ रहेंगे ही, चर्चा हम करते रहेंगे हर माँ की आराधना किस तरीके से आपको करनी है, कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर गुड न्यूज टुडे पर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, और इस बार कितनी खुशियां लेकर आ रहा है ये फेस्टिव सीजन, कितना पॉजिटिव रहने वाला, इसी को लेकर हमने अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा की। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: अब एक ऐसे गॉड गिफ्टेड बच्चे से हम आपको मिलवाते हैं जो अपने माता पिता के साथ नोएडा में रहते हैं। ये 6 साल के हैं और नाम है अभियुक्त सिंह, जिन्होंने अपनी असाधारण मेमोरी और पहचानने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अभियुक्त ने महज 1 मिनट में देश विदेश के 40 प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की पहचान कर ये उपलब्धि हासिल की है।

0: मिशेल मेंडिस।
1: खेलने में इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट है?
2: क्रिकेट खेलने में।
1: खेलने में, देखने में नहीं?
2: नहीं, क्योंकि जब देखता हूँ ना तब मैं बोर हो जाता हूँ।
1: तो इतने सारे प्लेयर्स के नाम कैसे पता है अभियुक्त को फिर?
2: क्योंकि मेरी मम्मा ने सिखाया है।
3: नोएडा के रहने वाले अभियुक्त सिंह के छोटे कदम जरूर हैं, लेकिन उनकी मंजिल बहुत बड़ी है और अपनी काबिलियत और माता पिता की मेहनत के बूते बहुत तेजी के साथ वो कामयाबी बेमिसाल पा रहे हैं।
1: अभी पढ़ने में मजा आता है? कुछ पढ़ाई करने में अच्छा लगता है?
2: हाँ, थोड़ा थोड़ा।
1: थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बच्चा है, बहुत छोटा है, अभी सिर्फ 6 साल का है, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड अभियुक्त के नाम है। अभी हाल ही में 3 गिनीज रिकॉर्ड उसके नाम बैक टू बैक आए हैं और बहुत सारी चीजें ये 2 साल की उम्र से ही कर रहा है।
3: यानी जब अभियुक्त 2 साल 9 महीने के हुए तब 1 मिनट 48 सेकंड में उन्होंने 50 विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को पहचानने का रिकॉर्ड बनाया था। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसी उपलब्धि के लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी दर्ज किया गया। इसके बाद महज 4 साल 9 महीने की उम्र में अभियुक्त ने 100 देशों के झंडों की पहचान सिर्फ 86 सेकंड में कर दी। इस अचीवमेंट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। जब अभियुक्त 5 साल 1 महीने के हुए तो उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त के रिकॉर्ड भी बढ़ते गए। इस उम्र में उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में 90 देशों के झंडों की पहचान की। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। वहीं जब अभियुक्त 5 साल 4 महीने के हुए तो उन्होंने सिर्फ 43.35 सेकंड में 50 डायनासोर की पहचान की। इस उपलब्धि को लेकर अभियुक्त का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। अचीवमेंट्स की इतनी लंबी फहरिस्त, बेशक अभियुक्त ईश्वर की बख्शी हुई नेमत ही है, लेकिन उनकी माँ कहती है कि आज जहाँ उनका बच्चा है वहाँ तक पहुँचने के लिए कभी कभार उसको रिजेक्शन भी झेलनी पड़ी। फिलहाल तो इस होनहार बच्चे का आगे बढ़ने का सफर जारी है। आंखों में सपने हैं, सपने बड़े हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जोश और उत्साह भी है और माता पिता का साथ भी।
1: अभी अभियुक्त क्या प्लान कर रहा है, आगे क्या बड़ा करने वाला है?
2: मैं तो आगे जो कॉन्स्टेलेशंस होते हैं ना वो, उनका रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ।
1: ठीक है।
3: अभियुक्त की छोटी उम्र है, छोटे कदम है, लेकिन मुकाम बड़ा है और मंजिल अभी दूर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए जोश भरपूर है।
1: अच्छा लगता है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपका फोटो आ रहा है। हाँ, और अभी आप टीवी पे भी आने वाले हो।
2: टीवी में आने वाला हूँ?
1: नहीं पता था।
2: पहले तो फोन में आता हूँ, अब तो टीवी में आने वाला हूँ।
1: अच्छा लग रहा है तुम्हें?
2: बहुत मजा आ रहा है, मतलब मैं जब देखूंगा ना तो मुझे इतना अच्छा फील होएगा कि मैं टीवी में आ रहूं सामने।
3: बिल्कुल अभियुक्त, हम तो चाहेंगे ही कि देश ही नहीं दुनिया भी आपकी काबिलियत को सलाम करे। और इस छोटी सी उम्र में बड़ी सोच, यही तो आपका असली कमाल है।
1: ये सच बात है कि हम ऐसे बच्चों से उम्मीदें बहुत कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो बच्चा खुद आपको लीड करता है, आपको पहचानना है उसे। दूसरी बात कि अभियुक्त की मम्मी ने बताया कि वो कभी भी उसे फ़ोन नहीं देती हैं, मतलब वो फ़ोन में नहीं है, वो रील में नहीं है। पूरी बात का कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे की एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करते हैं तो हर बच्चा स्पेशल है। बाकी अभियुक्त के लिए हम यही कह सकते हैं कि ये शायद ईश्वर का एक तोहफा है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: तो भाई चाय आ गई है और चाय पर चर्चा की शुरुआत भी आज होगी, क्योंकि आज बहुत सारी अच्छी खबरें गुड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए। और सबसे बड़ी गुड न्यूज यहाँ कहें कि गोल्डन न्यूज तो हमें मिल रही है एशियन गेम से, तो आज का दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। एक के बाद एक लगातार गोल्ड मेडल जीत कर भारतीय खिलाड़ियों ने 7 समंदर पार देश का नाम रोशन कर दिया है। जीत की ये रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। चाय पर चर्चा में आज हम गोल्डन बातें, गोल्डन जीत की बातें करेंगे।
6: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, एक तरफ भारत के खिलाड़ी देश का मान बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय पायलट स्मिथ मचार की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक स्मिथ की तारीफ हो रही है, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्मिथ से बात की है और उनके हौसले की तारीफ की। क्या हुई दोनों के बीच बातचीत, ये भी आपको दिखाएंगे।
7: नमस्कार, मैं शुगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। अजय देवगन की दृश्यम 3 आज बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। दर्शकों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार था और मेकर्स ने दृश्यम के फैंस को मायूस बिल्कुल नहीं किया। रिलीज होते ही ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर छा गई है। इस फिल्म में क्या खास है, इस पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
6: एशिया खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी बरसा सोना। एशियाई गेम्स के समापन समारोह में भारत से नीरू ढांडा होंगी महिला ध्वजवाहक। पुरुष ध्वजवाहक के नाम का कल होगा ऐलान। जापान के नागोया में 4 अक्टूबर को क्लोजिंग सेरेमनी। झांसी में अखिल भारतीय मलखम प्रतियोगिता का शुभारंभ। 16 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने दिखाए दमखम। 3 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मचार से फोन पर की बात। फ्लाइट के अंदर हुई घटना की ली जानकारी। प्रधानमंत्री ने की अतुलनीय साहस की तारीफ। जम्मू कश्मीर के चुनाव अंजी पुल पर रेलवे ने रचा नया रिकॉर्ड, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत, सफल हुआ स्पीड ट्रायल। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का आगाज, लेडीज बस में खुद कंडक्टर बने सीएम थलपति विजय, महिलाओं ने टिकट के बदले मुख्यमंत्री को दी चॉकलेट। महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को 122वें जयंती पर देश कर रहा नमन। गांधी जयंती के मौके पर गुजरात के सूरत में निकाला गया अहिंसा मार्च, तमाम साधु संतों के साथ शहर की गलियों में निकले लोग, पशुधन की सुरक्षा के लिए उठाई आवाज़।

0: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत गोल्डन न्यूज के साथ, क्योंकि गोल्ड लगातार सोना बरस रहा है भाई। एशियन गेम से एक के बाद एक खबरें आ रही है और सिर्फ आज की अगर हम बात करें तो 5 स्वर्ण पदक हमारे नाम हो चुके हैं। हमारे आपको बता दें कि निशानेबाजी में यानी कि आर्चरी में और साथ ही साथ बॉक्सिंग में भी हमें मिल चुका है स्वर्ण। आज एशियन गेम्स का 14वां दिन है और ये भारत के लिए गोल्डन डे साबित हो रहा है, क्योंकि सुबह से जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 गोल्ड हम जीत चुके हैं। सुबह भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने रिकर्व इवेंट में भी गोल्ड दिलाया है। इसके बाद लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड जीता है। तो लगातार आपको हम बता दें कि ये खुशखबरी हमें मिल रही है 14वां दिन, लेकिन अब तक अगर हम बोले टोटल मेडल टैली में तो हम 5वें स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, 75 मेडल हमारे नाम हो चुके हैं।
1: भाई बधाई हो 3 बजे तक। हालांकि मैंने ये कहा था कि 7 गोल्ड मेडल सिर्फ आज के दिन में आए हैं, विच इज अ गुड न्यूज। अब लगातार मेडल टैली में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आई होप कि इस नंबर से बढ़कर हम नंबर 1 पर जल्दी पहुंच जाएंगे।
0: क्या बात है,
2: लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छी और एक तरीके से पूरे देश के लिए गर्व करने वाली बात है। वैसे एक और महिला बॉक्सर हैं परवीन हुड्डा, जिन्होंने गोल्डन पंच जमाया है मेंस बॉक्सिंग में। 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीतकर बॉक्सिंग में आज भारत की हैट्रिक पूरी कर दी। और इसके बाद रेसलिंग में सुजीत कालकल ने देश का नाम रोशन किया है। सुजीत ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड अपने नाम किया।
1: और देखिए महिला हॉकी की बात कर लेते हैं, यहाँ भी भारत गोल्ड से एक कदम की दूरी पर है। हालांकि इसके लिए भारत को चीन की चुनौती से पार पाना होगा। ये मुकाबला देखिए फिलहाल तो जारी है। भारत के पास महिला हॉकी में 44 साल बाद एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का एक सुनहरा मौका है। गुड न्यूज ये है कि भारत फिलहाल मुकाबले में 1-0 से आगे है। लालरिम सियामी ने जोरदार रिवर्स हिट मारकर गेंद को गोल पोस्ट पर पहुंचाया और पहले क्वार्टर में टीम इंडिया को 1-0 की बढ़त यहां पर दिला दी है। मतलब यहां पर उम्मीद है लड़कियों की एक और गोल्ड आ सकता है।
2: आई एम रियली एक्साइटेड। मैं चाहती हूं कि हॉकी में एटलीस्ट गोल्ड लेकर आए।
0: एक बॉक्सिंग का भी चल रहा है मैच, जिसमें आपको बता दें 5:30 बजे के आसपास रिजल्ट आने वाला है। बहुत उम्मीद है कि
2: हम इसी में गुड न्यूज दे देंगे।
1: ऑलरेडी गुड न्यूज दे रहे हैं, एक और गुड न्यूज के लिए रेडी हो जाते हैं,
0: हमारे शो में ही वो आ जाएगा शायद।
2: गोल्ड से एक कदम दूर है महिला हॉकी टीम भी। और सुबह से ही देखिए अब तक आज भारत के खाते में अगर देखा जाए तो 5 गोल्ड आ गए हैं। और कुछ गुड न्यूज हम आपको साथ साथ देते भी रहेंगे, क्योंकि उम्मीदें लगातार जारी। और इसी के साथ 15 गोल्ड समेत भारत के मेडल्स की संख्या 75 हो गई है। भारत मेडल टैली में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। एशियन गेम्स में भारत अब तक 15 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुका है। तो मेडल टैली में अगर देखा जाए तो शगुफ्ता चाह रही कि हम नंबर 1 पर हो, लेकिन चलिए 5वें नंबर पर आ गए हैं। 15 गोल्ड हमारे खाते में है, 25 सिल्वर हैं और 35 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये 15 का 16वां गोल्ड मैं चाह रही हूँ कि हो जाए फटाफट से।
0: लेकिन हो जाएगा, दोनों याद करिए अपने मतलब पुराने समय को जब हम ये सब गेम्स देखते थे, भारत पदक तालिका में कितना नीचे हुआ करता था एक समय, वो भी था। और हमें बड़ी निराशा होती थी कि हम इतना नीचे कैसे हैं, कब हम आएंगे। लेकिन आप सोचिए अंडर 5 मतलब 5वें पायदान तक भी आ पाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है।
1: पहले वही मैं वही कह रही हूँ कि पहले हम बातें करते थे कि डबल डिजिट में है इंडिया, अब सिंगल डिजिट में हम जल्दी पहुंच गए हैं ना। सिंगल से लेके पहुंच जाएंगे नंबर
2: हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दिया गया है ना, वो वाकई काबिले तारीफ और उसका रिजल्ट अब दिख भी रहा है।
0: इसमें सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि
1: मुझे लगता है पहले आपको याद है कि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट को हम एक खेल के तौर पर देखा करते थे।
2: क्रिकेट से पहले हॉकी हुआ करता था, फिर कबड्डी भी था, लेकिन फिर उसके बाद क्रिकेट वाला वेव जब हमने
1: बाकी गेम
2: वर्ल्ड कप जीता था।
1: अब ऐसी ऐसी गेम्स जिनके बारे में हमने सुना नहीं था, वहाँ पर एथलीट्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग।
0: जेवलिन थ्रो में हम सोच भी नहीं सकते थे,
1: मैंने वुशु नहीं सुना था।
0: तो तमाम वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं बर्थडे गर्ल की, लवलीना की बात कर देते हैं, जिन्होंने आज अपने जन्मदिन पर देश को गोल्ड मेडल का तोहफा दिया है। लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग में चीन को बाउजी, चीन की जो बाउजी हैं उनको 5-0 से हराया है।
1: बिल्कुल, देखिए इस जीत के साथ ही लवलीना एशियन गेम्स बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बन गई है। इससे पहले 2014 में मैरी कॉम ने यह कीर्तिमान अपने नाम किया था।
3: उनतीस साल पहले आज के ही दिन जन्मी लवलीना बोरगोहेन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को खेलों के स्वर्णिम इतिहास से भी जोड़ दिया है। भारत की इस स्टार बॉक्सर ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को गोल्ड मेडल का तोहफा दिया है। एशियन गेम्स के 14वें दिन लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन की बाओ जी को 5-0 से हराया। इसी के साथ भारत का एशियन गेम्स में महिला बॉक्सिंग गोल्ड का 12 साल का इंतजार खत्म हुआ। इससे पहले 2014 के इचियोन एशियन गेम्स में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था। जाहिर है लवलीना एशियन गेम्स बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली मैरी कॉम के बाद दूसरी महिला बॉक्सर बन गई हैं। लवलीना का ताल्लुक असम के गोलाघाट के बारो मुखिया गांव के किसान परिवार से है। लवलीना गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करती हैं और 75 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में खेलती हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में नाम कमाने वाली इस स्टार बॉक्सर ने कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। लवलीना ने 2018 और 2019 के AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद टोक्यो 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया। 2023 IBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी लवलीना ने गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली इस स्टार बॉक्सर को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट की जुझारू खिलाड़ी आज के युवाओं की रोल मॉडल बन चुकी है। जापान के आईची नागोया में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर कामयाबी का सुनहरा इतिहास रचकर लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है। उनका बेजोड़ जज्बा साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि आने वाले समय में लवलीना बॉक्सिंग रिंग में कामयाबी के अभी कई और पंच जड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए, लवलीना बोरगोहेन के अलावा परवीन हुड्डा ने भी आज महिला बॉक्सिंग में गोल्ड जीतकर एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन किया है। परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे की चीन नियन चिन को 3-2 से मात देकर गोल्ड जीता और इसी के साथ परवीन हुड्डा ने मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन के साथ एशियन गेम्स की गोल्डन गर्ल्स क्लब में एंट्री कर ली है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि पहला मौका है जब एशियन गेम्स में दो महिला बॉक्सर्स ने अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया है।

0: और चलिए फिर से आपको एक बार हम अपडेट दे देते हैं एशियन गेम्स में भारत के लिए आज का दिन क्यों गोल्डन डे साबित हो रहा है और क्यों इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो मेडल टैली का ब्यौरा इसकी गवाही दे रहा है। सुबह से अब तक भारत 5 गोल्ड जीत चुका है। सुबह भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने रिकर्व इवेंट में भी गोल्ड दिलाया। इसके बाद लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड जीता।
1: और देखिए एक और महिला बॉक्सर परवीन हुड्डा ने गोल्डन पंच जमाया। मेंस बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीतकर बॉक्सिंग में आज भारत की हैट्रिक पूरी कर दी है। इसके बाद रेसलिंग में सुजीत कलकल ने देश का नाम रोशन किया। सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
0: तो सिर्फ आज की बात करें तो 5 गोल्ड हमारे हिस्से आ चुका है और 75 मेडल्स ऑफकोर्स
1: और छठे गोल्ड की हमें
0: 5 आ चुका है, छठा आ सकता है। तो हो सकता है हमारे शो के बीच आ
2: जाए। हॉकी से हम एक कदम दूर हैं बस।
1: चलिए क्रिकेट लवर्स के लिए भी एक गुड न्यूज आई है, वो भी दे देते हैं कि एशियन गेम्स में क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का मंच सज गया है। कल जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया का पाकिस्तान के साथ सामना होगा और दांव पर है गोल्ड मेडल। और यंगिस्तान हर हाल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीतने के लिए भाई बेताब नजर आता है। जब पाकिस्तान होता है सामने तो फिर
2: महामुकाबला हो जाता है, महामुकाबला। और आप यकीन मानिए कि आज से ही चाहे हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उनकी एक्साइटमेंट बढ़ गई हो।
1: इधर एक्साइटमेंट इधर भी है
0: बैठ के। और ये सोचिए ना, अच्छा तो ये है कि वीकेंड भी है, कितना मजा आएगा, कोई मिस नहीं करेगा।
2: अब आप देखिए जितने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच हुए
0: वीकेंड में होते हैं।
1: घर बैठ के आराम से चाय पार्टी करो और अपना समोसा पार्टी चाय पार्टी और देखो मैच।
2: ये जितनी एक्साइटमेंट हम लोग के लिए इंडिया पाकिस्तान की होती है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी उतनी एक्साइटमेंट होती है। और अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ज्यादा मैचेस भी वीकेंड्स पे ही होते हैं।
0: बिल्कुल। तो आपको बता दें जिस अंदाज में सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रन से हराया है, उससे साफ है कि एक बार फिर टीम इंडिया एशियन गेम्स में गोल्ड जीतेगी। सोने पर सुहागा ये कि इस बार यंगिस्तान के सामने, जैसा हमने आपको बताया, पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीतने का मौका है, जो कि होना ही।
3: एक बार फिर जोश आसमान छुएगा, एक बार फिर जुनून क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर फिर आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। एशियन गेम्स के इस महामुकाबले में गोल्ड दाव पर है, यंगिस्तान तैयार है। जाहिर है ब्लू ब्रिगेड को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं, क्योंकि मुकाबला उस विरोधी से है जिससे न दिल मिलते हैं न हाथ। जिस अंदाज में श्रीलंका को 124 रन से रौंदकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि कल यानी शनिवार को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे पाकिस्तान को जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया के तूफान का सामना करना पड़ेगा। फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में है। बैटिंग लाइनअप में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे धुरंधर हैं, तो जसप्रीत बुमराह की वापसी से गेंदबाजी को वही पुरानी धार मिल चुकी है जो किसी भी स्थिति में मैच जिता सकती है। वहीं पाकिस्तान ने बाबर आजम, सलमान अली आगा के बाद कप्तानी के मोर्चे पर अब साहिबजादा फरहान पर दाव चला है। T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर एक टीम है और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भी। यूं तो ब्लू ब्रिगेड का सामना छठे नंबर की पाकिस्तान टीम से है, लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लिहाजा टीम इंडिया पूरी तरह मुस्तैद है और पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने को बेताब है। रिकॉर्ड्स के लिहाज से देखा जाए तो T20 में अब तक 17 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, जिनमें से 14 बार भारत जीता है। ये आंकड़े पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी हैं, लेकिन भारतीय टीम साहिबजादा फरहान एंड कंपनी को एशियन गेम्स के मैदान पर भी पानी पिलाने को तैयार है और एक बार फिर ये साबित करने को बेताब है कि क्यों टीम इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है। दांव पर गोल्ड है और टीम इंडिया 20वें एशियन गेम्स में भी पिछली बार के एशियन गेम्स की सुनहरी कामयाबी को दोहराना चाहेगी, जब हांगझोऊ एशियन गेम्स में उसने गोल्ड जीता था। लेकिन इस बार टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान को चित करने का मौका है। अब मौका है तो टीम इंडिया दस्तूर निभाने को भी तैयार है, पाकिस्तान को पटक कर गोल्ड झटकने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए जरा रिकॉर्ड्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आईसीसी ने मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का स्केड्यूल जारी कर दिया है और अगले साल इन्हीं दिनों में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा। 2 अक्टूबर से क्रिकेट के इस महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है जिसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी।
1: बिल्कुल, चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी टीमें होंगी। भारतीय टीम 7 अक्टूबर को केप टाउन से अपने अभियान का शंखनाद करेगी जहां उसका सामना डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इसके बाद अगले ग्रुप मैच में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होगा जिसका हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से इंतजार रहता है। 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स स्टेडियम में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी। फिर 14 अक्टूबर को सेंचुरियन में भारत का अफगानिस्तान के साथ मैच है जबकि 17 अक्टूबर को ब्लोमफोंटेन में क्वालिफायर ए के खिलाफ भारत का मैच होगा और ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में भारत का सामना 24 अक्टूबर को होगा जिम्बाब्वे के साथ।
0: तो आपको बता दें कि जापान में एशियाई खेलों में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पदकवीर जब स्वदेश लौटे तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। खिलाड़ियों के स्वागत में ढोल नगाड़े बजे, फूल मालाएं पहनाई गई और पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। देखिए इस खास रिपोर्ट में।

0: भारत माता के जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की बरसात, कोई फूल मालाएं पहना रहा है तो कोई मुंह मीठा करा रहा है। क्योंकि ये मौका खास है। ये तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हैं। जापान के आईची नागोया एशियाई खेलों में मेडल जीतकर और तिरंगा लहराकर जब एथलीट्स स्वदेश लौटे तो पूरा माहौल ही खुशी से सराबोर हो गया। गले में देश की शान बढ़ाते चमचमाते मेडल्स और चेहरे पर जीत की ये मुस्कान एशियाई खेलों में कामयाबी की कहानी साफ बयां कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर प्रसन्नता इस बात की है कि अपने ही देश की धरती पर इतना भव्य स्वागत हो रहा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है और सभी इकट्ठे हो रखे हैं मेरे लिए। मेरे को पता नहीं था कि इतना सब इकट्ठे होंगे।
0: ये वो पल है जिसके लिए इन एथलीट्स ने परसों पसीना बहाया और अब जब मेडल लेकर ये स्वदेश पहुंचे हैं तो इनकी खुशी देखते ही बनती है।
1: परफॉर्मेंस देनी थी मैं वैसी तो नहीं दे पाई, पर खाली हाथ से अच्छा मेरी जिद बस यही थी कि मेरे को पोडियम पे खड़ा होना है और मैं अपने देश के लिए मेडल जीत के लाई।
2: बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला एशियन गेम्स था और मैं पहले एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल के साथ आई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
3: मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछली बार भी मैं एशियन गेम्स में गई थी तो वहाँ भी मेरा सिल्वर था और इस बार भी हम लोगों का टीम का सिल्वर मेडल है तो मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एयरपोर्ट पर पदक वीरों के इस्तकबाल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान गर्व से झूम रहा है। खिलाड़ियों की एक झलक पाने और उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए प्रशंसकों में भी खासा उत्साह नजर आया। हर कोई अपने चैंपियन के साथ इस यादगार पल को कैमरे में कैद करना चाहता था।
4: बहुत अच्छा लग रहा था पर मुझे था भी मैं गोल्ड जीतूंगा। सिर्फ 17 सेंटीमीटर से मेडल गोल्ड चला गया। बारिश भी बहुत हो रही थी पर मैं देश के लिए मेडल आया, मुझे खुशी आई। मेरी जो सिलेक्शन थी ना इंटरस्टेट पे, मैं थर्ड रह गया था काफी इंजरी की वजह से। बहुत लोग सवाल कर रहे थे इससे क्यों लेकर जा रहे हो, मैं इसलिए बोला था टूर इज हियर। टाइगर अभी जिंदा है।
5: बहुत बहुत खुशी वाली, मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है भी मैं अपने देश के लिए मेडल जीत पाया और बस आगे ही है और अच्छी मेहनत करेंगे और देश के लिए मेडल जीतेंगे।
6: बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दो मेडल आए हैं एशियन गेम में। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है और हम दोनों ने ठीक किया वहाँ पे और दो हमारे देश के लिए मेडल जीत सके। दो
0: इन खिलाड़ियों के गले में सजे पदक सिर्फ जीत की निशानी नहीं बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और देश के लिए किए गए शानदार प्रदर्शन की कहानी भी बयां कर रहे हैं।
7: सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और इस बार मैं अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाई हूँ एशियन गेम में, लेकिन मैं नेक्स्ट एशियन गेम में और आने वाले कॉम्पिटिशन में प्रयास करूँगी कि मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाऊँ।
8: बहुत खुशी हो रही है कि इतने टाइम बाद इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेके आया हूँ, काफ़ी खुश हूँ। स्पोर्टिंग सर हम लास्ट दो मंथ से US में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो AFI ने स्पोर्ट करके हमें वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा, सो काफ़ी एक्सपीरियंस कुछ सीखने को मिला वहाँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एलीट एथलीट्स के साथ, सो काफ़ी कुछ हेल्प कर दी उसने कि टैक्टिक्स और टेक्निकल रेस कैसे भागी जाती है। सो
9: बहुत अच्छा क्योंकि अभी आप रिसेंटली कॉमनवेल्थ में मिस हो गया मेरा मेडल, तो ये मेडल मेरे लिए बहुत खुशी लेके आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, कॉम्पिटिटर्स है लेकिन हाँ ये है कि भी हमें हमारे पास एक और मौका है कि भी हम बेटर करें और आगे के टाइम में और अच्छा करके मेडल का रंग बदले।
0: एयरपोर्ट पर पहुंचे खिलाड़ियों के परिजन भी उत्साह से लबरेज नजर आए।
10: बुआ जी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम उसके स्वागत के लिए यहाँ आए। ऐसी भतीजी बेटी भगवान सबको दे, हमें बहुत ज़्यादा गर्व है उस पर और मतलब हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है मतलब कि उसने हम यहाँ तक भेजा हमें और अपने भारत के लिए जो है मेडल लेके आए।
0: एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर लौटे पदक वीरों का सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि चेन्नई में भी शानदार स्वागत हुआ। बीती रात जब ये एथलीट चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे तो धूमधाम से इनकी अगवानी की गई। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के अधिकारी भी इस अवसर पर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे।
11: feeling very happy. This is first Tamil Nadu player to badminton team. It's a bronze medal. I feel very happy and proud.
12: How did you feel after winning?
11: I feel very happy. I dedicate to this medal for who is behind me. They supporting every time. So I dedicate to all that. This medal I dedicate to all the people.
0: देश का नाम रोशन कर लौटे इन खिलाड़ियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर परिजनों के अलावा भारी तादाद में खेल प्रशंसक भी मौजूद रहे। पारंपरिक तरीके और ढोल नगाड़ों के साथ पदक वीरों का अभिनंदन हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा और इन खिलाड़ियों को भी आने वाले वक्त में और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए हौसला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
13: देखिए बात 9/11 जैसे हमला टालने वाले भारत के बहादुर पायलट स्मित मछार की कर लेते हैं। हर और उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं की तारीफें हो रही है। आज खुद प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत भी की है। 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था जब विमान, तो फ्लाई दुबई में जांबाजी की एक मिसाल उन्होंने पेश की है और क्रू मेंबर समेत कुल 180 यात्री सवार थे जिनकी जान बचाई गई है। आज इनफैक्ट ये ऑफिस की हमारी खबरों की बात नहीं है, हम बाहर भी अगर किसी से मिल रहे हैं ना, हर कोई आके ये कह रहा है कि वाकई कमाल कर दिया है।
14: गूस बम्स आ गए। मैं कल इनफैक्ट शो में नहीं थी, बट जब ये न्यूज सुनी और जो प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से उनको मॉरली बूस्ट किया है वो सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लगता है कि अप्रिशिएट किया जा रहा है और सराहा जा रहा है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपकी क्विक सेंस कैसे काम करती है।
15: एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया छाया हुआ है, कहीं कहीं आप देख लीजिए कोई भी बस मचार ही मचार नजर आ रहे हैं,
13: लेकिन वाकई बहादुरी की दाद
14: वाकई। बिल्कुल, चलिए ये करेजियस मोमेंट जो है बहुत रेयर होते हैं, बट जब होते हैं तो अप्रिशिएट किया जाता है इनको। अब पीएम मोदी ने आज कैप्टन स्मित मछार से बातचीत की है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कैप्टन स्मित ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरी घटना की जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी और मछार के बीच में क्या बातचीत हुई।
16: स्मित नमस्ते।
17: नमस्ते सर,
16: कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है?
17: सर सब ठीक है, सर सब ठीक है।
16: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है।
18: महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
17: यस सर,
18: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
17: सर मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं और मेरे को मेरी ऑफिसाई कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं 17 साल से जहाज उड़ा रहा हूँ, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी ये जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मित कर ले दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोला था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मर दे सकता।
18: स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता, आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है।
15: हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों पर छा गई दृश्यम 3।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं जाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में बरसा सोना।

इसी के साथ आज की इस संध्याकालीन प्रार्थना सभा हम समाप्त करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस पुनीत प्रांगण में पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन है।

Gandhi Smriti is filled today with the vibration of prayer, reverence and joy and warmth. As people of many faiths are together here on the prayer ground, the air carries the sound of prayer. Honorable Vice President and Honorable Prime Minister are now meeting the presenters of the Interfaith Prayer Meeting. Representatives of many faiths and traditions are present here, having filled this gathering with their prayers today. With folded hands, the Honorable Vice President and the Honorable Prime Minister greet each of them warmly. Gandhi Smriti ka yah prangan aaj shraddha, ullas aur aatmiyata se bhara hai. Ab mananiya uparashtrapati aur mananiya pradhanmantri उन बच्चों की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद सुबह से इस क्षण की प्रतीक्षा में थे. बच्चों की आंखों में उत्सुकता है, चेहरों पर मुस्कान है और कई नन्हे हाथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए उठे हुए हैं. द चिल्ड्रंस एक्साइटमेंट इज अ जॉय टू वॉच. सम स्टेप फॉरवर्ड टू शेक हैंड्स, while others are happy just to catch a glimpse. The glow on these young faces shows that Bapu's message is reaching the hearts of a new generation. Bapu held a special affection for children and they too loved him in return. On his birth anniversary, in his own memorial, this meeting of children and the nation's leadership feels like a continuation of that affection. Bapu's life and words remain as relevant as ever. Bachchon aur rashtra ke netritva ka yah milan मानो बापू के बच्चों के प्रति जो स्नेह था उसकी निरंतरता को दर्शाता है. प्रधानमंत्री झुककर बच्चों से बातचीत करते हुए, यह क्षण इस संध्या के अति सुंदर क्षण. जो उत्साह बच्चों के चेहरे पर दिखता है वही उत्साह यहां माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर भी दिख रहा है. This affectionate exchange is indeed one of the loveliest moments of this evening. The joy and

0: तो यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तूने बॉडी सेवियो से ली थी,
2: सर हार्ट अटैक लो हो जाए।
3: देखिए लॉन्ग वीकेंड है, हालांकि आज हम लोग हैं ऑफिस में, पर शगुफ्ता ने हम दोनों का प्लान बना दिया और हमें बता दिया कि हमें इस वीकेंड क्या करना है। हमें इस वीकेंड देखनी है दृश्यम 3, क्योंकि मैडम देख आई। चलिए ओवर टू यू,
4: पूछना चाहते हैं।
5: नहीं नहीं कुछ चीज हमारे लिए छोड़ दीजिएगा।
3: इन्होंने क्या बोला हमें? इन्होंने बोला कि भाई मस्ट वॉच
5: है। यस,
3: अब वो क्यों है
5: बताइए।
4: देखो विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स, मैं स्पॉइल नहीं करूंगी बिकॉज आई वांट यू टू एंजॉय द मूवी थरली। बहुत अच्छी मूवी है, अजय देवगन को देखकर मजा आएगा। जयदीप अहलावत ने सीटी मार परफॉर्मेंस दी है, मतलब इतने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको उनके देख के क्रश हो जाएगा। वो इतने अच्छे लग रहे हैं मूवी में,
5: हैंडसम लग रहे हैं,
4: इट्स सो गुड। मतलब मैं विदा, मतलब मैं नहीं बता रही कुछ,
3: जयदीप ने महफिल लूट ली।
4: हाँ प्लीज कर देना, मेरी तरफ से भी कर देना कि सो गुड, ही इज सो गुड। मूवी के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखा है ना, डेफिनेटली थर्ड पार्ट तो एंजॉय करने वाली हैं।
5: देखिए ये जो सिर्फ कैरेक्टर्स, आपने तो देख ही ली मूवी, इसलिए आप जो बता रही है ऑफकोर्स वो बहुत मायने रखता है, लेकिन सिर्फ ये तीन फ्रेम आप जरा देख लीजिए। तब्बू को देखिए, अजय देवगन को देखिए, जयदीप अहलावत, ये तीन कैरेक्टर्स है ना, डिफाइन कर देते हैं कि मूवी कैसी होने वाली है। और वो भी जब हम पहला दूसरा पार्ट देख चुके हैं, आप कह रही हैं कमाल की एक्टिंग है,
4: तो प्रकाश राज जी की एंट्री भी हुई है, उनको भी जरा देख लीजिएगा वकील के किरदार में, वो भी मजा आने वाला है। उम्दा स्टार कास्ट है, उम्दा एक्टिंग है, उम्दा कैरेक्टर्स है, उम्दा स्क्रिप्ट है।
3: चलिए आप ही की रिपोर्ट देख लेते हैं फिर।
4: चलिए
6: मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, यहाँ पर है स्पॉइलर, बट मैं जेएनडे की ऑडियंस का, फैंस का मूड स्पॉइल नहीं करूंगी, बट सिर्फ एक बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगी, अनदर मास्टरपीस, एक ऐसी फिल्म जो आपको थिएटर में आके जरूर देखनी चाहिए। प्लीज वेट मत कीजिएगा कि कभी आएगी, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप देखेंगे, यू हैव टू कम टू द थिएटर एंड वॉच दिस फिल्म, ऑसम।
7: दृश्यम के इस खेल में हमने इतने दृश्य देख लिए कि हम प्रोसेस ही कर रहे हैं अभी तक कि हम क्या देख के आए हैं। अ मस्ट वॉच फिल्म, जितनी मुझे लगता है ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है, इस देश की एक्सपेक्टेशन है, इस फिल्म से ज़रूर पूरी होने वाली है। भाई हमारी तो पूरी हो गई है, मतलब हम अभी प्रोसेस ही कर रहे हैं कि हम क्या देख के आ गए एग्जैक्टली।
6: कई बार ना लाइफ में ऐसे होता है ना कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता कि एक सिचुएशन में से निकलेंगे, दूसरे में पहुंचे, तीसरे में पहुंचे, चौथे में पहुंचे, फिर करें क्या। ये फिल्म आपको बताएगी आपके दिमाग के साथ खेलना कैसे है, उसके बाद कंक्लूड कैसे करना है। एक फैन मिल गए हैं हमें, हार्ड कोर डाई हार्ड फैन ऑफ अजय देवगन, जो पहले भी मिले थे। कैसी लगी मूवी?
8: जैसा मैंने बोला था एकदम कमाल है, सुपर डुपर है, फुल पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल है।
6: अच्छा विदाउट गिविंग देम एनी स्पॉइलर, मुझे ये बताओ कि ये मूवी देखने क्यों आए?
8: मूवी देखने इसलिए आए क्योंकि दृश्यम 1 दृश्यम 2 डिसअपॉइंट नहीं करती, ये वाली तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं।
6: अजय देवगन कैसे लगे?
8: अजय देवगन बहुत अच्छे लगे। एंड मैं एक चीज एड ऑन करना चाहता हूँ, फिल्म छोटी है और क्रिस्प है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सेकंड के लिए भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ब्रेक ले लें, आप अपने फोन को चला लें, आप स्क्रीन से चिपक के बैठे रहते हैं।
6: कैसी लगी मूवी?
9: बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
6: 10 में से कितने मार्क्स देंगे?
9: 5 में से 5।
6: पार्ट 1 पार्ट 2 देखा था?
9: देखा था, बहुत अच्छा था, वो भी अच्छा था, मजा।
6: लेकिन पार्ट 3 से जितने एक्सपेक्टेशन थी उस पे खरे उतरे?
9: खरे उतरा, ठीक है, मतलब सस्पेंस दिखाया ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं सोच रहा था मतलब कि पकड़े जाएंगे या इनका परिवार जेल में जाएगा, अब केस हार गया, लास्ट मोमेंट तक लगता रहा हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन जो उसने पासा पलटा है ना, बॉडी भी वहाँ पे आ गई और मतलब कि परिवार ही बच गया, केस भी जीत गए और वो हार गए, तमड़ा वकील हार गया, मतलब मजा आ गया।
6: देखिए एक्साइटमेंट इज ऑन द पीक क्योंकि हम निकल आए हैं थिएटर के बाहर, थिएटर के मतलब राइट आउटसाइड द थिएटर मूवी देखकर। मैं और प्रांजलि जितने एक्साइटेड है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, हम रेडी हैं आपको स्पॉइलर देने के लिए, बट हम देंगे नहीं क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर फैंस हैं। सर आपका नाम?
10: मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है।
6: जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ फ्रेम में है। जितेंद्र जी कैसी लगी मूवी?
10: कैसी क्या लगी, बहुत जबरदस्त लगी, समझ लो।
6: कितनी जबरदस्त लगी?
10: पहला पार्ट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, भाई बांधे रहा इस फिल्म ने मुझे। हर 2 मिनट बाद लगता था क्या होगा पता नहीं फिल्म के अंदर। अजय देवगन के लिए तो भाई जय है।
6: मैं पता क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अजय देवगन ना विदाउट हैविंग मच डायलॉग्स इन द फिल्म, हालांकि डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं, उन्होंने आंखों से जो कमाल कर दिया है, आंखों से जो अदाकारी की है उन्होंने, एक्सप्रेशन ये उसके बारे में जरा बताइए।
10: देखिए आंखों से तो काजल का, उसने आंखों का काजल चुरा लिया तो हमारा भी दिल चुरा लिया। एक्चुअली अजय देवगन की जो एक्टिंग है, जो उसकी आंखों का देखने का जो स्टाइल है ना, तो हम तो वहीं फिदा हो जाते हैं। मैं तो सच में उसी को देखने आया था इस बार, किसको धोया है उसने इस फिल्म के अंदर।
6: वही रिएक्शंस पे रिएक्शंस, एक्साइटमेंट पे एक्साइटमेंट, अनकंट्रोलेबल है ये। जिनिया है मेरे साथ, जिनिया कैसी लगी मूवी?
11: यार मूवी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद
6: जिंदाबाद। अच्छा सबसे अच्छा क्या लगा?
11: यार मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे ये जयदीप अहलावत इस बार बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार, इतने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं ना, और जो बेइज्जती हुई है ना उनके मजा ही आ गया।
6: मैं सच्ची बताऊं व्हाइट शर्ट में क्या लगे हैं, और उनकी एंट्री ओए होए होए ना
11: यार, चाहे उनका फेस जैसा भी लगता हो बट ऑरा है भाई बंदे का, स्वैग है।
6: अच्छा पार्ट वन पार्ट टू देखा था?
11: हाँ पार्ट वन पार्ट टू देखा था।
6: थ्री ने एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया?
11: देखो याद दिला देती हूँ गाइज, हम 2 अक्टूबर को पंजी गए थे स्वामी चिन्मय जी के आश्रम, वहाँ पे हमने उनका सत्संग सुना, फिर हमने पाव भाजी खाई, फिर हमने मूवी देखी, और फिर उसके बाद हम 3 अक्टूबर को पंजी से वापस आए, जहाँ पे हमने ATM से पैसे निकाले। ये कहानी थी।
6: एक काम करो इनको जरा कास्ट कर दो मूवी में, क्योंकि सारे के सारे डायलॉग जीनिया को याद है। जीनिया, अजय देवगन और जयदीप अहलावत में से कौन बेस्ट लगा?
11: यार अजय देवगन के जो आईज इंटेंस, और उनकी वो जो शरारती वाली स्माइल है ना, जब सबकी बैंड बजती है और जब सबकी बेइज्जती होती है, वो एक स्माइल शैतान वाली, वो अच्छी लगी। बट जयदीप ने जो, यार जयदीप अच्छे लग रहे हैं।
6: जयदीप पे ना आपका दिल आ जाएगा, मैं सच्ची कह रही हूँ, हम लड़कियों का दिल जयदीप अहलावत पे आ जाएगा, ये कभी सोचा नहीं।
11: अभी नहीं, मेरे को जयदीप अच्छे लगते हैं, नो डाउट। मुझे वो OTT में जैसा काम करता है ना, मुझे वो पसंद आते हैं।
3: ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के उस पार आपको रौनक दुर्गा पूजा की दिखाएंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए, दुर्गा पूजा का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। नवरात्र में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन देश के तमाम शहरों में उत्सव के रंग अभी से दिखने लगे हैं।
2: बिल्कुल, देखिए हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आपको दिखाते हैं झांसी की रिपोर्ट, जहां बंगाली शैली में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इन प्रतिमाओं की डिमांड खूब है।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व करीब आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर पिछले करीब 34 वर्ष से एक बंगाली परिवार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। अहम बात यह है कि प्रतिमाओं के निर्माण और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सामान कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
1: यहाँ पे जो भी मूर्ति बनता है सब प्योर मिट्टी का बनता है, ना पीओपी यूज होता है, ना कुछ मतलब जो हार्मफुल वाला जो कलर होता है उस टाइप का कोई कलर भी नहीं यूज करते। हम पूरा जो इको फ्रेंडली कलर होता है उस टाइप का कलर भी यूज करते हैं, पूरा मिट्टी का बनाते हैं। और जो हमारा सिंगार वगैरह भी जो होता है वो सब कलकत्ता से आता है। और मिट्टी वगैरह हम जो 4-5 प्रकार का मिट्टी यूज करते हैं उसमें से 2-3 प्रकार का मिट्टी हम कलकत्ता से ले आते हैं, बाकी जो काली मिट्टी और इधर का लाल मिट्टी वो इधर से ही लेते हैं। और इसीलिए हम लोगों का मिट्टी और मूर्ति क्या है जो भी होता है वो ज्यादा से ज्यादा घास और मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें ना कोई पीओपी का यूज है, हल्का भी होता है और पानी में जाने के साथ साथ एक गल भी जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए हम लोगों का मूर्ति में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं यूज होता है इसमें।
0: झांसी की इस वर्कशॉप में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कम से कम 12 से 14 कारीगर इसमें लगे रहते हैं। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैलियों में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहाँ पर खास डिमांड है।
2: मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़कर अब जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
0: मूर्तिकारों की माने तो इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा की करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इनमें से लगभग 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की इन प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में भी है। लिहाजा माँ दुर्गा की ये प्रतिमाएं इस बार इलाके के ज्यादातर पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। मुलाकात होगी मंडे शाम 5 बजे चाय पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: क्या कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
11: गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन। खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट। गांधी जयंती के मौके पर गुजरात के सूरत में निकाला गया अहिंसा मार्च। तमाम साधु संतों के साथ शहरों की गलियों में निकले लोग, पशुधन की सुरक्षा के लिए उठाई आवाज। एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक। कुश्ती आर्चरी के साथ विमेंस हॉकी में भी सोना। एशियाई गेम्स के समापन समारोह में भारत से नीरू ढांडा होंगी महिला ध्वजवाहक। पुरुष ध्वजवाहक के नाम का कल होगा ऐलान। जापान के नागोवा में 4 अक्टूबर को होगी क्लोजिंग सेरेमनी। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। कुंभारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 1 से 25 फीट ऊंची मूर्तियां। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का आगाज। लेडीज बस में खुद कंडक्टर बने सीएम थलपति विजय। महिलाओं ने टिकट के बदले मुख्यमंत्री को दी चॉकलेट। जम्मू कश्मीर के चिनाब अंजी पुल पर रेलवे ने रचा नया रिकॉर्ड। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत। सफल हुआ स्पीड ट्रायल। दरभंगा के लहेरिया सराय स्टेशन पर शुरू हुआ नमो भारत ट्रेन का स्टॉपेज। रेलवे अधिकारियों के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को कहा थैंक यू।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
11: जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। विमेंस हॉकी में 44 साल के बाद भारत ने फाइनली गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। देखिए एक के बाद एक आज गोल्ड मेडल की झड़ी लगातार लगती जा रही है। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक और गुड न्यूज आपको दे देते हैं, जिसका हम 5 बजे लगातार जिक्र कर रहे थे कि विमेंस हॉकी में भारतीय एथलीट्स ने कमाल करके दिखाया है। 44 साल के बाद भारत ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया है। चीन को भारतीय टीम ने मात दी है 1-0 से। यह मैच अपने नाम किया है और 44 साल बाद विमेंस हॉकी ने फाइनली गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। विमेंस हॉकी में कमाल हुआ है, 44 साल का सूखा खत्म कर दिया है इस टीम ने। देखिए टीम जो है लगातार लय में दिखाई दे रही थी, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उम्मीदें भी यही थी कि भारतीय विमेंस हॉकी टीम जो है वो दमदार प्रदर्शन करके दिखाएगी और गोल्ड मेडल पर कब्जा जरूर करेगी। इस टीम ने टीम वर्क करके दिखाया और यह साबित कर दिया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। उसी का नतीजा आप सबके सामने है कि एशियन गेम्स में एक बार फिर से गोल्ड मेडल हमारे हाथ आया है। आज के दिन का ये 6वां गोल्ड मेडल है और विमेंस हॉकी में भारतीय टीम को मिला है ये 6वां गोल्ड मेडल। भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया है। तो 42 साल बाद आपको बता दें ये सूखा खत्म हुआ है और विमेंस हॉकी में भारतीय टीम ने, इन लड़कियों ने कमाल करके दिखाया है। विमेंस हॉकी में भारत के खाते में आया है गोल्ड मेडल। चीन की टीम के साथ सामना हुआ और ये टक्कर का मैच यहां पर चल रहा था, लेकिन भारतीय एथलीट्स जो हैं ये विमेंस हॉकी टीम पूरी तरह लय में दिखाई दी। अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस टीम ने कब्जा कर लिया है गोल्ड मेडल पर। भारत के खाते में आज के दिन का ये छठवां गोल्ड आया है एशियन गेम्स में। तो विमेन्स हॉकी से ये गुड न्यूज एक बार फिर से आपको बता देते हैं, भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया है और भारतीय टीम ने सोना अपने नाम कर लिया है। 42 साल के बाद विमेन्स हॉकी टीम का ये जलवा लगातार कायम है और गोल्ड मेडल इन लड़कियों ने जीत लिया है। ओलंपिक 2028 में भारतीय टीम को एंट्री भी मिल गई है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 44 साल बाद विमेन्स हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विमेन्स हॉकी में ये भारत का कमाल, और ये कमाल की खबर आपको बता रहे हैं जिस चीज का हम लगातार सुबह से ही, इनफैक्ट हर देशवासी को इस गुड न्यूज का बेसब्री से इंतजार था, वो गुड न्यूज आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूं कि 44 साल के बाद ये सूखा खत्म हो गया है और विमेन्स हॉकी टीम ने कमाल किया है और गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। और ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ये न्यूज ब्रेक हुई है, परिवार वाले खुशी के साथ झूमने लगे, घर में मिठाइयां बंटने लगी हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं और सबके चेहरों पर आप देख सकते हैं गुड न्यूज वाली स्माइल है, क्योंकि लड़कियों ने किया ही है इतना कमाल। चलिए अब आपको दिखाते हैं जी एंटी स्पेशल।

इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने लिखा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। लेकिन क्या सत्य कल्पना से दिलचस्प ही होता है? इस सवाल की जड़ में है वो चलन जो हाल ही के दौर में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर नजर आया। हाल ही के सालों में एक के बाद एक सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में सिनेमा के बड़े पर्दे पर आई हैं, और कमाल की बात तो यह है कि दर्शकों का इन्हें दिल खोलकर प्यार भी मिला है। धुरंधर, आर्टिकल 370, उरी, कश्मीर फाइल्स, एक के बाद एक टू इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्में बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब कुछ ही दिनों में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम के रूप में, जहां मुंबई हमले की इनसाइड स्टोरी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। आखिर बॉलीवुड में ये चलन कैसे आया और क्यों अब दर्शक असल जिंदगी की घटनाएं पर्दे पर जस की तस देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बजाय किसी की कल्पना के? देखिए जरा।

ये फिल्म काल्पनिक है, इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से आकस्मिक है। लेकिन क्या वाकई सिनेमा की ये घटनाएं आकस्मिक हैं? क्या वाकई ये पात्र, ये कहानी काल्पनिक है? नहीं, क्योंकि वास्तव में ये फिल्म काल्पनिक नहीं है। इसके सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से पूर्व निर्धारित और नियोजित है।

0: सिनेमा हमेशा से कल्पनाओं का संसार रहा है, एक ऐसा जादुई पर्दा जहां रंग है, उमंग है, जिंदगी का सेलिब्रेशन है, जहां बड़े शहरों की चमक है।
1: प्यार करना है, टाइम पास करना है।
2: टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसके भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना।
0: कस्बों गांवों की देसी दमक भी है।
3: समझा, मुझे कुछ काम याद आया।
2: सुनो तो,
0: जहां सब कुछ भुला देने वाली मोहब्बत है।
4: अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना।
0: एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है।
1: रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक।
0: जहां सुपर हीरो उड़ सकते हैं, एलियंस धरती पर आ सकते हैं।
5: कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए।
0: लेकिन यही सिनेमा जब कल्पनाओं का हाथ छोड़ हकीकत के धरातल पर कदम रखता है तो कुछ अद्भुत होता है।
6: हम आर्टिकल 370 हटाएंगे।
0: जब स्क्रीन पर लिखा आता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो दर्शकों के दिल की धड़कनें बदल जाती
7: है। Let the world also see के इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
0: एक कहानी जो कल्पनाओं के बीच से नहीं उगी, कहानी जो बगले नहीं झांकती, बल्कि परत दर परत खुद को उघाड़ती चलती है और देखने वालों के सामने ठीक वैसी ही उतरती है जैसी वो वास्तविक जीवन में घटित हुई थी। यथार्थ से आंखें मिलाती हुई, अतीत के हर जख्म को हरा करती, हमारी बेबसी को अंडरलाइन करती, हमारी उपलब्धियों का बखान करती।
8: 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते।
0: एक फिल्म जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच को उसी धार, उसी तलखी के साथ, बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, जस का तस हमारे सामने धर देती है, जिसे हमारे आदर्शवाद के सपनों में रंग भरने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बड़े और गहरे सच को ज्यों का त्यों सुनने की सामूहिक असमर्थता और उदासीनता को दरकिनार कर जो हुआ उसे वैसा का वैसा दिखाने के लिए बनाया गया है।
9: कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है।
0: और शायद यही वजह है कि बीते वक्त में असल घटनाओं पर आधारित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया, पर्दे पर प्यार मिला, सोशल मीडिया पर वाहवाही मिली, वर्ड ऑफ माउथ का साथ मिला और ये फिल्में ब्लॉकबस्टर बन गई। यानी जिस सिनेमा का इजाद ही कभी कहानियां कहने के लिए हुआ था, वहां अब हकीकत पर आधारित फिल्मों का बोलबाला है। आखिर क्यों ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्मों को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है?
10: Your Honor, how can he call me that?
11: I mean by the terrorist lawyer.
0: जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों की इसी लिस्ट में अब शामिल होने वाली है प्रहार। ये फिल्म 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले उस घटना की यादें आज भी सबके जहन में हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। अब एक बार फिर ये घटना पर्दे पर आ रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम। दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म मुंबई के गुनहगार अजमल कसाब को अंजाम तक पहुंचाने वाले केस की हर डिटेल को सिनेमा के पर्दे पर खोलकर रख देगी।
7: जिसने आप पर, आपकी मां पर गोलियां चलाई थी, वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
13: आई उज्ज्वल निकम अस अक्यूज अजमल अमीर कसाब शुड बी हैंग टिल हिज डेथ।
14: मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे टॉर्चर करके कबूलनामा साइन करवाया इन्होंने। मैं तो बम्बई घूमने आया था जनाब, उधर जूह चौपाटी पे था तो अमिताभ बच्चन का बंगला देखने चला गया, उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोलता है तू ही है टेररिस्ट। और एक बात साहब, मैं 17 साल का हूँ।
13: बदले तुमने रंग बहुत नकाब, फांसी तक ला ही दिया हमने तुझे कसाब।
15: न्याय किताबों में लिखा आसान है, पर अदालत में हर फैसला खून पसीना और साहस मांगता है।
0: यही कहानी है मुंबई पे आतंकी हमला,
15: जिस शहर को डर ने घुटनों पर ला दिया था।
0: यही सार है,
15: उसके लिए एक आदमी अदालत में दीवार बनकर खड़ा हुआ।
0: यही विस्तार है, कसाब को फांसी कैसे दी, कसाब की गिरफ्तारी, सजा का ऐलान और फांसी की खबर टीवी और अखबारों पर खूब देखी और पढ़ी गई थी।
16: लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। That's the foundation of our legal system.
0: लेकिन अब सिनेमा कहानी के भीतर की परतें दिखाएगा। केस के दौरान वकील और कसाब के बीच क्या बात हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी और उस बात के पीछे जो न्याय की कसौटी पर कसे जाते समय हर ओर से कही गई। सच को सिनेमा के पर्दे पर उतारने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे ताजा और जोरदार एंट्री है प्रहार की। वो फिल्म जो 26/11 हमलों की भयावहता और घटनाक्रम को दिखाने से दो कदम आगे जाकर मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब के फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी पर्दे पर लेकर आ रही है। केस किसने लड़ा, कैसे लड़ा, कोर्ट में क्या हुआ, क्या इंसाफ मिलने में वाकई देर हुई थी या नहीं हुई देर, और हुई तो क्यों, किसकी वजह से, इन सारे सवालों का जवाब देने 16 अक्टूबर को ये फिल्म पर्दे पर आ रही है।
13: हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो यह भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था। इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
0: इस फिल्म का नाता हिंदुस्तान से है, हर एक हिंदुस्तानी से है। घटना करीब 18 साल पुरानी है लेकिन आज भी हर भारतवासी के जेहन में ताजा है। जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था, लश्करे तैयबा के 10 आतंकियों ने पूरे 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी को मानो बंधक बना लिया था। भारत के जांबाज जवानों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बस ये फिल्म समझिए उसी के बाद से शुरू होती है। कहानी वही है लेकिन एक नए अंदाज में, नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम। उज्जवल निकम वही वकील हैं जिन्होंने कसब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। उन्हीं को केंद्र में रखकर उनके जरिए न्याय की इस दास्तां को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है।
17: हमें इसकी इजाजत नहीं देता,
18: हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने।
13: ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा। ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया। नवंबर को जब
0: सीएसटी, जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है, इस बार पर्दे पर सिर्फ गोली बंदूकें और कत्ल वगारत नहीं दिखाया जाएगा बल्कि सबूत और सच्चाई को जरिया बनाकर उस खौफनाक मंजर को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके आकाओं को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा, असल जिंदगी में जो हुआ उसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। और इस केस को अंजाम तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम का किरदार फिल्म में राजकुमार राव ने निभाया है।
13: ये केस, ये जो प्रहार पिक्चर है, ये मेनली 26/11 का हमला और थोड़ा अंश 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का है, लेकिन ज्यादातर 26/11 का है। एक बड़ी विशेषता ये फिल्म है, इस फिल्म में असली नाम का इस्तेमाल यूज किए गए हैं। मुझे उज्जवल निकम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। मेरे मिसेस का किरदार है ज्योति, वो वामिका ने निभाया है। ये मेरे लड़के का नाम अनिकेत, वहां भी उसका किरदार है। शर्वरी, उनका भी किरदार है। तो और ये इसलिए उन्होंने ओरिजिनल नाम रखे ताकि इसमें किसी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, एक बड़ी ऐप जा जाए।
0: ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बंदूक के बजाय संविधान और सबूतों की ताकत से आतंकवादियों की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
19: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
0: और जो वकील इस केस के केंद्र में थे, उन्हीं के कानूनी संघर्षों और जीवन की घटनाओं को राजकुमार राव पर्दे पर निभाने वाले हैं।
14: तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न कर
20: दूं। सर हैं वो ये फिल्म देखेंगे, उनकी फैमिली है वो ये फिल्म देखेंगी और बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्ज्वल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: कोर्ट में आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खैर के साथ राजकुमार राव का टशन और टकराव फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। तो इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए इंडिया आए डेलीगेशन को लीड कर रहे जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच कोर्ट में हुई बहस भी जोरदार ढंग से पेश की गई है।
21: जब तक क्रिमिनल
22: सारे जो एक्टर्स है जिस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब शूटिंग चलती थी तो कभी कभी मैं खुद शूटिंग के दिनों वहां जाता था, और पर्टिकुलरली जब ये कोर्ट सीन्स शूट हुए जहां पापा का फाइनल आर्गुमेंट हुआ, उस समय मैं मौजूद था, मतलब मैं 2008 में भी मौजूद था और इस शूटिंग के समय भी मौजूद था। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने निकम जी का कैरेक्टर पकड़ा है तो बहुत ही लाजवाब है, और मैं चाहता हूं कि लोगों को जब ये 16 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आएगी।
19: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ।
0: फिल्म में उज्जवल निकम की पत्नी का रोल वामिका गब्बी निभा रही हैं। इस हफ्ते मुंबई में प्रहार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसमें एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर अविनाश निकम, प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ खुद उज्जवल निकम भी शामिल हुए। तो वही प्रहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
23: उज्जवल निकम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल किसी आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो उन्होंने उसके पीछे की डिजाइन, उसके पीछे की कॉन्स्पिरसी, इसको दुनिया के सामने उजागर किया, और ये जघन्य अपराध करने वाली इस आतंकवाद को पूरे तरीके से मदद करने वाली जो पाकिस्तान की सोच थी, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करने का काम ये उज्जवल निकम जी ने करके दिखाया।
15: इस बार अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को
0: बताया जा रहा है कि न्याय के लिए उज्जवल निकम की प्रतिबद्धता और जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी के साथ साथ उन तमाम लोगों के पक्ष को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान अपनी जान की बाजी लगाई थी।
13: जो हमारे जहाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान दी, तुकाराम मुंडे जी हो, करकरे जी हो, कामटे जी हो, साळसकर और ऐसे कई लोग जो ये हमले में 167 लोग मारे गए थे, आज मैं उनको पूरा तरह से न्याय मिला ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन विशेषता यह कि हमारी यह संविधान की जीत है। ये उज्जवल निकम तो एक चेहरा था इस फिल्म के माध्यम का, लेकिन असली मेहनत हमारे पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने हमारे साथ दी, उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए।
24: क्या आप इस केस को सही अंजाम दे पाएंगे?
14: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
0: इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए है प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का ट्रेलर। सोशल मीडिया पर इसे रिस्पांस भी खूब मिल रहा है। उम्मीद है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म भी ट्रेलर जितनी ही जोरदार और असरदार होगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है कि यह फिल्म उज्जवल निकम की अनसुनी कहानी को सामने लाएगी, मतलब मुंबई अटैक के गुनहगारों और उनके आकाओं की कारगुजारी को उज्जवल निकम ने कैसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। यह फिल्म उन तमाम अनसुनी दास्तानों को सामने लाएगी। फिल्म के रिलीज से पहले गुड न्यूज टुडे की टीम ने उज्ज्वल निकम से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में इतने साल गुजर जाने के बाद भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। चलिए सुन लेते हैं आखिर क्या कह रहे हैं वो वकील जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाने की लड़ाई लड़ी थी।
1: जब मेकर्स आए होंगे तो आप लोगों से पूछा ही होगा कि अरे उज्ज्वल निकम तो बहुत बड़ा नाम है और ज्यादातर सर आपको लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल में सुना है, लेकिन जिस तरीके से आप अदालत रूम में जाकर के बहस करते हैं और थोड़ा सा अपने अंदाज में दूसरों को प्रेशर दे देते हैं, पसीने निकल आते हैं, वो चीजें अब फिल्मों द्वारा होगी, तो राजकुमार राव ही क्यों सर, आपको क्यों लगा कि यही?
2: देखिए मैं अविनाश अरुण को इसका क्रेडिट देता हूँ। 3-4 साल पहले अविनाश अरुण और मैडॉक के जब मुझे मिले थे तो थोड़ा मैं साशंक था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि ये राजकुमार राव आपका कैरेक्टर, मैं भलीभांति ज्यादा पिक्चर नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने राजकुमार राव का नाम सुना तो पहले मेरे जहन में तो ये सवाल आया था कि क्या राजकुमार जी मेरा कैरेक्टर निभा कर सकते हैं। और असल में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और फिल्म तो बन रही थी उस टाइम में, फिर बाद में भी फिल्म भी मैंने देखी थोड़ी, तो आई वॉज शॉक्ड। राजकुमार राव इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, सही ढंग में वो एक्टर है, और जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में, वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ, कॉपी मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे कैरेक्टर में चले गए, इसलिए चले गए कि जिस तरह से संवाद करना, जिस तरह बातचीत करना, जिस तरह से कोर्ट में एक यूनिफॉर्म वॉइस में अपना कंटेंशन सबमिशन रखना, पूरी तरह से अच्छा उन्होंने निभाया।
1: मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मेरी तरह बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे, जो अदालत की सीन से 26/11 और जो कसाब के साथ में आपकी बातचीत वगैरह हुई है, ये बाहर लाने की ये ठीक समय है? आपको लगता है कि लोगों को ये बातें जाननी चाहिए कि अदालत में किस तरीके से बहस होती है, कसाब ने क्या कुछ बोला है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी?
2: नहीं देखिये, ये ठीक होना ना ठीक होना ये इसमें कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 3 दिन अटैक चल रहा था, उसके लाइव तस्वीरें आ रहे थे पेपर में, कसाब का चेहरा आ रहा था, फिर भी उसको जल्दी में फांसी क्यों नहीं है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
1: अच्छा, प्रहार का ट्रेलर तो मैंने बताया 3 बार मैंने देखा, क्या आप भी दिखेंगे इस पूरे फिल्म में किसी एक सीन में, आप और सामने राजकुमार राव को मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा होने वाला है?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर है, हम तो एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को न्याय दिया है, ऐसा मैं कहूंगा।
1: सर, जो आपका किरदार है इस दुनिया में और उस पर अब फिल्म भी बन रही है, मतलब एक स्पेशल है, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आप पर फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्मों से कितना जुड़े हैं, पसंद है फिल्में देखते हैं आप?
2: मैं बहुत कम फिल्म देखता हूं, ये तो बात है।
1: कौन सी देखी थी सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी
2: थी? कौन सी देखी थी फिल्म? तो
1: मतलब
2: देखा है, पर इतना मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा, उसी वक्त
3: थिएटर में ज्यादा जाते नहीं है, वो जो जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी पे जो लगती है कभी कभार देख लेते हैं हम सब मिलकर के।
1: अच्छा, नहीं 26/11 पे सर काफी फिल्में बनी हैं, काफी वेब सीरीज बने हैं, आपने कभी ट्राई करा कि नहीं देख लूं भाई कुछ?
2: नहीं, मैंने वो नहीं देखी है, क्योंकि ये देखो ये फिल्म ऐसी है प्रहार, ये रियल उन्होंने इंसिडेंट फैक्ट्स बताए जो मेरे लाइफ में घटना हुई है, चाहे मैं 26/11 के हमले के दिन कहां था, चाहे मेरा अनिकेत तो छोटा था उस वक्त, उसका मेरा बर्ताव घर में कैसा, ज्योति मिसेस जो है वो किस पे थी, क्या थी लड़की शर्वरी, इनका ये दिखाया है, ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा, ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ कई बार ऐसा है लोगों को रियल फैक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी रहता है, क्या हुआ है इस केस।
1: नहीं होते अगर वकील उज्जवल निकम तो क्या होते?
2: नहीं होते वकील तो बड़ा सवाल, मुश्किल है ये कहना। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था।
1: अच्छा।
2: पिताजी की माँ की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा वकील बनना है। फिर इतना ही कहूंगा मैं कि बदले तुमने रंग बहुत बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
1: क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे ही एक से बढ़कर एक डायलॉग हमने ट्रेलर में भी देखे सर। एक और था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि मैं हनुमान जयंती के दिन ही पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी की कसम सर। वो डायलॉग सिर्फ राजकुमार राव ने कहा है, क्या आप भी कह सकते हैं? आपने सुना देखा क्या कहेंगे?
2: देखिए उस वक्त जो डायलॉग अब तक मुझे याद है पूरी तरह से कि थोड़ा फिल्मी डायलॉग है। कसाब को वकील ऐसे बात करता है तो उस वक्त कहता, अरे मेरा जन्म भी हनुमान जयंती का है, मैं पूरा दिल फाके दिखा दूंगा। और दूसरा एक था उसका, आई उज्जवल निकम अस अक्यूज उज्जवल अमीर कसाब शुड बी हैंग टिल हिज डेथ। ये जो है जिस अंदाज में मैंने कोर्ट में बयान किया उसी अंदाज में राजकुमार राव ने ये फिल्में देखी।
1: बहुत बधाई फिर से एक बार आपको और आपकी पूरी टीम को। तो 16 अक्टूबर को प्रहार देखने के लिए तैयार हो जाइए, पूरे देश भर में फिल्म ये रिलीज हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
12: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल, 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा, 2028 ओलंपिक के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। एशियन खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना।

0: गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन। खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट। गांधी जयंती के मौके पर गुजरात के सूरत में निकाला गया अहिंसा मार्च। तमाम साधु संतों के साथ शहर की गलियों में निकले लोग, पशुधन की सुरक्षा के लिए उठाई आवाज। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। कुंभारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 1 से 25 फीट ऊंची मूर्तियां। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का आगाज। लेडीज बस में खुद कंडक्टर बने सीएम थलपति विजय। महिलाओं ने टिकट के बदले मुख्यमंत्री को दी चॉकलेट। जम्मू कश्मीर के चुनाब अंजी पुल पर रेलवे ने रचा नया रिकॉर्ड। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत। सफल हुआ स्पीड ट्रायल। दरभंगा के लहेरिया सराय स्टेशन पर शुरू होगा नमो भारत ट्रेन का स्टॉपेज। रेलवे अधिकारियों के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को कहा शुक्रिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: एशियन गेम्स में विमेन्स हॉकी टीम से आई है भारत के लिए शानदार खबर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में 44 साल बाद जीता गोल्ड। भारत की बेटियों ने हॉकी में भारत को दिलाया है ऐतिहासिक गोल। भारत ने 1-0 से चीन को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। लाल रेमसियामी के शानदार फील्ड गोल कर भारत को दिलाया है गोल्ड। लाल रेमसियामी का ये 200वां इंटरनेशनल मैच था। बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले में फाइनल में चीन को हराया। 1982 के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड। गोल्ड के साथ भारत महिला हॉकी टीम के लिए एक और गुड न्यूज। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। एशियन गेम्स के 14वें दिन भारत पर गोल्ड की बारिश। बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने लगाई गोल्ड की हैट्रिक। अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को मिला है गोल्ड मेडल। तजाकिस्तान के पहलवान को हराकर सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम वर्ग में भारत को दिलाया ऐतिहासिक गोल्ड। एशियन गेम्स में भारत को मिला ब्रॉन्ज। पुरुष क्वाड्रन प्रतियोगिता में भारत ने जीता ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में विमेन सेलिंग में भारत को ब्रॉन्ज मिला। चीन के डिस्क्वालिफाई होने के बाद भारत को मेडल मिला। एशियाई गेम्स के समापन समारोह में भारत से नीरू ढांडा होंगी महिला ध्वजवाहक। पुरुष ध्वजवाहक के नाम का कल होगा ऐलान। जापान के नागोवा में होगी क्लोजिंग सेरेमनी। एशियन गेम्स में आज भारत के लिए गोल्डन डे रहा। आज 6 गोल्ड मेडल मिले। महिला बॉक्सर परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड। अपने 29वें जन्मदिन पर महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने किया कमाल। 75 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराया। एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बनी। लवलीना ने जापान के नागोवा में मनाया अपना 29वां जन्मदिन। केक काटकर किया बर्थडे सेलिब्रेट। तीरंदाजी में आज भारत ने साधा गोल्ड पर निशाना। विमेन्स रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अंकिता भगत कीर्ति शर्मा कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर इतिहास रचा। तीरंदाजी में भारत को 4th गोल्ड। भारत के लिए तीरंदाजी में गोल्ड के बाद रजत पदक भी आया। रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में कुमकुम मोहोत और धीरज की जोड़ी ने किया कमाल। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से पदक तालिका में 5वें नंबर पर पहुंचा भारत। अब तक आए 16 गोल्ड 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल। भारत को आर्चरी के रिकर्व पुरुष टीम इवेंट के फाइनल में मिला सिल्वर मेडल। धीरज नीरज चौहान और यशदीप भोगे का कमाल। बॉक्सिंग के 65 किलो वर्ग के फाइनल में परवीन हुड्डा ने जीता गोल्ड मेडल। चीनी ताइपे की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चेन नियन चिन को 3-2 से हराया।

0: अकोला के कुम्भारवाड़ा में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर, रंग रोगन नक्काशी का काम जारी है। एक फीट से लेकर 25 फीट तक की प्रतिमाएं की जा रही तैयार, कार्यशालाओं में प्रतिमाओं पर बारीकी से काम लगातार किया जा रहा। मां दुर्गा की प्रतिमाओं पर चढ़ रही रंगों की खूबसूरत परत, कहीं ब्रश से भरे जा रहे रंग तो कहीं नक्काशी की जा रही। अकोला में छोटी बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं की धूम है, छोटी प्रतिमाओं पर मेहंदी, टीकली और गंध से लेकर सजावट का काम चल रहा। मां दुर्गा की मूर्तियों में आंखों की खूबसूरती पर बारीकी से काम कर रहे कलाकार, चेहरे के भाव और आभूषणों की नक्काशी भी की जा रही। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होकर दी बापू को श्रद्धांजलि। प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा अनोखा अंदाज, चरखे वाली जैकेट में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। गांधी स्मृति स्थल पर भजन और गीतों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल, कलाकारों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक रंग भरे। भजनों और गीतों की शानदार प्रस्तुतियों से गूंजा गांधी स्मृति स्थल, स्कूली बच्चों ने भजन पेश कर कार्यक्रम में बांधा समा। पीएम मोदी ने गीतकारों, संगीतकारों और कलाकारों से की मुलाकात, भजन प्रस्तुति करने वाले स्कूली बच्चों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाई दुबई के जांबाज पायलट स्मिथ मछार से वीडियो कॉल पर बातचीत की, यूनाइटेड अरब अमीरात में मछार का चल रहा इलाज। कैप्टन स्मिथ ने घटना के दौरान अपने अनुभव और उन्हें हिम्मत देने वाली बातों के बारे में बताया, पीएम मोदी से कहा मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया। घटना का जिक्र करते हुए स्मिथ मछार ने बताया कि उस वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उनके मन में यही चल रहा था कि वो सबको मरने नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में मछार ने कहा वो भले ही देश से दूर हैं, अपनी संस्कृति से नहीं। मछार ने बताया हमले के बीच में उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, पीएम ने मछार की हिम्मत, उनकी सूझबूझ और मुश्किल वक्त में संयम बनाए रखने की तारीफ की। पीएम मोदी ने मछार से कहा कि पूरा देश उनके साथ है, पीएम ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कैप्टन स्मिथ मछार दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट उड़ा रहे थे, उसी दौरान उनके को पायलट ने उन पर हमला कर दिया। घायल होने के बावजूद मछार ने हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद यात्रियों क्रू मेंबर्स ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर पायलट को काबू कर लिया। देशभर में आज मनाई जा रही महात्मा गांधी की 157वीं जयंती, देशभर में बापू को नमन किया जा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आज 122वां जन्मदिन, देश कर रहा उनको याद। दिल्ली में जेन ज़ी पहुंचा यमुना घाट, गांधी जयंती पर की घाट की साफ सफाई। 15 कॉलेजों के छात्र यमुना घाट पहुंचे, किसी के हाथ में झाड़ू था तो कोई घाट से कूड़ा उठा रहा था। जामनगर में गांधी जयंती के मौके पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली, मंत्री रिवाबा जडेजा भी शामिल हुई, युवाओं को संदेश दिया नशे से दूर रहने का। यूपी के चंदौली में रेल अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं ने साफ सफाई को लेकर जागरूकता रैली निकाली, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। एमपी के राजगढ़ में 12 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया गया, महिलाओं, युवाओं, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का आगाज हुआ, लेडीज बस में खुद कंडक्टर बने सीएम थलपति विजय। गांधी जयंती पर चेन्नई में की फ्री बस सेवा की शुरुआत, सीएम विजय ने महिलाओं को दिए टिकट, मुख्यमंत्री को देखकर झूमी महिलाएं। गांधी जयंती पर तमिलनाडु सरकार की नेक पहल, चेन्नई में मधु इल्ला तमिजगम यानी शराब मुक्त तमिलनाडु अभियान का शुभारंभ। शराब की बढ़ती लत से युवाओं को दूर रखने की दिशा में बड़ा कदम, शराब से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी दिया गया जोर, तमिलनाडु सरकार ने हजारों करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मॉनसून के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अंतिम चरण में पहुंची, चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी। टिहरी के प्राचीन बूढ़ा केदार मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा। बिहार के गया जी में अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर रूस, यूक्रेन, इटली, जर्मनी समेत कई देश के विदेशी श्रद्धालु देवघाट में पहुंचे और पिंडदान किया। राजस्थान में धौलपुर जिले के कंचनपुरा गांव के खेत में निकला 14 फीट का अजगर। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में पहुंचा 8 फीट लंबा मगरमच्छ, 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू किया। भारतीय सेना ने डोडा में अग्निवीरों और टेरिटोरियल आर्मी के अभ्यर्थियों को कोचिंग देने शुरू की, सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नए MBBS बैच के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित, 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से MBBS के लिए सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 किए जाने के बाद राजौरी का ये फर्स्ट बैच। ग्रेटर नोएडा के घंटाघर चौक पर CRPF ने चलाया सफाई अभियान, लोगों ने हिस्सा लिया। भागलपुर में NDRF SDRF ने 16 नावें तैनात की, विक्रमशिला सेतु बंद होने के चलते गंगा रूट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया कदम। अमरावती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, निकाली गई विदर्भ के राजा की भव्य शोभा यात्रा। 20 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, के सरिया झंडों और फूलों की बारिश के बीच बप्पा का स्वागत। करीब 16 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद बप्पा की विदाई के लिए निकली शोभा यात्रा, विदर्भ के अलग अलग जिलों से निकली यात्रा। अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे ढोल पथकों ने अपनी खास ताल और धुनों से माहौल को जोश के साथ भर दिया। ब्राजील के साथ फ्रेंडली मैच से पहले भारतीय फुटबॉल टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोच ने कहा हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम के खिलाफ खेलना है। पटना के मनेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, दियारा इलाके के निचले हिस्सों में घुस गया बाढ़ का पानी। पटना सिटी के घाटों पर पिछले 2 दिनों से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा, भद्र घाट महावीर घाट पर बैरिकेडिंग कर लोगों के आने जाने पर रोक। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी के साथ बहकर पहुंचे करीब 1 दर्जन हिरणों को रेस्क्यू किया। पारू और साहिबगंज इलाके से इन हिरणों को सुरक्षित बाहर निकाला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। बक्सर में बाढ़ से बढ़ी समस्या, गंगोली से बलिया जाने वाला मार्ग भी यहां पर बंद हुआ। रास्ते पर पानी के बावजूद लोग खतरनाक तरीके से यात्रा कर रहे, कभी भी हो सकता है हादसा। नेपाल के पानी का भारत में आने का असर, बिहार में गंडक नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा में बाढ़ से तबाही, चंपारण तटबंध पर बने एक बांध से रिसाव से हड़कंप मचा। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया, बाढ़ से जिले की 3 तहसीलें प्रभावित हुई। ICC ने मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी किया, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया करेगा वर्ल्ड कप की साझा मेजबानी। 7 अक्टूबर 2027 को भारत का पहला मुकाबला होगा, केप टाउन में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच। 10 अक्टूबर 2027 को भारत पाकिस्तान के बीच में मैच, जोहान्सबर्ग में होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर और दूसरा 18 नवंबर को किया जाएगा, फाइनल होगा 21 नवंबर को। ग्रुप स्टेज में 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटी जाएगी 12 टीमें। फिल्म दीवानों के लिए गुड न्यूज, फिल्म दृश्यम 3 आज हुई रिलीज, अजय देवगन की दृश्यम द कॉन्क्लूजन में जयदीप अहलावत की एंट्री। दर्शकों में दृश्यम द कॉन्क्लूजन का क्रेज, एडवांस बुकिंग के जरिए रिलीज से पहले ही कमा डाले करीब 20 करोड़। सस्पेंस थ्रिलर में अजय देवगन के अलावा तबू, श्रेया शरण, प्रकाश राज की भी एंट्री हुई है। दृश्यम 3 के साथ बॉक्स ऑफिस पर हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म प्रेम कीटाणु की दस्तक, दिल्ली NCR की पृष्ठभूमि पर आधारित। निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की ने किया है इसका डायरेक्शन, फिल्म में वीर पहाड़िया, आफिया सईद नजर आएंगे। मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी, विक्रम सिंह चौहान की फिल्म पूजा मेरी जान Z5 पर रिलीज होने के लिए तैयार, क्राइम थ्रिलर है। सीरीज दुपहिया का Season 2 प्राइम वीडियो पर रिलीज, सीरीज में गजराज राव, रेणुका शाहने, स्पर्श श्रीवास्तव निभा रहे मुख्य किरदार। सिनेमाघर में छाने के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज ओ माई डॉग, इंसान और कुत्तों के बीच में रिश्ते की भावुक कहानी। एक मॉडर्न डिजिटल रोमांस पर आधारित फिल्म लव नेटफ्लिक्स पर रिलीज, मुख्य किरदार में ऐश्वर्या, लक्ष्मी और अर्जुन दास। फॉर्मूला 1 फैंस के लिए खास डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर हो रही रिलीज, माई माइकल शूमाकर की करियर पर बनी ये फिल्म। गुलशन देवैया और रसिका दुग्गल की फिल्म लिटिल थॉमस का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म में गोवा के एक परिवार की कहानी दिखाई गई। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का पहला लुक जारी हो गया है। 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का पहला गाना रिलीज। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म स्त्री की टेली रिलीज डेट 2027 के बदले अब साल 2028 में रिलीज होगी। साउथ स्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज की जबरदस्त कमाई। पहले हफ्ते में कलेक्शन 150 करोड़ के पार। पेरिस फैशन वीक में दिखा प्रसिद्ध फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के डिजाइन का जलवा। सेंट लॉरेंट ने पेश किया अपना स्प्रिंग समर कलेक्शन। कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर्ड टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित की गई। मॉडल्स ने उभरी हुई सुनहरी ड्रेसेस पहनी। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले में आयोजित शो के बैकग्राउंड में एफिल टावर भी नजर आया। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो, लंबी ड्रेसेस नजर आई। सेंट लॉरेंट के स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वोकारेलो ने शोकेस किया।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: चीन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चीन में इन दिनों संस्कृति और जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन हो या रात हो, देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहार सी रौनक नजर आती है। वजह है चीन का राष्ट्र दिवस, जो वहां के लिए किसी त्योहार से कम नहीं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहां पर आते हैं, जिससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है।

0: इन दिनों उत्सवी माहौल है। एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियों को बनाने के लिए देश भर में खास कल्चरल टूरिज्म इवेंट शुरू किए गए हैं। इनमें पुरानी वास्तुकला, लाइट शो, पारंपरिक लालटेन और त्योहारों वाली लाल सजावट का मेल देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को राष्ट्रीय झंडे और फूलों से सजाया गया है और रात में शानदार आतिशबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का शो हुआ। 23 मिनट के इस शो को देखने के लिए शहर के वाटर फ्रंट पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। इन रंग बिरंगी रोशनियों ने हार्बर के आसमान को जगमगा दिया। लोग आतिशबाजी से रंगीन आसमान की तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखे। इसमें स्थानीय लोगों के साथ विदेशों से आए पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के तांगजुए गांव में रोशनी वाली बड़ी बड़ी मछली के आकार की लालटेन का जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस गांव के ऐतिहासिक इलाकों से गुजरा। ये जुलूस गांव की सांस्कृतिक विरासत और रात के समय होने वाले कार्यक्रमों का एक अनूठा संगम है। चीन में एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियां दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इस समय को जिन्हें गोल्डन वीक कहते हैं, इस दौरान बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सैलानी चीन की यात्रा पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। एशियाई गेम्स के समापन समारोह में भारत से नीरू ढांडा होंगी महिला ध्वजवाहक। पुरुष ध्वजवाहक के नाम का कल होगा ऐलान। जापान के नागोया में 4 अक्टूबर को क्लोजिंग सेरेमनी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। एशियन गेम्स में भारतीय टीम पर सोना बरस रहा है। आज का दिन भारत के लिए सुनहरा रहा और उन्होंने 6 गोल्ड हासिल किया है, जिसमें 3 मुक्केबाजों ने गोल्डन पंच लगाया। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है एशियन गेम्स में मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। जी हाँ, आपको बता दें कि आज भारतीय टीम की शुभ शुरुआत हुई जब भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने रिकर्व इवेंट में गोल्ड जीता और इसके बाद भारतीय बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल की झड़ी लगा दी। सबसे पहले लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड जीता। आज लवलीना का जन्मदिन है, लिहाजा अपने बर्थडे पर लवलीना ने भारतीय टीम को सुनहरी सफलता दिलाई। इसके बाद बॉक्सर परवीन हुंडा ने 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद तीसरा गोल्ड अंकुश पंघाल ने निकाला। अंकुश ने पुरुषों की 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में साउथ कोरिया के किम मिन सियोंग को 4-0 से हराया। अंकुश के गोल्ड के साथ आज भारतीय बॉक्सिंग के 3 गोल्ड मेडल हो गए। दिन का 5वां गोल्ड कुश्ती में हासिल हुआ, जहां सुजीत कलकल ने रेसलिंग में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड अपने नाम किया। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड के लिहाज से ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मुक्केबाजी में भारत ने 3 गोल्ड और 3 ब्रोंज समेत कुल 6 मेडल जीते। शाम में थोड़ी देर पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया।
4: अक्टूबर 2 का ये जो दिन है सबसे बेहतरीन दिन रहा है इंडिया के लिए एशियाई खेल 2026 में, क्योंकि सुबह हमें एक ऐतिहासिक जीत मिली। इंडिया के महिला रिकर्व टीम ने साउथ कोरिया को हराकर तीरंदाजी में ये साबित कर दिया कि हाँ, इतिहास रचाया जा सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया को तीरंदाजी में हराना चाइना को टेबल टेनिस के हारने बराबर है। इतना डोमिनेंट है साउथ कोरिया, 48 साल सिर्फ 2 ही बार वो गोल्ड नहीं जीते थे, लेकिन आज इंडिया के तीरंदाजों ने ये साबित कर दिया कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। लेकिन आज है अक्टूबर 2, गांधी जयंती का दिन। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है ना, लेकिन गलत, हमारे बॉक्सर्स ने ये साबित कर दिया कि हाँ, अक्टूबर 2 को हिंसा के लिए भी जगह है, क्योंकि लवलीना बोरगोहेन, अंकुश पंघाल और हमने देखा परवीन हुडा, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अब परवीन हुडा 2023 एशियन गेम्स में वेयरअबाउट्स फेलियर के वजह से उनका मेडल चला गया, लेकिन आज उन्होंने गोल्ड हासिल कर दिया। लवलीना बन गई तीसरी भारतीय महिला बॉक्सर जो मैरी कॉम और परवीन हुडा के बाद गोल्ड मेडल जीती, और अंकुश पंघाल जो है वो मेंस बॉक्सिंग का परचम ऊंचा लहराया। अंत में जो हमने देखा, हमने ये भी देखा कि 2-9 डाउन थे एक पर्टिकुलर कुश्ती के खिलाड़ी। 30 सेकेंड रह गए थे, 10-9 से जीतकर सुजीत कलकल ने 65 किलो के फ्रीस्टाइल रेसलिंग में ये दिखा दिया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है एक कारण के वजह से। तो इतने सारे गोल्ड मेडल, साथ साथ सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल इन ऐसे खेलों में जहां हमने उम्मीद भी नहीं रखा था।
3: और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज पूरा देश बापू को नमन कर रहा है। राजधानी दिल्ली में राजघाट पर सुबह बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रार्थना सभाएं हुई और गांधी जी के विचारों को याद किया गया। इसके अलावा देश में कई जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया, कहीं स्वच्छता का संदेश दिया गया तो कहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है गांधी जयंती पर स्वच्छता का संकल्प। गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ स्वच्छता का संकल्प लिया गया। खास बात यह रही कि इसमें जेन जी भी शामिल हुए।

0: गांधी जयंती पर पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। राजधानी दिल्ली के राजघाट पर सुबह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। बापू की समाधि पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्रपिता को नमन किया। गांधी जयंती के शुभ दिन महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। शहर शहर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं और खास बात है कि इन अभियानों में जेंजी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में युवाओं ने गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को सिर्फ याद ही नहीं किया बल्कि उसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी की।
1: गांधी जयंती का आज दिन है और दिल्ली का जेंजी, दिल्ली का युवा पहुंचा है यमुना के किनारे पर। गांधी जी का जो संदेश था कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी है, उसी संदेश को लेकर आज तमाम युवा यमुना के घाट पर पहुंचे हैं। कालिंदी कुंज में है हम और यहाँ पर वो यमुना की सफाई, जो घाट के किनारे की जो सफाई है उसको करने में जुटे हुए हैं। लगभग 15 से ज्यादा दिल्ली के कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार इस काम को वो अंजाम दे रहे हैं।
0: कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर युवाओं ने हाथों में सफाई का सामान लिया और घाट की सफाई में जुट गए। युवाओं ने सिर्फ कचरा ही नहीं उठाया बल्कि स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाने का संदेश भी दिया।
2: आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं यमुना को साफ करने के लिए।
3: आप आसपास जब देखोगे यहाँ पे हमारे बच्चे वॉलंटियर करके आए हैं एक छुट्टी के दिन पे, और इससे वो प्रॉब्लम जो है यमुना की वो एस्टैब्लिश होगी। सेकंड, हम उन्हें मोबिलाइज कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्शन, जिससे वो खुद एक स्टेप ले रहे हैं यहाँ पे और क्लीन अप कर रहे हैं। इससे दो चीजें होंगी, सबसे पहले जो यमुना को क्लीन रखने के एफर्ट्स है उन बच्चों को वो चीजें समझ में आएंगी कि कितना है, और अगली बार दूसरी चीज इससे वो होगी कि अगली बार वो जब कचरा फेंकने के बारे में सोचेंगे यमुना नदी में, भले ही चाहे पूजा पाठ का हो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो या फिर डंपिंग वेस्ट इनटू नालास दैट अल्टीमेटली कनेक्ट इनटू दीज रिवर्स, तो उनमें वो दो बार सोचेंगे पहले। उसके अलावा वो जब किसी को देखेंगे भी तो उन्हें याद आएगा कि कितना एफर्ट्स लगता है इस चीज को साफ रखने में और ये कितना हार्मफुल होता है।
0: वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके पर अनोखे अंदाज में स्वच्छता का संदेश दिया गया। ब्यावरा में सामाजिक संस्थाओं ने करीब 12 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकाली। रैली में महिलाएं, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। साइकिल पर सवार होकर लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्वच्छता का संदेश दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी गांधी जयंती पर स्वच्छता को लेकर जागरूकता का अभियान चलाया गया। रेल अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। लोगों को साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के DRM उदय सिंह मीना समेत तमाम अधिकारियों ने पौधारोपण किया और पौधारोपण को स्वच्छ और शुद्ध रखने का संदेश दिया। इतना ही नहीं, रेल कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और स्वच्छता के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सफाई अभियान भी चलाया गया।
4: मेरे मोहल्ले से,
5: मेरे
4: गांव से, एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।
0: गुजरात के जामनगर में गांधी जयंती पर संदेश का एक और रंग देखने को मिला। यहाँ नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली में गुजरात के राज्य मंत्री रेवाबा जडेजा भी शामिल हुई। उन्होंने गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। रैली के जरिए युवाओं को स्वस्थ जीवन अपनाने और नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया गया। दिल्ली में स्वच्छता अभियान, ब्यावरा में साइकिल रैली, चंदौली में स्वच्छता की शपथ और जामनगर में नशा मुक्ति का संदेश, ये संदेश अलग अलग जरूर है लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक है और वो है गांधी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना, जिससे एक स्वस्थ समाज और बेहतर भारत का निर्माण किया जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया, जामनगर से दर्शन ठक्कर, चंदौली से उदय गुप्ता और राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और दुर्गा पूजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। उससे पहले शहर शहर तैयारियां भी जोर पकड़ रही है। जगह जगह मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। झांसी में इस बार इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार हो रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है दुर्गा पूजा पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जी हां, आपको बता दें कि झांसी में बंगाली शैली में मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और इस बार उनकी खूब डिमांड भी हो रही है।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व करीब आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ पर पिछले करीब 34 वर्ष से एक बंगाली परिवार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहा है। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। अहम बात यह है कि प्रतिमाओं के निर्माण और श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सामान कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
1: यहाँ पे जो भी मूर्ति बनता है सब प्योर मिट्टी का बनता है, ना पीओपी यूज होता है, ना कुछ मतलब जो हार्मफुल वाला जो कलर होता है उस टाइप का कोई कलर भी नहीं यूज करते। हम पूरा जो इको फ्रेंडली कलर होता है उस टाइप का कलर भी यूज करते हैं, पूरा मिट्टी का बनाते हैं। और जो हमारा सिंगार वगैरह भी जो होता है वो सब कलकत्ता से आता है। और मिट्टी वगैरह हम जो 4-5 प्रकार का मिट्टी यूज करते हैं उसमें से 2-3 प्रकार का मिट्टी हम कलकत्ता से ले आते हैं, बाकी जो काली मिट्टी और इधर का लाल मिट्टी वो इधर से ही लेते हैं। और इसीलिए हम लोगों का मिट्टी और मूर्ति क्या है जो भी होता है वो ज्यादा से ज्यादा घास और मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें ना कोई पीओपी का यूज है, हल्का भी होता है और पानी में जाने के साथ साथ एक गल भी जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए हम लोगों का मूर्ति में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं यूज होता इसमें।
0: झांसी की इस वर्कशॉप में मूर्तियां बनाने का काम नवरात्र से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कम से कम 12-14 कारीगर इसमें लगे रहते हैं। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। कोलकाता की पारंपरिक शैलियों में बनाई जाने वाली इन प्रतिमाओं की यहाँ पर खास डिमांड है।
2: मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर आप जाएगा ना ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
0: मूर्तिकारों की माने तो इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा की करीब 200 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इनमें से लगभग 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की इन प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों में भी है। लिहाजा माँ दुर्गा की ये प्रतिमाएं इस बार इलाके के ज्यादातर पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नोएडा में एक ऐसा बच्चा है जिसके कमाल की याददाश्त है। इन्होंने अपनी असाधारण मेमोरी और पहचानने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है 6 साल के बच्चे की बेमिसाल याददाश्त। जी हाँ, 6 साल के अव्युक्त सिंह ने महज 1 मिनट में देश विदेश के 40 प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की पहचान कर ये उपलब्धि हासिल की है।
4: खेलने में इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट है?
5: क्रिकेट खेलने में
4: देखने में नहीं।
5: नहीं, क्योंकि जब देखता हूँ ना तब मैं बोर हो जाता हूँ।
4: तो इतने सारे प्लेयर्स के नाम कैसे पता है अभियुक्त को फिर?
5: क्योंकि मेरी मम्मा ने सिखाया है।
6: नोएडा के रहने वाले अभियुक्त सिंह के छोटे कदम जरूर हैं, लेकिन उनकी मंजिल बहुत बड़ी है और अपनी काबिलियत और माता पिता की मेहनत के बूते बहुत तेजी के साथ वो कामयाबी बेमिसाल पा रहे हैं।
4: अभी पढ़ने में मजा आता है? कुछ पढ़ाई करने में अच्छा लगता है?
5: हाँ, थोड़ा थोड़ा।
4: थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बच्चा है, बहुत छोटा है, अभी सिर्फ 6 साल का है, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड अभी उसके नाम हैं। अभी हाल ही में 3 गिनीज रिकॉर्ड उसके नाम बैक टू बैक आए हैं और बहुत सारी चीजें ये 2 साल की उम्र से ही कर रहा है।
6: महज 6 बरस के हैं अभियुक्त। केजी में पढ़ने वाले इस होनहार की याददाश्त ऐसी कि क्रिकेट के 40 खिलाड़ियों को सिर्फ 1 मिनट में पहचान लेते हैं। अभियुक्त ने तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और ये नन्हा होनहार अब तक 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुका है और अलग अलग रिकॉर्ड बुक्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। अभियुक्त की इस असाधारण उपलब्धि को उनके माता पिता ने बखूबी परखा और फिर निखारा भी।
7: जब हमें पता लगा कि इसकी कुछ मेमोरी एक्सेप्शनल है, देन वी स्टार्टेड डूइंग थिंग लाइक कोई भी न्यूज़पेपर जैसे आपने ले लिया उसमें जो भी फोटोज आ रखी हैं वो बताने शुरू की। तो मतलब आप एक बार आप बताएंगे तो उसको वो रिटेन करता था।
6: देश दुनिया की नामी गिरामी हस्तियां, देशों के झंडे समेत कई और जानकारियों को अपने दिमाग में बैठाने वाले अभियुक्त अभी ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन माँ कहती हैं कि वो अभियुक्त को कभी फोन नहीं दिखाती, बल्कि रोजाना महज 10 मिनट प्रैक्टिस कराती हैं। अभियुक्त महज 2 साल 9 महीने के थे, उस उम्र में ही उन्होंने रिकॉर्ड बनाने का सफर शुरू किया। अचीवमेंट्स की इतनी लंबी फेहरिस्त, बेशक अभियुक्त ईश्वर की बख्शी हुई नेमत ही है, लेकिन उनकी माँ कहती है कि आज जहाँ उनका बच्चा है वहाँ तक पहुँचने के लिए कभी कभार उसको रिजेक्शन भी झेलनी पड़ी। बिल्कुल अभियुक्त, हम तो चाहेंगे ही कि देश ही नहीं दुनिया भी आपकी काबिलियत को सलाम करे, और इस छोटी सी उम्र में बड़ी सोच, यही तो आपका असली कमाल है।
4: ये सच बात है कि हम ऐसे बच्चों से उम्मीदें बहुत कर लेते हैं, लेकिन आप लोग के लिए सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो बच्चा खुद आपको लीड करता है, आपको पहचानना है उसे। दूसरी बात कि अभियुक्त की मम्मी ने बताया कि वो कभी भी उसे फ़ोन नहीं देती हैं, मतलब वो फ़ोन में नहीं है, वो रील में नहीं है। पूरी बात का कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे की एनर्जी को सही दिशा में यूज़ करते हैं तो हर बच्चा स्पेशल है। बाकी अभियुक्त के लिए हम यही कह सकते हैं कि ये शायद ईश्वर का एक तोहफा है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
3: और उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने एक अनोखा प्रयास किया है। उन्होंने 100 फीट एरिया में रंगोली के अंदर भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को बनाया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पहली बार इतनी बड़ी रंगोली बनाई है और इसे बनाने में 30 घंटे लगे। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है रंगोली में सजे सरकार के कामकाज। जी हाँ, सैंड और पेंट से बनी तस्वीरें तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रंगों से विकसित भारत की आकर्षक रंगोली तैयार की। इस रंगोली में विद्यार्थियों ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को पूरी तरह से उकेरने का प्रयास किया। विद्यार्थियों का ये प्रयास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस रंगोली को 80 स्टूडेंट्स ने 3 टीचर्स की मदद से बनाया। इसे बनाने में लगभग 30 घंटे लगे। इस रंगोली के 100 फुट से ज्यादा एरिया को स्टूडेंट्स ने कवर किया। रंगोली में देश की महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करते हुए समृद्ध भारत और विकसित भारत में योगदान को दर्शाया गया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पहली बार इतनी बड़ी रंगोली बनाई है।
8: एक बहुत अनोखा प्रयास है हमारे विद्यार्थियों द्वारा कि रंगोली के माध्यम से, क्योंकि रंगोली में नॉर्मली अलंकरण और डिजाइन का ही ज्यादा खेल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चों ने एक कैनवास की तरह से उसे पेंटिंग की तरह से चित्रित किया, जिसमें उन्होंने सारे कैलीग्राफी भी की, एलिमेंट्स भी डाले, और अगर आप देखेंगे तो लोगो भी है, डिजाइनिंग भी, अलंकरण का भी काम किया, उसके साथ साथ जो हमारे एनाटॉमिक भी यूज किए वो भी बनाया।
9: हम लोग टोटल 80 लोग थे, हम लोगों ने 30 घंटे अप्रोक्स काम किया है, और हमारे 3 टीचर्स थे जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। हम लोग 5 टीम में डिवाइड थे, ताकि मतलब सबको एक एक पैनल दिया गया था किसको किस पे काम करना है, तो पूरी टीम ने मिलके, हर टीम में 10 बच्चे या 12 बच्चे थे, सबने टीम में मिलके काम किया, और जहाँ कुछ कमियां हुई तो हमारे सीनियर्स ने आके बताया, हम लोगों ने बताया। एज अ टीम लीडर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी कि हम लोग इतने कम टाइम में हम लोगों को काम कम्प्लीट करना था, और ये एक टास्क था क्योंकि इतनी बड़ी रंगोली फर्स्ट टाइम हम लोगों ने।
3: पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए तमाम पवित्र नदियों पर पूजा पाठ किया जा रहा है। बिहार का गया जी धाम पिंडदान की विशेष धार्मिक महिमा के लिए जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान यहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करने पहुंचते हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है पिंडदान के लिए आए विदेशी मेहमान। आपको बता दें कि बिहार के गया जी में पिंडदान के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। रूस, यूक्रेन, अफ्रीका और जर्मनी समेत कई देशों से दर्जनों विदेशी श्रद्धालु गया जी पहुंचे हैं, जहां देवघाट पर पूरे विधि विधान से पिंडदान और तर्पण किया जा रहा है।

0: देश हो या विदेश, जगह और भाषा भले ही अलग हो, लेकिन अपने पितरों के प्रति आस्था और श्रद्धा की भावना हर जगह समान है और इसी आस्था का केंद्र बना हुआ है बिहार का गया जी धाम। पितृपक्ष के दौरान गया जी धाम में दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रूस, यूक्रेन, जर्मनी, अफ्रीका और कई दूसरे देशों से दर्जनों विदेशी श्रद्धालु गया जी पहुंचे हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का मौका है। गया जी के विष्णुपद मंदिर के पास देवघाट पर विदेशी श्रद्धालु भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं।
1: गया में पितृपक्ष में 2026 देश विदेश से आए हुए सब हमारे शिष्यगण हैं। कोई पोर्चुगल से है, इटली से है, जर्मनी से है और बाकी सब स्पेन से भी है।
0: सनातन धर्म की मान्यताओं और गया जी के पिंडदान की महिमा से प्रभावित होकर विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। अपने पितरों की मोक्ष की कामना के साथ देवघाट पर पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं।
1: ये लोग वहां पे जो है सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। पहले ये लोग ईसाई और जो इस्लाम धर्म को स्वीकार किए थे और इन लोगों को जो हमारे सनातन धर्म बहुत ही अच्छा लग गया, तो इन्होंने पूछा कि सनातन धर्म का जो प्रथम चरण में हमें क्या करना चाहिए बोल के। तो उस समय पे हम लोगों ने इनको समझाया कि प्रथम में यदि आपको यदि चलना है धर्म पे, तो सबसे पहला जो है पितरों का जो है उद्धार करके ही आप लोग आगे चल सकते हैं। तो उसी वाक्य का इन लोगों ने अपने जीवन में सीरियसली लेके यहाँ पे आज पधारे हैं।
0: गया जी में पिंडदान की महिमा का वर्णन धार्मिक परंपराओं में विशेष रूप से मिलता है। माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही विश्वास श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है।
2: Yes, we studied about that. So this is already my second time. I was here 3 years ago already doing this ritual. And now more people, so we brought more people, they got interested in Hindu tradition, in those rituals to give respect to ancestors. They know which benefits it will bring in life and for all the generations. So people want to do that. They are very interested in that.
0: आस्था की ये बयार गया जी धाम ही नहीं बद्रीनाथ धाम में भी देखने के लिए मिल रही है। पितरों की मुक्ति के लिए श्रीहरि के इस पावन धाम की दिव्यता ही ऐसी है कि यहाँ कराए जाने वाले पिंडदान और तर्पण को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट है। इसमें शामिल होने के लिए विदेशी भी पहुँच रहे हैं। वैसे पहले भी सनातनी परंपरा, उसके प्रति आस्था विदेशियों को काफी आकर्षित करती रही है। ऐसे में बद्रीनाथ में विदेशी श्रद्धालुओं का अपने पुरखों का पिंडदान दर्शा रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। दरअसल पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे वर्तमान से नहीं बल्कि उन पूर्वजों से भी जुड़ी है जिन्होंने हमारे परिवार और समाज की नींव रखी। गया जी से पंकज कुमार, चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उदयपुर की डॉक्टर मनस्वी अग्रवाल ने पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा हौसला दिखाते हुए पर्वतारोहण की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। महज 9 महीने के भीतर उन्होंने दुनिया के 5 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतह कर वहां भारतीय तिरंगा लहराने का काम किया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है, 5 महाद्वीपों की चोटियां फतह करने का रिकॉर्ड। जी हाँ, आपको हम बता दें कि यूरोप के माउंट एल्ब्रूस से शुरू हुआ उनका सफर, अफ्रीका के किलिमंजारो, अंटार्कटिका के विंसन मैसिव और दक्षिण अमेरिका के माउंट ओकागुआ सहित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक वो पहुंचा।

0: उदयपुर की डॉक्टर मनस्वी अग्रवाल ने महज 9 महीने के भीतर दुनिया के 5 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतह करके इतिहास रच दिया है। मनस्वी ने 5 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों पर पहुंचकर वहां भारतीय तिरंगा लहराया है।
1: राजस्थान के उदयपुर की एक ऐसी बेटी आज हमारे साथ में जयपुर में मौजूद है जिन्होंने पहाड़ देखे नहीं है, पहाड़ों को चुनौती की तरह देखा है और महज 9 महीने के समय में 5 ऐसी चोटियां जो महाद्वीप हैं उनको ये चढ़ी हैं और बहुत सारे चैलेंजेस जो इनकी राह पे आए हैं उनको इन्होंने पार करके एक रिकॉर्ड बनाया है। महज 9 महीने में 5 महाद्वीपों की चढ़ाई करने का, जिसमें किलिमांजारो भी है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है।
0: मनस्वी के कठिन अभियान की शुरुआत 16 अगस्त 2025 को हुई जब उन्होंने यूरोप की सर्वोच्च चोटी 5,642 मीटर ऊंची सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस फतह की। इसके बाद 9 सितंबर 2025 को अफ्रीका की 5,895 मीटर सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। 12 दिसंबर 2025 को उन्होंने अंटार्कटिका की 4,892 मीटर सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिव को फतह किया। इसके बाद 22 जनवरी 2026 को दक्षिण अमेरिका की 6,962 मीटर सर्वोच्च चोटी माउंट अकोंकागुआ पर पहुंची और आखिर में 21 मई 2026 को एशिया के 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर मनस्वी ने इतिहास रचा। वो राजस्थान की पहली महिला सिविलियन पर्वतारोही बनी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी फतह की, लेकिन एवरेस्ट की चोटी फतह करने के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ मनस्वी अत्यधिक ठंड और बर्फीली परिस्थितियों की चपेट में आ गईं और उन्हें गंभीर 3rd और 4th degree फ्रॉस्ट बाइट का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
2: जब मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुई थी तो जो एक इंजेक्शन होता है एलोप्रॉस नाम का, वो मुझे मात्र 12 घंटे में लंदन से मंगवाया गया, फ्लाइट को डाइवर्ट करा के और कस्टम्स डिपार्टमेंट को खुलवा कर। तो एक इकलौता अनोखा केस था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, नेपाल एम्बेसी सब लोग इन्वॉल्व थे और सबने पूरा ट्राई किया कि ये इंजेक्शन जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि वो स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जिसमें मेरे दोनों पैर काटने पड़ते। पर उस इंजेक्शन के कारण आज मैं आप सबके सामने बैठी हुई हूँ और खड़ी हुई हूँ, तो मुझे उन सब का बहुत सपोर्ट रहा।
0: मनस्वी की प्रतिभा केवल पर्वतारोहण तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज है। 10 मीटर राइफल शूटिंग की महिला वर्ग में ISSF सिविलियन चैंपियनशिप की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में हिस्सा ले चुकी है। वो राष्ट्रीय स्तर के घुड़सवार भी हैं और 60 किलोमीटर एंड्योरेंस राइड प्रतियोगिता में साल 2022 में वो कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं। मनस्वी ने पर्वतारोहण के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण हासिल किया है। उन्होंने माउंट आबू स्थित स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, ग्रेड ए एडवांस्ड माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग का भी प्रशिक्षण लिया है। वो प्रमाणित रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनर भी हैं। कभी बर्फीली चोटियां और कभी जानलेवा मौसम, हर चुनौती के बाद मनस्वी ने अपने सफर को आगे बढ़ाया। अब मनस्वी की नजर दुनिया के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतेह करना यानी 7 समिट्स पर विजय पाना है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों को देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन। खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यहीं से सच और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना

0: क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पहाड़ के ढहने का ये भयावह दृश्य नेपाल का है। क्या है इस वीडियो और दावे की सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: तो सबसे पहले बात वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जमुई नाबालिग छात्रा बदसलूकी केस में पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया। वीडियो में दो घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। यह वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इस दावे की पड़ताल की।
2: सितंबर को बिहार के जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई बदसलूकी मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो मुख्य अभियुक्तों नंदन यादव और हरेराम यादव की गिरफ्तारी 22 सितंबर को एनकाउंटर के बाद हुई थी। इसमें नंदन यादव को गोली लगी थी। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें दो घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि जमुई मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। एक यूजर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, जमुई में लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में शामिल दो और अपराधियों का पुलिस एनकाउंटर। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग सम्राट सरकार और बिहार पुलिस की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: बिहार के जमुई जिले में 19 सितंबर को एक नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई थी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सम्राट सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया, जबकि एक और आरोपी हरेराम यादव भागने के दौरान घायल हो गया। हाल ही में दो और आरोपियों सौरभ राम और छोटू राम की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन सबके बीच अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। खबर ये फैलाई जा रही है कि जमुई कांड में शामिल दो और आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। तेजी से ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, हमारा भी ध्यान इस वीडियो की तरफ गया और हमने इसकी पड़ताल शुरू की। किसी खेत का ये वीडियो लग रहा है जहां पर पुलिस की गिरफ्त में दो लोग नजर आ रहे हैं और दोनों के दाएं पैर में पट्टी बंधी हुई है। वो बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि पुलिस के साथ इन दोनों लोगों का मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर के बाद इन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैच पर भी गया। जब हमने इसे जूम करके बारीक नजरों से देखा तो इस पर यूपी पुलिस लिखा हुआ था। अब ये देखकर हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने वायरल वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। इसमें पुलिसकर्मी जिस लहजे में बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त इस तरह की भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है। बता दें कि जमुई कांड में मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके सहयोगी हरेराम यादव को एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया था, जिसके तुरंत बाद इन दोनों को अस्पताल में ले जाया गया और इसके बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस दौरान ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि जमुई पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इस वीडियो के साथ ये खबर मुख्यधारा की मीडिया में क्यों नजर नहीं आ रही है। जमुई कांड को लेकर पुलिस लगातार मीडिया को अपडेट दे रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अगर मुठभेड़ का दावा सच्चा है तो फिर इसमें यूपी पुलिस क्या कर रही है।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगा, वैसे ही लोग इस वीडियो के जरिए एक राय बनाने लगे। लेकिन हमें इस वीडियो का सच झूठ जानना था, लिहाजा हमने वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 7 सितंबर 2026 को छपी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल हो रहे वीडियो जैसी ही एक तस्वीर थी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छपाड़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 14 वर्षीय लड़की के साथ हुए कथित दुराचार के मामले में दो आरोपियों वालीन और सलमान को गिरफ्तार किया है। उनके पैर में गोली लगी है। मामले में एक अन्य आरोपी समीर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सर्च के दौरान ही हमें 6 सितंबर 2026 को छपी एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि मुजफ्फरनगर के रेता नंगला गांव के जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए। बता दें कि तीन आरोपियों ने जन्माष्टमी पर घर से निकली लड़की को कथित तौर पर अगवा कर लिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि जमुई केस में दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद

0: गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दो और आरोपियों की पुलिस एनकाउंटर का दावा गलत है। वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करेंगे उस खबर की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ये नेपाल की खबर है। सबसे शॉकिंग वीडियो है, पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, चंद सेकंड में पूरी सड़क पर तबाही मचाती है। इस वीडियो पर भी हमने पड़ताल की।
0: लगातार बारिश के कारण नेपाल में एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों से बाढ़ और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल में इस वक्त बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। अब इसी संदर्भ में बहुमंजिला इमारतों के बीच पहाड़ से भारी मात्रा में अचानक मलबा गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये दृश्य नेपाल में पहाड़ गिरने की घटना का है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, नेपाल में पहाड़ के ढहने का भयावह दृश्य। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। लोग नेपाल के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं।
1: अगस्त की तबाही से नेपाल अभी तक उबर भी नहीं पाया कि एक बार फिर से हालात बद से बदतर होने शुरू हो गए। नेपाल के कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस बीच ये वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। वीडियो में पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, फिर चंद सेकंड में ही सड़क पर तबाही मचाती है। दावा यह किया जाता है कि वीडियो नेपाल का है और इस वीडियो पर फैक्ट चेक टीम ने भी नजर डाली। हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि अगस्त के बाद अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में बाढ़ बारिश के प्रहार से एक बार फिर से नेपाल में भारी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन हमें ये जानना था कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का ही है। इसके लिए हमने वीडियो को देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिसके बाद हमें इस पर शक हुआ, हमें इसकी वास्तविकता पर भी शक हुआ। वीडियो में मलबा बहुमंजिला इमारत के बिल्कुल किनारे से तेज गति से नीचे गिरता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो जस की तस खड़ी है। इसके अलावा मलबे के गिरने और सड़क पर फैलने का तरीका भी सामान्य नहीं लग रहा है। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की कोई हलचल या उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो बड़े आराम से इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि सामने से मौत आ रही है, लेकिन लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बाढ़ और बारिश की वजह से इस बार नेपाल मुश्किल में है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेपाल से जुड़ी हर खबर दिखा रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखाया जा रहा है? हमारा तीसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा?
0: नेपाल बाढ़ के नाम से वायरल हो रहा ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सोशल मीडिया पर इसे लगातार फैलाया जा रहा था, लिहाजा सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। नेपाल को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। फैक्ट चेक टीम अब इस वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो को देखने से हमें इसमें कई खामियां नजर आई। उदाहरण के लिए, ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की हलचल या प्रतिक्रिया नजर नहीं आती। ये देखकर हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके बाद हमने इस वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.2% संभावना के साथ एआई निर्मित बताया। नेपाल में पहाड़ ढहने का बताकर वायरल हुए वीडियो का सच जानने के लिए हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल जीरो जीपीटी पर भी जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को उच्च संभावित एआई जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और आई डिटेक्टर प्लेटफॉर्म एआई और नॉट ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को उच्च संभावना के साथ एआई जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि नेपाल में पहाड़ ढहने के दावे से वायरल हो रहा ये वीडियो एआई जनरेटेड है। इसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: भारत को एक मिनट में दो गोल्ड। खेल का मंच भारतीय मुक्केबाज का चैंपियन पंच। झांसी की दुर्गा प्रतिमा बंगाल की छाप। देश के दो महान सुपूतों की जयंती। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
3: ये दिल छू लेने वाला पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक लड़की भोजन के दौरान अपने पिता की हर हरकत को बहुत ध्यान से देखकर बिल्कुल वैसे ही पूजा करती और अनुशासन अपनाती नजर आ रही है। लोग इस वीडियो को बड़ों से सीख की आदत और भारतीय संस्कृति की संस्कारों से जोड़कर काफी पसंद कर रहे हैं। न कोई बड़ा स्टूडियो, न महंगे माइक, न लाइट कैमरे का झंझट, बस पीछे अरुणाचल के पहाड़, चारों तरफ हरियाली और सामने की तीनों बहने। ऐसी सादगी में जब इनकी सुरीली आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे पहाड़ भी गाना सुन रहे हैं। इनके गाने का अंदाज बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। सिंका, नगम जन और लिली अरुणाचल के लॉन्गडिंग जिले के एक छोटे से गांव बानू की रहने वाली है। गांव की उसी कच्ची नेचुरल लोकेशन पर खड़े होकर इन्होंने ये गाना गाया है और इस सादगी का ही जादू है कि ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह से फैल गया है। शहर हो या गांव, अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको पहचान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इन दिनों बिहार की एक लड़की का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो गांव के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ाती नजर आ रही है। जिस आत्मविश्वास के साथ वो अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का उच्चारण कर रही है, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो सिर्फ शब्द बोलकर आगे नहीं बढ़ जाती है बल्कि बच्चों को उसका सही उच्चारण भी समझाती है। उसका पढ़ाने का अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वो बिना किसी बड़े क्लासरूम, प्रोजेक्टर या महंगे संसाधनों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रही है।
4: ये मुझे बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है, ये मुझे ढूंढती रहती है अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो।
3: लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल, मतलब कई बार जीवन में हुई घटनाएं, रिश्ते और अनुभव अक्सर बदलाव के साथ वही लौट आते हैं जहां वो शुरू हुए हैं।
5: मेरी दादी, जब भी मैं खा रही हूँ, सो रही हूँ, बैठी उठ रही हूँ, मेरे को मेरी दादी या मम्मी में से कोई चाहिए। अगर बाई चांस वो मुझसे थोड़ा भी दर दर हो जाते ना तो मैं चिल्लाने लगती हूँ, रोने लगती हूँ, ऐसी थी मैं।
3: इंटरनेट पर वायरल दादी पोती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर लोग अपने दादा दादी को भी याद कर रहे हैं।
5: जब तक ये सोनी जाती फिर मैं उठ जाती हूँ और अपना काम करती हूँ। अगर ये मुझे देख लेती है कि मैं उठ गई हूँ तो फिर से मुझे ढूंढने चली जाती है कि मैं कहाँ गई। मेरे बच्ची वाला जो वर्जन है वो एग्जैक्ट मेरी दादी है। आज बूढ़े होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, दैट इज 100% ट्रुथ।
6: हमें नहीं बना लगा तो मैं होती।
3: एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने माता पिता को स्टेशन पर विदा करते हुए जो पल कैद किया उसने हजारों लोगों के दिल को छू लिया है। खुशी ट्रेन की खिड़की से अपनी माँ और पिता को देख रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े माता पिता मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं, पिता भी मोबाइल निकालकर बेटी का वीडियो या फोटो ले रहे हैं। दोनों तरफ से यादों को संजोने की कोशिश साफ दिख रही है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दूर बढ़ जाती है, लेकिन माता पिता तब तक हाथ हिलाते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं जब तक कि बेटी की झलक गायब नहीं हो जाती। ये दृश्य कई लोगों को अपने माता पिता की याद दिला रहा है। दर्शकों जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशे बजा रहे हैं। लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्डन डे, 44 साल बाद विमेन हॉकी में गोल्ड, माँ दुर्गा के आगमन की तैयारी, झांसी से लेकर बंगाल तक दुर्गा प्रतिमाओं को दिया जा रहा है आखिरी टच, और भारत के दो महान सपूत महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर देश कर रहा है नमन। शुरुआत है टेक्स के साथ।
5: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
1: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक्स के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों के लिए आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन। खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। कुम्हारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 1 से 25 फीट ऊंची प्रतिमाएं। पश्चिम बंगाल के बक्सर टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन, अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का आगाज। लेडीज बस में खुद कंडक्टर बने सीएम थलपति विजय। महिलाओं ने टिकट के बदले मुख्यमंत्री को चॉकलेट दी।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले एशियन गेम्स की। एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे रहा। बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई तो महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कुश्ती में सुजीत ने तो आश्री में बेटियों ने सोना अपने नाम किया। कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक 16 मेडल समेत 76 पदकों पर कब्जा कर लिया है।
2: महिला हॉकी में लौटा सुनहरा दौर, चीन को हराकर जीता स्वर्ण पदक। 44 साल बाद हॉकी में ऐतिहासिक जीत, ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। परवीन हुड्डा का सुनहरा पंच, लवलीना बोरगोहेन का गोल्डन गिफ्ट, अंकुश पंघल ने बॉक्सिंग में पूरी की तिकड़ी, कुश्ती में सुजीत कलकल का सुनहरा दांव, तीरंदाजी में अंकिता कीर्ति और कुमकुम का गोल्ड पर निशाना। 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाया गोल्ड का सिक्सर। एशियन गेम्स 2026 में दिखने लगा है भारत का दम। नगोया में सिकंदर बनने का सिलसिला लगातार जारी है। 13वें दिन की शुरुआत तीरंदाजी में गोल्ड मेडल के साथ हुई। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने कॉन्टिनेंटल इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर एशियन गेम्स में सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, देश का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। इसके बाद स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्डन पंच लगाकर अपना जन्मदिन यादगार बना दिया। टीम स्टाफ के साथ लवलीना ने केक काटा और कहा कि इस जीत से उनका जन्मदिन खास हो गया।
3: बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, क्योंकि इतना लंबा जर्नी था मेरा और कहीं ना कहीं ये मेडल पूरा जर्नी याद दिला देता है। और बीच में बहुत ज्यादा टफ भी आया था कि कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
2: बॉक्सिंग के ही 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा ने फाइनल में जीत हासिल कर गोल्ड पर कब्जा कर देशवासियों को खुशी से भर दिया। तो अंकुश पंघल कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तीसरा गोल्ड जीत कर बॉक्सिंग में आज के दिन हैट्रिक लगा दिया। कुश्ती के खेल में सुजीत कलकल ने सुनहरा दांव लगाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया।
4: देखो यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए।
2: सुबह सुबह रोमांचक फाइनल में खिताब की प्रबल दावेदार दक्षिण कोरिया को अंकित भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की तिकड़ी ने 5-3 से हराया। 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया। बॉक्सिंग के स्टार खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर गोल्ड मेडल जीतकर देश को शानदार तोहफा दिया। उन्होंने फाइनल में चीन की बॉक्सर बायो जीई को 5-0 से हराकर कमाल कर दिया। पिछले एशियन गेम्स में लवलीना फाइनल हारकर सिल्वर मेडल पर रुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने गोल्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया। आज का तीसरा गोल्ड परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग में चीनी ताइपे की चेन नियन चिनको को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। बॉक्सिंग में ही 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश ने दक्षिण कोरिया के सिन मिन सियोंग को हराकर गोल्ड हासिल की। ताजिकिस्तान के पहलवान अब्दुल माजिद कुडियेव को पछाड़कर सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। एक समय सुजीत अब्दुल से 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 10-9 से फाइनल जीत लिया। तीरंदाजी में भारत को सिल्वर के रूप में दूसरा मेडल भी मिला। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवड़ा की जोड़ी फाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। पुरुष तीरंदाजी टीम में संजय भोगी, धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान की भारतीय टीम को फाइनल में साउथ कोरिया ने 5-1 से हरा दिया। उन्हें सिल्वर मेडल मिला। इसके बाद सेलिंग में भारत के नेत्रा कुमानन ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। सेपक टकराव में भारतीय मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के अरुण, बॉबी कुमार, लुखोन सिंह, माले मगम्बा सिंह, रामकुमार शर्मा और आकाश जुमनन ने जापान के खिलाफ सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। आर्चरी में अंकिता कीर्ति कुमकुम ने रिकर्व आर्चरी महिला टीम ने गोल्ड जीतकर सबको चकित कर दिया। भारतीय महिला टीम ने हैवीवेट साउथ कोरिया को हराकर महिला टीम रिकवरी आर्चरी में ऐतिहासिक गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। आर्चरी में धीराज और कुमकुम ने रिकर्व मिक्स टीम में सिल्वर जीत आने वाले प्रतियोगिताओं के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। कुमकुम मोहोत और धीरज बोमदेवरा गोल्ड मेडल मैच में चीन से हार गए थे और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। एशियन गेम्स 2026 में भारत के 76 मेडल हो गए हैं। एशियाड में भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी मेडल संख्या है। 2023 में चीन के होंगजो में सबसे ज्यादा 107 जबकि 2018 में जकार्ता में 69 मेडल आए थे। अब तक भारतीय दल ने 76 मेडल्स पर कब्जा कर लिया है। भारत को हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और कुश्ती जैसे प्रमुख इवेंट्स में मेडल मिलने की पूरी उम्मीद है और कई मुकाबलों में पदक पक्के भी हो चुके हैं। पुरुष हॉकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इस टीम से गोल्ड की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में फाइनल में पहुंच चुकी है। उसका गोल्ड के लिए पाकिस्तान से मुकाबला होना है। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मेडल टैली में 5वां स्थान हासिल कर लिया है। अभी तक भारत के खाते में 16 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज के साथ कुल 76 मेडल आ चुके हैं। पदकों पर परचम लहराने का सिलसिला अभी जारी है। 5 अक्टूबर तक चलने वाले एशियाई गेम्स में कई खेलों में भारत को गोल्ड समेत कई पदक मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और अब बात करते हैं शक्ति, साहस और संरक्षण की दिव्य प्रतीक माँ दुर्गा की। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होने में 10 दिन से भी कम वक्त बचा है। देश भर में मूर्तिकार आदि शक्ति की प्रतिमा को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। बंगाल के शहरों की तरह ही उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने के दौर में हैं। यहां अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश की प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं में बंगाल की छाप साफ नजर आ रही है।

0: भवानी, चंडिका, शेरावाली, जगदम्बा और महिषासुरमर्दिनी विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा के किसी भी नाम का आह्वान करें तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आदि शक्ति की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। नौ दिनों के बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 11 अक्टूबर से हर तरफ जय माता दी के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होने वाला है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। झांसी में बंगाली मूल का एक परिवार पिछले 34 साल से हर साल माँ की प्रतिमाओं को साकार करने की साधना से जुड़ा है। 4 महीने से ये बंगाली परिवार माँ के अलग अलग स्वरूपों को बेहद कलात्मक तरीके से सजीव करता है। 122 दिनों के अंतराल में करीब 160 प्रतिमाओं को अलग अलग रूपों को भव्य और सुंदर चित्रण किया जाता है। झांसी की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में बंगाल की कला, मिट्टी और पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। आधुनिक थीम वाली मूर्तियों के इस दौर में भी बंगाल की पारंपरिक साका और डाकर साज शैली यानी विशेष मुकुट, चौड़ी आंखें और भावपूर्ण चेहरे वाली माँ दुर्गा की मूर्तियों की भारी डिमांड होती है।
1: देखो, मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़कर आप जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अभी जो नया नया डिजाइन ये फलाना बना दो, ये बना दो, वो बेकार है। एक दिन चलेगी, दो दिन चलेगी, चार उसके बाद नहीं चलेगी। पूरा कलकत्ता हमारा सिंगर से कपड़ा से सब कलकत्ता का है। शेर का हम लोग खाल चलाता है, यहाँ पर मिट्टी लगा देगा। हम लोग ऐसे कम नहीं करता। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
2: तो लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार करते हैं?
1: हाँ, कितना है? 150-160 ऐसा ही होगा। 200 नहीं आएगा। ये हम ऐसे ज्यादा बनाएंगे नहीं, ग्राहक हमारे पास बहुत है, हम बनाएंगे नहीं, हिसाब से नहीं जाएगा बाहर। अब लोकल वाला जो लोग बनाता है,
2: आपका केवल बंगाली पैटर्न
1: है? हमारा बंगाली पैटर्न कलकत्ता में पिक किया।
0: एक एक प्रतिमा को तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले भूसे से ढांचा तैयार किया जाता है, इसके बाद मिट्टी की परतें चढ़ाकर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। बारीक कारीगरी के बाद रंग और फिर अंतिम चरण में कोलकाता से लाए गए वस्त्र, मुकुट और आभूषण लगाए जाते हैं। झांसी की इन दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने के दौरान पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जल, जमीन और वायु में प्रदूषण न फैले, इसके लिए प्रतिमाओं के निर्माण में POP का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्माण में अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोलकाता से लाई जाने वाली गंगा नदी की मिट्टी के साथ स्थानीय तौर पर मिलने वाली काली और लाल मिट्टी भी शामिल है। दुर्गा प्रतिमाओं को रंगने के लिए पौधों, फूलों, सब्जियों, फलों के छिलकों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।
1: मिट्टी हमारे तो कलकत्ता से आता है, 3-4 प्रकार का मिट्टी है, मिक्स करके काम करना पड़ता है। हमारा जो मिट्टी है कोई नुकसान वाली काम नहीं है। हमारा गंगा जी का मिट्टी आधा मिट्टी गंगा जी का है, जो वहाँ खदान से पानी के अंदर उठाना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है, तब वहाँ कलकत्ता आता है। कलकत्ता से कलर हमारा नॉर्मल कलर है, ऑयल पेंट कलर नहीं है।
0: साल से इस कार्यशाला में बनने वाली माँ दुर्गा की 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों से भी आती है।
3: इस बार 200 मूर्ति बनाए, ठीक है, लगभग 90% तो बुक ही हो चुका है। अभी 10% चल रहा है, अभी 10 दिन बचा है अभी तक।
2: कितने लोग लगते हैं और कितने दिन से आप काम चालू कर रहे हैं?
3: जब क्या है, मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगता है, क्योंकि वो घास बांधना, मिट्टी लगाना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम रहता है, इसीलिए उस टाइम 10-12 आदमी रहता है। इस टाइम जो सिंगर के टाइम पे 8-10 आदमी है।
0: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए दिल्ली में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्यता के साथ विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे माँ के आगमन से पहले ही शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के मन में उत्साह नजर आता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती देश मना रहा है। महात्मा गांधी स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं तो शास्त्री जी सादगी के लिए। इसीलिए आज के दिन देश के अलग अलग इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।

0: महात्मा की जयंती, स्वच्छता के संदेश की गूंज, पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाने वाले देश के महान सपूत महात्मा गांधी ने स्वच्छता को सर्वोपरि बताया था। जीवन में साफ सफाई और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले बापू की जयंती पूरा देश मना रहा है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सादगी के सिद्धांत पर चलने वाले महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए स्वच्छता अभियान को तरजीह दी गई। स्वच्छता को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के संदेश को बढ़ावा देने के लिए देश के कई शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। दो अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में जेनजी सुबह सुबह दिल्ली के यमुना घाट पहुंचे और बापू के स्वच्छता का संदेश का स्मरण किया। लाइफलाइन कहे जाने वाली यमुना की सफाई में जुट गए। किसी के हाथ में झाड़ू था तो कोई घाट से कूड़ा और प्लास्टिक उठाता नजर आया। घाट की सफाई के साथ युवाओं ने समाज को यमुना को साफ रखने का संदेश भी दिया।
1: दिल्ली का जेंजी, दिल्ली का युवा पहुंचा है यमुना के किनारे पर। गांधी जी का जो संदेश था कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी है, उसी संदेश को लेकर आज तमाम युवा यमुना के घाट पर पहुंचे हैं। कालिंदी कुंज में हैं हम और यहां पर वो यमुना की सफाई, जो घाट के किनारे की जो सफाई है उसको करने में जुटे हुए हैं। लगभग 15 से ज़्यादा दिल्ली के कॉलेजेस के बच्चे यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार इस काम को वो अंजाम दे रहे हैं।
2: आज हम हज़ार की संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 15 कॉलेजेस से जेंजी इकट्ठा हुए हैं। गांधी जयंती पर एक संदेश देना चाहते हैं, स्वच्छता का संदेश, और उसी संदेश को, गांधी जी के जो संदेश है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमने पहले यमुना की पदयात्रा करी सुबह में और उसके बाद अभी हम क्लीनअप की मुहिम चला रहे हैं।
3: एज अ सिटीजन ऑफ दिस प्लेस, हमारी रिवर है यमुना, हमारी एज होली रिवर भी है, तो उसको साफ करना हमारा काम है।
0: गांधी जयंती को स्वच्छता से जोड़कर देखने की परंपरा रही है। दिल्ली के सफदरजंग किले में भी पर्यटन विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। बापू को याद करते हुए गुरुग्राम में भी लोगों ने स्वच्छता अभियान से जुड़कर शहर को साफ रखने का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में भी लोगों ने सफाई जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। लोगों को आसपास साफ रखने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति का संकल्प भी दिलवाया गया।
4: लोग भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी इनका सहयोग करेंगे जहां तक भी हुआ। ये हमारा एक मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, इसको हम काफी हद तक निभाएंगे। स्वच्छ भारत बनाना है हमने, ये सबका साथ चाहिए, हमें सबने मिलजुल के ये काम करना है।
0: भारतीय रेलवे ने भी ट्रेनों और रेलवे स्टेशन में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता उत्सव नाम से मेगा ड्राइव की शुरुआत की है, जिसके तहत रेलवे के तमाम छोटे बड़े अधिकारी जागरूकता फैलाने वाले इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बाहर स्वच्छता अभियान को नया आयाम देने की कोशिश की गई। रेल परिसर को साफ करने के लिए रेलवे के अधिकारी सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व करते नजर आए।
5: अभी इन लोगों ने सफाई अभियान चलाया है, हाथों में झाड़ू लेकर डीआरएम सहित तमाम अधिकारियों ने साफ सफाई की है।
6: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में भी आज हमने ये स्वच्छता अभियान चलाया है और इसका एक दिन एक घंटा कार्यक्रम के तहत हमने सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर सफाई की है सर्कुलेटिंग एरिया में।
0: भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है, हर रोज करोड़ों यात्री इसमें सफर करते हैं। ऐसे में ट्रेन और रेलवे स्टेशन को साफ रखना भी महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंदौली से उदय गुप्ता और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 की, जो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म की एडवांस बुकिंग ने पहले ही तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग के संकेत भी मिल रहे हैं। कहीं फैंस फिल्म के पोस्टर के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं तो कहीं थिएटर्स के बाहर फिल्म के डायलॉग्स और पिछले दोनों पार्ट्स की यादें ताजा की जा रही हैं। वैसे तो शानदार एडवांस बुकिंग के कारण फिल्म की धमाकेदार ओपनिंग तय है, लेकिन अगर आप फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये फिल्म कैसी है, क्यों देखना लायक है और क्या ये दृश्यम एक और दो से बेहतर है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिल्म में तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस फिल्म को एक और दो से अलग बनाती हैं। फिल्म में जयदीप अहलावत की एंट्री है जिनकी धमाकेदार एक्टिंग की खूब तारीफ की जा रही है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट इस बार इस फिल्म में यानी कि दृश्यम 3 में देखने को मिलेंगे। दृश्यम एक और दो से पूरी तरह से ये अलग है फिल्म और कहा जा रहा है कि सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे। तब्बू की दमदार एक्टिंग जो पहली दृश्यम और दृश्यम एक और दो में देखने को मिली थी और इसी के साथ साथ अजय देवगन की भी धमाकेदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: क्या कपड़ों की अलमारी में पैसे नहीं रखने चाहिए? क्या किचन की अलमारी का पारदर्शी होना जरूरी है? क्या किताबों की अलमारी का रख रखाव अलग तरीके से होता है? अलग अलग अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें
12: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर की अलग अलग अलमारियों की और उनके रख रखाव की और आपके भाग्य की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 7:59 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर की जो अलग अलग अलमारियां हैं उनको कैसे रखना चाहिए और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। आपके घर की अलमारियों से किस्मत का क्या कनेक्शन है? देखिए, घर की जो अलमारियां हैं ये बचत और सुरक्षा की प्रतीक हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से शनि और शुक्र पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। अलमारियों को ठीक करके बचत को

की बचत कर पाएंगे, चीजों की सुरक्षा कर पाएंगे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। तो बचत, सेहत और सुरक्षा, ये तीनों चीजें आपके घर की अलमारियों से कंट्रोल होती हैं। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। आमतौर पर हर घर में, चाहे दीवार में फिक्स हो या अलग से ली गई हो, कपड़ों की आलमारी अवश्य होती है। क्या विशेषता है इसकी? कपड़ों की जो आलमारी है, ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित होती है। और अगर आप कपड़ों की आलमारी को ठीक रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो इससे आपका शुक्र हमेशा अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ कपड़ों की आलमारी को साफ सुथरा रखने से, व्यवस्थित रखने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। इस आलमारी को हमेशा व्यवस्थित रखिए, कपड़े ठूंस कर अव्यवस्थित तरीके से, खराब तरीके से ना रखें। इस आलमारी में सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और धन सामान्य स्थितियों में नहीं रखना चाहिए। धन रखने पर बहुत तेजी से खर्च होगा। हालांकि इस आलमारी में अगर कोई दराज है, कोई छोटी आलमारी के अंदर रैक है, तो उसमें अपने महत्वपूर्ण कागज आप रख सकते हैं। कपड़ों की आलमारी में अगर आप आभूषण रखेंगे, उनके खोने का खतरा होगा। और अगर धन रखेंगे तो धन बचेगा नहीं, बड़ी तेजी से खर्च होता चला जाएगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या के योग बन रहे हैं, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। रसोई की जो अलमारी है जिसमें आप डब्बे रखते हैं अनाज के, मसालों के, या बर्तन भी रखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अलमारी है। रसोई की अलमारी भैया सूर्य की अलमारी है, इससे कनेक्ट करता है सूर्य। आम तौर पर इसमें रसोई के सामान, अनाज, मसाले, दालें और बर्तन रखे जाते हैं। इस अलमारी को पूरे तरह से बंद नहीं बनाना चाहिए। इसको अगर दरवाजे वाला बना रहे हैं तो पारदर्शी दरवाजे यानी ट्रांसपेरेंट डोर्स या जाली वाले दरवाजे इसमें लगाने चाहिए। और मसाले और अनाज के डब्बे इसमें अलग अलग आपको रखने चाहिए। कांच के बर्तन और धातुओं के बर्तन भी आपको अलमारी में अलग अलग रखने चाहिए। रसोई की जो अलमारी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अलमारी को महीने में एक बार साफ जरूर करना चाहिए। और अगर आप रसोई की अलमारी में डब्बे सही से रखते हैं, बर्तन सही से रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, सूर्य प्रबल होगा, घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। बड़ी पुरानी कहावत है कि जहां घर में चार बर्तन होते हैं वहां टकराते हैं, इसका मतलब झगड़ा होता है। तो अगर आप बर्तन अव्यवस्थित अलमारी में रखते हैं तो बर्तन टकराएंगे और वो घर के लोगों के बीच में विवाद का कारण बनेगा। इसीलिए रसोई में चाहे वो अनाज वाली अलमारी हो, मसाले वाली अलमारी हो, बर्तन वाली अलमारी हो, उसको आपको ठीक तरीके से रखना चाहिए। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,
करियर में आपको सफलता मिलेगी। खान पान का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जोखिम ना लें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, धन की अलमारी वो अलमारी है जिसमें आप पैसा रखते हैं, आभूषण रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं, और इसकी चाबी हमेशा बंद रख के अपने पास रखते हैं। अलमारी नॉर्मली ये खुला नहीं छोड़ते, बड़ी सिक्योरिटी से इसको रखने का प्रयास करते हैं। धन की जो अलमारी है इसका संबंध होता है बृहस्पति से, जुपिटर से, और धन की अलमारी में धन, आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर धन की अलमारी या आपकी तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट के कोने में हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। धन की अलमारी बेहतर तो ये होगा कि उत्तर दिशा की तरफ खुले, नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ अगर धन की अलमारी खुले तो ये भी अच्छा है। लेकिन अगर धन की अलमारी दक्षिण की तरफ खुलेगी तो घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में नष्ट होगा। तो धन की अलमारी उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूर्व दिशा की तरफ खुले तो बहुत अच्छा होगा। इससे संपन्नता बनी रहेगी और निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। जो आपके धन रखने की अलमारी है उसका रंग काला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और धन की अलमारी पर एक लाल रंग का स्वस्तिक आप सिंदूर से बनाकर लगा दें और हर दीपावली पर अलमारी की साफ सफाई करें। दीपावली पर इस अलमारी की पूजा भी करें और हर दीपावली पर पुनः एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाकर अपने धन की अलमारी पर लगा लेंगे। देखिए, किताबों की जो अलमारी है, जो आपकी बुक शेल्फ है, वो दरअसल बुद्ध का स्थान है। पढ़ना लिखना, चीजों को संभालना, ज्ञान को इकट्ठा करना, हालांकि ज्ञान में बृहस्पति का रोल है, लेकिन किताबों की जो अलमारी है वो बुद्ध की अलमारी है। आप याद रखिए कि अगर आप अपनी किताबों को सलीके से रखते हैं, पढ़ने के बाद संभाल कर रखते हैं, नियमित रूप से किताबों की अलमारी की सफाई करते हैं, तो आपकी बुद्धि और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। अगर आप किताबों को फाड़ते हैं, मुड़े तुड़े हाल में ठूंस कर रखते हैं, बिखेर कर रखते हैं, तो ऐसा करने से दो चीजें पक्की होंगी। एक तो जब आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी उस समय बुद्धि आपका साथ नहीं देगी, दूसरा आपकी याददाश्त कमजोर होगी। तो छोटी उम्र से ही बच्चों को ये सिखाइए कि वो अपनी किताबों को, कॉपी को संभाल कर अलमारी में रखें और किताब कॉपी की अलमारी को बहुत अच्छी तरह से रखें, बिल्कुल सिस्टम से रखें। इससे बच्चों की बुद्धि एकाग्रता शुरुआत से बेहतर होगी। और जो लोग बचपन से शुरुआत से
किताबों का, कॉपियों का रख रखाव जानते हैं, उनका मूल्य जानते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है और ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत बेहतर होती है। देखिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं, धर्म स्थान पे जाते हैं दर्शन करने, पूजन करने, और वहां से अगर कोई फूल या माला मिलती है आपको, तो उसे ऐसे ही मत कहीं रख दीजिए। उसको ला करके अपने काम करने की जगह पर, अपने पढ़ने की जगह पर रख दीजिए। इससे जीवन में शुभता आएगी। और जब ये सूख जाए तो क्यारी में डाल दें या जमीन में दबा दीजिएगा। अगर आपके जमीन का, मकान का मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाइएगा और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और गाय को गुड़ खिलाएं। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करें, जमीन और प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन। खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णु प्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के कोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। कुंभारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे राह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा पितृपक्ष में पितरों के पिंडदान के लिए गया जी आ रहे विदेशी श्रद्धालुओं की भी है।
9: पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे वर्तमान से नहीं बल्कि उन पूर्वजों से भी जुड़ी है जिन्होंने हमारे परिवार और समाज की नींव रखी है, और उनके इसी योगदान को सम्मान देने की धार्मिक परंपरा है पितृपक्ष में पिंडदान। और सनातन परंपरा में गया जी में पितरों के पिंडदान का विशेष महत्व है। यही वजह है कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं और अपने पितरों की मोक्ष की कामना के साथ देवघाट पर पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, गया जी के विष्णुपद मंदिर के पास देवघाट पर विदेशी श्रद्धालु कैसे पूरी श्रद्धा भाव के साथ पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। इनमें कोई रूस से है तो कोई यूक्रेन से, कोई जर्मनी से तो कोई अफ्रीका से है। मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यही विश्वास श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। इसे मलखम्ब कहते हैं। देसी खेल है जिसे शरीर और मन को मजबूत बनाने वाली पारंपरिक भारतीय कला भी कह सकते हैं। इसमें खिलाड़ी को संतुलन, लचीलापन, एकाग्रता और शारीरिक शक्ति का बेहतरीन तालमेल दिखाना होता है। इस पारंपरिक खेल को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और युवाओं को इससे जोड़ने के मकसद से झांसी के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायामशाला में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें उसी प्रतियोगिता की हैं। इसमें देश के 16 अलग अलग राज्यों से 400 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत विभिन्न राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों ने मल्लखंभ पर अपनी कला, संतुलन, ताकत और फुर्ती का शानदार प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चों का झांसी पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि पारंपरिक खेल के प्रति आज भी युवाओं में उत्साह मौजूद है। ये अव्यक्त हैं, नोएडा में रहते हैं। 6 साल की छोटी उम्र है इनकी, पर इनके नाम उपलब्धियां बड़ी हैं। केजी में पढ़ने वाले इस होनहार की याददाश्त ऐसी है कि क्रिकेट के 40 खिलाड़ियों को सिर्फ एक मिनट में पहचान लेते हैं और अपनी इसी प्रतिभा के दम पर अभियुक्त ने तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इसके अलावा भी अलग अलग रिकॉर्ड बुक्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अभियुक्त की इस खासियत को उनके माता पिता ने न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे निखारा भी। उनकी माँ निधि कहती हैं कि वो अभियुक्त को कभी फोन नहीं देती और रोजाना महज 10 मिनट प्रैक्टिस कराते हैं। अभियुक्त जब महज 2 साल 9 महीने के थे तभी से उन्होंने रिकॉर्ड बनाने का सफर शुरू कर दिया। सैंड और पेंट से बनी तस्वीरें तो अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रंगों से विकसित भारत की आकर्षक रंगोली तैयार की है। इस रंगोली में विद्यार्थियों ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को इस रंगोली में पूरी तरह उकेरने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों की ये कोशिश आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस रंगोली को 80 स्टूडेंट्स ने 3 टीचर्स की मदद से बनाया है। इसे बनाने में लगभग 30 घंटे लगे हैं और इस रंगोली से 100 फुट से ज्यादा एरिया को स्टूडेंट्स ने कवर किया है। रंगोली में देश की महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करते हुए समृद्ध भारत और विकसित भारत में योगदान को दर्शाया गया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पहली बार इतनी बड़ी रंगोली बनाई है। 1 से 25 फीट तक की प्रतिमाएं, कहीं मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, कहीं रंग रोगन तो कहीं मूर्ति का श्रृंगार हो रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बाप्पा के विसर्जन के बाद अब आदि शक्ति माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी है। सार्वजनिक मंडलों में माँ की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। अकोला के कुम्भारवाड़ा में कलाकार दिन रात माँ की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। देवी की प्रतिमा में आँखों की खूबसूरती से लेकर आभूषणों की बारीक नक्काशी तक हर काम बेहद सावधानी से किया जा रहा है। कलाकारों की कोशिश है कि जब माँ की प्रतिमा सार्वजनिक पंडालों में पहुँचे तो भक्तों को उनका दिव्य और आकर्षक रूप दिखे।
7: और अब बात करते हैं फ्लाई दुबई के हीरो पायलट स्मिथ मछार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ से वीडियो कॉल के जरिए बात की और हालचाल जाना और उनसे पूछा कि ये हिम्मत उन्हें कहां से मिली। तो जवाब में स्मिथ मछार ने बताया कि उनमें ये ताकत हनुमान जी की वजह से आई। वहीं यूएई में भारत के राजदूत ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना और कैप्टन के परिवार से भी मुलाकात की, जबकि घायल पायलट के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है।
10: कैसे हो, अभी तबीयत कैसी है?
11: सब ठीक है सर, सब ठीक है।
10: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, मैंने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान देने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग।
12: वो उसने 180 लोगों की जान बचाई, उसके लिए हमको गौरव है। और खाली हमारा नाच का गौरव नहीं, हमारा वर्धमान शहर का भी गौरव है।
13: जिस तरीके से हमारे कैप्टन स्मिथ मास्टर ने एक्शन लिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बहादुरी बड़ा उनका एक्शन है।
9: दुबई से तेल अवीव की फ्लाइट जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी तब 174 यात्रियों की सांसें अचानक थम गईं और वहां जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। तब एक ऐसा योद्धा सामने निकल कर आया जो उनके जिंदगी की सलामती के लिए अकेले ही अपने को पायलट हमलावर से भिड़ गया। को पायलट के हमले में घायल पायलट स्मिथ मच्छर खून से सने हुए थे, फिर भी उनके बुलंद हौसले और दृढ़ विश्वास से 174 यात्रियों के साथ साथ सभी क्रू की जिंदगी भी बच पाई। आज हिंदुस्तान के उस जाबाज पायलट से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन पर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्मिथ के शौर्य और साहस की जमकर तारीफ की, साथ ही कहा कि उन पर पूरे देश को गर्व है।
10: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है।
11: महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं। आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, मैंने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
9: कैप्टन स्मिथ के साहस और सूझबूझ की आज पूरी दुनिया सराहना कर रही है। प्रधानमंत्री से बात करते हुए जख्मी पायलट स्मिथ ने बताया कि आखिर ये हिम्मत उन्हें कहां से आई।
14: उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाया। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मैं हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था।
11: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
14: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
11: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, उतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
14: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए।
9: प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन स्मिथ से करीब 10 मिनट तक फोन से वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनकी सेहत की जानकारी ली।
11: आप वीर पुरुष हैं, तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
14: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
11: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मिथ, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ।
9: कैप्टन स्मिथ से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनके परिवार वालों से भी बात की, उनका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे किया और उनकी जमकर तारीफ की।
11: कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया।
9: इस बीच कैप्टन स्मिथ को ताबुक से अबू धाबी शिफ्ट कर दिया गया है। भारतीय दूतावास के मुताबिक उनका इलाज और रिकवरी जारी है। यूएई में भारत के राजदूत ने अस्पताल पहुंचकर कैप्टन का हाल जाना और उनके परिवार से भी मुलाकात की।
15: वो स्वस्थ हैं, अच्छी उनकी कंडीशन स्टेबल है और वो अच्छा रिकवर कर रहे हैं। उनकी जो देखभाल इधर यूएई में एक मेडिकल केयर अच्छी चल रही है, तो हम संतुष्ट थे उनको मिलकर, एक संतोष था कि वो स्वस्थ हो रहे हैं, उनकी हालत भी ठीक है, वो खुलकर बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और एक हमारे लिए बहुत रिलीफ की बात थी, परिवार के लिए बहुत रिलीफ की बात थी। मैंने हमारे जो लोकल अथॉरिटीज है, यू अथॉरिटीज, उनका अच्छा हमें सहयोग मिला, और उनकी जो देखभाल है स्वास्थ्य को लेकर के, वो उनको उम्दा तौर पर दी जा रही है।
9: वहीं इजरायली लोगों ने भी भारतीय पायलट स्मिथ कोन की बहादुरी की तारीफ की।
16: जय हिंद,
17: आई एम इसराइल खाई,
16: हम आपके आभारी हैं। वी आर फ्रॉम इजराइल
17: एंड विद वन यूनाइटेड वॉइस
16: ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया
17: एंड द पीपल ऑफ इजराइल
16: वी वांट टू ऑनर एंड थैंक कैप्टन स्मिथ
17: फॉर हीरोइकली सेविंग द लाइव्स ऑफ नियरली 200 पैसेंजर्स। कैप्टन स्मिथ वाज सीरियसली वुंडेड बाय हिज जिहादिस्ट को-पायलट इन एन अटेम्प्ट टू मर्डर हिम मिड एयर।
16: कैप्टन स्मिथ इन अ फाइनल एक्ट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द टेररिस्ट ओपनड द डोर ऑफ द कॉकपिट व्हाइल ब्लीडिंग आउट अलाउइंग द इजरायली पैसेंजर्स टू स्टॉप द हाईजैकर एंड स्टॉप the plane from crashing. The India-Israel Brotherhood is stronger than ever.
17: This act of heroism shines a global light on our alliance.
9: हिंदुस्तान के अपने इस बेटे पर देश को गर्व है। दुनिया भर में भारतीय पायलट की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं देश में काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ और तमाम मंदिरों में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। इस बीच फ्लाई दुबई के विमान से सामने आए इस नए वीडियो में प्लेन के अंदर के अफरा तफरी भरे पल कैद हुए हैं। कॉकपिट के अंदर जब को-पायलट ने पायलट स्मिथ पर हमला किया तो कैसे थे हालात, ये वीडियो उसकी गवाही दे रहे हैं। विमान में मौजूद यात्रियों ने कैसे कॉकपिट में पहुंचकर हालात पर काबू किया और हमलावर को पकड़ा, ये उसी वक्त का वीडियो है। हालांकि कुछ ही देर बाद विमान ने सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की और विमान के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया। डर और चीख पुकार की जगह यात्रियों की तालियां सुनाई देने लगी।
13: इतनी प्रेशर वाली सिचुएशन में जब आप खुद अंडर थ्रेट हो, आपके ऊपर अटैक हो रहा है, उस सिचुएशन में मेंटल अलर्टनेस मेंटेन करना, मेंटल काम मेंटेन करना और सारे एक्शन परफेक्टली फॉलो करना बिना किसी एक्शन को छोड़े हुए, और 174 लोग उसमें थे, उनकी जान को सुरक्षित लाकर जमीन पर लाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहादुरी काम है, बहुत बड़ा एग्जांपल है, हिस्ट्री में नाम हो गया है कैप्टन स्मिथ का और भारत का, कि भारत के लोग कितने बैलेंस्ड हैं, कितने देशभक्त हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं, कितने विश्व की सेवा और शांति के लिए काम करते हैं।
9: वहीं दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ-1073 में हिंसक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आसमान में विमान के कॉकपिट में पायलट पर हमले की जांच अलग अलग कई एंगल से की जा रही है। जांच में ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हमला किसी आतंकी गतिविधि से जुड़ा था या इसके पीछे कोई और मकसद था। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या हमले की पहले से कोई प्लानिंग थी या किसी संगठन की ओर से कराया गया। हालांकि सऊदी अरब में शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपी को यूएई अधिकारियों को सौंप दिया गया है और पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इस हमले के पीछे उसका मकसद क्या था। फिलहाल इतना तो साफ है कि फ्लाई दुबई की इस घटना ने विमान सुरक्षा और पायलट वेटिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तमिलनाडु में सीएम विजय ने महिलाओं को दी फ्री बस यात्रा की सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सुबह राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने विजय घाट जाकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर नमन किया। गांधी जयंती के मौके पर आज देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्रेटर नोएडा के घंटाघर चौक पर सीआरपीएफ ने तो दिल्ली में यमुना के घाटों पर जेंसी ने सफाई अभियान चलाया। वहीं यूपी के चंदौली में रेलवे कर्मचारियों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और न गंदगी करेंगे न ही करने देंगे के नारे के साथ जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में सामाजिक संस्थाओं ने करीब 12 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। तमिलनाडु में सीएम जोसेफ विजय ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की। इस दौरान एक बार फिर सीएम विजय का अंदाज चर्चा में आ गया। दरअसल इस योजना की शुरुआत करते हुए वो न सिर्फ महिलाओं के साथ बस में बैठे बल्कि इनके कंडक्टर बनकर उन्हें मुफ्त टिकट भी दिया और इसके बदले महिलाओं ने भी उन्हें धन्यवाद के तौर पर चॉकलेट दी। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ करीब 84 लाख महिलाओं को मिलेगा। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। ट्रेन ने पहली बार चिनाब रेल ब्रिज को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया। इसी ट्रायल के दौरान ट्रेन ने अंजी ब्रिज को भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया। बता दें कि चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। भारत में इतनी ऊंचाई पर पहली बार किसी ट्रेन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की है। दरभंगा के लहरिया सराय स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन का स्टॉपेज आज से शुरू हो गया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे अधिकारियों के साथ आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लहरिया सराय में नमो भारत ट्रेन के रुकने से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और दरभंगा की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
7: और अब बात राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक की। जब भी दिल्ली की बात होती है तो दिल्ली के चांदनी चौक का जिक्र होता है। फिल्मों में भी आपने चांदनी चौक देखा होगा और एक फिल्म का नाम भी चांदनी चौक पर ही रखा गया है। चांदनी चौक की बात ही निराली है। यहाँ किस्म किस्म की चीजें मिलती हैं, कपड़े गहने जरूरत का हर सामान और छोटी से छोटी चीज किफायती रेट पर यहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड और सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में भी विरासत और विकास दोनों के लिए चर्चा गर्म है। चांदनी चौक की ऐतिहासिक विरासत के साथ पुनर्निर्माण भी जरूरी है।

0: दिल्ली का सबसे पुराना ऐतिहासिक और जीवंत बाजार है चांदनी चौक, जिसकी विरासत 17वीं शताब्दी के मुगल काल से जुड़ी है। ये इलाका मुगलों के शाही जुलूसों, पारंपरिक खान पान और पुरानी दिल्ली की तहजीब की गवाही देता है। जहां चांदी और इत्र के लिए दरीबा कला, तो वहीं किताबों के शौकीनों के लिए नई सड़क, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भागीरथ पैलेस और विवाह सामग्री के लिए किनारी बाजार इसके प्रमुख ऐतिहासिक हिस्से हैं। लटकते बिजली के तारों, ताजी बनी कचौड़ियों की खुशबू और गलियों में फैली कई हवेलियों के बीच ये जगह अपने आकर्षण से मंत्रमुग्ध कर देती है। वहीं यहाँ की तंग और संकड़ी गलियों के बीच बसी दुकानों में रोजाना करोड़ों का वारा न्यारा होता है, जहाँ से गुजरने के लिए बचते बचाते पहुँचना होता है।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग और सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद दिल्ली में और पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है कि पुराने इलाकों का क्या उपाय किया जाए। ऐसे इलाके जो तंग हैं, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है, जहां पर रिहायशी इलाकों में बहुत तंग इलाके हैं, वहां कैसे मजबूती दी जाए, वहां आगे के लिए क्या प्लान बनाया जाए। हम यहां चांदनी चौक पहुंचे हैं और चांदनी चौक के एशिया के सबसे बड़े बुलियन मार्केट कूचा महाजनी में। कूचा महाजनी यहाँ के तंग इलाकों में से एक है। सैकड़ों साल पुरानी इमारतें हैं जिनमें छोटे छोटे खोखों में करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन अब समय की जरूरत यह है कि इसे रिडेवलप कैसे किया जाए, इसे मजबूत कैसे किया जाए और साथ ही जो विरासत है उसको सहेज कर कैसे रखा जाए। तो ऐसे में आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं, आप भी चलकर एक बार देखें कि इलाके की हालत क्या है। कंधे से कंधा छिल रहा है, आदमी से आदमी टकरा रहा है। आइए आप भी चलिए हमारे साथ।
0: यह है चांदनी चौक का कूचा महाजनी इलाका। तारों का मकर जाल ऐसा कि कोई भी चकरा जाए और शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी इसे बारूद के ढेर में बदल सकती है। हालांकि इसी के चलते यहां की कई दुकानों को सील किया जा चुका है, लेकिन ये इलाका अभी भी विकास से दूर है।
1: हम यहां पर पहुंचे हैं कूचा महाजनी के उस इलाके में जिसे आप बारूद का ढेर भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर तारों का ऐसा जाल है जिसमें एक छोटी सी चिंगारी इन सारे लोगों की के कारोबार पर, जान पर कितनी आफत कर सकती है। सूरज की रोशनी यहाँ आती नहीं और हम उस जगह खड़े हैं जहाँ बहुत सारी दुकानें सील हुई हैं। वो किस लिए हुई हैं आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ पर सारे बिजली के मीटर लगे हैं और इनमें तारों का ऐसा जाल बिछा है कि क्या तो इंटरनेट का जाल भी इसके आगे फेल है। अब इसमें कहाँ किस समय कौन सी चिंगारी आ जाए। और यहाँ सबसे ज्यादा बहुत सारी दुकानें सील हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 20 दुकानें यहाँ पर सील हुई हैं। तो हम बात करें यहाँ के दुकानदारों से कि यहाँ मुश्किलें क्या हैं और किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग। रिडेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है इसको भी एक बार हम देखते हैं कि इनसे दुकानदारों से बात करें कि वो आखिर क्या सोल्यूशन उनके जहन में क्या है। जो स्थिति है यहाँ की वो तो बहुत ही खतरनाक है,
2: आप देख ही रहे हैं,
1: तो वो तो दिखाई पड़ रहा है
2: जी।
1: तो ऐसे में दुकानदारों का क्या मानना है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए?
2: सॉल्यूशन तो अल्टरनेट डेवलपमेंट, कोई मार्केट ऐसी हो जिसमें साधन संसाधन पूरे हों। अब ये तो चारों तरफ से आप देख ही रहे हैं, ऊपर हाल ये सील इसी वजह से हुई है। तो डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का जो इनको शिफ्ट कर सकें।
1: ये तो चूंकि पुरानी पुराना एरिया है, एक तरह की विरासत भी है सैकड़ों साल के मुगलों के जमाने से यहाँ पर, तो इसको कैसे संरक्षित रखा जाए और नया इंतजाम क्या किया जाए? तो दुकानदारों को क्या लगता है?
2: दुकानदारों को ये लगता है हमको सेफ साइड कोई जगह मिले जहाँ इन्वायरमेंट, अब यहाँ तो हवा भी आने के दम वो नहीं है, हर तरह से दिक्कत है। एक एक रास्ता है ये,
1: ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बहुमंजिला इमारत बन जाए? और
2: तो बहुत है ना, यहाँ लैंड तो है ही।
1: अच्छा।
2: अब जैसे ओमैक्स बनाए, लैंड तो है, अब पीपीपी मॉडल के जरिए से उनको डेवलप कराया जाए, वो तो गवर्नमेंट का काम है। लैंड की कमी नहीं है भाई, टाउन हॉल भी है और भी जगह है, उनको डेवलप कराएं।
1: अच्छा, अब ये तो इमारतें बन सकती हैं,
2: क्यों नहीं, क्यों नहीं, गवर्नमेंट क्यों नहीं। अब ओमैक्स तो बनाई है ना, 4.5 एकड़ में ओमैक्स तो बनाई है।
1: यानी दुकानदारों का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप किया जा सकता है इलाके को, क्योंकि जमीन की कमी नहीं है, कमी है तो इच्छा शक्ति की। वो इच्छा शक्ति अगर हो तो इन सारे लोगों को निश्चिंतता से काम करने का मौका भी मिले और लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, यानी चांदनी चौक में ही उन्हें बिजनेस के अवसर मिल जाए, ग्राहकों को भी एक ही जगह सारी चीजें मिले। अब हम देखते हैं कि कहाँ कौन सी जगह किस तरह से लोगों ने विकसित की है और आगे उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। आइए हमारे साथ।
0: हालांकि चांदनी चौक में कभी कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, दिल्ली मेट्रो की तो बात ही छोड़िए, जिसने दुकानदारों और खरीदारों के लिए यहां आना जाना सुविधाजनक और आसान बना दिया है। दशकों से विकास की राह देख रहा चांदनी चौक के इस इलाके को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है, जिसके लिए यहाँ के व्यापारियों को अदालत में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।
1: दिल्ली का पिन कोड नंबर 6 यानी दिल्ली 6 ऐसा इलाका जहां विरासत आधुनिकता के साथ कदम ताल करती है, तो हमने विरासत का हिस्सा देखा, अब हम आधुनिकता की तरफ आए हैं और यहां उस इलाके में जहां चांदनी चौक नए सिरे से डेवलप हो रहा है और इसे पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और कंजेस्टेड इलाके जो तंग इलाके हैं वहाँ से लोगों को इधर इस तरह के माहौल में बसाया जा रहा है ताकि जो दिल्ली के पास पुरानी ज़मीन है उस ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जा सके, विरासत को आधुनिकता का जामा पहनाया जा सके। संजय भार्गव जी हमारे साथ हैं जो यहाँ के पूरे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। किस तरह का डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ विरासत भी है, सदियों पुरानी विरासत है जिसको सहेज के रखना आवश्यक है, और दूसरी तरफ समय की ज़रूरत है कि फिर से उसे मजबूत और रीडेवलप किया।
3: सर ये दिल्ली 6 शाहजहाँ ने बनाया था, उसके नाम पे जब शाहजहाँ रखा है। 1911 में ब्रिटिशर्स ने इसकी सड़क बनाई थी और ये इतना पुराना ऐतिहासिक शहर है क्योंकि जो इट हैज़ ये अपना एक लाइफ से ओवरलिव कर गया है और यहाँ पे इस टाइम इतनी हालत ख़राब है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से, पुरानी पुरानी बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी आपने देखा वहाँ पे साउथ दिल्ली में जो कांड हुआ, तो ये तो दिल्ली, तो कितने जजेस ने बोलते थे हमेशा कोर्ट्स में कि ये तो दिल्ली जो है ये चांदनी चौक जो एटम बॉम्ब पे खड़ा हुआ है, ये किसी दिन भी कोई बड़ा जलजला आएगा तो सब नीचे आ जाएगा। तो नाउ द नीड इज़ एक तो रीडेवलपमेंट होना चाहिए था इसका, मास्टर प्लान 2021 में इन्होंने इसके लिए 3 साल के विद इन दी मास्टर प्लान इन्होंने रीडेवलपमेंट प्लान आना चाहिए था, MCD आज तक नहीं लाई है। उस चक्करों में यहाँ पे बिल्डिंग प्लान पास नहीं हो सकते, फिर भी नजायज सब हो रहा है। आप देखोगे 4-4, 5-5 मंजिले बिल्डिंग खूब बन रही हैं, तो ये तो एकदम एटम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है।
0: हाल ही में टाउन हॉल और आसपास के क्षेत्रों को ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है ताकि इसकी मूल विरासत सुरक्षित रहे और विकास कार्य भी चलता रहे,
1: इतिहास को भी प्रिजर्व रखा जाए और विकास भी हो। तो कैसे इतिहास और विकास साथ साथ?
3: सर यहाँ पे ग्रेड 1, A, B, C की काफ़ी सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देके बाकी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग हैं उनको रीडेवलपमेंट करना चाहिए कमर्शियल के हिसाब से, क्योंकि अब रेजिडेंशियल तो यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो इट कैन बी अ बिगेस्ट, इट इज़ वर्ल्ड दुनिया भर का सबसे बड़ा सेंटर है कमर्शियल सेंटर। यहाँ पे आप एक सुई से लेके और हवाई जहाज़ तो नहीं मिलता, बट बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो पूरा शादी के लिए एक तो बहुत फेमस है। अब आप पीछे देखें ओमेक्स मॉल है, ये हमारी एक रिट में हम लोग ने बनवाया इसको, जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस रविंदर भट्ट की मेहरबानी है। यहाँ पे एक डिप्लेटेड बिल्कुल टूटी फूटी पार्किंग होती थी जिसको मैंने सन 1980 में तेजेंद्र खन्ना LG से उनसे अप्रूवल ले आया था, उसके बाद तक नहीं बनी। फिर वो जस्टिस मुरलीधर वगैरह उन्होंने कहा कि जी PPP में इसको बनाओ, तब ये PPP में ये ओमेक्स तैयार।
1: ये तो दुकानदार बता रहे हैं, यहाँ पर आने वाले लोग क्या सोचते हैं? तो
4: सर
1: उस इलाके में ज़्यादा बढ़िया लगता है या इधर, चूँकि उधर थोड़ा इतिहास तो है लेकिन खतरा भी बहुत है, ऊपर से तारों का जंजाल ऐसा है, इंटरनेट का जाल भी फैले वहाँ पे।
4: सर सत्य निकेतन में मेरी बहन रहती है और मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन जिस दिन बिल्डिंग गिरी वहाँ पे हम लोग बहुत डर गए, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी सब पैनिक कर गए। मैं चाहता हूँ कि पूरे इलाके का रीडेवलपमेंट हो, इवन चांदनी चौक हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत बड़ी मार्केट है सर, यहाँ का भी रीडेवलपमेंट होना चाहिए।
0: ऐसे में बड़ा सवाल है कि चांदनी चौक में विरासत को सुरक्षित रखते हुए विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ा जाए और यहाँ की तंग गलियों से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ली जाए। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को बॉलीवुड ने भी किया सलाम। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड़ पर।
0: फ्लाई दुबई की फ्लाइट में दिलेरी दिखाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार को फिल्म हस्तियां भी सलाम कर रही हैं। रवीना टंडन और सोनम कपूर समेत कई भारतीय सेलिब्रिटीज ने जाबाज पायलट की हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ की। रवीना टंडन ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करके कैप्टन स्मित की बहादुरी और फ्लाइट में सवार लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए उनकी तारीफ की। वहीं दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने भी खुलकर पायलट स्मित की तारीफ की। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि कैप्टन स्मित को महावीर चक्र जैसा सम्मान मिलना चाहिए। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा बाली में हादसे में घायल हो गई, जिसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत फिलहाल बाली के अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। नुसरत की टीम की पब्लिसिस्ट संचिता त्रिवेदी ने बताया कि डॉक्टर आगे की जांच के बाद उनकी रीढ़ की सर्जरी करेंगे। उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से बाली से मुंबई लाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई पहुंचने के बाद उनकी सर्जरी होगी। एक्टर गुलशन देवैया और रसिका दुगल की नई फिल्म लिटिल थॉमस का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म 90 के दशक के गोवा की बैकग्राउंड पर बनी एक पारिवारिक और हास्य से भरपूर ड्रामा फिल्म है। फिल्म में 7 साल के बच्चे थॉमस की एक मासूम इच्छा दिखाई गई है, जो एक छोटा भाई पाना चाहता है। फिल्म में वो अपने माता पिता को करीब लाने के लिए अजीब और मजेदार हरकतें करता है। ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
6: उसको लिटिल ब्रदर क्यों मांगता है?
7: लास्ट ईयर पूरा जो मांगता था।
8: जैसे तेरे को लगता है तुम अपने साथ हैप्पी नहीं।
5: न्यूज़ पथ में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। एशिया खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन। खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। कुम्भारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्तियां। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। लोक गीत हो या लोक नृत्य, एक कहानी कहती है जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपने जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं, जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

बोट रेस है या पानी पर डांस, तालमेल ऐसा मानो आसमान में रंगोली बना रहे हों। अलग अलग टीम है, सबका अपना एक अलग रंग है। पहले कौन किनारे तक पहुंचता है ये देखना है, पर किनारे तक पहुंचने से पहले पानी पर जो रौनक बिखर रही है वो सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर रहा है। लोग इनके बीच का तालमेल देखकर हैरान हैं। कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत पूरी करने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हो। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और फिर स्कूलों में ऐसे खुल के जीने के मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। आज जब मिला है तो अपने हुनर से परिचय हो ही जाए। देखिए किस सदा से झूमे हैं ये दोनों कलाकार। बच्चे जिस तरह से अपनी ही धुन में डांस की मस्ती में खोए हैं वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्यार के बदले प्यार तो बनता है, पर यहाँ प्यार के बदले

0: चल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज गांधी जयंती है। पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। आजादी की लड़ाई में जिस खादी को बापू ने हथियार बनाया था, आज उसकी ग्लोबल पहचान है। युवाओं में खादी को लेकर लगातार क्रेज बढ़ रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी ग्राम उद्योग के स्टोर में खादी लोग खरीदने के लिए पहुंचे। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए। आज गांधी जयंती के मौके पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज गोयल भी स्टोर में लोगों से मिलने पहुंचे। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने स्टोर में मौजूद ग्राहकों से बात की और उनकी राय जानी।
1: गांधी जयंती पर खादी ग्रामोद्योग के स्टोर पर जबरदस्त भीड़ है लोगों की। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त हम कनॉट प्लेस के खादी ग्रामोद्योग के स्टोर में हैं और यहां पर ये भीड़ आपको देखकर ऐसा लगेगा मानो आज हर कोई कोशिश कर रहा है कि गांधी जयंती पर कम से कम कोई एक ना एक चीज़ तो खादी की खरीद ही ली जाए। ये भीड़ ये भी बताती है कि खादी अभी भी रेलेवेंट है, और ना सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि समय के साथ खादी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है। अब अगर आप खादी के कपड़ों के लिए जाते हैं तो आपको सिर्फ वो पुराने नेताओं वाले रंग नहीं मिलते, बल्कि आपको अब खादी में बहुत सारे कलर मिलते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन मिलते हैं। उनकी एक बानगी आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगी कि कितने सारे रंग अब आपको खादी में मिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर इस स्टोर में आप ना सिर्फ खादी के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो खरीद सकते हैं, बल्कि जो कपड़ा है वो भी आप अपने मर्जी का खरीद सकते हैं। आज 20% तक का ऑफ भी रखा गया है। क्या खरीदा आपने यहाँ से?
2: कपड़े बहुत सारे, कुर्ती और बस।
1: अपने लिए या फिर और किसी के लिए?
2: अभी अपने लिए हो गया है, अभी मम्मा का भी ले लिया है, अभी दोस्त के लिए ले रहा हूँ।
1: अपने लिए क्या लिया आप?
2: भाई बहुत सारे कपड़े ले लिए, शॉल ले लिया है, विंटर का स्टॉक कर लिया है थोड़ा पूरा।
1: खादी पहनते हो आप?
2: हाँ, मैं कॉलेज में निफ्ट में था, मैंने खादी इंडिया के लिए पहले मॉडल किया था।
1: क्या ले लिया सर आपने?
3: हम लोग खूब खरीदारी किए हैं, ग्रोसरी का सामान खरीदे हैं, कुर्ता वगैरह खरीदा गया है, बच्चों के लिए सामान लिया गया है।
1: बच्चों के लिए खादी में क्या?
3: बच्चे के लिए कुर्ता लिए हैं। यहाँ
1: दिखाना, दिखाओ मुझे,
4: ओपन करो।
1: अच्छा है, अच्छा है, पसंद आया, खोल के दिखाओ मुझे। देखिए कहाँ तो हम कहते थे कि खादी नेताओं के कपड़े होते हैं, आज बच्चे उसका कुर्ता लेकर जा रहे हैं।
3: और क्या,
1: इसकी चॉइस है, आपने चूज किया?
3: इसकी पसंद है, पूछ सकते हैं आप इसे। बताओ ये किसके किसने पसंद किया है? बोलो बोलो।
5: मैंने पसंद करा।
3: अरे वाह,
1: अब आपको बहुत सारा कलेक्शन और वैरायटी मिलती है खादी?
3: हाँ हाँ, लोकल मतलब जितनी भी वैरायटीज हैं, कांजीवरम है, बनारसी है, हर कुछ है यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत बढ़िया अब खादी में इन्होंने अपना कलेक्शन बना रखा है।
1: आज के दिन आपको लगता है कि खादी की शॉपिंग करना भी एक आप श्रद्धांजलि है बापू को?
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग आज के दिन ही चुने हैं कि गांधी जी को इसी बहाने हम लोग याद भी करें, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें।
1: इतनी भीड़ की उम्मीद कर रहे थे आप?
3: हाँ हाँ, भीड़ एकदम।
1: परिवार के साथ खादी भवन पहुंचने का मतलब ये है कि हर परिवार में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ मिल जाएगा। आपके लिए क्या कुछ मिला मैम?
6: है, मैंने लिया नहीं है अभी, अभी हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग सोच रहे कुछ और जाके ऊपर देख कर आए। अभी
1: ऑप्शन हैं आपके?
6: बहुत ऑप्शन है हमारे लिए तो, साड़ी बड़ी बड़ी वैरायटी में है।
1: आप देखिए ये एक युवा है और इनके हाथ में कितने बैग्स हैं, कितनी शॉपिंग इन्होंने कर ली है। क्या नाम है आपका?
7: क्यान।
1: क्यान, क्या क्या लिया आपने?
7: चादरें ली हैं बस, हाँ मेनली तो चादरें ली हैं।
1: और पहनने में कुछ नहीं लिया, कुर्ता वगैरह?
7: अभी तो जरूरत ही लगी सो दैट्स व्हाई नहीं लिया।
1: देखा, पसंद आया?
7: हाँ हाँ हाँ डेफिनेटली, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यहाँ के कपड़ों की, सो दैट्स व्हाई।
1: आपकी एज ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं कपड़ों में?
7: या डेफिनेटली, अगर किसी को ट्रेडिशनल कुछ पहनना हो तो डेफिनेटली कुर्ता अवेलेबल है, सो दैट्स गुड।
0: एशियन गेम्स में आज भारत के लिए गोल्डन डे रहा। बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई तो महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कुश्ती में सुजीत ने तो आर्चरी में बेटियों ने सोना अपने नाम किया। कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक 16 गोल्ड मेडल समेत 76 पदकों पर कब्जा कर लिया है।
8: महिला हॉकी में लौटा सुनहरा दौर।
4: चीन को हराकर जीता स्वर्ण पदक।

0: 44 साल बाद हॉकी में ऐतिहासिक जीत, ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। परवीन हुड्डा का सुनहरा पंच, लौलीना बोरगोहेन का गोल्डन गिफ्ट, अंकुश पंघल ने बॉक्सिंग में पूरी की तिकड़ी, कुश्ती में सुजीत कलकल का सुनहरा दांव, तीरंदाजी में अंकिता कीर्ति और कुमकुम का गोल्ड पर निशाना। 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाया गोल्ड का सिक्सर। एशियन गेम्स 2026 में दिखने लगा है भारत का दम। नगोया में सिकंदर बनने का सिलसिला लगातार जारी है। 13वें दिन की शुरुआत तीरंदाजी में गोल्ड मेडल के साथ हुई। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने कॉन्टिनेंटल इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर एशियन गेम्स में सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, देश का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। इसके बाद स्टार मुक्केबाज लौलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्डन पंच लगाकर अपना जन्मदिन यादगार बना दिया। टीम स्टाफ के साथ लौलीना ने केक काटा और कहा कि इस जीत से उनका जन्मदिन खास हो गया।
1: बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, क्योंकि इतना लंबा जर्नी था मेरा और कहीं ना कहीं ये मेडल पूरा जर्नी याद दिला देता है। और बीच में बहुत ज्यादा टफ भी आया था कि कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बॉक्सिंग के ही 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा ने फाइनल में जीत हासिल कर गोल्ड पर कब्जा कर देशवासियों को खुशी से भर दिया। तो अंकुश पंघल कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तीसरा गोल्ड जीत कर बॉक्सिंग में आज के दिन हैट्रिक लगा दिया। कुश्ती के खेल में सुजीत कलकल ने सुनहरा दांव लगाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया।
2: देखो यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए।
0: सुबह सुबह रोमांचक फाइनल में खिताब की प्रबल दावेदार दक्षिण कोरिया को अंकित भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की तिकड़ी ने 5-3 से हराया। 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया। बॉक्सिंग के स्टार खिलाड़ी लौलीना बोरगोहेन ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर गोल्ड मेडल जीतकर देश को शानदार तोहफा दिया। उन्होंने फाइनल में चीन के बॉक्सर बायो जीई को 5-0 से हराकर कमाल कर दिया। पिछले एशियन गेम्स में लौलीना फाइनल हारकर सिल्वर मेडल पर रुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने गोल्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया। आज का तीसरा गोल्ड परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग में चीनी ताइपे की चेन नियन चिनको को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। बॉक्सिंग में ही 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश ने दक्षिण कोरिया के सिन मिन सियोंग को हराकर गोल्ड हासिल की। ताजिकिस्तान के पहलवान अब्दुल माजिद कुडियेव को पछाड़कर सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। एक समय सुजीत अब्दुल से 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 10-9 से फाइनल जीत लिया। तीरंदाजी में भारत को सिल्वर के रूप में दूसरा मेडल भी मिला। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवड़ा की जोड़ी फाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। पुरुष तीरंदाजी टीम में संजय भोगे, धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान की भारतीय टीम को फाइनल में साउथ कोरिया ने 5-1 से हरा दिया, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। इसके बाद सेलिंग में भारत के नेत्रा कुमानन ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। सेपक टकराव में भारतीय मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के अरुण, बॉबी कुमार, लुखोन सिंह, माले मगम्बा सिंह, रामकुमार शर्मा और आकाश जुमनन ने जापान के खिलाफ सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। आर्चरी में अंकिता कीर्ति कुमकुम ने रिकर्व आर्चरी महिला टीम ने गोल्ड जीतकर सबको चकित कर दिया। भारतीय महिला टीम ने हैवीवेट साउथ कोरिया को हराकर महिला टीम रिकवरी आर्चरी में ऐतिहासिक गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। आर्चरी में धीराज और कुमकुम ने रिकर्व मिक्स टीम में सिल्वर जीत, आने वाले प्रतियोगिताओं के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। कुमकुम मोहोत और धीरज बोमदेवरा गोल्ड मेडल मैच में चीन से हार गए थे और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। एशियन गेम्स 2026 में भारत के 76 मेडल हो गए हैं। एशियाड में भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी मेडल संख्या है। 2023 में चीन के होंगजो में सबसे ज्यादा 107, जबकि 2018 में जकार्ता में 69 मेडल आए थे। अब तक भारतीय दल ने 76 मेडल्स पर कब्जा कर लिया है। भारत को हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और कुश्ती जैसे प्रमुख इवेंट्स में मेडल मिलने की पूरी उम्मीद है और कई मुकाबलों में पदक पक्के भी हो चुके हैं। पुरुष हॉकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इस टीम से गोल्ड की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में फाइनल में पहुंच चुकी है। उसका गोल्ड के लिए पाकिस्तान से मुकाबला होना है। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मेडल टैली में 5वां स्थान हासिल कर लिया है। अभी तक भारत के खाते में 16 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज के साथ कुल 76 मेडल आ चुके हैं। पदकों पर परचम लहराने का सिलसिला अभी जारी है। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा जाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
1: यजुवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लिया संन्यास। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
2: आईटी नगोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 के समापन समारोह में निशानेबाज नीरू ढांडा भारत के ध्वजवाहक होंगे। ये समारोह रविवार 4 अक्टूबर को नागोया में होगा। ढांडा ने इस बार के एशियन गेम्स में कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है। उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें ये सम्मान मिला है। हरियाणा के जिंद के रहने वाली नीरू अपनी प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद भारत लौट आई थी। अब वो समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को वापस नागोया जाएंगी। भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा कि टेस्ट कैप हासिल करना अब संभव नहीं है। ये उनके लिए एक ऐसा सपना था जो एक लंबे वक्त तक उनके साथ रहा, लेकिन पूरा नहीं हुआ। चहल ने 72 वनडे और 80 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। हालांकि उन्होंने वनडे और T20 खेलते रहने की बात कही है। चहल ने कहा कि देश के लिए खेलने की उनकी भूख अभी भी बरकरार है। वो वनडे और T20 में वापसी की पूरी कोशिश करेंगे। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील और भारत की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बीच कल ऐतिहासिक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्राजील के साथ होने वाले ऐतिहासिक मैच से पहले भारतीय फुटबॉल टीम का आत्मविश्वास जबरदस्त है। आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच खालिद जमील और डिफेंडर अनवर अली ने कहा कि वे दुनिया की शीर्ष टीमों में से एक के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। वहीं विश्व चैंपियन ब्राजील की टीम साल्ट लेक स्टेडियम में पसीना बहाती नजर आई। कल के ऐतिहासिक मैच से पहले खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया।
1: इसी के साथ न्यूज़पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

सुख चैन जुड़ा हुआ है? क्या रसोई की अलमारी से आपके घर में अशांति फैल सकती है? क्या किताबों की अलमारी आपके दिमाग पर असर डाल देती है? अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन। खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। कुमारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 1 से 25 फीट ऊंची मूर्तियां। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स की, जिसमें आज भारत की बेटियों ने हॉकी का गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। इतिहास इस मायने में कि 44 साल बाद ये गोल्ड मिला है और साथ ही अगले ओलंपिक के लिए टीम क्वालिफाई कर गई है। जापान में जीत का जश्न है और देश में दिवाली सी रौनक है। इस असाधारण जीत के बारे में आज विस्तार से बात होगी, साथ ही एशियन गेम्स में आज गोल्ड के मामले में भारत का सिक्सर दिखाएंगे। जी हां, आज के दिन भारत ने महिला हॉकी में गोल्ड समेत 5 और गोल्ड जीते। बॉक्सिंग में कीर्तिमान बनाते हुए भारत की 2 बेटियों ने 2 गोल्ड अपने नाम किए। इसी तरह पहलवानी और आर्चरी में भी भारत को गोल्ड मिला। इस अद्भुत प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे और साथ ही कल यानी कि शनिवार को क्रिकेट के गोल के लिए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर बात होगी। शनिवार का दिन इस मायने में खास होने जा रहा है कि भारत के पास क्रिकेट और साथ ही पुरुष हॉकी में गोल जीतने का भरपूर मौका है। तो आपको बता दें कि भारत को एक गोल्ड पहलवानी में भी मिला है। भारत के सुजीत कालकर ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि जापान में इस वक्त जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, और न सिर्फ जापान में बल्कि ये जश्न भारत में भी, क्योंकि दिवाली से पहले दिवाली भारत में देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि जापान में चकदे इंडिया देखने को मिला है, क्योंकि एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई चैंपियन चीन को 1-0 से मात दे दी है और इस तरह 4 दशक बाद गोल्ड पर कब्जा कर लिया है। हमारी बेटियों ने चीन जैसी मजबूत टीम को पूरे खेल में 1 गोल तक नहीं करने दिया और जबरदस्त डिफेंस करने की बदौलत अपनी जीत सुनिश्चित की। इस जीत के बाद जहां जापान में खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं, वहीं देश में दिवाली से पहले दिवाली जैसी रौनक है। देखिए ये रिपोर्ट।

0: खुशी है, धमाल है, ये पल बेमिसाल है। जश्न सिर्फ जापान में नहीं, देश में भी जबरदस्त है। चेहरों पर हंसी, गलियों में पटाखे, ये रौनक, ये धूप, जो भी नजर आता है इन बेटियों का कमाल है। देश झूम रहा है, एक दूसरे को बधाई है। ऐसी वैसी कामयाबी नहीं है ये घड़ी 44 साल बाद आई है। 4 दशक का लंबा इंतजार, धैर्य, परिश्रम और मैदान पर जी जान लगाने के बाद ये दिन आया है जब एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने परचम लहराया है। फाइनल मुकाबले में हराया भी तो किसे, चीन को, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 4th नंबर पर मौजूद है और मौजूदा एशियाई चैंपियन है। उस टीम को वर्ल्ड रैंकिंग में 8th नंबर पर मौजूद भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में 1-0 से हरा दिया। 44 साल बाद एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। लाजमी है इस ऐतिहासिक जीत के बाद सभी खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन जश्न का ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। 4 दशक बाद ये चक दे इंडिया जैसी कहानी है और इसीलिए भारत में भी खिलाड़ियों के घर पर दिवाली से पहले दिवाली है। ग्वालियर में इस टीम के खिलाड़ी इशिका चौधरी के घर दिवाली जैसा माहौल है। माता, पिता, मामा, घर के सभी सदस्य गदगद हैं। गली में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है। जश्न इम्फाल में भी है, जहां खिलाड़ी बिचू देवी खारीबाम के घर में परिवार से सभी लोग मैच के दौरान टकटकी लगाए स्क्रीन देखते रहे, तब तक जब तक टीम इंडिया ने पदक अपने नाम नहीं कर लिया। हॉकी टीम के खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से हैं और देश के सभी राज्यों में इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। झारखंड के खूंटी में खिलाड़ी निक्की प्रधान के घर में खुशियां भर गई हैं। इस ऐतिहासिक जीत से पहले सलीमा टेटे की कप्तानी वाली टीम ने सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 2-0 से मात देकर निर्णायक मुकाबले में एंट्री की थी। फाइनल में भारत की ओर से पहले क्वार्टर में इकलौता गोल 10वें मिनट में लाल रेमी सियामी ने किया। इसके बाद पूरे मैच में कोई गोल नहीं हुआ। इस जीत से भारतीय महिला हॉकी टीम को पहले ओलंपिक खेलों के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी मिल गया है। टोक्यो ओलंपिक में 4th स्थान पर रहने के बावजूद भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हाफ टाइम तक स्कोर 1-0 ही रहा। इस दौरान चीन को मैच में वापसी करने का एक सुनहरा मौका पेनाल्टी स्ट्रोक के रूप में मिला था, लेकिन गोलकीपर सविता ने कमाल कर दिखाया और बेहतरीन बचाव करते हुए टीम पर आया संकट टाल दिया। साथ ही जीत भी सुनिश्चित हो गई, क्योंकि बाद के 2 क्वार्टर में चीन की ओर से एक भी गोल नहीं हुआ। ये जीत असाधारण है, अद्भुत है। इस गोल्ड ने देश का मान इसलिए भी बढ़ाया है क्योंकि इसे बेटियों ने हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और जापान में चीन को हराकर बेटियों ने जो कीर्तिमान बनाया है उसकी कोई मिसाल नहीं। खुशी इस बात की भी है कि इस गोल्ड के साथ ही टीम को ओलंपिक का टिकट मिल गया है। आपको बता दें, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। विक्रांत, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस जीत को आप कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल, एक तरह से आज इतिहास रचा गया क्योंकि हॉकी विमेन्स गोल्ड बहुत बड़ी बात है एशियन गेम्स में। आपको याद होगा आखिरी मर्तबा जो 44 साल हो गए इस बात को, 1982 जो एशियाड दिल्ली में हुआ था उसमें भारत की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, और चाइना को जिस तरह से उन्होंने रोका, आपने देखा कि इंडिया ने एक गोल कर दिया, उसके बाद एक पेनल्टी स्ट्रोक जिस तरह से सविता पूनिया ने बचाया, भारत ने जो डिफेंस किया, क्योंकि चाइना जो है विमेन्स हॉकी में इतनी पिछड़ी हुई नहीं है, मतलब वो हालिया सालों में उन्होंने अच्छा किया है। सो दो बातें हुई ना, एक तो आपको जो हम बात कर रहे थे कुछ स्पोर्ट्स की, कबड्डी में हमें था कि डबल चाहिए, कबड्डी में आपको डबल मिला। हमें क्रिकेट की डबल की बात थी, क्रिकेट में एक गोल्ड मेडल मिल चुका है। कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुबह 10 बजे दूसरा मुकाबला, होपफुली वहां पर भी आपको डबल गोल्ड मिलेगा। और एक हमेशा ना हॉकी से आप तो तवक्कुआत होती है, सो हॉकी में आपको पहला आज मिल गया है, विमेन्स हॉकी टीम ने आज जिस तरह से चाइना को 1-0 हराया, और उम्मीद ये है कि कल जो मेंस हॉकी टीम है वो उस हॉकी के डबल को भी पूरा करेगी, यानी कि कल 3:30 बजे जो इंडिया वर्सेज मलेशिया है, तो कल काफी एक्शन होगा और उस एक्शन पर सबकी नजर इसलिए रहेगी क्योंकि भारत ना इस बार ऑल सेड एंड डन थोड़ा लेट सर्च जरूर हुआ है। आज 6 गोल्ड मेडल भारत को आए, सो अब हो क्या रहा ना कि टैली आपकी थोड़ी बेहतर दिख रही है।
1: और इधर आपको बता दें कि एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे रहा। बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई, तो कुश्ती में सुजीत ने और आर्चरी में बेटियों ने सोना अपने नाम किया। कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक 16 गोल्ड मेडल समेत 76 पदकों पर कब्जा कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट।

0: तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। न सिर्फ टीम और साथी बल्कि पूरा देश खुशी से झूम रहा है और लवलीना को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। कितना खूबसूरत इत्तेफाक और क्या शानदार गिफ्ट, गले में गोल्ड, सामने जन्मदिन का केक। लवलीना ने अपने जन्मदिन पर देश को स्वर्ण पदक की सौगात दी है। एशियन गेम्स में अपने पंच की बदौलत बॉक्सिंग का गोल्ड अपने नाम किया और उसके बाद टीम के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया। यकीनन लवलीना बोरगोहेन ने देश की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और अपने शानदार खेल की बदौलत ओलंपिक में गोल्ड लाने का भरोसा दिया है। लेकिन लवलीना अकेली नहीं है। नायोगा में बेटियों ने पंच का वो दम दिखाया कि एशियन गेम्स की पदक तालिका में देश सीधे टॉप 5 में आ गया। एक नहीं बल्कि दो बॉक्सर बेटियों ने एक ही दिन एशियन गेम्स में अपनी ताकत दिखाई और देश के नाम दो गोल्ड कर दिया। लवलीना बोरगोहेन ने विमेंस 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और परवीन हुड्डा ने विमेंस 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीत कर देश को गर्व से भर दिया।
1: काफी प्राउड फील हो रहा है सर कि कंट्री की जो हमारी मेडल टैली है उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहा एंड मैंने कंट्री के लिए कुछ किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कॉन्फिडेंट थी मैं कि अच्छी मेहनत की है, बट सामने अपोनेंट भी बहुत अच्छी थी और जैसे सेकंड राउंड में उन्होंने मेरा गेम भी कैच कर लिया था, तो सेकंड राउंड उनके फेवर में था, तो थर्ड राउंड थोड़ा प्रेशर था कि अपने फेवर में ही लेना है, बट अच्छा रहा सर। और मतलब जो प्लान था थोड़ा चेंज किया थर्ड राउंड में और वो हमारे फेवर में आ गया। ये मेडल मैं अपनी कंट्री और अपने लेट भाई हार्दिक राठी को डेडिकेट करूँ।
0: एशियन गेम्स में भारत की ओर से ये ऐतिहासिक उपलब्धि है जब देश की दो महिला मुक्केबाजों ने अपनी अपनी कैटेगरी में दो गोल्ड जीता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने बॉक्सिंग में हैट्रिक का कीर्तिमान बना दिया। लवलीना और परवीन के साथ ही बॉक्सर अंकुश पंघाल ने पुरुषों की 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीत कर देश का सीना चौड़ा कर दिया। ये पहली बार है जब मुकाबले में तीन भारतीय मुक्केबाज एशियन गेम्स में चैंपियन बने हैं।
2: बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड जीत के, और दिमाग में तो यही था कि हाँ बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे। प्रेशर तो नहीं था पर लेकिन ये था कि खुद की जो मेहनत की थी उस पर विश्वास था कि हाँ गोल्ड लेना है। मोटिवेशन तो है कि वहाँ पे भी गोल्ड आया था और यहाँ पे भी गोल्ड है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ अभी अगले साल पे फोकस करेंगे।
3: किसको डेडिकेट करते हैं ये मेडल आप?
2: ये मेरे मम्मी पापा को, मेरे कोसाब को और मेरी इंडियन आर्मी 6 ग्रेनेडियर को।
0: मौजूदा एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का ये ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि बॉक्सिंग में भारत ने 3 गोल्ड और 3 ब्रोंज के साथ कुल 6 मेडल पर कब्जा किया है। 2010 एशियाड में भारतीय मुक्केबाजों ने 2 गोल्ड समेत कुल 9 मेडल जीते थे। वहीं 2022 में भारत के खाते में 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज समेत 4 मेडल आए थे। जाहिर है भारत में और भारतीय खेमे में बेहिसाब खुशी है। खुशी का ये मौका और बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि लवलीना ने ये उपलब्धि अपने जन्मदिन पर हासिल की।
4: बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, क्योंकि इतना लंबा जर्नी था मेरा और कहीं ना कहीं ये मेडल पूरा जर्नी याद दिला देता है। और बीच में बहुत ज़्यादा टफ भी आया था कि कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा भगवान दे रहा है, तो उसको मैं बहुत अच्छे से ले रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
3: आज बर्थडे वाले दिन आपका मेडल आया है, क्या आप मानती हैं दूसरा जन्म हुआ है आपका, जल्दी ना गोल्डन मेडल बन गया आज?
4: जरूर, क्योंकि सबसे स्पेशल बर्थडे है ये मेरे लिए। कहीं मैंने शायद कभी अपने आप को इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया था अपने बर्थडे पे, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
0: लवलीना का ताल्लुक असम के गोलाघाट के बारो मुखिया गांव के एक किसान परिवार से है। लवलीना गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करती हैं और 75 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में नाम कमाने वाली इस स्टार बॉक्सर ने कड़ी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। किसान परिवार से आने वाली नॉर्थ ईस्ट की ये जुझारू खिलाड़ी आज युवाओं की रोल मॉडल बन चुकी हैं। लवलीना ने 2018 और 2019 के AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार ब्रोंज मेडल जीतकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद टोक्यो 2020 ओलंपिक में ब्रोंज जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया। 2023 IBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी लवलीना ने गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली इस स्टार बॉक्सर को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है।
3: क्या कुछ आपने मतलब तैयारी में लगी थी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और तीन दिन से क्या दिमाग में चल रहा था क्योंकि परसों आप सिक्योर कर चुकी थी गोल्ड मेडल राउंड, तो क्या कुछ बोलेंगे?
4: माइंड में बस इस बार एक ही था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ भी नहीं आई थी, मुझे बस अपने गेम को जीना था और जापान मेरे लिए वैसे भी लकी है और मैं बस पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जब कंपटीशन के क्लोज आते हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो हम कोशिश करते हैं उसको किस तरीके से पॉजिटिव ले ले और माइंड में बस एक ही था कि मुझे जीतना है और हर वक्त वही था और सबका जिस तरीके से सपोर्ट मिला कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है उस वजह से ही मैं जीत पाई।
3: मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
4: मेडल अभी तक तो सोचा ही नहीं किसको डेडिकेट करूं, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है मुझे लगता है।
3: और एक क्या कुछ अब यू नो खाना पीना जो छोड़ा हुआ था वो जाके खाना चाहेंगे?
4: जरूर मेरा बहुत ज़्यादा वेट कंट्रोल नहीं रहता है, लास्ट के 2-3 दिन ही 1-2 kg कम करना पड़ता है और स्वीट तो वैसे भी मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ लेकिन आज तो जरूर इसके गोल्ड मेडल के वजह से जरूर स्वीट खाऊंगी।
0: लवलीना के जन्मदिन पर भारत को गिफ्ट परवीन हुड्डा ने भी दिया। परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे की चेन नियान चिन को 3-2 से मात देकर गोल्ड जीता। इसी के साथ परवीन हुड्डा ने मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन के साथ एशियन गेम्स की गोल्डन गर्ल क्लब में एंट्री मारी। इसी के साथ भारत का एशियन गेम्स में महिला बॉक्सिंग गोल्ड का 12 साल का इंतजार खत्म हुआ। इससे पहले 2014 के इंचियोन एशियन गेम्स में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था। खास बात यह है कि ये पहला मौका है जब एशियन गेम्स में दो महिला बॉक्सर्स ने अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीता है। बॉक्सिंग में गोल्ड की हैट्रिक अंकुश पंघाल ने लगाई। 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मैच में अंकुश पंघाल ने साउथ कोरिया के मुक्केबाज किन मियसांग को 4-0 से करारी शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। खास बात यह है कि पुरुषों की मुक्केबाजी में भारत को पूरे 8 साल बाद कोई गोल्ड मिला है। लवलीना, परवीन और अंकुश के अलावा प्रिया घंगास, कपिल पोखरिया और नरेंद्र बेरवाल ने बॉक्सिंग में देश के लिए ब्रोंज मेडल जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एशिया खेलों में अब नजर क्रिकेट के गोल पर है। कल यानी कि शनिवार को जापान के कुरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया का पाकिस्तान के साथ सामना होने वाला है। दांव पर गोल्ड है और यंगिस्तान हर हाल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीतने को बेताब है। जिस अंदाज में सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रन से हराया है उससे यह साफ है कि एक बार फिर टीम इंडिया एशियन गेम्स में गोल्ड जीतेगी।
5: एक बार फिर जोश आसमान छुएगा, एक बार फिर जुनून क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलेगा क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर फिर आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। एशियन गेम्स के इस महामुकाबले में गोल्ड दांव पर है, यंगिस्तान तैयार है। जाहिर है ब्लू ब्रिगेड को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं क्योंकि मुकाबला उस विरोधी से है जिससे न दिल मिलते हैं न हाथ। जिस अंदाज में श्रीलंका को 124 रन से रौंदकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि कल यानी शनिवार को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे पाकिस्तान को जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया के तूफान का सामना करना पड़ेगा। फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में है। बैटिंग लाइनअप में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे धुरंधर हैं, तो जसप्रीत बुमराह की वापसी से गेंदबाजी को वही पुरानी धार मिल चुकी है जो किसी भी स्थिति में मैच जिता सकती है। वहीं पाकिस्तान ने बाबर आजम, सलमान अली आगा के बाद कप्तानी के मोर्चे पर अब साहिबजादा फरहान पर दाव चला है। T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर एक टीम है और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भी। यूं तो ब्लू ब्रिगेड का सामना छठे नंबर की पाकिस्तान टीम से है, लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लिहाजा टीम इंडिया पूरी तरह मुस्तैद है और पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने को बेताब है। रिकॉर्ड्स के लिहाज से देखा जाए तो T20 में अब तक 17 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, जिनमें से 14 बार भारत जीता है। ये आंकड़े पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी हैं, लेकिन भारतीय टीम साहिबजादा फरहान एंड कंपनी को एशियन गेम्स के मैदान पर भी पानी पिलाने को तैयार है और एक बार फिर ये साबित करने को बेताब है कि क्यों टीम इंडिया वर्ल्ड नंबर वन है। दांव पर गोल्ड है और टीम इंडिया 20वें एशियन गेम्स में भी पिछली बार के एशियन गेम्स की सुनहरी कामयाबी को दोहराना चाहेगी, जब हंगझोऊ एशियन गेम्स में उसने गोल्ड जीता था। लेकिन इस बार टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान को चित करने का मौका है। अब मौका है तो टीम इंडिया दस्तूर निभाने को भी तैयार है, पाकिस्तान को पटक कर गोल्ड झटकने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और क्रिकेट का गोल्ड और फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला, यानी कि कल सुपर सैटरडे होने वाला है। खास बात यह है कि हॉकी में भारतीय पुरुष टीम गोल्ड के लिए मलेशिया से मुकाबला करेगी। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो विक्रांत आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल का दिन बड़ा ही नहीं खास भी रहने वाला है, आपका क्या कहना है?
6: आमतौर पर खेल के लिए ना सुपर संडे की बात करते हैं, बट ये सुपर सैटरडे ऐसा सुपर सैटरडे है कि आप यकीन माने कल अगर आप एक स्पोर्ट्स चैनल खोलते हैं तो सुबह 10 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक आप स्पोर्ट्स चैनल से हिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुबह 10 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट एशियन गेम्स गोल्ड मेडल मैच नगोया में, वो खत्म होते ही आप देखेंगे कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जो लास्ट वनडे मैच है मुल्लापुर में मोहाली में वो शुरू होगा। आपको याद ही है ना कि पिछले मैच में इंडिया ने 400 से आ रन चेज किए थे, विराट ने पहले मैच में 100 बनाया, रोहित शर्मा ने पिछले मैच में 100 बनाया और शुभमन ने पहले में 100 बनाया, दूसरे में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, तो वहां पर भी नजर रहेगी। फिर 3:30 बजे इंडिया हॉकी फाइनल खेलेगा मलेशिया के साथ, चलिए ये तो भाई हो गया, लेकिन उसके बाद ब्राजील के साथ जो फ्रेंडली मैच है इंडिया का फुटबॉल इंडिया वर्सेस ब्राजील वो 7:30 बजे से है। तो भाई आप स्पोर्टिंग एक्शन मैं कहूँगा सुपर सैटरडे होगा और विदाउट एनी डाउट कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी खेल का एक्शन होगा, जो उसके इर्द गिर्द कहानियाँ होंगी वो आपको GNT पे, क्यों? क्योंकि खेल गुड न्यूज़ लेकर आता है, होपफुली सैटरडे GNT यानी कि गुड न्यूज़ लेकर आएगा।
0: बहुत धन्यवाद विक्रांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

सुख चैन जुड़ा हुआ है? क्या रसोई की अलमारी से आपके घर में अशांति फैल सकती है? क्या किताबों की अलमारी आपके दिमाग पर असर डाल देती है? अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। एशिया खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन। खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। कुंभारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्तियां। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: एशियन गेम्स वुमेन्स हॉकी से भारत के लिए आई शानदार खबर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में 44 साल बाद जीता गोल्ड। भारत की बेटियों ने हॉकी में भारत को दिलाया ऐतिहासिक गोल्ड। भारत ने 1-0 से चीन को हराकर गोल्ड पर किया कब्जा। लाल रिम सियामी ने शानदार फील्ड गोल कर भारत को दिलाया गोल्ड। लाल रिम सियामी का ये 200वां इंटरनेशनल मैच था। बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले में फाइनल में चीन को हराया। 1982 के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। गोल्ड के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक और गुड न्यूज। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। ऐतिहासिक जीत पर चैंपियन बेटियों का शानदार जश्न। डांस करते दिखी भारतीय महिला हॉकी टीम। हॉकी इंडिया ने खास वीडियो शेयर कर लिखा चैंपियन चैंपियन। ग्वालियर में महिला हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी के घर भव्य जश्न। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर बांटी मिठाई। परिवार के सदस्यों ने तिरंगा हाथ में लेकर लहराया। झारखंड के खूंटी में हॉकी प्लेयर निकी प्रधान पर जीत का जश्न उनके घर पर भी दिखा। परिवार ने एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाकर मनाई खुशी। हाथों में तिरंगा लहराते आए नजर। गोल्ड जीत पर मणिपुर के इम्फाल में हॉकी खिलाड़ी कारिबाम बीचू देवी के घर भी जश्न। परिवार ने ऐतिहासिक जीत का किया स्वागत। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर रोहतक में दीपिका सहरावत के परिवार ने मनाया जश्न। पिता जगदीश और दादी फूलपति की आंखों में दिखा गर्व और खुशी। एशियन गेम्स के 14वें दिन भारत पर गोल्ड की बारिश। बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने लगाई गोल्ड की हैट्रिक। अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को गोल्ड। तजाकिस्तान के पहलवान को हराकर सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम वर्ग में भारत को दिलाया ऐतिहासिक गोल्ड। एशियन गेम्स में

एशियन गेम्स में विमेंस सेलिंग में भारत को ब्रोंज, चीन के डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारत को मेडल। गामागोरी में नेत्रा कुमानन ने डिंगी सेलिंग में दिलाया गोल्ड। एशियाई गेम्स के समापन समारोह में भारत से नीर उठाना होंगे महिला ध्वजवाहक। पुरुष ध्वजवाहक के नाम का कल होगा ऐलान। जापान के नागोया में 4 अक्टूबर को क्लोजिंग सेरेमनी। एशियन गेम्स में आज भारत का गोल्डन डे। आज 6 गोल्ड मेडल मिले। महिला बॉक्सर परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड। अपने 29वें जन्मदिन पर महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने किया कमाल। 75 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल किया अपने नाम। फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराया। एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बनी। ललीना ने जापान के नागोया में मनाया अपना 29वां जन्मदिन। केक काट कर किया बर्थडे सेलिब्रेट। तीरंदाजी में भी आज भारत ने सादा गोल पर निशाना। विमेंस रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ ने तिकड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर इतिहास रचा। तीरंदाजी में भारत को 4th गोल्ड दिलाया। भारत के लिए तीरंदाजी में गोल्ड के बाद रजत पदक भी आया। रिकर्व मिस्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में कुमकुम मोहोर और धीरज की जोड़ी ने किया कमाल। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से पदक तालिका में 5वें नंबर पर पहुंचा भारत। अब तक आए 16 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रोंज, कुल 76 मेडल। भारत को आर्चरी के रिकर्व पुरुष टीम इवेंट के फाइनल में मिला सिल्वर मेडल। धीरज, नीरज चौहान और यशदीप भोगे का कमाल। बॉक्सिंग के 65 किलो वर्ग के फाइनल में परवीन हुड्डा ने जीता गोल्ड मेडल। चीनी ताइपे की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चेन नियान चिन को 3-2 से हराया। पहलवान सुजीत कलकल की गोल्डन जीत पर चरखी दादरी में परिवार में खुशी की लहर। परिजनों ने टीवी पर लाइव मुकाबला देखा और जीतते ही बजाए तालियां, विक्ट्री साइन भी दिखाया। एक गोल्ड एक ब्रोंज जीतकर प्राची चौधरी का सहारनपुर में ग्रैंड वेलकम। ढोल नगाड़ों और फूलवालाओं के साथ हुआ स्वागत। मां के हाथों से सम्मान पाकर भावुक हुई प्राची। एशियन गेम्स में 2 कांस्य पदक जीतकर मेरठ लौटी पारुल चौधरी। फूलमालाओं से हुआ शानदार स्वागत। भारी संख्या में हुए लोग शामिल। एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट अश्विमा अहलावत का रोहतक पहुंचने पर जोरदार स्वागत। परिवार और समर्थकों ने फूलमालाओं से किया अभिनंदन। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर गोल्ड मेडलिस्ट शूटर्स कमलजीत और सुरुचि सिंह का रेवाड़ी में भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजा सुलखा गांव। अकोला के कुमारवाड़ा में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे कारीगर। रंग रोगन नक्काशी और श्रृंगार में दिन रात जुटे कलाकार। 1 फीट से लेकर 25 फीट तक की प्रतिमाएं की जाती है तैयार। कार्यशालाओं में प्रतिमाओं पर बारीकी से काम जारी। चेहरे के भाव और श्रृंगार को आकर्षक बनाने में जुटे कलाकार। मां दुर्गा की प्रतिमाओं पर चढ़ रही रंगों की खूबसूरत परत, कहीं ब्रश से रंग भरे जा रहे हैं तो कहीं नक्काशी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अकोला के कुमारवाड़ा में छोटी बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं की धूम। छोटी प्रतिमाओं पर मेहंदी, टिकली और गन से लेकर सजावट का काम जारी। मां दुर्गा की मूर्तियों में आंखों की खूबसूरती पर बारीकी से काम कर रहे कलाकार। चेहरे के भाव और आभूषणों की नक्काशी को दिया जा रहा आकर्षक रूप। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होकर बापू को श्रद्धांजलि दी। गांधी स्मृति स्थल पर किया नमन। प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री मोदी का दिखा अनोखा अंदाज। चरखे वाले जैकेट में नजर आए पीएम। आकर्षक का केंद्र रहा जैकेट। गांधी स्मृति स्थल पर भजन और गीतों से भक्तिमय हुआ माहौल। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक रंग भरा। भजनों और गीतों की शानदार प्रस्तुतियों से गूंजा गांधी स्मृति स्थल। स्कूली बच्चों ने भी भजन पेश कर कार्यक्रम में बांधा समा। प्रधानमंत्री मोदी ने गीतकारों, संगीतकारों और कलाकारों से भी मुलाकात किया। भजन प्रस्तुति करने वाले स्कूली बच्चों से भी किया संवाद। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का आगाज। लेडीज बस में खुद कंडक्टर बने।

0: सीएम थलपति विजय, महिलाओं ने टिकट के बदले मुख्यमंत्री को दी चॉकलेट। गांधी जयंती पर चेन्नई में की फ्री बस सेवा की शुरुआत। सीएम विजय ने महिलाओं को दिए टिकट, मुख्यमंत्री को देखकर झूमी महिलाएं। गांधी जयंती पर तमिलनाडु सरकार की नेक पहल। चेन्नई में मदुइल्ला तमिझगम यानी कि शराब मुक्त तमिलनाडु अभियान का शुभारंभ। शराब की बढ़ती लत से युवाओं को दूर रखने की दिशा में बड़ा कदम। शराब से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर युवाओं को किया जा रहा जागरूक। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी दिया गया जोर। तमिलनाडु सरकार ने हजारों करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। नॉर्थ बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में फिर सुनाई देगी बाघों की दहाड़। अलीपुरद्वार में बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों की वापसी के अभियान की शुरुआत। सीएम शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बाघिन को रिजर्व में छोड़ा। टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत रिजर्व में छोड़ी गई पहली बाघिन। बक्सा में बाघों की आबादी को फिर से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। वन क्षेत्र और वन जीव संरक्षण को मजबूत करने पर दिया गया जोर। अलीपुरद्वार के बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण अभियान को मिली नई रफ्तार। प्रदेश में टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा। बक्सा को ऐतिहासिक रूप से बाघों के महत्वपूर्ण लैंडस्केप के तौर पर जाना जाता है। 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित बक्सा में अब बाघों की वापसी की तैयारी। झांसी में मलखम का महासंगम। 16 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी पहुंचे। लक्ष्मी व्यायामशाला में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन। मलखम के मंच पर दिखा देश भर के खिलाड़ियों का शानदार हुनर। खिलाड़ियों ने दमखम और हैरतअंगेज कलाबाजियों से जीता दर्शकों का दिल। खिलाड़ियों ने संतुलन, लचीलापन और फुर्ती का किया जबरदस्त प्रदर्शन। लक्ष्मी व्यायामशाला में मलखम की कलाबाजियों ने बांधा समा। खिलाड़ियों ने अलग अलग विधाओं में दिखाई अपनी प्रतिभा। पारंपरिक भारतीय खेल को नई पीढ़ी से जोड़ना लक्ष्य। उद्घाटन समारोह में रंगारंग प्रस्तुतियों ने भी बढ़ाया आयोजन का आकर्षण। छात्राओं ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति से सबको किया मंत्रमुग्ध। कैप्टन स्मिथ मछार के लिए सूरत में हवन पूजन और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ। जल्द स्वस्थ होने के लिए की गई विशेष प्रार्थना। 51 वैदिक विद्वानों ने किया हवन। हनुमान मंदिर में गूंजी हनुमान चालीसा की चौपाइयां। बजरंगबली से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का कामना की गई। रणथंभौर में स्टार शटलर साइना नेहवाल का फैमिली टाइम। सोशल मीडिया पर दिखी खास झलकियां। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया खुशनुमा पल। साइना नेहवाल ने अपनी बहन के साथ डांस का वीडियो किया शेयर। बॉलीवुड सॉन्ग और राजस्थानी गीतों पर बहनों की मस्ती ने बटोरी खूब सुर्खियां। सिर्फ डांस ही नहीं, साइना ने तीरंदाजी का भी लिया आनंद। एक वीडियो में बैडमिंटन स्टार धनुष पर निशाना साधती आई नजर। गोरखपुर की तीन बहनें चाय स्टॉल चलाकर कर रही यूपीएससी की तैयारी। पिता को पैरालिसिस अटैक के बाद बड़ी बहन वर्तिका ने संभाली परिवार की जिम्मेदारी। स्टॉल पर ही लैपटॉप रखकर करती है पढ़ाई। आईएएस बनने का है तीनों बहनों का सपना। बिलीवर चाय स्टॉल चला रही हैं। काम के साथ रोजाना करते हैं 5 से 6 घंटे पढ़ाई। लहेरियासराय स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन का ठहराव। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। लंबे इंतजार के बाद ठहराव शुरू होने से लोगों में खुशी। मिथिला परंपरा से नमो भारत ट्रेन का स्वागत। लहेरियासराय में ठहराव से यात्रियों को मिली बड़ी सुविधा। सांसद ने लोको पायलट को पाग और चादर भेंट कर सम्मानित किया। पंचकुला में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज। पिच पर बैटिंग करते आए नजर। नमो क्रिकेट लीग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे धामी। बिहार में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा बड़ा कदम। महज एक साल में सुकन्या समृद्धि योजना के 1 लाख से ज्यादा खुले खाते। योजना से जुड़ने के लिए डाक विभाग की ओर से जागरूकता पर जोर। पोस्ट ऑफिस के जरिए अभिभावक बेटियों के भविष्य के लिए कर रहे निवेश। मुंबई में संत ज्ञानेश्वर महाराज की 750वीं जयंती वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संत ज्ञानेश्वर महाराज को किया नमन। ज्ञान रंग ज्ञानेश्वरी ऐप का भी किया अनावरण। अयोध्या प्राचीन उदासीन ऋषि आश्रम में गुरु पर्व समारोह की तैयारी तेज। 5 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी होंगे शामिल। रानोपाली में उदासीन ऋषि आश्रम में खास होगा गुरु पर्व का अंतिम दिन। नवनिर्मित नारायण संस्कृत महाविद्यालय भवन का होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाई दुबई के जाबाज पायलट स्मिथ मछार से वीडियो कॉल पर बातचीत की। यूनाइटेड अरब अमीरात में मछार का चल रहा इलाज। कैप्टन स्मिथ ने घटना के दौरान अपने अनुभव और उन्हें हिम्मत देने वाली बातों के बारे में बताया। पीएम मोदी से कहा, मुझसे जो हो सकता था वो किया। घटना का जिक्र करते हुए स्मिथ मछार ने बताया कि उस वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उनके मन में यही चल रहा था कि वे सबको मरने नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में मछार ने कहा कि वे भले ही देश से दूर हैं लेकिन अपनी संस्कृति से नहीं। मछार ने बताया कि हमले के बीच उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला। पीएम ने मछार की हिम्मत, सूझबूझ और मुश्किल वक्त में संयम बनाए रखने की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने मछार से कहा कि पूरा देश उनके साथ है। पीएम ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कैप्टन स्मिथ मछार दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट उड़ा रहे थे। उसी दौरान उनके को पायलट ने उन पर हमला कर दिया और विमान को क्रैश कराने की कोशिश की। घायल होने के बावजूद मछार ने हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद यात्रियों और क्रू सदस्यों ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर पायलट को काबू किया। देशभर में आज मनाई जा रही है महात्मा गांधी की 157वीं जयंती। देशभर में बापू के आदर्शों को किया जा रहा याद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी 122वां जन्मदिन आज, देश कर रहा नमन। दिल्ली में जेन ज़ी पहुंचा यमुना घाट, गांधी जयंती पर की घाट की सफाई, यमुना से निकाला कचरा। 15 कॉलेजों के छात्र यमुना घाट पहुंचे, किसी के हाथ में झाड़ू थी तो कोई घाट से कूड़ा और प्लास्टिक उठाता नजर आया। यमुना को साफ करने का दिया संदेश। जामनगर में गांधी जयंती पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली, मंत्री रिवाबा जडेजा भी हुए शामिल। युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। यूपी के चंदौली में रेल अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं ने साफ सफाई को लेकर जागरूकता रैली निकाली, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। मध्यप्रदेश के राजगढ़ में 12 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन कर स्वच्छता का दिया गया संदेश। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मानसून के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अंतिम चरण में पहुंची। चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी। टिहरी के प्राचीन गुड़ाकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, यात्रा मार्ग, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और स्थानीय व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर। बिहार के गया जी में अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए रूस, यूक्रेन, इटली और जर्मनी सहित कई देशों के विदेशी श्रद्धालु देवघाट पहुंचे, किए पिंडदान तथा तर्पण। राजस्थान के धौलपुर जिले के कंचनपुरा गांव के खेत में निकला 14 फीट का अजगर। अजगर को पकड़कर गांव से दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में पहुंचा 8 फीट लंबा मगरमच्छ, 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू, गंगा नदी में छोड़ा गया। पटना के मनेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, अधियारा इलाके के निचले हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांव प्रभावित। पटना सिटी के घाटों पर पिछले 2 दिनों से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। भद्रघाट, महावीर घाट पर बैरिकेडिंग कर लोगों के आने जाने पर लगाई गई रोक। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, राहत और बचाव के कामों का लिया जायजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी के साथ बहकर पहुंचे करीब 1 दर्जन हिरणों को वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बारू और साहिबगंज इलाके से इन हिरणों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू किए गए हिरणों में 4 नर और 8 मादा हैं। एक घायल हिरण का किया जा रहा उपचार। बक्सर में बाढ़ से बड़ी समस्या, गंगौली से बलिया जाने वाला मार्ग हुआ बंद, रास्ते पर चढ़ा गंगा का पानी। रास्ते पर पानी के बावजूद लोग खतरनाक तरीके से कर रहे हैं यात्रा, कभी भी हो सकता है हादसा, प्रशासन अभी तक नहीं लगा पाया है रोक। नेपाल के पानी का भारत में आने का असर, बिहार में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर में दिख रहा असर। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा में बाढ़ से तबाही, चंपारण तटबंध पर बने एक बांध से रिसाव से हड़कंप, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारी। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया, बाढ़ से जिले की 3 तहसीलें प्रभावित, प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सुख चैन जुड़ा हुआ है? क्या रसोई की आलमारी से आपके घर में अशांति फैल सकती है? क्या किताबों की आलमारी आपके दिमाग पर असर डाल देती है? आलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: चलिए अब बात फैशन की कर लेते हैं। पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है। लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट ने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया है। सेंट लॉरेंट ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड गोल्ड लुक भी क्रिएट किया है, जिसे सबका दिल जीत लिया है।

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के शानदार डिजाइन्स की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेट स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे होने का प्रतीक था।

0: Bureau Report, Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
9: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल, 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा, 2028 ओलंपिक के लिए टीम ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में आज भारत के लिए गोल्डन डे, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत, 157वीं जयंती के मौके पर बापू के प्रिय भजनों का गायन, खादी गमछे के साथ पीएम ने पहनी चरखा जैकेट। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु, जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार, आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी, कुमारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार, भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 1 से 25 फीट ऊंची मूर्तियां। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान, सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन, अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं आपके घर की अलमारियों के बारे में। देखिए, आपके घर की अलमारियां जिसमें आप सामान रखते हैं, कपड़े रखते हैं, किचन में आप अपने घर के डब्बे रखते हैं, बर्तन रखते हैं, तो आखिरकार इन अलमारियों का ज्योतिष शास्त्र से क्या कुछ कनेक्शन है और आपको अपने अलमारियों को किस तरीके से रखना चाहिए, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक आंसर क्या है।
1: देखिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं, धर्म स्थान पे जाते हैं दर्शन करने, पूजन करने, और वहां से अगर कोई फूल या माला मिलती है आपको तो उसे ऐसे ही मत कहीं रख दीजिए। उसको ला करके अपने काम करने की जगह पर, अपने पढ़ने की जगह पर रख दीजिए। इससे जीवन में शुभता आएगी। और जब ये सूख जाए तो क्यारी में डाल दें या जमीन में दबा दीजिएगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 3 अक्टूबर 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 7:59 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके घर की अलमारियों का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं।
1: जी देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर की जो अलग अलग अलमारियां हैं उनको कैसे रखना चाहिए और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। आपके घर की अलमारियों से किस्मत का क्या कनेक्शन है? देखिए, घर की जो अलमारियां हैं ये बचत और सुरक्षा की प्रतीक हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से शनि और शुक्र पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। अलमारियों को ठीक करके बचत को, सेहत को और सुरक्षा को ठीक किया जा सकता है। यानी आप अगर अपने घर की अलमारियों को ठीक से रखें तो आप धन की बचत कर पाएंगे, चीजों की सुरक्षा कर पाएंगे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। तो बचत, सेहत और सुरक्षा, ये तीनों चीजें आपके घर की अलमारियों से कंट्रोल होती हैं।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके कपड़ों की अलमारी के बारे में। तो आखिरकार कपड़ों की अलमारी का कौन से ग्रह से सीधा संबंध है और आपके भाग्य क्या इसमें रखकर या इसके रखरखाव से बदल सकता है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं।
1: आम तौर पर हर घर में, चाहे दीवार में फिक्स हो या अलग से ली गई हो, कपड़ों की अलमारी अवश्य होती है। क्या विशेषता है इसकी? कपड़ों की जो अलमारी है ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित होती है, और अगर आप कपड़ों की अलमारी को ठीक रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो इससे आपका शुक्र हमेशा अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ कपड़ों की अलमारी को साफ सुथरा रखने से, व्यवस्थित रखने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। इस अलमारी को हमेशा व्यवस्थित रखिए, कपड़े ठूंस कर अव्यवस्थित तरीके से, खराब तरीके से ना रखें। इस अलमारी में सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और धन सामान्य स्थितियों में नहीं रखना चाहिए। धन रखने पर बहुत तेजी से खर्च होगा। हालांकि इस अलमारी में अगर कोई दराज है, कोई छोटी अलमारी के अंदर रैक है, तो उसमें अपने महत्वपूर्ण कागज आप रख सकते हैं। कपड़ों की अलमारी में अगर आप आभूषण रखेंगे, उनके खोने का खतरा होगा, और अगर धन रखेंगे तो धन बचेगा नहीं, बड़ी तेजी से खर्च होता चला जाएगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए, कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न हरप्रीत जी ने हमें लिखा है और हरप्रीत जी हमें पंजाब से मेल लिखती हैं। 29 मई 1994 का जन्म है, दोपहर के 2:10, राजपुरा पटियाला पंजाब। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हरप्रीत जी, आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से संभावना ये बनती है कि जून 2027 के पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगले 6-8 महीने में आपके विवाह के योग प्रबल दिखाई दे रहे हैं। विवाह के बाद हो सकता है आप विदेश जाएं या आपका कोई स्थान परिवर्तन हो, और ऐसा करना भी आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और बृहस्पतिवार को केले का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको बता दूं ये बिल्कुल संभव है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल पंडित जी आप किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न समीर जी ने हमें लिखा है और समीर जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 4 दिसंबर 1979, जन्म का समय 7:25, जन्म स्थान है जमालपुर मुंगेर बिहार। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है, कोई ना कोई समस्या मेरे साथ हमेशा लगी रहती है, तो मैं कब तक पूरी तरह से स्वस्थ होऊंगा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए। समीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मुख्य समस्या आपका डाइजेशन है, आपका पेट है, लीवर, आंतों और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। मई 2027 तक अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, मई 2027 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, आपके जीवन में सुधार होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आपकी रसोई की अलमारी के बारे में। आखिरकार आपकी रसोई की जो अलमारी है, कौन से ग्रह से इसका संबंध है और आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर इसका किस तरीके से असर पड़ सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: रसोई की जो अलमारी है जिसमें आप डब्बे रखते हैं अनाज के, मसालों के, या बर्तन भी रखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अलमारी है। रसोई की अलमारी भैया सूर्य की अलमारी है, इससे कनेक्ट करता है सूर्य। आम तौर पर इसमें रसोई के सामान, अनाज, मसाले, दालें और बर्तन रखे जाते हैं। इस अलमारी को पूरे तरह से बंद नहीं बनाना चाहिए। इसको अगर दरवाजे वाला बना रहे हैं तो पारदर्शी दरवाजे यानी ट्रांसपेरेंट डोर्स या जाली वाले दरवाजे इसमें लगाने चाहिए। और मसाले और अनाज के डब्बे इसमें अलग अलग आपको रखने चाहिए। कांच के बर्तन और धातुओं के बर्तन भी आपको अलमारी में अलग अलग रखने चाहिए। रसोई की जो अलमारी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अलमारी को महीने में एक बार साफ जरूर करना चाहिए। और अगर आप रसोई की अलमारी में डब्बे सही से रखते हैं, बर्तन सही से रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, सूर्य प्रबल होगा, घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। बड़ी पुरानी कहावत है कि जहां घर में चार बर्तन होते हैं वहां टकराते हैं, इसका मतलब झगड़ा होता है। तो अगर आप बर्तन अव्यवस्थित अलमारी में रखते हैं तो बर्तन टकराएंगे और वो घर के लोगों के बीच में विवाद का कारण बनेगा। इसीलिए रसोई में चाहे वो अनाज वाली अलमारी हो, मसाले वाली अलमारी हो, बर्तन वाली अलमारी हो, उसको आपको ठीक तरीके से रखना चाहिए।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
1: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य, आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या के योग बन रहे हैं, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपकी धन की अलमारी कैसी होनी चाहिए और कौन से ग्रह से इसका संबंध होता है।
1: देखिए, धन की अलमारी वो अलमारी है जिसमें आप पैसा रखते हैं, आभूषण रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं और इसकी चाबी हमेशा बंद रख के अपने पास रखते हैं। अलमारी नॉर्मली ये खुला नहीं छोड़ते, बड़ी सिक्योरिटी से इसको रखने का प्रयास करते हैं। धन की जो अलमारी है इसका संबंध होता है बृहस्पति से, जुपिटर से, और धन की अलमारी में धन, आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर धन की अलमारी या आपकी तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट के कोने में हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। धन की अलमारी बेहतर तो ये होगा कि उत्तर दिशा की तरफ खुले, नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ अगर धन की अलमारी खुले तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर धन की अलमारी दक्षिण की तरफ खुलेगी तो घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में नष्ट होगा। तो धन की अलमारी उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूर्व दिशा की तरफ खुले तो बहुत अच्छा होगा। इससे संपन्नता बनी रहेगी और निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। जो आपके धन रखने की अलमारी है उसका रंग काला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और धन की अलमारी पर एक लाल रंग का स्वस्तिक आप सिंदूर से बनाकर लगा दें और हर दीपावली पर अलमारी की साफ सफाई करें, दीपावली पर इस अलमारी की पूजा भी करें और हर दीपावली पर पुनः एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाकर अपने धन की अलमारी पर लगा लेंगे।
0: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यही जारी रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। खान पान का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में जोखिम ना लें। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
1: जी, अगला प्रश्न हर्षित ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। हर्षित की जन्म की तारीख है 19 फरवरी 2010। जन्म का समय है रात में 11:22। जन्म स्थान है दिल्ली। हर्षित कह रहे हैं कि मैं दसवीं में हूं, अभी दसवीं की पढ़ाई कर रहा हूं। आगे मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, किस तरह के करियर में जाना मेरे लिए बेहतर होगा। हर्षित, आपकी कुंडली है टेक्नोलॉजी की, तकनीक की, इसलिए आप 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़िएगा और आगे इंजीनियरिंग में जाने की कोशिश करिएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग या कंप्यूटर की इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर रहेगी। टेक्निकल फील्ड में आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, इसको थोड़ा बैलेंस करना है। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को गले में धारण करने से आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर अपने सवाल लिख करके हम भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी, आज का चौथा यानी कि अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न विष्णु प्रिया जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1992। जन्म का समय 7:10। जन्म स्थान है झांसी उत्तर प्रदेश। विष्णुप्रिया जी कह रही हैं कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई है और वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मेरी शादी चल सकेगी और आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा? विष्णुप्रिया जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी बिल्कुल चलेगी, थोड़ा सब्र करिए। फरवरी 2027 के बाद एक तो जगह बदलेगी पति के साथ, आप वाराणसी से निकलकर किसी और स्थान पर शिफ्ट करेंगी, एक संभावना तो ये बन रही है। और दूसरी बात, अगले साल फरवरी के बाद वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है, तो थोड़ा पेशेंस और धैर्य बनाए रखिए, आने वाले समय में चीजें आपकी अच्छी दिखाई दे रही हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-13 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो पंडित जी, एक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। आज आपने बताया कि कपड़ों की अलमारी कैसी होनी चाहिए, आपके किचन की अलमारी कैसी होनी चाहिए, लेकिन बुक शेल्फ यानी जहाँ आप अपनी किताबें रखते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसका आपके जीवन से, आपके भाग्य से क्या संबंध है, उसके बारे में बताएं
1: जी। देखिए, किताबों की जो अलमारी है, जो आपकी बुक शेल्फ है, वो दरअसल बुद्ध का स्थान है। पढ़ना लिखना, चीजों को संभालना, ज्ञान को इकट्ठा करना, हालांकि ज्ञान में बृहस्पति का रोल है, लेकिन किताबों की जो अलमारी है वो बुद्ध की अलमारी है। आप याद रखिए कि अगर आप अपनी किताबों को सलीके से रखते हैं, पढ़ने के बाद संभाल कर रखते हैं, नियमित रूप से किताबों की अलमारी की सफाई करते हैं, तो आपकी बुद्धि और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। अगर आप किताबों को फाड़ते हैं, मुड़े तुड़े हाल में ठूंस कर रखते हैं, बिखेर कर रखते हैं, तो ऐसा करने से दो चीजें पक्की होंगी। एक तो जब आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी उस समय बुद्धि आपका साथ नहीं देगी, दूसरा आपकी याददाश्त कमजोर होगी। तो छोटी उम्र से ही बच्चों को ये सिखाइए कि वो अपनी किताबों को, कॉपी को संभाल कर अलमारी में रखें और किताब कॉपी की अलमारी को बहुत अच्छी तरह से रखें, बिल्कुल सिस्टम से रखें। इससे बच्चों की बुद्धि एकाग्रता शुरुआत से बेहतर होगी। और जो लोग बचपन से शुरुआत से किताबों का, कॉपियों का रख रखाव जानते हैं, उनका मूल्य जानते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है और ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत बेहतर होती है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्मदिन 3 अक्टूबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 3 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर और शिक्षा में परिवर्तन होगा, इसके बाद सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि क्या सुबह की पूजा में भी दीपक जलाना आवश्यक है। देखिए, वैसे आप दोनों समय की पूजा में दीपक जला सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन वास्तव में दीपक जलाने का उपयुक्त समय संध्या काल है। शाम की पूजा में दीपक जलाना ज्यादा जरूरी है और दीपक जलाकर

0: अक्टूबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 3 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि 7:30 के हालात अलग अलग राशियों पर क्या हैं इस समय। आज की गुडलक राशि है मेष, एरीस। इस समय आपकी 7:30 का प्रथम चरण चल रहा है। इस समय आप तैयार हो जाइए, आपके करियर में और जीवन में बड़े परिवर्तन जरूर होंगे।
1: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आपके जमीन का, मकान का मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा हो तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाइएगा और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और गाय को गुड़ खिलाएं। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करें, जमीन और प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
1: पंडित जी, हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और के लिए गोल्डन डे रहा, बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई तो महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कुश्ती में सुजीत ने तो आर्चरी में बेटियों ने सोना अपने नाम किया। कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक 16 गोल्ड मेडल समेत 76 पदकों पर कब्जा कर लिया है।
7: महिला हॉकी में लौटा सुनहरा दौर, चीन को हराकर जीता स्वर्ण पदक। 44 साल बाद हॉकी में ऐतिहासिक जीत, ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। परवीन हुड्डा का सुनहरा पंच, लवलीना बोरगोहेन का गोल्डन गिफ्ट, अंकुश पंघल ने बॉक्सिंग में पूरी की तिकड़ी, कुश्ती में सुजीत कलकल का सुनहरा दांव,

0: तीरंदाजी में अंकिता, कीर्ति और कुमकुम का गोल्ड पर निशाना। 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाया गोल्ड का सिक्सर। एशियन गेम्स 2026 में दिखने लगा है भारत का दम। नगोया में सिकंदर बनने का सिलसिला लगातार जारी है। 13वें दिन की शुरुआत तीरंदाजी में गोल्ड मेडल के साथ हुई। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने कॉन्टिनेंटल इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर एशियन गेम्स में सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, देश का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। इसके बाद स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्डन पंच लगाकर अपना जन्मदिन यादगार बना दिया। टीम स्टाफ के साथ लवलीना ने केक काटा और कहा कि इस जीत से उनका जन्मदिन खास हो गया।
1: बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, क्योंकि इतना लंबा जर्नी था मेरा और कहीं ना कहीं ये मेडल पूरा जर्नी याद दिला देता है। और बीच में बहुत ज़्यादा टफ भी आया था कि कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बॉक्सिंग के ही 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा ने फाइनल में जीत हासिल कर गोल्ड पर कब्जा कर देशवासियों को खुशी से भर दिया। तो अंकुश पंघल कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तीसरा गोल्ड जीतकर बॉक्सिंग में आज के दिन हैट्रिक लगा दिया। कुश्ती के खेल में सुजीत कलकल ने सुनहरा दांव लगाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया।
2: देखो यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए।
0: सुबह सुबह रोमांचक फाइनल में खिताब के प्रबल दावेदार दक्षिण कोरिया को अंकित भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की तिकड़ी ने 5-3 से हराया। 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया। बॉक्सिंग के स्टार खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर गोल्ड मेडल जीतकर देश को शानदार तोहफा दिया। उन्होंने फाइनल में चीन के बॉक्सर बायो जीई को 5-0 से हराकर कमाल कर दिया। पिछले एशियन गेम्स में लवलीना फाइनल हारकर सिल्वर मेडल पर रुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने गोल्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया। आज का तीसरा गोल्ड परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग में चीनी ताइपे की चेन नियन चिनको को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। बॉक्सिंग में ही 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश ने दक्षिण कोरिया के सिन मिन सियोंग को हराकर गोल्ड हासिल की। ताजिकिस्तान के पहलवान अब्दुल माजिद कुडियेव को पछाड़कर सुजीत कलकर ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। एक समय सुजीत अब्दुल से 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 10-9 से फाइनल जीत लिया। तीरंदाजी में भारत को सिल्वर के रूप में दूसरा मेडल भी मिला। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवड़ा की जोड़ी फाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। पुरुष तीरंदाजी टीम में संजय भोगी, धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान की भारतीय टीम को फाइनल में साउथ कोरिया ने 5-1 से हरा दिया, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। इसके बाद सेलिंग में भारत के नेत्रा कुमानन ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। सेपक टकराव में भारतीय मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के अरुण, बॉबी कुमार, लोखोन सिंह, माले मगम्बा सिंह, रामकुमार शर्मा और आकाश जुमनन ने जापान के खिलाफ सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। आर्चरी में अंकिता, कीर्ति, कुमकुम ने रिकर्व आर्चरी महिला टीम ने गोल्ड जीतकर सबको चकित कर दिया। भारतीय महिला टीम ने हैवीवेट साउथ कोरिया को हराकर महिला टीम रिकवरी आर्चरी में ऐतिहासिक गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। आर्चरी में धीराज और कुमकुम ने रिकर्व मिक्स टीम में सिल्वर जीत आने वाले प्रतियोगिताओं के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। कुमकुम मोहोत और धीरज बोमदेवरा गोल्ड मेडल मैच में चीन से हार गए थे और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। एशियन गेम्स 2026 में भारत के 76 मेडल हो गए हैं। एशियाड में भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी मेडल संख्या है। 2023 में चीन के होंगझोऊ में सबसे ज्यादा 107, जबकि 2018 में जकार्ता में 69 मेडल आए थे। अब तक भारतीय दल ने 76 मेडल्स पर कब्जा कर लिया है। भारत को हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और कुश्ती जैसे प्रमुख इवेंट्स में मेडल मिलने की पूरी उम्मीद है और कई मुकाबलों में पदक पक्के भी हो चुके हैं। पुरुष हॉकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इस टीम से गोल्ड की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में फाइनल में पहुंच चुकी है। उसका गोल्ड के लिए पाकिस्तान से मुकाबला होना है। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मेडल टैली में 5वां स्थान हासिल कर लिया है। अभी तक भारत के खाते में 16 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज के साथ कुल 76 मेडल आ चुके हैं। पदकों पर परचम लहराने का सिलसिला अभी जारी है। 5 अक्टूबर तक चलने वाले एशियाई गेम्स में कई खेलों में भारत को गोल्ड समेत कई पदक मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: देश के क्रिकेट लवर्स के लिए गुड न्यूज है। एशियन गेम्स में क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का मंच सज गया है। कल जापान के कुरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया का पाकिस्तान से सामना होगा। दांव पर गोल्ड है और यंगिस्तान हर हाल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीतने को बेताब है। जिस अंदाज में सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रन से हराया है, उससे साफ है कि एक बार फिर टीम इंडिया एशियन गेम्स में गोल्ड जीतेगी। सोने पे सुहागा ये है कि इस बार यंगिस्तान के सामने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीतने का मौका है।
4: एक बार फिर जोश आसमान छुएगा, एक बार फिर जुनून क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर फिर आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। एशियन गेम्स के इस महामुकाबले में गोल्ड दांव पर है, यंगिस्तान तैयार है। जाहिर है ब्लू ब्रिगेड को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं, क्योंकि मुकाबला उस विरोधी से है जिससे न दिल मिलते हैं न हाथ। जिस अंदाज में श्रीलंका को 124 रन से रौंदकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि कल यानी शनिवार को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे पाकिस्तान को जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में टीम इंडिया के तूफान का सामना करना पड़ेगा। फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में है। बैटिंग लाइनअप में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे धुरंधर हैं, तो जसप्रीत बुमराह की वापसी से गेंदबाजी को वही पुरानी धार मिल चुकी है जो किसी भी स्थिति में मैच जिता सकती है। वहीं पाकिस्तान ने बाबर आजम, सलमान अली आगा के बाद कप्तानी के मोर्चे पर अब साहिबजादा फरहान पर दाव चला है। T20 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर एक टीम है और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भी। यूं तो ब्लू ब्रिगेड का सामना 6 नंबर की पाकिस्तान टीम से है, लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लिहाजा टीम इंडिया पूरी तरह मुस्तैद है और पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने को बेताब है। रिकॉर्ड्स के लिहाज से देखा जाए तो T20 में अब तक 17 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, जिनमें से 14 बार भारत जीता है। ये आंकड़े पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी हैं, लेकिन भारतीय टीम साहिबजादा फरहान एंड कंपनी को एशियन गेम्स के मैदान पर भी पानी पिलाने को तैयार है और एक बार फिर ये साबित करने को बेताब है कि क्यों टीम इंडिया वर्ल्ड नंबर वन है। दांव पर गोल्ड है और टीम इंडिया 20वें एशियन गेम्स में भी पिछली बार के एशियन गेम्स की सुनहरी कामयाबी को दोहराना चाहेगी, जब हांगझोउ एशियन गेम्स में उसने गोल्ड जीता था। लेकिन इस बार टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान को चित करने का मौका है। अब मौका है तो टीम इंडिया दस्तूर निभाने को भी तैयार है। पाकिस्तान को पटक कर गोल्ड झटकने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात शक्ति, साहस और संरक्षण की दिव्य प्रतीक मां दुर्गा की। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होने में 10 दिनों से कम का वक्त बचा है। देश भर में मूर्तिकार आदिशक्ति की प्रतिमा को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। बंगाल के शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने के दौर में हैं। यहां अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश की प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं में बंगाल की छाप साफ दिखाई दे रही है।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं TNT स्पेशल। इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने कहा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। लेकिन क्या सत्य कल्पना से दिलचस्प ही होता है? इस सवाल की जड़ में है वो चलन जो हाल ही के दौर में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर नजर आया है। हाल ही के सालों में एक के बाद एक सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में सिनेमा के पर्दे पर आई हैं। कमाल की बात यह है कि दर्शकों का इन्हें दिल खोलकर प्यार भी मिला है। धुरंधर, आर्टिकल 370, उरी, कश्मीर फाइल्स, एक के बाद एक इंसिडेंट्स पर आधारित ये फिल्में पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब कुछ ही दिनों में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम के रूप में, जहां मुंबई हमले की इनसाइड स्टोरी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। आखिर बॉलीवुड में ये चलन कैसे आया और क्यों अब दर्शक असल जिंदगी की घटनाओं को बड़े पर्दे पर जस की तस देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय किसी कल्पना के? चलिए दिखाते हैं आपको।

ये फिल्म काल्पनिक है, इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से आकस्मिक है। लेकिन क्या वाकई सिनेमा की ये घटनाएं आकस्मिक हैं? क्या वाकई ये पात्र, ये कहानी काल्पनिक है? नहीं, क्योंकि वास्तव में ये फिल्म काल्पनिक नहीं है। इसके सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से पूर्व निर्धारित और नियोजित है।

0: सिनेमा हमेशा से कल्पनाओं का संसार रहा है, एक ऐसा जादुई पर्दा जहां रंग है, उमंग है, जिंदगी का सेलिब्रेशन है, जहां बड़े शहरों की चमक है।
1: प्यार करना है, टाइम पास करना है।
2: टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसके भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना।
0: कस्बों गांवों की देसी दमक भी है।
3: समझा, मुझे कुछ काम याद आया।
2: सुनो तो,
0: जहाँ सब कुछ भुला देने वाली मोहब्बत है।
4: अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना।
0: एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है।
1: रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक।
0: जहाँ सुपर हीरो उड़ सकते हैं, एलियंस धरती पर आ सकते हैं।
5: कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए।
0: लेकिन यही सिनेमा जब कल्पनाओं का हाथ छोड़ हकीकत के धरातल पर कदम रखता है तो कुछ अद्भुत होता है।
6: हम आर्टिकल 370 हटाएंगे।
0: जब स्क्रीन पर लिखा आता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो दर्शकों के दिल की धड़कनें बदल जाती
7: है। Let the world also see के इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
0: एक कहानी जो कल्पनाओं के बीच से नहीं उगी, कहानी जो बगले नहीं झांकती, बल्कि परत दर परत खुद को उघाड़ती चलती है और देखने वालों के सामने ठीक वैसी ही उतरती है जैसी वो वास्तविक जीवन में घटित हुई थी। यथार्थ से आंखें मिलाती हुई, अतीत के हर जख्म को हरा करती, हमारी बेबसी को अंडरलाइन करती, हमारी उपलब्धियों का बखान करती।
8: 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते।
0: एक फिल्म जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच को उसी धार, उसी तलखी के साथ, बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, जस का तस हमारे सामने धर देती है, जिसे हमारे आदर्शवाद के सपनों में रंग भरने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बड़े और गहरे सच को ज्यों का त्यों सुनने की सामूहिक असमर्थता और उदासीनता को दरकिनार कर जो हुआ उसे वैसा का वैसा दिखाने के लिए बनाया गया है।
9: कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है।
0: और शायद यही वजह है कि बीते वक्त में असल घटनाओं पर आधारित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया, पर्दे पर प्यार मिला, सोशल मीडिया पर वाहवाही मिली, वर्ड ऑफ माउथ का साथ मिला और ये फिल्में ब्लॉकबस्टर बन गई। यानी जिस सिनेमा का इजाद ही कभी कहानियां कहने के लिए हुआ था, वहां अब हकीकत पर आधारित फिल्मों का बोलबाला है। आखिर क्यों ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्मों को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है?
10: Your Honor, how can he call me that?
11: I mean by the terrorist lawyer.
0: जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों की इसी लिस्ट में अब शामिल होने वाली है प्रहार। ये फिल्म 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले उस घटना की यादें आज भी सबके जहन में हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। अब एक बार फिर ये घटना पर्दे पर आ रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम। दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म मुंबई के गुनहगार अजमल कसाब को अंजाम तक पहुंचाने वाले केस की हर डिटेल को सिनेमा के पर्दे पर खोल कर रख देगी।
13: जिसने आप पर, आपकी माँ पर गोलियां चलाई थी, वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
14: आई उज्ज्वल निकम अस Accused Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death.
15: मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे टॉर्चर करके कबूलनामा साइन करवाया इन्होंने। मैं तो बंबई घूमने आया था जनाब, उधर जू चपाटी पे था तो अमिताभ बच्चन का बंगला देखने चला गया, उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोलता है तू ही है टेररिस्ट। और एक बात साहब, मैं 17 साल का हूँ।
14: बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक ला ही दिया हमने तुझे कसाब।
16: न्याय किताबों में लिखा आसान है, पर अदालत में हर फैसला खून पसीना और साहस मांगता है।
0: यही कहानी है
17: मुंबई पे आतंकी हमला,
16: जिस शहर को डर ने घुटनों पर ला दिया था।
0: यही सार है,
16: उसके लिए एक आदमी अदालत में दीवार बनकर खड़ा हुआ।
0: यही विस्तार है, कसाब को फांसी कैसे दी, कसाब की गिरफ्तारी, सजा का ऐलान और फांसी की खबर टीवी और अखबारों पर खूब देखी और पढ़ी गई थी।
18: लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। That's the foundation of our legal system.
0: लेकिन अब सिनेमा कहानी के भीतर की परतें दिखाएगा। केस के दौरान वकील और कसाब के बीच क्या बात हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी और उस बात के पीछे जो न्याय की कसौटी पर कसे जाते समय हर ओर से कही गई। सच को सिनेमा के पर्दे पर उतारने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे ताजा और जोरदार एंट्री है प्रहार की। वो फिल्म जो 26/11 हमलों की भयावहता और घटनाक्रम को दिखाने से दो कदम आगे जाकर मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब के फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी पर्दे पर लेकर आ रही है। केस किसने लड़ा, कैसे लड़ा, कोर्ट में क्या हुआ, क्या इंसाफ मिलने में वाकई देर हुई थी या नहीं हुई देर, और हुई तो क्यों, किसकी वजह से, इन सारे सवालों का जवाब देने 16 अक्टूबर को ये फिल्म पर्दे पर आ रही है।
14: हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था। इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
0: इस फिल्म का नाता हिंदुस्तान से है, हर एक हिंदुस्तानी से है। घटना करीब 18 साल पुरानी है लेकिन आज भी हर भारतवासी के जेहन में ताजा है। जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था, लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने पूरे 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी को मानो बंधक बना लिया था। भारत के जांबाज जवानों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बस ये फिल्म समझिए उसी के बाद से शुरू होती है। कहानी वही है लेकिन एक नए अंदाज में। नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम। उज्जवल निकम वही वकील हैं जिन्होंने कसब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। उन्हीं को केंद्र में रखकर उनके जरिए न्याय की इस दास्तां को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है।
19: हमें इसकी इजाजत नहीं देता,
20: हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने।
14: ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा। ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाएगा।
0: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है, इस बार पर्दे पर सिर्फ गोली बंदूकें और कत्लोगारत नहीं दिखाया जाएगा बल्कि सबूत और सच्चाई को जरिया बनाकर उस खौफनाक मंजर को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके आकाओं को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा, असल जिंदगी में जो हुआ उसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। और इस केस को अंजाम तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम का किरदार फिल्म में राजकुमार राव ने निभाया है।
14: ये केस, ये जो प्रहार पिक्चर है, ये मेनली 26/11 का हमला और थोड़ा अंश 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का है, लेकिन ज्यादातर 26/11 का है। एक बड़ी विशेषता ये फिल्म में, इस फिल्म में असली नाम का इस्तेमाल यूज किए गए हैं। मेरे उज्जवल निकम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। मेरे मिसेज का किरदार है ज्योति, वो वामिका ने निभाया है। ये मेरे लड़के का नाम अनिकेत, वहां भी उसका किरदार है। शर्वरी, उनका भी किरदार है। तो और ये इसलिए उन्होंने ओरिजिनल नाम रखे ताकि इसमें किसी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, एक बड़ी अहम जाए।
13: जो केस
0: ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बंदूक के बजाय संविधान और सबूतों की ताकत से आतंकवादियों की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
13: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
0: और जो वकील इस केस के केंद्र में थे उन्हीं के कानूनी संघर्षों और जीवन की घटनाओं को राजकुमार राव पर्दे पर निभाने वाले हैं।
10: तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म हर क्राइम हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
17: वो सर हैं, वो ये फिल्म देखेंगे, उनकी फैमिली है वो ये फिल्म देखेंगी और बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्ज्वल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफ कोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: कोर्ट में आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खैर के साथ राजकुमार राव का टशन और टकराव फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। तो इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए इंडिया आए डेलीगेशन को लीड कर रहे जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच कोर्ट में हुई बहस भी जोरदार ढंग से पेश की गई है।
21: सारे जो एक्टर्स है जिस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब शूटिंग चलती थी तो कभी कभी मैं खुद शूटिंग के दिनों वहां जाता था, और पर्टिकुलरली जब ये कोर्ट सीन्स शूट हुए जहां पापा का फाइनल आर्गुमेंट हुआ उस समय मैं मौजूद था, मतलब मैं 2008 में भी मौजूद था और इस शूटिंग के समय भी मौजूद था। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने निकम जी का कैरेक्टर पकड़ा है तो बहुत ही लाजवाब है, और मैं चाहता हूं कि लोगों को जब ये 16 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आएगी।
13: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ।
0: फिल्म में उज्जवल निकम की पत्नी का रोल वामिका गब्बी निभा रही हैं। इस हफ्ते मुंबई में प्रहार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया जिसमें एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर अविनाश निकम, प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ खुद उज्जवल निकम भी शामिल हुए। तो वही प्रहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
22: उज्जवल निकम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल किसी आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो उन्होंने उसके पीछे की डिजाइन, उसके पीछे की कॉन्स्पिरसी, इसको दुनिया के सामने उजागर किया, और ये जघन्य अपराध करने वाली इस आतंकवाद को पूरे तरीके से मदद करने वाली जो पाकिस्तान की सोच थी, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करने का काम ये उज्जवल निकम जी ने करके दिखाया।
23: इस बार अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को
0: बताया जा रहा है कि न्याय के लिए उज्जवल निकम की प्रतिबद्धता और जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी के साथ साथ उन तमाम लोगों के पक्ष को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान अपनी जान की बाजी लगाई थी।
24: जो हमारे जहाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान दी, तुकाराम मुंडे जी हो, करकरे जी हो, कामटे जी हो, साळसकर और ऐसे कई लोग जो ये हमले में 167 लोग मारे गए थे, आज मैं उनको पूरा तरह से न्याय मिला ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन विशेषता ये कि हमारे ये संविधान की जीत है। ये उज्जवल निकम तो एक चेहरा था इस फिल्म के माध्यम का, लेकिन असली मेहनत हमारे पुलिस कर्मियों ने, जिन्होंने हमारे साथ दी, उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए।
25: क्या आप इस केस को सही अंजाम दे पाएंगे?
10: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म हर क्राइम हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
0: इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए है प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का ट्रेलर। सोशल मीडिया पर इसे रिस्पांस भी खूब मिल रहा है। उम्मीद है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म भी ट्रेलर जितनी ही जोरदार और असरदार होगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है कि यह फिल्म उज्जवल निकम की अनसुनी कहानी को सामने लाएगी, मतलब मुंबई अटैक के गुनहगारों और उनके आकाओं की कारगुजारी को उज्जवल निकम ने कैसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। यह फिल्म उन तमाम अनसुनी दास्तानों को सामने लाएगी। फिल्म के रिलीज से पहले गुड न्यूज टुडे की टीम ने उज्जवल निकम से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में इतने साल गुजर जाने के बाद भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। चलिए सुन लेते हैं आखिर क्या कह रहे हैं वो वकील जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाने की लड़ाई लड़ी थी।
1: जब मेकर्स आए होंगे तो आप लोगों से पूछा ही होगा कि अरे उज्जवल निकम तो बहुत बड़ा नाम है और ज्यादातर सर आपको लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल में सुना है, लेकिन जिस तरीके से आप अदालत रूम में जाकर के बहस करते हैं और थोड़ा सा अपने अंदाज में दूसरों को प्रेशर दे देते हैं, पसीने निकल आते हैं, वो चीजें अब फिल्मों द्वारा होगी। तो राजकुमार राव ही क्यों सर, आपको क्यों लगा कि यही?
24: देखिये, मैं अविनाश अरुण को इसका क्रेडिट देता हूँ। 3-4 साल पहले अविनाश अरुण और मैडॉक के जब मुझे मिले थे तो थोड़ा मैं साशंक था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि राजकुमार राव आपका कैरेक्टर, मैं भली भांति ज्यादा पिक्चर नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने राजकुमार राव का नाम सुना तो पहले मेरे जहन में तो यह सवाल आया था कि क्या राजकुमार जी मेरा कैरेक्टर निभा कर सकते हैं। और असल में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और फिल्म तो बन रही थी उस टाइम में, फिर बाद में भी फिल्म भी मैंने देखी थोड़ी, तो आई वॉज शॉक्ड। राजकुमार राव इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, सही ढंग में वो एक्टर है। और जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में, वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ, कॉपी मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे कैरेक्टर में चले गए, इसलिए चले गए कि जिस तरह से संवाद करना, जिस तरह बातचीत करना, जिस तरह से कोर्ट में एक यूनिफॉर्म वॉइस में अपना कंटेंशन सबमिशन रखना, पूरी तरह से अच्छा उन्होंने निभाया।
1: मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मेरी तरह बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे, जो अदालत की सीन से 26/11 और जो कसाब के साथ में आपकी बातचीत वगैरह हुई है, ये बाहर लाने की ये ठीक समय है? आपको लगता है कि लोगों को ये बातें जाननी चाहिए कि अदालत में किस तरीके से बहस होती है, कसाब ने क्या कुछ बोला है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी?
24: नहीं देखिये, ये ठीक होना ना ठीक होना ये इसमें कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 3 दिन अटैक चल रहा था, उसके लाइव तस्वीरें आ रहे थे पेपर में, कसाब का चेहरा आ रहा था, फिर भी उसको जल्दी में फांसी क्यों नहीं है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
1: अच्छा, प्रहार का ट्रेलर तो मैंने बताया 3 बार मैंने देखा, क्या आप भी दिखेंगे इस पूरे फिल्म में किसी एक सीन में, आप और सामने राजकुमार राव को मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा होने वाला है?
24: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर है, हम तो एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को न्याय दिया है, ऐसा मैं कहूंगा।
1: सर, जो आपका किरदार है इस दुनिया में और उस पर अब फिल्म भी बन रही है, मतलब एक स्पेशल है, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आप पर फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्मों से कितना जुड़े हैं, पसंद है फिल्में देखते हैं आप?
24: मैं बहुत कम फिल्म देखता हूं, ये तो बात है।
1: कौन सी देखी थी सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी
24: थी? कौन सी देखी थी मैंने फिल्म? तो
1: मतलब नहीं देखते, मतलब ना
24: देखा है, पर इतना मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा, उसी वक्त
2: थिएटर्स में ज्यादा जाते नहीं है, जो जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी पे जो लगती है कभी कभार देख लेते हैं हम सब मिलकर के।
1: अच्छा, नहीं 26/11 पे सर काफी फिल्में बनी हैं, काफी वेब सीरीज बने हैं, आपने कभी ट्राई करा कि नहीं देख लूं भाई कुछ?
24: नहीं, मैंने वो नहीं देखी है। अच्छा। क्योंकि ये देखो, ये फिल्म ऐसी है प्रहार, ये रियल उन्होंने इंसिडेंट फैक्ट्स बताए जो मेरे लाइफ में घटना हुई है, चाहे मैं 26/11 के हमले के दिन कहां था, चाहे मेरा अनिकेत तो छोटा था उस वक्त, उसका मेरा बर्ताव घर में कैसा, ज्योति मिसेस जो है वो किस पे थी, क्या थी लड़की शर्वरी, इनका ये दिखाया है, ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा, ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ कई बार ऐसा है लोगों को रियल फैक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी रहता है, क्या हुआ है इस केस।
1: नहीं होते अगर वकील उज्ज्वल निकम तो क्या होते?
24: नहीं होते वकील तो बड़ा सवाल, मुश्किल है ये कहना, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा मैं डॉक्टर बनना चाहता था।
1: अच्छा।
24: पिताजी की माँ की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा वकील बनना है। फिर इतना ही कहूंगा मैं कि बदले तुमने रंग बहुत बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
1: क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे ही एक से बढ़कर एक डायलॉग हमने ट्रेलर में भी देखे सर। एक और था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि मैं हनुमान जयंती के दिन ही पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी की कसम सर। वो डायलॉग सिर्फ राजकुमार राव ने कहा है, क्या आप भी कह सकते हैं? आपने सुना देखा क्या कहेंगे?
24: देखिए उस वक्त जो डायलॉग अब तक मुझे याद है पूरी तरह से कि थोड़ा फिल्मी डायलॉग है। कसाब को वकील ऐसी बात करता है तो उस वक्त मैं था, अरे मेरा जन्म भी हनुमान जयंती का है, मैं पूरा दिल फाके दिखा दूंगा। और दूसरा एक था उसका, आई उज्ज्वल निकम अस अक्यूज उज्ज्वल अमीर कसाब शुड बी हैंग टिल हिज डेथ। ये जो है जिस अंदाज में मैंने कोर्ट में बयान किया उसी अंदाज में राजकुमार राव ने ये फिल्में देखी।
1: बहुत बधाई फिर से एक बार आपको और आपकी पूरी टीम को। तो 16 अक्टूबर को प्रहार देखने के लिए तैयार हो जाइए, पूरे देश भर में फिल्म ये रिलीज हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
12: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: चलिए अब बात फैशन की कर लेते हैं। पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है। लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट ने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया है। सेंट लॉरेंट ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड गोल्ड लुक भी क्रिएट किया है, जिसे सबका दिल जीत लिया है।

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के शानदार डिजाइन्स की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर्ड टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेट स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे हो

0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में शुक्रवार को रहा भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्रि जोरदार तैयारी। कुमारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यहीं से सच और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पहाड़ के ढहने का ये भयावह दृश्य नेपाल का है। क्या है इस वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: तो सबसे पहले बात वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जमुई नाबालिग छात्रा बदसलूकी केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया। वीडियो में 2 घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। यह वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इस दावे की पड़ताल की।
3: सितंबर को बिहार के जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई बदसलूकी मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 2 मुख्य अभियुक्तों नंदन यादव और हरिराम यादव की गिरफ्तारी 22 सितंबर को एनकाउंटर के बाद हुई थी। इसमें नंदन यादव को गोली लगी थी। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है जिसमें 2 घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि जमुई मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। एक यूजर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, जमुई में लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में शामिल 2 और अपराधियों का पुलिस एनकाउंटर। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग सम्राट सरकार और बिहार पुलिस की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: बिहार के जमुई जिले में 19 सितंबर को एक नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई थी जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सम्राट सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया जबकि एक और आरोपी हरिराम यादव भागने के दौरान घायल हो गया। हाल ही में 2 और आरोपियों सौरभ राम और छोटू राम की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन सबके बीच अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। खबर ये फैलाई जा रही है कि जमुई कांड में शामिल 2 और आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। तेजी से ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, हमारा भी ध्यान इस वीडियो की तरफ गया और हमने इसकी पड़ताल शुरू की। किसी खेत का ये वीडियो लग रहा है जहां पर पुलिस की गिरफ्त में दो लोग नजर आ रहे हैं और दोनों के दाएं पैर में पट्टी बंधी हुई है। वो बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि पुलिस के साथ इन दोनों लोगों का मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर के बाद इन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैच पर भी गया। जब हमने इसे जूम करके बारीक नजरों से देखा तो इस पर यूपी पुलिस लिखा हुआ था। अब ये देखकर हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने वायरल वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। इसमें पुलिसकर्मी जिस लहजे में बातचीत कर रहे हैं इस वक्त इस तरह की भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है। बता दें कि जमुई कांड में मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके सहयोगी हरेराम यादव को एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया था, जिसके तुरंत बाद इन दोनों को अस्पताल में ले जाया गया और इसके बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस दौरान ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि जमुई पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इस वीडियो के साथ ये खबर मुख्यधारा की मीडिया में क्यों नजर नहीं आ रही है। जमुई कांड को लेकर पुलिस लगातार मीडिया को अपडेट दे रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अगर मुठभेड़ का दावा सच्चा है तो फिर इसमें यूपी पुलिस क्या कर रही है।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगा वैसे ही लोग इस वीडियो के जरिए एक राय बनाने लगे। लेकिन हमें इस वीडियो का सच झूठ जानना था, लिहाजा हमने वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 7 सितंबर 2026 को छपी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल हो रहे वीडियो जैसी ही एक तस्वीर थी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छपार थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 14 वर्षीय लड़की के साथ हुए कथित दुराचार के मामले में दो आरोपियों वालीन और सलमान को गिरफ्तार किया है। उनके पैर में गोली लगी है। मामले में एक अन्य आरोपी समीर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सर्च के दौरान ही हमें 6 सितंबर 2026 को छपी एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि मुजफ्फरनगर के रेता नंगला गांव के जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई जिसमें दो आरोपी घायल हो गए। बता दें कि तीन आरोपियों ने जन्माष्टमी पर घर से निकली लड़की को कथित तौर पर अगवा कर लिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि जमुई केस में दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दो और आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर का दावा गलत है। वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात करेंगे उस खबर की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ये नेपाल की खबर है। सबसे शॉकिंग वीडियो है। पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, चंद सेकंड में पूरी सड़क पर तबाही मचाती है। इस वीडियो पर भी हमने पड़ताल की।
3: लगातार बारिश के कारण नेपाल में एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों से बाढ़ और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल में इस वक्त बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। अब इसी संदर्भ में बहुमंजिला इमारतों के बीच पहाड़ से भारी मात्रा में अचानक मलबा गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये दृश्य नेपाल में पहाड़ गिरने की घटना का है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, नेपाल में पहाड़ के ढहने का भयावह दृश्य। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। लोग नेपाल के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं।
2: अगस्त की तबाही से नेपाल अभी तक उबर भी नहीं पाया कि एक बार फिर से हालात बद से बदतर होने शुरू हो गए। नेपाल के कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस बीच ये वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। वीडियो में पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, फिर चंद सेकंड में ही सड़क पर तबाही मचाती है। दावा यह किया जाता है कि वीडियो नेपाल का है और इस वीडियो पर फैक्ट चेक टीम ने भी नजर डाली। हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि अगस्त के बाद अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में बाढ़ बारिश के प्रहार से एक बार फिर से नेपाल में भारी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन हमें ये जानना था कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का ही है। इसके लिए हमने वीडियो को देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिसके बाद हमें इस पर शक हुआ। हमें

0: वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की कोई हलचल या उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो बड़े आराम से इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि सामने से मौत आ रही है, लेकिन लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बाढ़ और बारिश की वजह से इस बार नेपाल मुश्किल में है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेपाल से जुड़ी हर खबर दिखा रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखाया जा रहा है? हमारा तीसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा?
1: नेपाल बाढ़ के नाम से वायरल हो रहा ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सोशल मीडिया पर इसे लगातार फैलाया जा रहा था, लिहाजा सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। नेपाल को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। फैक्ट चेक टीम अब इस वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो को देखने से हमें इसमें कई खामियां नजर आईं। उदाहरण के लिए, ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की हलचल या प्रतिक्रिया नजर नहीं आती। ये देखकर हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके बाद हमने इस वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.2% संभावना के साथ एआई निर्मित बताया। नेपाल में पहाड़ ढहने का बताकर वायरल हुए वीडियो का सच जानने के लिए हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल 0GPT पर भी जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को उच्च संभावित एआई जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और आई डिटेक्टर प्लेटफॉर्म एआई और नॉट ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को उच्च संभावना के साथ एआई जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि नेपाल में पहाड़ ढहने के दावे से वायरल हो रहा ये वीडियो एआई जनरेटेड है। इसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
4: ये दिल छू लेने वाला पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक लड़की भोजन के दौरान अपने पिता की हर हरकत को बहुत ध्यान से देखकर बिल्कुल वैसे ही पूजा करती और अनुशासन अपनाती नजर आ रही है। लोग इस वीडियो को बड़ों से सीख की आदत और भारतीय संस्कृति की संस्कारों से जोड़कर काफी पसंद कर रहे हैं। न कोई बड़ा स्टूडियो, न महंगे माइक, न लाइट कैमरे का झंझट, बस पीछे अरुणाचल के पहाड़, चारों तरफ हरियाली और सामने की तीनों बहने। ऐसी सादगी में जब इनकी सुरीली आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे पहाड़ भी गाना सुन रहे हैं। इनके गाने का अंदाज बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। सिंका, नगमजन और लिली अरुणाचल के लॉन्गडिंग जिले के एक छोटे से गांव बानू की रहने वाली है। गांव की उसी कच्ची नेचुरल लोकेशन पर खड़े होकर इन्होंने ये गाना गाया है, और इस सादगी का ही जादू है कि ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह से फैल गया है। शहर हो या गांव, अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको पहचान मिलने से कोई नहीं।

0: रोक सकता। इन दिनों बिहार की एक लड़की का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो गांव के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ाती नजर आ रही है। जिस आत्मविश्वास के साथ वो अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का उच्चारण कर रही है, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो सिर्फ शब्द बोलकर आगे नहीं बढ़ जाती है, बल्कि बच्चों को उसका सही उच्चारण भी समझाती है। उसका पढ़ाने का अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वो बिना किसी बड़े क्लासरूम, प्रोजेक्टर या महंगे संसाधनों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रही है।
1: ये मुझे बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है, ये मुझे ढूंढती रहती है अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो।
0: लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल, मतलब कई बार जीवन में हुई घटनाएं, रिश्ते और अनुभव अक्सर बदलाव के साथ वही लौट आते हैं जहां वो शुरू हुए हैं।
1: मेरी दादी, जब भी मैं खा रही हूँ, सो रही हूँ, बैठ रही उठ रही हूँ, मेरे को मेरी दादी या मम्मी में से कोई चाहिए। अगर बाई चांस वो मुझसे थोड़ा भी दर दर हो जाते ना, तो मैं चिल्लाने लगती हूँ, रोने लगती हूँ, ऐसी थी मैं।
0: इंटरनेट पर वायरल दादी पोती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे सुनकर लोग अपने दादा दादी को भी याद कर रहे हैं।
1: जब तक कि सोनी जाती, फिर मैं उठ जाती हूँ और अपना काम करती हूँ। अगर ये मुझे देख लेती है कि मैं उठ गई हूँ, तो फिर से मुझे ढूंढने चली जाती है कि मैं कहाँ गई। मेरे बच्ची वाला जो वर्जन है वो एग्जैक्ट मेरी दादी है। आज बूढ़े होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, दैट इज 100% ट्रुथ।
0: एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने माता पिता को स्टेशन पर विदा करते हुए जो पल कैद किया, उसने हजारों लोगों के दिल को छू लिया है। खुशी ट्रेन की खिड़की से अपनी माँ और पिता को देख रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े माता पिता मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं, पिता भी मोबाइल निकालकर बेटी का वीडियो या फोटो ले रहे हैं। दोनों तरफ से यादों को संजोने की कोशिश साफ दिख रही है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दूर बढ़ जाती है, लेकिन माता पिता तब तक हाथ हिलाते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं जब तक कि बेटी की झलक गायब नहीं हो जाती। ये दृश्य कई लोगों को अपने माता पिता की याद दिला रहा है। इस दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लैब ढोल ताशे बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है, एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है, तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात शक्ति, साहस और संरक्षण की दिव्य प्रतीक मां दुर्गा की। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होने में 10 दिनों से कम का वक्त बचा है। देश भर में मूर्तिकार आदिशक्ति की प्रतिमा को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। बंगाल के शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने के दौर में है। यहां अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश की प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं में बंगाल की छाप साफ दिखाई दे रही है।

0: भवानी, चंडिका, शेरावाली, जगदम्बा और महिषासुर मर्दिनी विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा के किसी भी नाम का आह्वान करें तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आदि शक्ति की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। नौ दिनों के बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 11 अक्टूबर से हर तरफ जय माता दी के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होने वाला है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। झांसी में बंगाली मूल का एक परिवार पिछले 34 साल से हर साल माँ की प्रतिमाओं को साकार करने की साधना से जुड़ा है। 4 महीने से ये बंगाली परिवार माँ के अलग अलग स्वरूपों को बेहद कलात्मक तरीके से सजीव करता है। 122 दिनों के अंतराल में करीब 160 प्रतिमाओं को अलग अलग रूपों को भव्य और सुंदर चित्रण किया जाता है। झांसी के इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में बंगाल की कला, मिट्टी और पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। आधुनिक थीम वाली मूर्तियों के इस दौर में भी बंगाल की पारंपरिक साका और डाकर साज शैली यानी विशेष मुकुट, चौड़ी आंखें और भावपूर्ण चेहरे वाली माँ दुर्गा की मूर्तियों की भारी डिमांड होती है।
1: देखो, मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अभी जो नया नया डिजाइन ये फलाना बना दो, ये बना दो, वो बेकार है। एक दिन चलेगी, दो दिन चलेगी, चार उसके बाद नहीं चलेगी। पूरा कलकत्ता हमारा सिंगर से कपड़ा से सब कलकत्ता का है। शेर का हम लोग खाल चलाता है, यहाँ पर मिट्टी लगा देगा। हम लोग ऐसे काम नहीं करता। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
2: लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार करते हैं?
1: हमारा कितना है, 150-160 ऐसा ही होगा। 200 नहीं आएगा, ये हम ऐसे ज्यादा बनाएंगे नहीं। गिराक हमारे पास बहुत है, हम बनाएंगे नहीं, हिसाब से नहीं जाएगा बाहर। अब लोकल वाला जो लोग बनाता है,
2: आपका केवल बंगाली पैटर्न है?
1: हमारा बंगाली पैटर्न है, कलकत्ता में पिक किया।
0: एक एक प्रतिमा को तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले भूसे से ढांचा तैयार किया जाता है, इसके बाद मिट्टी की परतें चढ़ाकर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। बारीक कारीगरी के बाद रंग और फिर अंतिम चरण में कोलकाता से लाए गए वस्त्र, मुकुट और आभूषण लगाए जाते हैं। झांसी की इन दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने के दौरान पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जल, जमीन और वायु में प्रदूषण न फैले, इसके लिए प्रतिमाओं के निर्माण में POP का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्माण में अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोलकाता से लाई जाने वाली गंगा नदी की मिट्टी के साथ स्थानीय तौर पर मिलने वाली काली और लाल मिट्टी भी शामिल है। दुर्गा प्रतिमाओं को रंगने के लिए पौधों, फूलों, सब्जियों, फलों के छिलकों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।
1: मिट्टी हमारा तो कलकत्ते से आता है, 3-4 प्रकार का मिट्टी है, मिक्स करके काम करना पड़ता है। हमारा जो मिट्टी है कोई नुकसान वाली काम नहीं है। हमारा गंगा जी का मिट्टी आधा मिट्टी गंगा जी का है, जो वहाँ कदम पानी के अंदर उठाना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है, तब वहाँ कलकत्ता आता है। कलकत्ता से कलर हमारा नॉर्मल कलर है, ऑयल पेंट कलर नहीं है।
0: साल से इस कार्यशाला में बनने वाली माँ दुर्गा की 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों से भी आती है।
3: इस बार 200 मूर्ति बनाए, ठीक है, लगभग 90% तो बुक ही हो चुका है, अभी 10% चल रहा है, अभी 10 दिन बचा है अभी तक।
2: कितने लोग लगते हैं और कितने दिन से आप काम चालू कर रहे हैं?
3: जब क्या है मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगता है, क्योंकि वो घास बांधना, मिट्टी लगाना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम रहता है, इसीलिए उस टाइम 10-12 आदमी रहता है। इस टाइम जो सिंगर के टाइम पे 8-10 आदमी है।
0: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा के नौ रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए दिल्ली में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्यता के साथ विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे माँ के आगमन से पहले ही शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के मन में उत्साह नजर आता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चीन में इन दिनों संस्कृति और जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन हो या रात, देश के अलग अलग हिस्सों में त्यौहार सी रौनक है और इसकी वजह है चीन का राष्ट्रीय दिवस, जो वहां के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जिससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है।

0: चीन में इन दिनों उत्सवी माहौल है। एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियों को बनाने के लिए देश भर में खास कल्चरल टूरिज्म इवेंट्स शुरू किए गए हैं। इनमें पुरानी वास्तुकला, लाइट शो, पारंपरिक लालटेन और त्योहारों वाली लाल सजावट का मेल देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को राष्ट्रीय झंडे और फूलों से सजाया गया है और रात में शानदार आतिशबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का शो हुआ। 23 मिनट के इस शो को देखने के लिए शहर के वाटर फ्रंट पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। इन रंग बिरंगी रोशनियों ने हार्बर के आसमान को जगमगा दिया। लोग आतिशबाजी से रंगीन आसमान की तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखे। इसमें स्थानीय लोगों के साथ विदेशों से आए पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के तांगजुए गांव में रोशनी वाली बड़ी बड़ी मछली के आकार की लालटेन का जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस गांव के ऐतिहासिक इलाकों से गुजरा। ये जुलूस गांव की सांस्कृतिक विरासत और रात के समय होने वाले कार्यक्रमों का एक अनूठा संगम है। चीन में एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियां दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इस समय को जिन्हें गोल्डन वीक कहते हैं, इस दौरान बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सैलानी चीन की यात्रा पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
0: कुछ समाज की सोच दिखाती है।
2: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशिया खेलों में शुक्रवार को रहा भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्रि जोरदार तैयारी। कुमारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं TNT स्पेशल। इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने कहा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। लेकिन क्या सत्य? कल्पना से दिलचस्प ही होता है। इस सवाल की जड़ में है वो चलन जो हाल ही के दौर में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर नजर आया है। हाल ही के सालों में एक के बाद एक सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में सिनेमा के पर्दे पर आई हैं। कमाल की बात यह है कि दर्शकों का इन्हें दिल खोलकर प्यार भी मिला है। धुरंधर, आर्टिकल 370, उरी, कश्मीर फाइल्स, एक के बाद एक इंसिडेंट्स पर आधारित ये फिल्में पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब कुछ ही दिनों में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम के रूप में, जहां मुंबई हमले की इनसाइड स्टोरी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। आखिर बॉलीवुड में ये चलन कैसे आया और क्यों अब दर्शक असल जिंदगी की घटनाओं को बड़े पर्दे पर जस की तस देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय किसी कल्पना के, चलिए दिखाते हैं आपको।

ये फिल्म काल्पनिक है, इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से आकस्मिक है। लेकिन क्या वाकई सिनेमा की ये घटनाएं आकस्मिक हैं? क्या वाकई ये पात्र, ये कहानी काल्पनिक है? नहीं, क्योंकि वास्तव में ये फिल्म काल्पनिक नहीं है। इसके सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से पूर्व निर्धारित और नियोजित है।

0: सिनेमा हमेशा से कल्पनाओं का संसार रहा है, एक ऐसा जादुई पर्दा जहां रंग है, उमंग है, जिंदगी का सेलिब्रेशन है, जहां बड़े शहरों की चमक है।
1: प्यार करना है, टाइम पास करना है।
2: टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसके भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना।
0: कस्बों गांवों की देसी दमक भी है।
3: समझा, मुझे कुछ काम याद आया।
2: सुनो तो,
0: जहां सब कुछ भुला देने वाली मोहब्बत है।
4: अपने प्यार के लिए ना खुद को खत्म मत कर लेना।
0: एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है।
5: रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक।
0: जहां सुपर हीरो उड़ सकते हैं, एलियंस धरती पर आ सकते हैं।
6: कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए।
0: लेकिन यही सिनेमा जब कल्पनाओं का हाथ छोड़ हकीकत के धरातल पर कदम रखता है तो कुछ अद्भुत होता है।
7: हम आर्टिकल 370 हटाएंगे।
0: जब स्क्रीन पर लिखा आता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो दर्शकों के दिल की धड़कनें बदल जाती
8: है। The world also see के इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, और उनके यहाँ पर तो आतंकवादी ही संविधान है।
0: एक कहानी जो कल्पनाओं के बीच से नहीं उगी, कहानी जो बगले नहीं झांकती, बल्कि परत दर परत खुद को उघाड़ती चलती है और देखने वालों के सामने ठीक वैसी ही उतरती है जैसी वो वास्तविक जीवन में घटित हुई थी। यथार्थ से आंखें मिलाती हुई, अतीत के हर जख्म को हरा करती, हमारी बेबसी को अंडरलाइन करती, हमारी उपलब्धियों का बखान करती।
9: 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते।
0: एक फिल्म जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच को उसी धार, उसी तलखी के साथ, बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, जस का तस हमारे सामने धर देती है, जिसे हमारे आदर्शवाद के सपनों में रंग भरने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बड़े और गहरे सच को ज्यों का त्यों सुनने की सामूहिक असमर्थता और उदासीनता को दरकिनार कर जो हुआ उसे वैसा का वैसा दिखाने के लिए बनाया गया है।
10: कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है।
0: और शायद यही वजह है कि बीते वक्त में असल घटनाओं पर आधारित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया, पर्दे पर प्यार मिला, सोशल मीडिया पर वाहवाही मिली, वर्ड ऑफ माउथ का साथ मिला और ये फिल्में ब्लॉकबस्टर बन गईं। यानी जिस सिनेमा का इजाद ही कभी कहानियां कहने के लिए हुआ था, वहां अब हकीकत पर आधारित फिल्मों का बोलबाला है। आखिर क्यों ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्मों को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है?
11: Your Honor, how can he call me that?
12: I mean by the terrorist lawyer.
0: जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
13: तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों की इसी लिस्ट में अब शामिल होने वाली है प्रहार। ये फिल्म 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले उस घटना की यादें आज भी सबके जहन में हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। अब एक बार फिर ये घटना पर्दे पर आ रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम। दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म मुंबई के गुनहगार अजमल कसाब को अंजाम तक पहुंचाने वाले केस की हर डिटेल को सिनेमा के पर्दे पर खोलकर रख देगी।
14: जिसने आप पर, आपकी मां पर गोलियां चलाई थी, वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
15: आई उज्ज्वल निकम अस Accused Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death.
16: मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे टॉर्चर करके कबूलनामा साइन करवाया इन्होंने। मैं तो बम्बई घूमने आया था जनाब, उधर जूहू चौपाटी पे था तो अमिताभ बच्चन का बंगला देखने चला गया, उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोलता है तू ही है टेररिस्ट। और एक बात साहब, मैं 17 साल का हूँ।
15: बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
17: न्याय किताबों में लिखा आसान है, पर अदालत में हर फैसला खून पसीना और साहस मांगता है।
0: यही कहानी है मुंबई पे आतंकी हमला,
17: जिस शहर को डर ने घुटनों पर ला दिया था।
0: यही सार है,
17: उसके लिए एक आदमी अदालत में दीवार बनकर खड़ा हुआ।
0: यही विस्तार है, कसाब को फांसी कैसे दी, कसाब की गिरफ्तारी, सजा का ऐलान और फांसी की खबर टीवी और अखबारों पर खूब देखी और पढ़ी गई थी।
18: लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। That's the foundation of our legal system.
0: लेकिन अब सिनेमा कहानी के भीतर की परतें दिखाएगा। केस के दौरान वकील और कसाब के बीच क्या बात हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी, और उस बात के पीछे जो न्याय की कसौटी पर कसे जाते समय हर ओर से कही गई। सच को सिनेमा के पर्दे पर उतारने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे ताजा और जोरदार एंट्री है प्रहार की। वो फिल्म जो 26/11 हमलों की भयावहता और घटनाक्रम को दिखाने से दो कदम आगे जाकर मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब के फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी पर्दे पर लेकर आ रही है। केस किसने लड़ा, कैसे लड़ा, कोर्ट में क्या हुआ, क्या इंसाफ मिलने में वाकई देर हुई थी या नहीं हुई देर, और हुई तो क्यों, किसकी वजह से, इन सारे सवालों का जवाब देने 16 अक्टूबर को ये फिल्म पर्दे पर आ रही है।
15: हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो यह भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था। इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
0: इस फिल्म का नाता हिंदुस्तान से है, हर एक हिंदुस्तानी से है। घटना करीब 18 साल पुरानी है लेकिन आज भी हर भारतवासी के जेहन में ताजा है। जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था, लश्करे तैयबा के 10 आतंकियों ने पूरे 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी को मानो बंधक बना लिया था, भारत के जांबाज जवानों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बस ये फिल्म समझिए उसी के बाद से शुरू होती है। कहानी वही है लेकिन एक नए अंदाज में, नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम। उज्जवल निकम वही वकील हैं जिन्होंने कसब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। उन्हीं को केंद्र में रखकर उनके जरिए न्याय की इस दास्तां को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है।
19: हमें इसकी इजाजत नहीं देता,
20: हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने।
15: ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा। ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया। नवंबर को जब
0: CST, जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है, इस बार पर्दे पर सिर्फ गोली बंदूकें और कत्ल वगारत नहीं दिखाया जाएगा बल्कि सबूत और सच्चाई को जरिया बनाकर उस खौफनाक मंजर को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके आगाहों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा, असल जिंदगी में जो हुआ उसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। और इस केस को अंजाम तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम का किरदार फिल्म में राजकुमार राव ने निभाया है।
15: ये केस, ये जो प्रहार पिक्चर है, ये मेनली 26/11 का हमला और थोड़ा अंश 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का है, लेकिन ज्यादातर 26/11 का है। एक बड़ी विशेषता ये फिल्म है, इस फिल्म में असली नाम का इस्तेमाल यूज किए गए हैं। मुझे उज्जवल निकम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। मेरे मिसेस का किरदार है ज्योति, वो वामिका ने निभाया है। ये मेरे लड़के का नाम अनिकेत, वहां भी उसका किरदार है। शर्वरी, उनका भी किरदार है। तो और ये इसलिए उन्होंने ओरिजिनल नाम रखे ताकि इसमें किसी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन नहीं, एक बड़ी ऐप जा जाए।
14: मुझे केस।
0: ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बंदूक के बजाय संविधान और सबूतों की ताकत से आतंकवादियों की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
14: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
0: और जो वकील इस केस के केंद्र में थे उन्हीं के कानूनी संघर्षों और जीवन की घटनाओं को राजकुमार राव पर्दे पर निभाने वाले हैं।
1: तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न कर
21: दूं। सर हैं वो ये फिल्म देखेंगे, उनकी फैमिली है वो ये फिल्म देखेंगी और बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्ज्वल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफ कोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: कोर्ट में आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खैर के साथ राजकुमार राव का टशन और टकराव फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। तो इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए इंडिया आए डेलीगेशन को लीड कर रहे जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच कोर्ट में हुई बहस भी जोरदार ढंग से पेश की गई है।
22: सारे जो एक्टर्स है जिस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब शूटिंग चलती थी तो कभी कभी मैं खुद शूटिंग के दिनों वहां जाता था, और पर्टिकुलरली जब ये कोर्ट सीन्स शूट हुए जहां पापा का फाइनल आर्गुमेंट हुआ उस समय मैं मौजूद था, मतलब मैं 2008 में भी मौजूद था और इस शूटिंग के समय भी मौजूद था। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने निकम जी का कैरेक्टर पकड़ा है तो बहुत ही लाजवाब है, और मैं चाहता हूं कि लोगों को जब ये 16 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आएगी।
14: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ।
0: फिल्म में उज्जवल निकम की पत्नी का रोल वामिका गब्बी निभा रही हैं। इस हफ्ते मुंबई में प्रहार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया जिसमें एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर अविनाश निकम, प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ खुद उज्जवल निकम भी शामिल हुए। तो वही प्रहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
23: उज्जवल निकम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल किसी आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो उन्होंने उसके पीछे की डिजाइन, उसके पीछे की कॉन्स्पिरसी, इसको दुनिया के सामने उजागर किया, और ये जघन्य अपराध करने वाली इस आतंकवाद को पूरे तरीके से मदद करने वाली जो पाकिस्तान की सोच थी, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करने का काम ये उज्जवल निकम जी ने करके दिखाया।
24: इस बार अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को
0: बताया जा रहा है कि न्याय के लिए उज्जवल निकम की प्रतिबद्धता और जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी के साथ साथ उन तमाम लोगों के पक्ष को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान अपनी जान की बाजी लगाई थी।
25: जो हमारे जहाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान दी, तुकाराम मुंडे जी हो, करकरे जी हो, कामटे जी हो, साळसकर और ऐसे कई लोग जो ये हमले में 167 लोग मारे गए थे, आज मैं उनको पूरा तरह से न्याय मिला ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन विशेषता यह कि हमारे ये संविधान की जीत है। ये उज्जवल निकम तो एक चेहरा था इस फिल्म के माध्यम का, लेकिन असली मेहनत हमारे पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने हमारे साथ दी, उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए।
26: क्या आप इस केस को सही अंजाम दे पाएंगे?
1: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न कर दूं।
0: इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए है प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का ट्रेलर। सोशल मीडिया पर इसे रिस्पांस भी खूब मिल रहा है। उम्मीद है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म भी ट्रेलर जितनी ही जोरदार और असरदार होगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है कि यह फिल्म उज्जवल निकम की अनसुनी कहानी को सामने लाएगी, मतलब मुंबई अटैक के गुनहगारों और उनके आकाओं की कारगुजारी को उज्जवल निकम ने कैसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। यह फिल्म उन तमाम अनसुनी दास्तानों को सामने लाएगी। फिल्म के रिलीज से पहले गुड न्यूज टुडे की टीम ने उज्ज्वल निकम से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में इतने साल गुजर जाने के बाद भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। चलिए सुन लेते हैं आखिर क्या कह रहे हैं वो वकील जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाने की लड़ाई लड़ी थी।
2: जब मेकर्स आए होंगे तो आप लोगों से पूछा ही होगा कि अरे उज्ज्वल निकम तो बहुत बड़ा नाम है और ज्यादातर सर आपको लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल में सुना है, लेकिन जिस तरीके से आप अदालत रूम में जाकर के बहस करते हैं और थोड़ा सा अपने अंदाज में दूसरों को प्रेशर दे देते हैं, पसीने निकल आते हैं, वो चीजें अब फिल्मों द्वारा होगी, तो राजकुमार राव ही क्यों सर, आपको क्यों लगा कि यही?
25: देखिए, मैं अविनाश अरुण को इसका क्रेडिट देता हूँ। 3-4 साल पहले अविनाश अरुण और मैडॉक के जब मुझे मिले थे तो थोड़ा मैं साशंक था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि राजकुमार राव आपका कैरेक्टर, मैं भली भांति ज्यादा पिक्चर नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने राजकुमार राव का नाम सुना तो पहले मेरे जहन में तो यह सवाल आया था कि क्या राजकुमार जी मेरा कैरेक्टर निभा कर सकते हैं। और असल में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और फिल्म तो बन रही थी उस टाइम में, फिर बाद में भी फिल्म भी मैंने देखी थोड़ी, तो आई वॉज शॉक्ड। राजकुमार राव इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, सही ढंग में वो एक्टर है, और जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में, वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ, कॉपी मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे कैरेक्टर में चले गए, इसलिए चले गए कि जिस तरह से संवाद करना, जिस तरह बातचीत करना, जिस तरह से कोर्ट में एक यूनिफॉर्म वॉइस में अपना कंटेंशन सबमिशन रखना, पूरी तरह से अच्छा उन्होंने निभाया।
2: मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मेरी तरह बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे, जो अदालत की सीन से 26/11 और जो कसाब के साथ में आपकी बातचीत वगैरह हुई है, ये बाहर लाने की ये ठीक समय है? आपको लगता है कि लोगों को ये बातें जाननी चाहिए कि अदालत में किस तरीके से बहस होती है, कसाब ने क्या कुछ बोला है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी?
25: नहीं, देखिये, ये ठीक होना ना ठीक होना ये इसमें कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा यह है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो यह भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 3 दिन अटैक चल रहा था, उसके लाइव तस्वीरें आ रहे थे पेपर में, कसाब का चेहरा आ रहा था, फिर भी उसको जल्दी में फांसी क्यों नहीं है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
2: अच्छा, प्रहार का ट्रेलर तो मैंने बताया, 3 बार मैंने देखा, क्या आप भी दिखेंगे इस पूरे फिल्म में, किसी एक सीन में आप और सामने राजकुमार राव को मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा होने वाला है?
25: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर है, हम तो एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को न्याय दिया है, ऐसा मैं कहूंगा।
2: सर, जो आपका किरदार है इस दुनिया में और उस पर अब फिल्म भी बन रही है, मतलब एक स्पेशल है आप, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आप पर फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्मों से कितना जुड़े हैं, पसंद है फिल्में देखते हैं आप?
25: मैं बहुत कम फिल्म देखता हूं, ये तो बात है।
2: कौन सी देखी थी सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी
25: थी? कौन सी देखी थी? तो
2: मतलब
25: देखा है, पर इतना मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा, उसी वक्त
3: थिएटर्स में ज्यादा जाते नहीं है, वो जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी पे जो लगती है कभी कभार देख लेते हैं हम सब मिल करके।
2: अच्छा, नहीं, 26/11 पे सर काफी फिल्में बनी हैं, काफी वेब सीरीज बने हैं, आपने कभी ट्राई करा कि नहीं देख लूं भाई कुछ?
25: नहीं, मैंने वो नहीं देखी है, क्योंकि ये देखो, ये फिल्म ऐसी है प्रहार, ये रियल उन्होंने इंसिडेंट फैक्ट्स बताए जो मेरे लाइफ में घटना हुई है, चाहे मैं 26/11 के हमले के दिन कहां था, चाहे मेरा अनिकेत तो छोटा था उस वक्त, उसका मेरा बर्ताव घर में कैसा, ज्योति मिसेज जो है वो किस पे थी, क्या थी लड़की शर्वरी, इनका ये दिखाया है, ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा, ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ कई बार ऐसा है लोगों को रियल फैक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी रहता है, क्या हुआ है इस केस।
2: नहीं होते अगर वकील उज्जवल निकम तो क्या होते?
25: नहीं होते वकील तो बड़ा सवाल, मुश्किल है ये कहना। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था।
2: अच्छा।
25: पिताजी की माँ की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा वकील बनना है।
2: हाँ।
25: फिर इतना ही कहूंगा मैं कि बदले तुमने रंग बहुत बदले बहु नकाब।
2: हाँ।
25: बदले तुमने रंग बहुत बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे ही एक से बढ़कर एक डायलॉग हमने ट्रेलर में भी देखे सर। एक और था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि मैं हनुमान जयंती के दिन ही पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी की कसम। सर वो डायलॉग सिर्फ राजकुमार राव ने कहा है, क्या आप भी कह सकते हैं? आपने सुना देखा क्या कहेंगे?
25: देखिए उस वक्त जो डायलॉग अब तक मुझे याद है पूरी तरह से कि थोड़ा फिल्मी डायलॉग है। कसाब को वकील ऐसे बात करता है, तो उस वक्त मैं था, अरे मेरा जन्म भी हनुमान जयंती का है, मैं पूरा दिल फाके दिखा दूंगा। और दूसरा एक था उसका, आई उज्जवल निकम अस अक्यूज उज्जवल अमीर कसाब शुड बी हैंग टिल हिज डेथ। ये जो है जिस अंदाज में मैंने कोर्ट में बयान किया, उसी अंदाज में राजकुमार राव ने ये फिल्में देखी।
2: बहुत बधाई फिर से एक बार आपको और आपकी पूरी टीम को। तो 16 अक्टूबर को प्रहार देखने के लिए तैयार हो जाइए, पूरे देश भर में फिल्म ये रिलीज हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
13: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: चलिए अब बात फैशन की कर लेते हैं। पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है। लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट ने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया है। सेंट लॉरेंट ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड गोल्ड लुक भी क्रिएट किया है, जिसे सबका दिल जीत लिया है।

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के शानदार डिजाइन्स की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर्ड टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेट स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे होने

0: Bureau Report, Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में शुक्रवार को रहा भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार, आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। कुमारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार, भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन, अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यहीं से सच और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पहाड़ के ढहने का ये भयावह दृश्य नेपाल का है। क्या है इस वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: तो सबसे पहले बात वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जमुई नाबालिग छात्रा बदसलूकी केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया। वीडियो में 2 घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इस दावे की पड़ताल की।
5: सितंबर को बिहार के जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई बदसलूकी मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 मुख्य अभियुक्तों नंदन यादव और हरिराम यादव की गिरफ्तारी 22 सितंबर को एनकाउंटर के बाद हुई थी। इसमें नंदन यादव को गोली लगी थी। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें 2 घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि जमुई मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। एक यूजर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, जमुई में लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में शामिल दो और अपराधियों का पुलिस एनकाउंटर। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग सम्राट सरकार और बिहार पुलिस की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: बिहार के जमुई जिले में 19 सितंबर को एक नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई थी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सम्राट सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया, जबकि एक और आरोपी हरिराम यादव भागने के दौरान घायल हो गया। हाल ही में दो और आरोपियों सौरभ राम और छोटू राम की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन सबके बीच अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। खबर ये फैलाई जा रही है कि जमुई कांड में शामिल दो और आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। तेजी से ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, हमारा भी ध्यान इस वीडियो की तरफ गया और हमने इसकी पड़ताल शुरू की। किसी खेत का ये वीडियो लग रहा है, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में दो लोग नजर आ रहे हैं और दोनों के दाएं पैर में पट्टी बंधी हुई है। वो बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि पुलिस के साथ इन दोनों लोगों का मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर के बाद इन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैच पर भी गया। जब हमने इसे जूम करके बारीक नजरों से देखा तो इस पर यूपी पुलिस लिखा हुआ था। अब ये देखकर हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने वायरल वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। इसमें पुलिसकर्मी जिस लहजे में बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त इस तरह की भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है। बता दें कि जमुई कांड में मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके सहयोगी हरिराम यादव को एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया था, जिसके तुरंत बाद इन दोनों को अस्पताल में ले जाया गया और इसके बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस दौरान ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि जमुई पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इस वीडियो के साथ ये खबर मुख्यधारा की मीडिया में क्यों नजर नहीं आ रही है। जमुई कांड को लेकर पुलिस लगातार मीडिया को अपडेट दे रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अगर मुठभेड़ का दावा सच्चा है तो फिर इसमें यूपी पुलिस क्या कर रही है।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगा, वैसे ही लोग इस वीडियो के जरिए एक राय बनाने लगे। लेकिन हमें इस वीडियो का सच झूठ जानना था, लिहाजा हमने वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 7 सितंबर 2026 को छपी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल हो रहे वीडियो जैसी ही एक तस्वीर थी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छपाड़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 14 वर्षीय लड़की के साथ हुए कथित दुराचार के मामले में दो आरोपियों वालीन और सलमान को गिरफ्तार किया है। उनके पैर में गोली लगी है। मामले में एक अन्य आरोपी समीर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सर्च के दौरान ही हमें 6 सितंबर 2026 को छपी एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि मुजफ्फरनगर के रेता नंगला गांव के जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए। बता दें कि तीन आरोपियों ने जन्माष्टमी पर घर से निकली लड़की को कथित तौर पर अगवा कर लिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि जमुई केस में दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दो और आरोपियों की पुलिस एनकाउंटर का दावा गलत है। वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात करेंगे उस खबर की जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि ये नेपाल की खबर है। सबसे शॉकिंग वीडियो है, पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, चंद सेकंड में पूरी सड़क पर तबाही मचाती है। इस वीडियो पर भी हमने पड़ताल की।
5: लगातार बारिश के कारण नेपाल में एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों से बाढ़ और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल में इस वक्त बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। अब इसी संदर्भ में बहुमंजिला इमारतों के बीच पहाड़ से भारी मात्रा में अचानक मलबा गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये दृश्य नेपाल में पहाड़ गिरने की घटना का है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, नेपाल में पहाड़ के ढहने का भयावह दृश्य। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। लोग नेपाल के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं।
2: अगस्त की तबाही से नेपाल अभी तक उबर भी नहीं पाया कि एक बार फिर से हालात बद से बदतर होने शुरू हो गए। नेपाल के कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस बीच ये वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। वीडियो में पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, फिर चंद सेकंड में ही सड़क पर तबाही मच जाती है। दावा यह किया जाता है कि वीडियो नेपाल का है और इस वीडियो पर फैक्ट चेक टीम ने भी नजर डाली। हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि अगस्त के बाद अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में बाढ़ बारिश के प्रहार से एक बार फिर से नेपाल में भारी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन हमें ये जानना था कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का ही है। इसके लिए हमने वीडियो को देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिसके बाद हमें इस पर शक हुआ, हमें इसकी वास्तविकता पर भी शक हुआ। वीडियो में मलबा बहुमंजिला इमारत के बिल्कुल किनारे से तेज गति से नीचे गिरता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो जस की तस खड़ी है। इसके अलावा मलबे के गिरने और सड़क पर फैलने का तरीका भी सामान्य नहीं लग रहा है। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की कोई हलचल या उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो बड़े आराम से इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि सामने से मौत आ रही है लेकिन लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। बाढ़ और बारिश की वजह से इस बार नेपाल मुश्किल में है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेपाल से जुड़ी हर खबर दिखा रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखाया जा रहा है। हमारा तीसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।

0: गया था। नेपाल को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। फैक्ट चेक टीम अब इस वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो को देखने से हमें इसमें कई खामियां नजर आई। उदाहरण के लिए, ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की हलचल या प्रतिक्रिया नजर नहीं आती। ये देखकर हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके बाद हमने इस वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.2% संभावना के साथ एआई निर्मित बताया। नेपाल में पहाड़ ढहने का बताकर वायरल हुए वीडियो का सच जानने के लिए हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल जीरो जीपीटी पर भी जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को उच्च संभावित एआई जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और आई डिटेक्टर प्लेटफॉर्म एआई और नॉट ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को उच्च संभावना के साथ एआई जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि नेपाल में पहाड़ ढहने के दावे से वायरल हो रहा ये वीडियो एआई जनरेटेड है। इसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
4: ये दिल छू लेने वाला पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक लड़की भोजन के दौरान अपने पिता की हर हरकत को बहुत ध्यान से देखकर बिल्कुल वैसे ही पूजा करती और अनुशासन अपनाती नजर आ रही है। लोग इस वीडियो को बड़ों से सीख की आदत और भारतीय संस्कृति की संस्कारों से जोड़कर काफी पसंद कर रहे हैं। न कोई बड़ा स्टूडियो, न महंगे माइक, न लाइट कैमरे का झंझट, बस पीछे अरुणाचल के पहाड़, चारों तरफ हरियाली और सामने की तीनों बहने। ऐसी सादगी में जब इनकी सुरीली आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे पहाड़ भी गाना सुन रहे हैं। इनके गाने का अंदाज बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। सिंका, नगमजन और लिली अरुणाचल के लॉन्गडिंग जिले के एक छोटे से गांव बानू की रहने वाली है। गांव की उसी कच्ची नेचुरल लोकेशन पर खड़े होकर इन्होंने ये गाना गाया है और इस सादगी का ही जादू है कि ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह से फैल गया है। शहर हो या गांव, अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको पहचान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इन दिनों बिहार की एक लड़की का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो गांव के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ाती नजर आ रही है। जिस आत्मविश्वास के साथ वो अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का उच्चारण कर रही है, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो सिर्फ शब्द बोलकर आगे नहीं बढ़ जाती है बल्कि बच्चों को उसका सही उच्चारण भी समझाती है। उसका पढ़ाने का अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वो बिना किसी बड़े क्लासरूम, प्रोजेक्टर या महंगे संसाधनों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रही है।
5: अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकॉन बोल कहना। फैदर डिस्ट्रिक्ट एक्सपियालिटोसिस।

0: कैली
1: फ्रेंड
0: सुपर कैली फ्रेंड।
2: ये मुझे बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है, ये मुझे ढूंढती रहती है अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो।
3: लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल, मतलब कई बार जीवन में हुई घटनाएं, रिश्ते और अनुभव अक्सर बदलाव के साथ वही लौट आते हैं जहां वो शुरू हुए हैं।
4: और मेरी दादी, जब भी मैं खा रही हूँ, सो रही हूँ, बैठ रही उठ रही हूँ, मेरे को मेरी दादी या मम्मी में से कोई चाहिए। अगर बाई चांस वो मुझसे थोड़ा भी दर दर हो जाते ना तो मैं चिल्लाने लगती हूँ, रोने लगती हूँ, ऐसी थी मैं।
3: इंटरनेट पर वायरल दादी पोती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर लोग अपने दादा दादी को भी याद कर रहे हैं।
4: जब तक कि सोनी जाती फिर मैं उठ जाती हूँ और अपना काम करती हूँ। अगर ये मुझे देख लेती है कि मैं उठ गई हूँ तो फिर से मुझे ढूंढने चली जाती है कि मैं कहाँ गई। मेरे बच्ची वाला जो वर्जन है वो एग्जैक्ट मेरी दादी है। आज बूढ़े होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, दैट इज 100% ट्रुथ।
3: एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने माता पिता को स्टेशन पर विदा करते हुए जो पल कैद किया उसने हजारों लोगों के दिल को छू लिया है। खुशी ट्रेन की खिड़की से अपनी माँ और पिता को देख रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े माता पिता मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं, पिता भी मोबाइल निकालकर बेटी का वीडियो या फोटो ले रहे हैं। दोनों तरफ से यादों को संजोने की कोशिश साफ दिख रही है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दूर बढ़ जाती है, लेकिन माता पिता तब तक हाथ हिलाते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं जब तक कि बेटी की झलक गायब नहीं हो जाती। ये दृश्य कई लोगों को अपने माता पिता की याद दिला रहा है। इस दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लैब ढोल ताशे बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात शक्ति, साहस और संरक्षण की दिव्य प्रतीक मां दुर्गा की। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होने में 10 दिनों से कम का वक्त बचा है। देश भर में मूर्तिकार आदिशक्ति की प्रतिमा को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। बंगाल के शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने के दौर में है। यहाँ अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश की प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं में बंगाल की छाप साफ दिखाई दे रही है।

0: भवानी, चंडिका, शेरावाली, जगदम्बा और महिषासुरमर्दिनी। विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा के किसी भी नाम का आह्वान करें तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आदि शक्ति की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। नौ दिनों के बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 11 अक्टूबर से हर तरफ जय माता दी के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होने वाला है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। झांसी में बंगाली मूल का एक परिवार पिछले 34 साल से हर साल माँ की प्रतिमाओं को साकार करने की साधना से जुड़ा है। 4 महीने से ये बंगाली परिवार माँ के अलग अलग स्वरूपों को बेहद कलात्मक तरीके से सजीव करता है। 122 दिनों के अंतराल में करीब 160 प्रतिमाओं को अलग अलग रूपों को भव्य और सुंदर चित्रण किया जाता है। झांसी के इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में बंगाल की कला, मिट्टी और पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। आधुनिक थीम वाली मूर्तियों के इस दौर में भी बंगाल की पारंपरिक साका और डाकर साज शैली, यानी विशेष मुकुट, चौड़ी आंखें और भावपूर्ण चेहरे वाली माँ दुर्गा की मूर्तियों की भारी डिमांड होती है।
1: देखो, मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर आप जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अभी जो नया नया डिजाइन, ये फलाना बना दो, ये बना दो, वो बेकार है। एक दिन चलेगी, दो दिन चलेगी, चार उसके बाद नहीं चलेगी। पूरा कलकत्ता हमारा सिंगर से कपड़ा से सब कलकत्ता का है। शेर का हम लोग खाल चलाता है, यहाँ पर मिट्टी लगा देगा। हम लोग ऐसे काम नहीं करता। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
2: तो लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार करते हैं?
1: हमारा कितना है, 150-160 ऐसा ही होगा। 200 नहीं आएगा, ये हम ऐसे ज्यादा बनाएंगे नहीं। ग्राहक हमारे पास बहुत है, हम बनाएंगे नहीं, हिसाब से नहीं जाएगा बाहर। अब लोकल वाला जो लोग बनाता है,
2: आपका केवल बंगाली पैटर्न
1: है? हमारा बंगाली पैटर्न है, कलकत्ता में पिक किया।
0: एक एक प्रतिमा को तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले भूसे से ढांचा तैयार किया जाता है, इसके बाद मिट्टी की परतें चढ़ाकर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। बारीक कारीगरी के बाद रंग और फिर अंतिम चरण में कोलकाता से लाए गए वस्त्र, मुकुट और आभूषण लगाए जाते हैं। झांसी की इन दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने के दौरान पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जल, जमीन और वायु में प्रदूषण न फैले, इसके लिए प्रतिमाओं के निर्माण में पीओपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्माण में अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोलकाता से लाई जाने वाली गंगा नदी की मिट्टी के साथ स्थानीय तौर पर मिलने वाली काली और लाल मिट्टी भी शामिल है। दुर्गा प्रतिमाओं को रंगने के लिए पौधों, फूलों, सब्जियों, फलों के छिलकों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।
1: मिट्टी हमारा तो कलकत्ता से आता है, 3-4 प्रकार का मिट्टी है, मिक्स करके काम करना पड़ता है। हमारा जो मिट्टी है कोई नुकसान वाली काम नहीं है।
3: किस प्रकार के?
1: हमारा गंगा जी का मिट्टी, आधा मिट्टी गंगा जी का है, जो वहाँ खदान से पानी के अंदर उठाना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है, तब वहाँ कलकत्ता आता है। कलकत्ता से कलर हमारा नॉर्मल कलर है, ऑयल पेंट कलर नहीं है।
0: साल से इस कार्यशाला में बनने वाली माँ दुर्गा की 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों से भी आती है।
4: इस बार 200 मूर्ति बनाए, ठीक है, लगभग 90% तो बुक ही हो चुका है। अभी 10% चल रहा है, अभी 10 दिन बचा है अभी तक।
2: कितने लोग लगते हैं और कितने दिन से आप काम चालू कर रहे हैं?
4: जब क्या है, मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगता है, क्योंकि वो घास बांधना, मिट्टी लगाना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम रहता है, इसीलिए उस टाइम 10-12 आदमी रहता है। इस टाइम जो सिंगर के टाइम पे 8-10 आदमी है।
0: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा के नौ रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए दिल्ली में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्यता के साथ विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे माँ के आगमन से पहले ही शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के मन में उत्साह नजर आता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चीन में इन दिनों संस्कृति और जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन हो या रात, देश के अलग अलग हिस्सों में त्यौहार सी रौनक है और इसकी वजह है चीन का राष्ट्रीय दिवस, जो वहां के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जिससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है।

0: चीन में इन दिनों उत्सवी माहौल है। एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियों को बनाने के लिए देश भर में खास कल्चरल टूरिज्म इवेंट्स शुरू किए गए हैं। इनमें पुरानी वास्तुकला, लाइट शो, पारंपरिक लालटेन और त्योहारों वाली लाल सजावट का मेल देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को राष्ट्रीय झंडे और फूलों से सजाया गया है और रात में शानदार आतिशबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का शो हुआ। 23 मिनट के इस शो को देखने के लिए शहर के वाटर फ्रंट पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। इन रंग बिरंगी रोशनियों ने हार्बर के आसमान को जगमगा दिया। लोग आतिशबाजी से रंगीन आसमान की तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखे। इसमें स्थानीय लोगों के साथ विदेशों से आए पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के तांगयुए गांव में रोशनी वाली बड़ी बड़ी मछली के आकार की लालटेन का जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस गांव के ऐतिहासिक इलाकों से गुजरा। ये जुलूस गांव की सांस्कृतिक विरासत और रात के समय होने वाले कार्यक्रमों का एक अनूठा संगम है। चीन में एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियां दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इस समय को जिन्हें गोल्डन वीक कहते हैं, इस दौरान बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सैलानी चीन की यात्रा पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। मेगा ट्रेलर मिनट पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में शुक्रवार को रहा भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्रि जोरदार तैयारी। कुमारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं TNT स्पेशल। इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने कहा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। लेकिन क्या सत्य कल्पना से दिलचस्प ही होता है? इस सवाल की जड़ में है वो चलन जो हाल ही के दौर में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर नजर आया है। हाल ही के सालों में एक के बाद एक सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में सिनेमा के पर्दे पर आई हैं। कमाल की बात यह है कि दर्शकों का इन्हें दिल खोलकर प्यार भी मिला है। धुरंधर, आर्टिकल 370, उरी, कश्मीर फाइल्स, एक के बाद एक इंसिडेंट्स पर आधारित ये फिल्में पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब कुछ ही दिनों में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम के रूप में, जहां मुंबई हमले की इनसाइड स्टोरी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। आखिर बॉलीवुड में ये चलन कैसे आया और क्यों अब दर्शक असल जिंदगी की घटनाओं को बड़े पर्दे पर जस की तस देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय किसी कल्पना के? चलिए दिखाते हैं आपको।

ये फिल्म काल्पनिक है, इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से आकस्मिक है। लेकिन क्या वाकई सिनेमा की ये घटनाएं आकस्मिक हैं? क्या वाकई ये पात्र, ये कहानी काल्पनिक है? नहीं, क्योंकि वास्तव में ये फिल्म काल्पनिक नहीं है। इसके सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से पूर्व निर्धारित और नियोजित है।

0: सिनेमा हमेशा से कल्पनाओं का संसार रहा है, एक ऐसा जादुई पर्दा जहां रंग है, उमंग है, जिंदगी का सेलिब्रेशन है, जहां बड़े शहरों की चमक है।
1: प्यार करना है, टाइम पास करना है।
2: टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसके भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना।
0: कस्बों गांवों की देसी दमक भी है,
3: समझा मुझे कुछ काम याद आया।
2: सुनो तो,
0: जहां सब कुछ भुला देने वाली मोहब्बत है।
4: अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना।
0: एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है।
1: रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक।
0: जहां सुपर हीरो उड़ सकते हैं, एलियंस धरती पर आ सकते हैं।
5: कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए।
0: लेकिन यही सिनेमा जब कल्पनाओं का हाथ छोड़ हकीकत के धरातल पर कदम रखता है तो कुछ अद्भुत होता है।
6: हम आर्टिकल 370 हटाएंगे।
0: जब स्क्रीन पर लिखा आता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो दर्शकों के दिल की धड़कनें बदल जाती
7: है। द वर्ल्ड आल्सो सी के इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
0: एक कहानी जो कल्पनाओं के बीच से नहीं उगी, कहानी जो बगले नहीं झांकती बल्कि परत दर परत खुद को उघाड़ती चलती है और देखने वालों के सामने ठीक वैसी ही उतरती है जैसी वो वास्तविक जीवन में घटित हुई थी। यथार्थ से आंखें मिलाती हुई, अतीत के हर जख्म को हरा करती, हमारी बेबसी को अंडरलाइन करती, हमारी उपलब्धियों का बखान करती।
8: 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते।
0: एक फिल्म जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच को उसी धार, उसी तलखी के साथ, बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, जस का तस हमारे सामने धर देती है, जिसे हमारे आदर्शवाद के सपनों में रंग भरने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बड़े और गहरे सच को ज्यों का त्यों सुनने की सामूहिक असमर्थता और उदासीनता को दरकिनार कर जो हुआ उसे वैसा का वैसा दिखाने के लिए बनाया गया है।
9: कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है।
0: और शायद यही वजह है कि बीते वक्त में असल घटनाओं पर आधारित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया, पर्दे पर प्यार मिला, सोशल मीडिया पर वाहवाही मिली, वर्ड ऑफ माउथ का साथ मिला और ये फिल्में ब्लॉकबस्टर बन गईं। यानी जिस सिनेमा का इजाद ही कभी कहानियां कहने के लिए हुआ था, वहां अब हकीकत पर आधारित फिल्मों का बोलबाला है। आखिर क्यों ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्मों को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है?
10: Your Honor, how can he call me that?
11: I mean by the terrorist lawyer.
0: जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों की इसी लिस्ट में अब शामिल होने वाली है प्रहार। यह फिल्म 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले उस घटना की यादें आज भी सबके जहन में हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। अब एक बार फिर ये घटना पर्दे पर आ रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम। दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म मुंबई के गुनहगार अजमल कसाब को अंजाम तक पहुंचाने वाले केस की हर डिटेल को सिनेमा के पर्दे पर खोलकर रख देगी।
7: जिसने आप पर आपकी मां पर गोलियां चलाई थी वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
13: I उज्ज्वल निकम us accused Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death।
14: मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे टॉर्चर करके कबूलनामा साइन करवाया इन्होंने। मैं तो बंबई घूमने आया था जनाब, उधर जूह चौपाटी पे था तो अमिताभ बच्चन का बंगला देखने चला गया, उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोलता है तू ही है टेररिस्ट। और एक बात साहब, मैं 17 साल का हूँ।
13: बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
15: न्याय किताबों में लिखा आसान है, पर अदालत में हर फैसला खून पसीना और साहस मांगता है।
0: यही कहानी है मुंबई पे आतंकी हमला,
15: जिस शहर को डर ने घुटनों पर ला दिया था।
0: यही सार है,
15: उसके लिए एक आदमी अदालत में दीवार बनकर खड़ा हुआ।
0: यही विस्तार है, कसाब को फांसी कैसे हुई, कसाब की गिरफ्तारी, सजा का ऐलान और फांसी की खबर टीवी और अखबारों पर खूब देखी और पढ़ी गई थी।
16: लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। That's the foundation of our legal system.
0: लेकिन अब सिनेमा कहानी के भीतर की परतें दिखाएगा। केस के दौरान वकील और कसाब के बीच क्या बात हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी, और उस बात के पीछे जो न्याय की कसौटी पर कसे जाते समय हर ओर से कही गई, सच को सिनेमा के पर्दे पर उतारने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे ताजा और जोरदार एंट्री है प्रहार। वो फिल्म जो 26/11 हमलों की भयावहता और घटनाक्रम को दिखाने से दो कदम आगे जाकर मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब के फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी पर्दे पर लेकर आ रही है। केस किसने लड़ा, कैसे लड़ा, कोर्ट में क्या हुआ, क्या इंसाफ मिलने में वाकई देर हुई थी या नहीं हुई देर, और हुई तो क्यों, किसकी वजह से, इन सारे सवालों का जवाब देने 16 अक्टूबर को ये फिल्म पर्दे पर आ रही है।
13: हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था। इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
0: इस फिल्म का नाता हिंदुस्तान से है, हर एक हिंदुस्तानी से है। घटना करीब 18 साल पुरानी है लेकिन आज भी हर भारतवासी के जेहन में ताजा है। जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था। लश्करे तैयबा के 10 आतंकियों ने पूरे 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी को मानो बंधक बना लिया था। भारत के जांबाज जवानों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बस ये फिल्म समझिए उसी के बाद से शुरू होती है। कहानी वही है लेकिन एक नए अंदाज में, नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम। उज्जवल निकम वही वकील हैं जिन्होंने कसब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। उन्हीं को केंद्र में रखकर उनके जरिए न्याय की इस दास्तां को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है।
17: हमें इसकी इजाजत नहीं देता,
18: हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने।
13: ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा। ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया। नवंबर को जब
0: CST, जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है, इस बार पर्दे पर सिर्फ गोली बंदूकें और कत्लोगारत नहीं दिखाया जाएगा बल्कि सबूत और सच्चाई को जरिया बनाकर उस खौफनाक मंजर को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके आगाहों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा, असल जिंदगी में जो हुआ उसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। और इस केस को अंजाम तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम का किरदार फिल्म में राजकुमार राव ने निभाया है।
13: ये केस, ये जो प्रहार पिक्चर है, ये मेनली 26/11 का हमला और थोड़ा अंश 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का है, लेकिन ज्यादातर 26/11 का है। एक बड़ी विशेषता ये फिल्म है, इस फिल्म में असली नाम का इस्तेमाल यूज किए गए हैं। उज्जवल निकम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। मेरे मिसेस का किरदार है ज्योति, वो वामिका ने निभाया है। ये मेरे लड़के का नाम अनिकेत, वहां भी उसका किरदार है। शर्वरी, उनका भी किरदार है। तो और ये इसलिए उन्होंने ओरिजिनल नाम रखे ताकि इसमें किसी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, एक बड़ी अहम जाए।
0: ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बंदूक के बजाय संविधान और सबूतों की ताकत से आतंकवादियों की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
19: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
0: और जो वकील इस केस के केंद्र में थे उन्हीं के कानूनी संघर्षों और जीवन की घटनाओं को राजकुमार राव पर्दे पर निभाने वाले हैं।
14: तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म हर क्राइम हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
20: सर हैं वो ये फिल्म देखेंगे, उनकी फैमिली है वो ये फिल्म देखेंगी और बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: कोर्ट में आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खैर के साथ राजकुमार राव का टशन और टकराव फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। तो इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए इंडिया आए डेलीगेशन को लीड कर रहे जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच कोर्ट में हुई बहस भी जोरदार ढंग से पेश की गई है।
21: सारे जो एक्टर्स है जिस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब शूटिंग चलती थी तो कभी कभी मैं खुद शूटिंग के दिनों वहां जाता था, और पर्टिकुलरली जब ये कोर्ट सीन्स शूट हुए जहां पापा का फाइनल आर्गुमेंट हुआ उस समय मैं मौजूद था, मतलब मैं 2008 में भी मौजूद था और इस शूटिंग के समय भी मौजूद था। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने निकम जी का कैरेक्टर पकड़ा है तो बहुत ही लाजवाब है, और मैं चाहता हूं कि लोगों को जब ये 16 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आएगी।
19: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ।
0: फिल्म में उज्जवल निकम की पत्नी का रोल वामिका गब्बी निभा रही हैं। इस हफ्ते मुंबई में प्रहार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया जिसमें एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर अविनाश निकम, प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ खुद उज्जवल निकम भी शामिल हुए। तो वही प्रहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
22: उज्जवल निकम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल किसी आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो उन्होंने उसके पीछे की डिजाइन, उसके पीछे की कॉन्स्पिरसी, इसको दुनिया के सामने उजागर किया, और ये जघन्य अपराध करने वाली इस आतंकवाद को पूरे तरीके से मदद करने वाली जो पाकिस्तान की सोच थी, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करने का काम ये उज्जवल निकम जी ने करके दिखाया।
15: इस बार अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को
0: बताया जा रहा है कि न्याय के लिए उज्जवल निकम की प्रतिबद्धता और जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी के साथ साथ उन तमाम लोगों के पक्ष को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान अपनी जान की बाजी लगाई थी।
23: जो हमारे जहाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान दी, तुकाराम उमरे जी हो, करकरे जी हो, कामटे जी हो, साळसकर और ऐसे कई लोग जो ये हमले में 167 लोग मारे गए थे, आज मैं उनको पूरा तरह से न्याय मिला ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन विशेषता ये कि हमारी ये संविधान की जीत है। ये उज्जवल निकम तो एक चेहरा था इस फिल्म के माध्यम का, लेकिन असली मेहनत हमारे पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने हमारे साथ दी, उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए।
24: क्या आप इस केस को सही अंजाम दे पाएंगे?
14: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म हर क्राइम हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
0: इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए है प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का ट्रेलर। सोशल मीडिया पर इसे रिस्पांस भी खूब मिल रहा है। उम्मीद है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म भी ट्रेलर जितनी ही जोरदार और असरदार होगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है कि यह फिल्म उज्जवल निकम की अनसुनी कहानी को सामने लाएगी, मतलब मुंबई अटैक के गुनहगारों और उनके आकाओं की कारगुजारी को उज्जवल निकम ने कैसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। यह फिल्म उन तमाम अनसुनी दास्तानों को सामने लाएगी। फिल्म की रिलीज से पहले गुड न्यूज टुडे की टीम ने उज्जवल निकम से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में इतने साल गुजर जाने के बाद भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। चलिए सुन लेते हैं आखिर क्या कह रहे हैं वो वकील जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाने की लड़ाई लड़ी थी।
1: जब मेकर्स आए होंगे तो आप लोगों से पूछा ही होगा कि अरे उज्जवल निकम तो बहुत बड़ा नाम है और ज्यादातर सर आपको लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल में सुना है, लेकिन जिस तरीके से आप अदालत रूम में जाकर के बहस करते हैं और थोड़ा सा अपने अंदाज में दूसरों को प्रेशर दे देते हैं, पसीने निकल आते हैं, वो चीजें अब फिल्मों द्वारा होगी, तो राजकुमार राव ही क्यों सर, आपको क्यों लगा कि यही?
23: देखिए मैं अविनाश अरुण को इसका क्रेडिट देता हूँ। 3-4 साल पहले अविनाश अरुण और मैडॉक के जब मुझे मिले थे तो थोड़ा मैं साशंक था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि राजकुमार राव आपका कैरेक्टर, मैं भलीभांति ज्यादा पिक्चर नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने राजकुमार राव का नाम सुना तो पहले मेरे जहन में तो यह सवाल आया था कि क्या राजकुमार जी मेरा कैरेक्टर निभा कर सकते हैं। और असल में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और फिल्म तो बन रही थी उस टाइम में, फिर बाद में भी फिल्म भी मैंने देखी थोड़ी, तो आई वॉज शॉक्ड। राजकुमार राव इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, सही ढंग में वो एक्टर है, और जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में, वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ, कॉपी मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे कैरेक्टर में चले गए, इसलिए चले गए कि जिस तरह से संवाद करना, जिस तरह बातचीत करना, जिस तरह से कोर्ट में एक यूनिफॉर्म वॉइस में अपना कंटेंशन सबमिशन रखना, पूरी तरह से अच्छा उन्होंने निभाया।
1: मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मेरी तरह बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे, जो अदालत की सीन से 26/11 और जो कसाब के साथ में आपकी बातचीत वगैरह हुई है, ये बाहर लाने की ये ठीक समय है? आपको लगता है कि लोगों को ये बातें जाननी चाहिए कि अदालत में किस तरीके से बहस होती है, कसाब ने क्या कुछ बोला है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी?
23: नहीं देखिये, ये ठीक होना ना ठीक होना ये इसमें कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा यह है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो यह भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 3 दिन अटैक चल रहा था, उसके लाइव तस्वीरें आ रहे थे पेपर में, कसाब का चेहरा आ रहा था, फिर भी उसको जल्दी में फांसी क्यों नहीं है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
1: अच्छा, प्रहार का ट्रेलर तो मैंने बताया 3 बार मैंने देखा, क्या आप भी दिखेंगे इस पूरे फिल्म में, किसी एक सीन में आप और सामने राजकुमार राव को मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा होने वाला है?
23: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर है, हम तो एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को न्याय दिया है, ऐसा मैं कहूंगा।
1: सर, जो आपका किरदार है इस दुनिया में और उस पर अब फिल्म भी बन रही है, मतलब एक स्पेशल है आप, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आप पर फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्मों से कितना जुड़े हैं, पसंद है फिल्में देखते हैं आप?
23: मैं बहुत कम फिल्म देखता हूँ, ये तो बात है।
1: कौन सी देखी थी सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी?
23: तो
1: मतलब
23: नहीं देखा है, पर इतना मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा, उसी वक्त
2: में ज्यादा जाते नहीं है, वो जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी पे जो लगती है कभी कभार देख लेते हैं हम सब मिलकर के।
1: अच्छा, नहीं 26/11 पे सर काफी फिल्में बनी हैं, काफी वेब सीरीज बने हैं, आपने कभी ट्राई करा कि नहीं देख लूं भाई कुछ?
23: नहीं, मैंने वो नहीं देखी है, क्योंकि ये देखो ये फिल्म ऐसी है प्रहार, ये रियल उन्होंने इंसिडेंट फैक्ट्स बताए जो मेरे लाइफ में घटना हुई है, चाहे मैं 26/11 के हमले के दिन कहाँ था, चाहे मेरा अनिकेत तो छोटा था उस वक्त, उसका मेरा बर्ताव घर में कैसा, ज्योति मिसेस जो है वो किस पे थी, क्या थी लड़की शर्वरी, इनका ये दिखाया है, ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा, ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ कई बार ऐसा है लोगों को रियल फैक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी रहता, क्या हुआ है इस केस।
1: नहीं होते अगर वकील उज्ज्वल निकम तो क्या होते?
23: नहीं होते वकील तो बड़ा सवाल, मुश्किल है ये कहना। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था।
1: अच्छा।
23: पिताजी की माँ की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा वकील बनना है। फिर इतना ही कहूंगा मैं कि बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
1: क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे ही एक से बढ़कर एक डायलॉग हमने ट्रेलर में भी देखे सर। एक और था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि मैं हनुमान जयंती के दिन ही पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी की कसम सर। वो डायलॉग सिर्फ राजकुमार राव ने कहा है, क्या आप भी कह सकते हैं? आपने सुना देखा क्या कहेंगे?
23: देखिए उस वक्त जो डायलॉग अब तक मुझे याद है पूरी तरह से कि थोड़ा फिल्मी डायलॉग है। कसाब को वकील ऐसे बात करता है तो उस वक्त मैं था, अरे मेरा जन्म भी हनुमान जयंती का है, मैं पूरा दिल फाके दिखा दूंगा। और दूसरा एक था उसका, आई उज्ज्वल निकम अस अक्यूज उज्ज्वल अमीर कसाब शुड बी हैंग टिल हिज डेथ। ये जो है मैं जिस अंदाज में मैंने कोर्ट में बयान किया उसी अंदाज में राजकुमार राव ने ये फिल्में देखी।
1: बहुत बधाई फिर से एक बार आपको और आपकी पूरी टीम को। तो 16 अक्टूबर को प्रहार देखने के लिए तैयार हो जाइए। पूरे देश भर में फिल्म ये रिलीज हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
12: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चलिए अब बात फैशन की कर लेते हैं। पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है। लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट ने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया है। सेंट लॉरेंट ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड गोल्ड लुक भी क्रिएट किया है, जिसे सबका दिल जीत लिया है।

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के शानदार डिजाइन की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेड स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे होने

0: Bureau Report, Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल, 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा, 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में शुक्रवार को रहा भारत के लिए गोल्डन डे, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु, जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार, आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्रि जोरदार तैयारी, कुमारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार, भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान, सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन, अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यहीं से सच और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पहाड़ के ढहने का ये भयावह दृश्य नेपाल का है। क्या है इस वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: तो सबसे पहले बात वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जमुई नाबालिग छात्रा बदसलूकी केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया। वीडियो में 2 घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। यह वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इस दावे की पड़ताल की।
6: सितंबर को बिहार के जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई बदसलूकी मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 मुख्य अभियुक्तों नंदन यादव और हरिराम यादव की गिरफ्तारी 22 सितंबर को एनकाउंटर के बाद हुई थी। इसमें नंदन यादव को गोली लगी थी। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें दो घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि जमुई मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। एक यूजर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, जमुई में लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में शामिल दो और अपराधियों का पुलिस एनकाउंटर। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग सम्राट सरकार और बिहार पुलिस की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
3: बिहार के जमुई जिले में 19 सितंबर को एक नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई थी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सम्राट सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया, जबकि एक और आरोपी हरिराम यादव भागने के दौरान घायल हो गया। हाल ही में दो और आरोपियों सौरभ राम और छोटू राम की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन सबके बीच अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। खबर ये फैलाई जा रही है कि जमुई कांड में शामिल दो और आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। तेजी से ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, हमारा भी ध्यान इस वीडियो की तरफ गया और हमने इसकी पड़ताल शुरू की। किसी खेत का ये वीडियो लग रहा है, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में दो लोग नजर आ रहे हैं और दोनों के दाएं पैर में पट्टी बंधी हुई है। वो बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि पुलिस के साथ इन दोनों लोगों का मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर के बाद इन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैच पर भी गया। जब हमने इसे जूम करके बारीक नजरों से देखा तो इस पर यूपी पुलिस लिखा हुआ था। अब ये देखकर हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने वायरल वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। इसमें पुलिसकर्मी जिस लहजे में बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त इस तरह की भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है। बता दें कि जमुई कांड में मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके सहयोगी हरिराम यादव को एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया था, जिसके तुरंत बाद इन दोनों को अस्पताल में ले जाया गया और इसके बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस दौरान ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि जमुई पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इस वीडियो के साथ ये खबर मुख्यधारा की मीडिया में क्यों नजर नहीं आ रही है। जमुई कांड को लेकर पुलिस लगातार मीडिया को अपडेट दे रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अगर मुठभेड़ का दावा सच्चा है तो फिर इसमें यूपी पुलिस क्या कर रही है।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगा, वैसे ही लोग इस वीडियो के जरिए एक राय बनाने लगे। लेकिन हमें इस वीडियो का सच झूठ जानना था, लिहाजा हमने वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 7 सितंबर 2026 को छपी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल हो रहे वीडियो जैसी ही एक तस्वीर थी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छपार थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 14 वर्षीय लड़की के साथ हुए कथित दुराचार के मामले में दो आरोपियों वालीन और सलमान को गिरफ्तार किया है। उनके पैर में गोली लगी है। मामले में एक अन्य आरोपी समीर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सर्च के दौरान ही हमें 6 सितंबर 2026 को छपी एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि मुजफ्फरनगर के रेता नंगला गांव के जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए। बता दें कि तीन आरोपियों ने जन्माष्टमी पर घर से निकली लड़की को कथित तौर पर अगवा कर लिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि जमुई केस में दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दो और आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर का दावा गलत है। वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करेंगे उस खबर की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ये नेपाल की खबर है। सबसे शॉकिंग वीडियो है, पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, चंद सेकंड में पूरी सड़क पर तबाही मच जाती है। इस वीडियो पर भी हमने पड़ताल की।
6: लगातार बारिश के कारण नेपाल में एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों से बाढ़ और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल में इस वक्त बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। अब इसी संदर्भ में बहुमंजिला इमारतों के बीच पहाड़ से भारी मात्रा में अचानक मलबा गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये दृश्य नेपाल में पहाड़ गिरने की घटना का है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, नेपाल में पहाड़ के ढहने का भयावह दृश्य। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। लोग नेपाल के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं।
3: अगस्त की तबाही से नेपाल अभी तक उबर भी नहीं पाया कि एक बार फिर से हालात बद से बदतर होने शुरू हो गए। नेपाल के कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, कई लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस बीच ये वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। वीडियो में पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, फिर चंद सेकंड में ही सड़क पर तबाही मच जाती है। दावा यह किया जाता है कि वीडियो नेपाल का है और इस वीडियो पर फैक्ट चेक टीम ने भी नजर डाली। हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि अगस्त के बाद अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में बाढ़ बारिश के प्रहार से एक बार फिर से नेपाल में भारी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन हमें ये जानना था कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का ही है। इसके लिए हमने वीडियो को देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिसके बाद हमें इस पर शक हुआ, हमें इसकी वास्तविकता पर भी शक हुआ। वीडियो में मलबा बहुमंजिला इमारत के बिल्कुल किनारे से तेज गति से नीचे गिरता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो जस की तस खड़ी है। इसके अलावा मलबे के गिरने और सड़क पर फैलने का तरीका भी सामान्य नहीं लग रहा है। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की कोई हलचल या उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो बड़े आराम से इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि सामने से मौत आ रही है लेकिन लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। बाढ़ और बारिश की वजह से इस बार नेपाल मुश्किल में है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेपाल से जुड़ी हर खबर दिखा रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखाया जा रहा है। हमारा तीसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
6: नेपाल बाढ़ के नाम से वायरल हो रहा ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सोशल मीडिया पर इसे लगातार फैलाया जा रहा था, लिहाजा सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। नेपाल को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। फैक्ट चेक टीम अब इस वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो को देखने से हमें इसमें कई खामियां नजर आईं। उदाहरण के लिए, ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की हलचल या प्रतिक्रिया नजर नहीं आती। ये देखकर हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके बाद हमने इस वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव

0: 2% संभावना के साथ AI निर्मित बताया। नेपाल में पहाड़ ढहने का बताकर वायरल हुए वीडियो का सच जानने के लिए हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल 0GPT पर भी जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को उच्च संभावित AI जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और आई डिटेक्टर प्लेटफॉर्म AI और नॉट ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को उच्च संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि नेपाल में पहाड़ ढहने के दावे से वायरल हो रहा ये वीडियो AI जनरेटेड है। इसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
7: ये दिल छू लेने वाला पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक लड़की भोजन के दौरान अपने पिता की हर हरकत को बहुत ध्यान से देखकर बिल्कुल वैसे ही पूजा करती और अनुशासन अपनाती नजर आ रही है। लोग इस वीडियो को बड़ों से सीख की आदत और भारतीय संस्कृति की संस्कारों से जोड़कर काफी पसंद कर रहे हैं। ना कोई बड़ा स्टूडियो, ना महंगे माइक, ना लाइट कैमरे का झंझट, बस पीछे अरुणाचल के पहाड़, चारों तरफ हरियाली और सामने ये तीनों बहने। ऐसी सादगी में जब इनकी सुरीली आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे पहाड़ भी गाना सुन रहे हैं। इनके गाने का अंदाज बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। सिंका, नगम जन और लिली अरुणाचल के लॉन्गडिंग जिले के एक छोटे से गांव बानू की रहने वाली है। गांव की उसी कच्ची नेचुरल लोकेशन पर खड़े होकर इन्होंने ये गाना गाया है, और इस सादगी का ही जादू है कि ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह से फैल गया है। शहर हो या गांव, अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको पहचान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इन दिनों बिहार की एक लड़की का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो गांव के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ाती नजर आ रही है। जिस आत्मविश्वास के साथ वो अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का उच्चारण कर रही है, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो सिर्फ शब्द बोलकर आगे नहीं बढ़ जाती है, बल्कि बच्चों को उसका सही उच्चारण भी समझाती है। उसका पढ़ाने का अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वो बिना किसी बड़े क्लासरूम, प्रोजेक्टर या महंगे संसाधनों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रही है।
8: ये मुझे बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है, ये मुझे ढूंढती रहती है अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो।
7: लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल, मतलब कई बार जीवन में हुई घटनाएं, रिश्ते और अनुभव अक्सर बदलाव के साथ वही लौट आते हैं जहां वो शुरू हुए हैं।
8: मेरी मम्मी और मेरी दादी, जब भी मैं खा रही हूँ, सो रही हूँ, बैठ रही उठ रही हूँ, मेरे को मेरी दादी या मम्मी में से कोई चाहिए। अगर बाई चांस वो मुझसे थोड़ा भी दर दर हो जाते ना, तो मैं चिल्लाने लगती हूँ, रोने लगती हूँ। ऐसी थी मैं।
7: इंटरनेट पर वायरल दादी पोती की कहानी

0: कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर लोग अपने दादा दादी को भी याद कर रहे हैं।
1: जब तक ये सुनी जाती फिर मैं उठ जाती हूँ और अपना काम करती हूँ। अगर ये मुझे देख लेती है कि मैं उठ गई हूँ तो फिर से मुझे ढूंढने चली जाती है कि मैं कहाँ गई। मेरे बच्ची वाला जो वर्जन है वो एग्जैक्ट मेरी दादी है। आज बूढ़े होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं। दैट इज 100% ट्रुथ।
2: हमें नहीं बना लगा तो मैं होती हूँ।
0: एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने माता पिता को स्टेशन पर विदा करते हुए जो पल कैद किया उसने हजारों लोगों के दिल को छू लिया है। खुशी ट्रेन की खिड़की से अपनी माँ और पिता को देख रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े माता पिता मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं। पिता भी मोबाइल निकालकर बेटी का वीडियो या फोटो ले रहे हैं। दोनों तरफ से यादों को संजोने की कोशिश साफ दिख रही है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दूर बढ़ जाती है, लेकिन माता पिता तब तक हाथ हिलाते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं जब तक कि बेटी की झलक गायब नहीं हो जाती। ये दृश्य कई लोगों को अपने माता पिता की याद दिला रहा है। दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशे बजा रहे हैं। लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और अब बात शक्ति, साहस और संरक्षण की दिव्य प्रतीक मां दुर्गा की। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होने में 10 दिनों से कम का वक्त बचा है। देश भर में मूर्तिकार आदिशक्ति की प्रतिमा को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। बंगाल के शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने के दौर में है। यहां अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश की प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं में बंगाल की छाप साफ दिखाई दे रही है।

0: भवानी, चंडिका, शेरावाली, जगदम्बा और महिषासुर मर्दिनी विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा के किसी भी नाम का आह्वान करें तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आदि शक्ति की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। नौ दिनों के बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 11 अक्टूबर से हर तरफ जय माता दी के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होने वाला है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। झांसी में बंगाली मूल का एक परिवार पिछले 34 साल से हर साल माँ की प्रतिमाओं को साकार करने की साधना से जुड़ा है। 4 महीने से ये बंगाली परिवार माँ के अलग अलग स्वरूपों को बेहद कलात्मक तरीके से सजीव करता है। 122 दिनों के अंतराल में करीब 160 प्रतिमाओं को अलग अलग रूपों को भव्य और सुंदर चित्रण किया जाता है। झांसी की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में बंगाल की कला, मिट्टी और पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। आधुनिक थीम वाली मूर्तियों के इस दौर में भी बंगाल की पारंपरिक साका और डाकर साज शैली यानी विशेष मुकुट, चौड़ी आंखें और भावपूर्ण चेहरे वाली माँ दुर्गा की मूर्तियों की भारी डिमांड होती है।
1: देखो मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर आप जाएगा ना ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अभी जो नया नया डिजाइन ये फलाना बना दो ये बना दो वो बेकार है। एक दिन चलेगी, दो दिन चलेगी, चार उसके बाद नहीं चलेगी। पूरा कलकत्ता हमारा सिंगर से कपड़ा से सब कलकत्ता का है। शेर का हम लोग खाल चलाता है, यहाँ पर मिट्टी लगा देगा। हम लोग ऐसे काम नहीं करता। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
2: लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार करते हैं?
1: हमारा कितना है 150-160 ऐसा ही होगा। 200 नहीं आएगा, ये हम ऐसे ज्यादा बनाएगा नहीं। गिराक हमारे पास बहुत है, हम बनाएंगे नहीं, हिसाब से नहीं जाएगा बाहर। अब लोकल वाला जो लोग बनाता है।
2: आपका केवल बंगाली पैटर्न है?
1: हमारा बंगाली पैटर्न है, कलकत्ता में पिक किया।
0: एक एक प्रतिमा को तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले भूसे से ढांचा तैयार किया जाता है, इसके बाद मिट्टी की परतें चढ़ाकर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। बारीक कारीगरी के बाद रंग और फिर अंतिम चरण में कोलकाता से लाए गए वस्त्र, मुकुट और आभूषण लगाए जाते हैं। झांसी की इन दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने के दौरान पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जल, जमीन और वायु में प्रदूषण न फैले इसके लिए प्रतिमाओं के निर्माण में POP का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्माण में अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है जिसमें कोलकाता से लाई जाने वाली गंगा नदी की मिट्टी के साथ स्थानीय तौर पर मिलने वाली काली और लाल मिट्टी भी शामिल है। दुर्गा प्रतिमाओं को रंगने के लिए पौधों, फूलों, सब्जियों, फलों के छिलकों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।
1: मिट्टी हमारा तो कलकत्ते से आता है, 3-4 प्रकार का मिट्टी है, मिक्स करके काम करना पड़ता है। हमारा जो मिट्टी है कोई नुकसान वाली काम नहीं है। हमारा गंगा जी का मिट्टी आधा मिट्टी गंगा जी का है, जो वहाँ कदम पानी के अंदर उठाना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है, तब वहाँ कलकत्ता आता है। कलकत्ता से कलर हमारा नॉर्मल कलर है, ऑयल पेंट कलर नहीं है।
0: साल से इस कार्यशाला में बनने वाली माँ दुर्गा की 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों से भी आती है।
3: इस बार 200 मूर्ति बनाए, ठीक है, लगभग 90% तो बुक ही हो चुका है, अभी 10% चल रहा है, अभी 10 दिन बचा है अभी तक।
2: कितने लोग लगते हैं और कितने दिन से आप काम चालू कर रहे हैं?
3: जब क्या है मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगता है, क्योंकि वो घास बांधना, मिट्टी लगाना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम रहता है, इसीलिए उस टाइम 10-12 आदमी रहता है। इस टाइम जो सिंगर के टाइम पे 8-10 आदमी है।
0: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा के नौ रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए दिल्ली में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्यता के साथ विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे माँ के आगमन से पहले ही शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के मन में उत्साह नजर आता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चीन में इन दिनों संस्कृति और जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन हो या रात, देश के अलग अलग हिस्सों में त्यौहार सी रौनक है और इसकी वजह है चीन का राष्ट्रीय दिवस, जो वहां के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जिससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है।

0: चीन में इन दिनों उत्सवी माहौल है। एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियों को मनाने के लिए देश भर में खास कल्चरल टूरिज्म इवेंट्स शुरू किए गए हैं। इनमें पुरानी वास्तुकला, लाइट शो, पारंपरिक लालटेन और त्योहारों वाली लाल सजावट का मेल देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को राष्ट्रीय झंडे और फूलों से सजाया गया है और रात में शानदार आतिशबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का शो हुआ। 23 मिनट के इस शो को देखने के लिए शहर के वाटर फ्रंट पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। इन रंग बिरंगी रोशनियों ने हार्बर के आसमान को जगमगा दिया। लोग आतिशबाजी से रंगीन आसमान की तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखे। इसमें स्थानीय लोगों के साथ विदेशों से आए पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के तांगयुए गांव में रोशनी वाली बड़ी बड़ी मछली के आकार की लालटेन का जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस गांव के ऐतिहासिक इलाकों से गुजरा। ये जुलूस गांव की सांस्कृतिक विरासत और रात के समय होने वाले कार्यक्रमों का एक अनूठा संगम है। चीन में एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियां दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इस समय को जिन्हें गोल्डन वीक कहते हैं, इस दौरान बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सैलानी चीन की यात्रा पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: सुख चैन जुड़ा हुआ है? क्या रसोई की अलमारी से आपके घर में अशांति फैल सकती है? क्या किताबों की अलमारी आपके दिमाग पर असर डाल देती है? अलमारियों का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में शुक्रवार को रहा भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्रि जोरदार तैयारी। कुमारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं TNT स्पेशल। इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने कहा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। लेकिन क्या सत्य कल्पना से दिलचस्प ही होता है? इस सवाल की जड़ में है वो चलन जो हाल ही के दौर में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर नजर आया है। हाल ही के सालों में एक के बाद एक सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में सिनेमा के पर्दे पर आई हैं। कमाल की बात यह है कि दर्शकों का इन्हें दिल खोलकर प्यार भी मिला है। धुरंधर, आर्टिकल 370, उरी, कश्मीर फाइल्स, एक के बाद एक इंसिडेंट्स पर आधारित ये फिल्में पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब कुछ ही दिनों में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम के रूप में, जहां मुंबई हमले की इनसाइड स्टोरी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। आखिर बॉलीवुड में ये चलन कैसे आया और क्यों अब दर्शक असल जिंदगी की घटनाओं को बड़े पर्दे पर जस की तस देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय किसी कल्पना के? चलिए दिखाते हैं आपको।

ये फिल्म काल्पनिक है, इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से आकस्मिक है। लेकिन क्या वाकई सिनेमा की ये घटनाएं आकस्मिक हैं? क्या वाकई ये पात्र, ये कहानी काल्पनिक है? नहीं, क्योंकि वास्तव में ये फिल्म काल्पनिक नहीं है। इसके सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से पूर्व निर्धारित और नियोजित है।

0: सिनेमा हमेशा से कल्पनाओं का संसार रहा है, एक ऐसा जादुई पर्दा जहां रंग है, उमंग है, जिंदगी का सेलिब्रेशन है, जहां बड़े शहरों की चमक है।
1: प्यार करना है, टाइम पास करना है।
2: टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसके भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना।
0: कस्बों गांवों की देसी दमक भी है।
3: समझा, मुझे कुछ काम याद आया।
2: सुनो तो,
0: जहाँ सब कुछ भुला देने वाली मोहब्बत है।
4: अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना।
0: एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है।
1: रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक।
0: जहाँ सुपर हीरो उड़ सकते हैं, एलियंस धरती पर आ सकते हैं।
5: कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए।
0: लेकिन यही सिनेमा जब कल्पनाओं का हाथ छोड़ हकीकत के धरातल पर कदम रखता है तो कुछ अद्भुत होता है।
6: हम आर्टिकल 370 हटाएंगे।
0: जब स्क्रीन पर लिखा आता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो दर्शकों के दिल की धड़कनें बदल जाती
7: है। Let the world also see के इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
0: एक कहानी जो कल्पनाओं के बीच से नहीं उगी, कहानी जो बगले नहीं झांकती, बल्कि परत दर परत खुद को उघाड़ती चलती है और देखने वालों के सामने ठीक वैसी ही उतरती है जैसी वो वास्तविक जीवन में घटित हुई थी। यथार्थ से आंखें मिलाती हुई, अतीत के हर जख्म को हरा करती, हमारी बेबसी को अंडरलाइन करती, हमारी उपलब्धियों का बखान करती।
8: 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते।
0: एक फिल्म जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच को उसी धार, उसी तलखी के साथ, बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, जस का तस हमारे सामने धर देती है, जिसे हमारे आदर्शवाद के सपनों में रंग भरने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बड़े और गहरे सच को ज्यों का त्यों सुनने की सामूहिक असमर्थता और उदासीनता को दरकिनार कर जो हुआ उसे वैसा का वैसा दिखाने के लिए बनाया गया है।
9: कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है।
0: और शायद यही वजह है कि बीते वक्त में असल घटनाओं पर आधारित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया, पर्दे पर प्यार मिला, सोशल मीडिया पर वाहवाही मिली, वर्ड ऑफ माउथ का साथ मिला और ये फिल्में ब्लॉकबस्टर बन गईं। यानी जिस सिनेमा का इजाद ही कभी कहानियां कहने के लिए हुआ था, वहां अब हकीकत पर आधारित फिल्मों का बोलबाला है। आखिर क्यों ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्मों को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है?
10: Your Honor, how can he call me that?
11: I mean by the terrorist lawyer.
0: जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों की इसी लिस्ट में अब शामिल होने वाली है प्रहार। यह फिल्म 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले उस घटना की यादें आज भी सबके जहन में हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। अब एक बार फिर ये घटना पर्दे पर आ रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम। दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म मुंबई के गुनहगार अजमल कसाब को अंजाम तक पहुंचाने वाले केस की हर डिटेल को सिनेमा के पर्दे पर खोल कर रख देगी।
7: जिसने आप पर, आपकी माँ पर गोलियां चलाई थी, वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
13: आई उज्जवल निकम अस Accused Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death.
14: मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे टॉर्चर करके कबूलनामा साइन करवाया इन्होंने। मैं तो बंबई घूमने आया था जनाब, उधर जूहू चौपाटी पे था तो अमिताभ बच्चन का बंगला देखने चला गया, उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोलता है तू ही है टेररिस्ट। और एक बात साहब, मैं 17 साल का हूँ।
13: बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहु नकाब, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
15: न्याय किताबों में लिखा आसान है, पर अदालत में हर फैसला खून पसीना और साहस मांगता है।
0: यही कहानी है पे आतंकी हमला,
15: जिस शहर को डर ने घुटनों पर ला दिया था।
0: यही सार है,
15: उसके लिए एक आदमी अदालत में दीवार बनकर खड़ा हुआ।
0: यही विस्तार है, कसाब को फांसी कैसे हुई, कसाब की गिरफ्तारी, सजा का ऐलान और फांसी की खबर टीवी और अखबारों पर खूब देखी और पढ़ी गई थी।
16: लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। That's the foundation of our legal system.
0: लेकिन अब सिनेमा कहानी के भीतर की परतें दिखाएगा। केस के दौरान वकील और कसाब के बीच क्या बात हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी, और उस बात के पीछे जो न्याय की कसौटी पर कसे जाते समय हर ओर से कही गई। सच को सिनेमा के पर्दे पर उतारने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे ताजा और जोरदार एंट्री है प्रहार की। वो फिल्म जो 26/11 हमलों की भयावहता और घटनाक्रम को दिखाने से दो कदम आगे जाकर मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब के फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी पर्दे पर लेकर आ रही है। केस किसने लड़ा, कैसे लड़ा, कोर्ट में क्या हुआ, क्या इंसाफ मिलने में वाकई देर हुई थी या नहीं हुई देर, और हुई तो क्यों, किसकी वजह से, इन सारे सवालों का जवाब देने 16 अक्टूबर को ये फिल्म पर्दे पर आ रही है।
17: नहीं तो दाऊ के घर चले जाइए कराची में।
13: हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था। इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
0: इस फिल्म का नाता हिंदुस्तान से है, हर एक हिंदुस्तानी से है। घटना करीब 18 साल पुरानी है लेकिन आज भी हर भारतवासी के जेहन में ताजा है। जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था, लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने पूरे 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी को मानो बंधक बना लिया था। भारत के जांबाज जवानों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बस ये फिल्म समझिए उसी के बाद से शुरू होती है। कहानी वही है लेकिन एक नए अंदाज में। नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम। उज्जवल निकम वही वकील हैं जिन्होंने कसब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। उन्हीं को केंद्र में रखकर उनके जरिए न्याय की इस दास्तां को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है।
18: हमें इसकी इजाजत नहीं देता,
19: हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने।
13: ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा। ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाएगा।
0: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है, इस बार पर्दे पर सिर्फ गोली बंदूकें और कत्ल वगारत नहीं दिखाया जाएगा बल्कि सबूत और सच्चाई को जरिया बनाकर उस खौफनाक मंजर को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उनके आकाओं को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। असल जिंदगी में जो हुआ उसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। और इस केस को अंजाम तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम का किरदार फिल्म में राजकुमार राव ने निभाया है।
13: ये केस, ये जो प्रहार पिक्चर है, ये मेनली 26/11 का हमला और थोड़ा अंश 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का है, लेकिन ज्यादातर 26/11 का है। एक बड़ी विशेषता ये फिल्म है, इस फिल्म में असली नाम का इस्तेमाल यूज किए गए हैं। मैंने उज्जवल निकम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। मेरे मिसेस का किरदार है ज्योति, वो वामिका ने निभाया है। ये मेरे लड़के का नाम अनिकेत, वहां भी उसका किरदार है। शर्वरी, उनका भी किरदार है। तो और ये इसलिए उन्होंने ओरिजिनल नाम रखे ताकि इसमें किसी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, एक बड़ी अहम जाए।
7: मुझे केस।
0: ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बंदूक के बजाय संविधान और सबूतों की ताकत से आतंकवादियों की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
7: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
0: और जो वकील इस केस के केंद्र में थे उन्हीं के कानूनी संघर्षों और जीवन की घटनाओं को राजकुमार राव पर्दे पर निभाने वाले हैं।
10: तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म हर क्राइम हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न कर दूं।
20: वो सर हैं, वो ये फिल्म देखेंगे, उनकी फैमिली है वो ये फिल्म देखेंगी और बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्ज्वल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफ कोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: कोर्ट में आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खैर के साथ राजकुमार राव का टशन और टकराव फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। तो इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए इंडिया आए डेलीगेशन को लीड कर रहे जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच कोर्ट में हुई बहस भी जोरदार ढंग से पेश की गई है।
21: जब तक क्रिमिनल सारे जो एक्टर्स है जिस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब शूटिंग चलती थी तो कभी कभी मैं खुद शूटिंग के दिनों वहां जाता था, और पर्टिकुलरली जब ये कोर्ट सीन्स शूट हुए जहां पापा का फाइनल आर्गुमेंट्स हुआ उस समय मैं मौजूद था, मतलब मैं 2008 में भी मौजूद था और इस शूटिंग के समय भी मौजूद था। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने निकम जी का कैरेक्टर पकड़ा है तो बहुत ही लाजवाब है, और मैं चाहता हूं कि लोगों को जब ये 16 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आएगी।
7: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ।
0: फिल्म में उज्जवल निकम की पत्नी का रोल वामिका गब्बी निभा रही हैं। इस हफ्ते मुंबई में प्रहार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया जिसमें एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर अविनाश निकम, प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ खुद उज्जवल निकम भी शामिल हुए। तो वही प्रहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
22: उज्जवल निकम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल किसी आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो उन्होंने उसके पीछे की डिजाइन, उसके पीछे की कॉन्स्पिरसी, इसको दुनिया के सामने उजागर किया, और ये जघन्य अपराध करने वाली इस आतंकवाद को पूरे तरीके से मदद करने वाली जो पाकिस्तान की सोच थी, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करने का काम ये उज्जवल निकम जी ने करके दिखाया।
23: इस बार अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को
0: बताया जा रहा है कि न्याय के लिए उज्जवल निकम की प्रतिबद्धता और जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी के साथ साथ उन तमाम लोगों के पक्ष को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान अपनी जान की बाजी लगाई थी।
24: जो हमारे जहाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान दी, तुकाराम मुंडे जी हो, करकरे जी हो, कामटे जी हो, साळसकर और ऐसे कई लोग जो ये हमले में 167 लोग मारे गए थे, आज मैं उनको पूरा तरह से न्याय मिला ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन विशेषता ये कि हमारे ये संविधान की जीत है। ये उज्जवल निकम तो एक चेहरा था इस फिल्म के माध्यम का, लेकिन असली मेहनत हमारे पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने हमारे साथ दी उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए।
25: क्या आप इस केस को सही अंजाम दे पाएंगे?
10: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म हर क्राइम हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न कर दूं।
0: इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए है प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का ट्रेलर। सोशल मीडिया पर इसे रिस्पांस भी खूब मिल रहा है। उम्मीद है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म भी ट्रेलर जितनी ही जोरदार और असरदार होगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है कि यह फिल्म उज्जवल निकम की अनसुनी कहानी को सामने लाएगी, मतलब मुंबई अटैक के गुनहगारों और उनके आकाओं की कारगुजारी को उज्जवल निकम ने कैसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। यह फिल्म उन तमाम अनसुनी दास्तानों को सामने लाएगी। फिल्म के रिलीज से पहले गुड न्यूज टुडे की टीम ने उज्जवल निकम से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में इतने साल गुजर जाने के बाद भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। चलिए सुन लेते हैं आखिर क्या कह रहे हैं वो वकील जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाने की लड़ाई लड़ी थी।
1: जब मेकर्स आए होंगे तो आप लोगों से पूछा ही होगा कि अरे उज्जवल निकम तो बहुत बड़ा नाम है और ज्यादातर सर आपको लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल में सुना है, लेकिन जिस तरीके से आप अदालत रूम में जाकर के बहस करते हैं और थोड़ा सा अपने अंदाज में दूसरों को प्रेशर दे देते हैं, पसीने निकल आते हैं, वो चीजें अब फिल्मों द्वारा होगी, तो राजकुमार राव ही क्यों सर, आपको क्यों लगा कि यही?
24: देखिये, मैं अविनाश अरुण को इसका क्रेडिट देता हूँ। 3-4 साल पहले अविनाश अरुण और मैडॉक के जब मुझे मिले थे तो थोड़ा मैं साशंक था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि राजकुमार राव आपका कैरेक्टर, मैं भली भांति ज्यादा पिक्चर नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने राजकुमार राव का नाम सुना तो पहले मेरे जहन में तो यह सवाल आया था कि क्या राजकुमार जी मेरा कैरेक्टर निभा कर सकते हैं। और असल में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और फिल्म तो बन रही थी उस टाइम में, फिर बाद में भी फिल्म भी मैंने देखी थोड़ी, तो आई वॉज शॉक्ड। राजकुमार राव इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, सही ढंग में वो एक्टर है। और जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में, वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ, कॉपी मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे कैरेक्टर में चले गए, इसलिए चले गए कि जिस तरह से संवाद करना, जिस तरह बातचीत करना, जिस तरह से कोर्ट में एक यूनिफॉर्म वॉइस में अपना कंटेंशन सबमिशन रखना, पूरी तरह से अच्छा उन्होंने निभाया।
1: मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मेरी तरह बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे, जो अदालत की सीन से 26/11 और जो कसाब के साथ में आपकी बातचीत वगैरह हुई है, ये बाहर लाने की ये ठीक समय है? आपको लगता है कि लोगों को ये बातें जाननी चाहिए कि अदालत में किस तरीके से बहस होती है, कसाब ने क्या कुछ बोला है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी?
24: नहीं, देखिये, ये ठीक होना ना ठीक होना ये इसमें कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 3 दिन अटैक चल रहा था, उसके लाइव तस्वीरें आ रहे थे पेपर में, कसाब का चेहरा आ रहा था, फिर भी उसको जल्दी में फांसी क्यों नहीं है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
1: अच्छा, प्रहार का ट्रेलर तो मैंने बताया, 3 बार मैंने देखा, क्या आप भी दिखेंगे इस पूरे फिल्म में, किसी एक सीन में आप और सामने राजकुमार राव को मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा होने वाला है?
24: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर है, हम तो एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को न्याय दिया है, ऐसा मैं कहूंगा।
1: सर, जो आपका किरदार है इस दुनिया में और उस पर अब फिल्म भी बन रही है, मतलब एक स्पेशल है, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आप पर फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्मों से कितना जुड़े हैं, पसंद है फिल्में देखते हैं आप?
24: मैं बहुत कम फिल्म देखता हूं, ये तो बात है।
1: कौन सी देखी थी सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी?
24: कौन सी देखी थी? तो
1: मतलब नहीं देखते, मतलब ना
24: देखा है, पर इतना मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा, उसी वक्त
21: थिएटर्स में ज्यादा जाते नहीं है, जो जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी पे जो लगती है कभी कभार देख लेते हैं हम सब मिल करके।
1: अच्छा, नहीं, 26/11 पे सर काफी फिल्में बनी हैं, काफी वेब सीरीज बने हैं, आपने कभी ट्राई करा कि नहीं देख लूं भाई कुछ?
24: नहीं, मैंने वो नहीं देखी है। अच्छा। क्योंकि ये देखो, ये फिल्म ऐसी है प्रहार, ये रियल उन्होंने इंसिडेंट फैक्ट्स बताए जो मेरे लाइफ में घटना हुई है, चाहे मैं 26/11 के हमले के दिन कहां था, चाहे मेरा अनिकेत तो छोटा था उस वक्त, उसका मेरा बर्ताव घर में कैसा, ज्योति मिसेस जो है वो किस पे थी, क्या थी, लड़की शर्वरी, इनका ये दिखाया है, ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि
12: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चलिए अब बात फैशन की कर लेते हैं। पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है। लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट ने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया है। सेंट लॉरेंट ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड गोल्ड लुक भी क्रिएट किया है, जिसे सबका दिल जीत लिया है।

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के शानदार डिजाइन की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर्ड टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेट स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे होने का प्रतीक था।

0: Bureau Report, Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल, 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा, 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में शुक्रवार को रहा भारत के लिए गोल्डन डे, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु, जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार, आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2 से 3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी, कुम्हारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार, भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान, सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन, अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: सर मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यहीं से सच और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पहाड़ के ढहने का ये भयावह दृश्य नेपाल का है। क्या है इस वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: तो सबसे पहले बात वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जमुई नाबालिग छात्रा बदसलूकी केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों का एनकाउंटर किया। वीडियो में 2 घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इस दावे की पड़ताल की।
6: सितंबर को बिहार के जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई बदसलूकी मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 मुख्य अभियुक्तों नंदन यादव और हरिराम यादव की गिरफ्तारी 22 सितंबर को एनकाउंटर के बाद हुई थी। इसमें नंदन यादव को गोली लगी थी। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें दो घायल युवकों को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि जमुई मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। एक यूजर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, जमुई में लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में शामिल दो और अपराधियों का पुलिस एनकाउंटर। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग सम्राट सरकार और बिहार पुलिस की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
3: बिहार के जमुई जिले में 19 सितंबर को एक नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई थी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सम्राट सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया, जबकि एक और आरोपी हरिराम यादव भागने के दौरान घायल हो गया। हाल ही में दो और आरोपियों सौरभ राम और छोटू राम की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन सबके बीच अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। खबर ये फैलाई जा रही है कि जमुई कांड में शामिल दो और आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। तेजी से ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, हमारा भी ध्यान इस वीडियो की तरफ गया और हमने इसकी पड़ताल शुरू की। किसी खेत का ये वीडियो लग रहा है, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में दो लोग नजर आ रहे हैं और दोनों के दाएं पैर में पट्टी बंधी हुई है। वो बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि पुलिस के साथ इन दोनों लोगों का मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर के बाद इन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के बैच पर भी गया। जब हमने इसे जूम करके बारीक नजरों से देखा तो इस पर यूपी पुलिस लिखा हुआ था। अब ये देखकर हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद हमने वायरल वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। इसमें पुलिसकर्मी जिस लहजे में बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त इस तरह की भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है। बता दें कि जमुई कांड में मुख्य आरोपी नंदन यादव और उसके सहयोगी हरिराम यादव को एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया था, जिसके तुरंत बाद इन दोनों को अस्पताल में ले जाया गया और इसके बाद कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस दौरान ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि जमुई पुलिस ने दो और आरोपियों का एनकाउंटर किया है। ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इस वीडियो के साथ ये खबर मुख्यधारा की मीडिया में क्यों नजर नहीं आ रही है। जमुई कांड को लेकर पुलिस लगातार मीडिया को अपडेट दे रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि अगर मुठभेड़ का दावा सच्चा है तो फिर इसमें यूपी पुलिस क्या कर रही है।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगा, वैसे ही लोग इस वीडियो के जरिए एक राय बनाने लगे। लेकिन हमें इस वीडियो का सच झूठ जानना था, लिहाजा हमने वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 7 सितंबर 2026 को छपी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल हो रहे वीडियो जैसी ही एक तस्वीर थी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छपार थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 14 वर्षीय लड़की के साथ हुए कथित दुराचार के मामले में दो आरोपियों वालीन और सलमान को गिरफ्तार किया है। उनके पैर में गोली लगी है। मामले में एक अन्य आरोपी समीर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सर्च के दौरान ही हमें 6 सितंबर 2026 को छपी एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि मुजफ्फरनगर के रेता नंगला गांव के जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए। बता दें कि तीन आरोपियों ने जन्माष्टमी पर घर से निकली लड़की को कथित तौर पर अगवा कर लिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि जमुई केस में दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दो और आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर का दावा गलत है। वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करेंगे उस खबर की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ये नेपाल की खबर है। सबसे शॉकिंग वीडियो है, पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, चंद सेकंड में पूरी सड़क पर तबाही मचाती है। इस वीडियो पर भी हमने पड़ताल की।
6: लगातार बारिश के कारण नेपाल में एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों से बाढ़ और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल में इस वक्त बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। अब इसी संदर्भ में बहुमंजिला इमारतों के बीच पहाड़ से भारी मात्रा में अचानक मलबा गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये दृश्य नेपाल में पहाड़ गिरने की घटना का है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, नेपाल में पहाड़ के ढहने का भयावह दृश्य। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। लोग नेपाल के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं।
3: अगस्त की तबाही से नेपाल अभी तक उबर भी नहीं पाया कि एक बार फिर से हालात बद से बदतर होने शुरू हो गए। नेपाल के कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, कई लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस बीच ये वीडियो अचानक से सुर्खियों में आया। वीडियो में पहाड़ से भारी भरकम मलबा अचानक से गिरने लगता है, फिर चंद सेकंड में ही सड़क पर तबाही मच जाती है। दावा यह किया जाता है कि वीडियो नेपाल का है और इस वीडियो पर फैक्ट चेक टीम ने भी नजर डाली। हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि अगस्त के बाद अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में बाढ़ बारिश के प्रहार से एक बार फिर से नेपाल में भारी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन हमें ये जानना था कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का ही है। इसके लिए हमने वीडियो को देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिसके बाद हमें इस पर शक हुआ, हमें इसकी वास्तविकता पर भी शक हुआ। वीडियो में मलबा बहुमंजिला इमारत के बिल्कुल किनारे से तेज गति से नीचे गिरता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो जस की तस खड़ी है। इसके अलावा मलबे के गिरने और सड़क पर फैलने का तरीका भी सामान्य नहीं लग रहा है। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की कोई हलचल या उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो बड़े आराम से इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि सामने से मौत आ रही है लेकिन लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। बाढ़ और बारिश की वजह से इस बार नेपाल मुश्किल में है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेपाल से जुड़ी हर खबर दिखा रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों दिखाया जा रहा है। हमारा तीसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा।
6: नेपाल बाढ़ के नाम से वायरल हो रहा ये वीडियो हमारे सामने भी आया। सोशल मीडिया पर इसे लगातार फैलाया जा रहा था, लिहाजा सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। नेपाल को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। फैक्ट चेक टीम अब इस वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो को देखने से हमें इसमें कई खामियां नजर आईं। उदाहरण के लिए, ऊपर से भारी मात्रा में मलबा गिरने के दौरान सड़क पर खड़े लोगों में किसी तरह की हलचल या प्रतिक्रिया नजर नहीं आती। ये देखकर हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके बाद हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को 83.2% संभावना के साथ AI निर्मित बताया। नेपाल में पहाड़ ढहने का बताकर वायरल हुए वीडियो का सच जानने के लिए हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल 0GPT पर भी जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को उच्च संभावित AI जनरेटेड बताया। इसके अलावा एक और AI डिटेक्टर प्लेटफॉर्म AI और नॉट ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को उच्च संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी जांच में मिले सबूतों से स्पष्ट है कि नेपाल में पहाड़ ढहने के दावे से वायरल हो रहा ये वीडियो AI जनरेटेड है। इसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
10: ये दिल छू लेने वाला पल लोगों का दिल जीत रहा है। एक लड़की भोजन के दौरान अपने पिता की हर हरकत को बहुत ध्यान से देखकर बिल्कुल वैसे ही पूजा करती और अनुशासन अपनाती नजर आ रही है। लोग इस वीडियो को बड़ों से सीख की आदत और भारतीय संस्कृति की संस्कारों से जोड़कर काफी पसंद कर रहे हैं। न कोई बड़ा स्टूडियो, न महंगे माइक, न लाइट कैमरे का झंझट, बस पीछे अरुणाचल के पहाड़, चारों तरफ हरियाली और सामने की तीनों बहने। ऐसी सादगी में जब इनकी सुरीली आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे पहाड़ भी गाना सुन रहे हैं। इनके गाने का अंदाज बिल्कुल

0: सिंह का नगमजन और लिली अरुणाचल के लॉन्गडिंग जिले के एक छोटे से गांव बानू की रहने वाली है। गांव की उसी कच्ची नेचुरल लोकेशन पर खड़े होकर इन्होंने ये गाना गाया है और इस सादगी का ही जादू है कि ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह से फैल गया है। शहर हो या गांव, अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको पहचान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इन दिनों बिहार की एक लड़की का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो गांव के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ाती नजर आ रही है। जिस आत्मविश्वास के साथ वो अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का उच्चारण कर रही है, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो सिर्फ शब्द बोलकर आगे नहीं बढ़ जाती है, बल्कि बच्चों को उसका सही उच्चारण भी समझाती है। उसका पढ़ाने का अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वो बिना किसी बड़े क्लासरूम, प्रोजेक्टर या महंगे संसाधनों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रही है।
1: ये मुझे बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है, ये मुझे ढूंढती रहती है अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो।
0: लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल, मतलब कई बार जीवन में हुई घटनाएं, रिश्ते और अनुभव अक्सर बदलाव के साथ वही लौट आते हैं जहां वो शुरू हुए हैं।
1: मेरी दादी, जब भी मैं खा रही हूँ, सो रही हूँ, बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, मेरे को मेरी दादी या मम्मी में से कोई चाहिए। अगर बाई चांस वो मुझसे थोड़ा भी दर दर हो जाते ना तो मैं चिल्लाने लगती हूँ, रोने लगती हूँ, ऐसी थी मैं।
0: इंटरनेट पर वायरल दादी पोती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर लोग अपने दादा दादी को भी याद कर रहे हैं।
1: जब तक की सोनी जाती फिर मैं उठ जाती हूँ और अपना काम करती हूँ। अगर ये मुझे देख लेती है कि मैं उठ गई हूँ तो फिर से मुझे ढूंढने चली जाती है कि मैं कहाँ गई। मेरे बच्ची वाला जो वर्जन है वो एग्जैक्ट मेरी दादी है। आज बूढ़े होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, दैट इज 100% ट्रुथ।
0: एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने माता पिता को स्टेशन पर विदा करते हुए जो पल कैद किया उसने हजारों लोगों के दिल को छू लिया है। खुशी ट्रेन की खिड़की से अपनी माँ और पिता को देख रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े माता पिता मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं, पिता भी मोबाइल निकालकर बेटी का वीडियो या फोटो ले रहे हैं। दोनों तरफ से यादों को संजोने की कोशिश साफ दिख रही है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दूर बढ़ जाती है, लेकिन माता पिता तब तक हाथ हिलाते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं जब तक कि बेटी की झलक गायब नहीं हो जाती। ये दृश्य कई लोगों को अपने माता पिता की याद दिला रहा है। दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लैब ढोल ताशे बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजी है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड पे आ जाता है। ढोल की तरह बीट के साथ वो अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहाँ मौजूद लोग टकटकी लगाए उसे देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वो अपने हाथों से भागड़ा स्टाइल मूव करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का ये एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स अपने कदम रोक लेता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात शक्ति, साहस और संरक्षण की दिव्य प्रतीक मां दुर्गा की। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होने में 10 दिनों से कम का वक्त बचा है। देश भर में मूर्तिकार आदिशक्ति की प्रतिमा को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। बंगाल के शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दुर्गा प्रतिमाएं पूरी होने के दौर में है। यहां अधर्म, अन्याय और अहंकार के विनाश की प्रतीक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं में बंगाल की छाप साफ दिखाई दे रही है।

0: भवानी, चंडिका, शेरावाली, जगदम्बा और महिषासुरमर्दिनी विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा के किसी भी नाम का आह्वान करें तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। आदि शक्ति की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। नौ दिनों के बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। 11 अक्टूबर से हर तरफ जय माता दी के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होने वाला है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। झांसी में बंगाली मूल का एक परिवार पिछले 34 साल से हर साल माँ की प्रतिमाओं को साकार करने की साधना से जुड़ा है। 4 महीने से ये बंगाली परिवार माँ के अलग अलग स्वरूपों को बेहद कलात्मक तरीके से सजीव करता है। 122 दिनों के अंतराल में करीब 160 प्रतिमाओं को अलग अलग रूपों को भव्य और सुंदर चित्रण किया जाता है। झांसी की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में बंगाल की कला, मिट्टी और पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। आधुनिक थीम वाली मूर्तियों के इस दौर में भी बंगाल की पारंपरिक साका और डाकर साज शैली यानी विशेष मुकुट, चौड़ी आंखें और भावपूर्ण चेहरे वाली माँ दुर्गा की मूर्तियों की भारी डिमांड होती है।
1: देखो, मूर्ति दुर्गा जी मूर्ति पुराना स्टाइल छोड़ कर आप जाएगा ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो परंपरा चल रहा है वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अभी जो नया नया डिजाइन ये फलाना बना दो, ये बना दो, वो बेकार है। एक दिन चलेगी, दो दिन चलेगी, चार उसके बाद नहीं चलेगी। पूरा कलकत्ता हमारा सिंगर से कपड़ा से सब कलकत्ता का है। शेर का हम लोग खाल चलाता है, यहाँ पर मिट्टी लगा देगा, हम लोग ऐसे काम नहीं करता। ओरिजिनल कैसे कलकत्ता होता है ठीक वैसा ही करता है काम।
2: लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार करते हैं?
1: हमारा कितना है, 150-160 ऐसा ही होगा। 200 नहीं आएगा, ये हम ऐसे ज्यादा बनाएंगे नहीं। गिराक हमारे पास बहुत है, हम बनाएंगे नहीं, हिसाब से नहीं जाएगा बाहर। अब लोकल वाला जो लोग बनाता है,
2: आपका केवल बंगाली पैटर्न है?
1: हमारा बंगाली पैटर्न कलकत्ता में पिक किया।
0: एक एक प्रतिमा को तैयार करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले भूसे से ढांचा तैयार किया जाता है, इसके बाद मिट्टी की परतें चढ़ाकर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। बारीक कारीगरी के बाद रंग और फिर अंतिम चरण में कोलकाता से लाए गए वस्त्र, मुकुट और आभूषण लगाए जाते हैं। झांसी की इन दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने के दौरान पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जल, जमीन और वायु में प्रदूषण न फैले, इसके लिए प्रतिमाओं के निर्माण में POP का इस्तेमाल नहीं किया जाता। निर्माण में अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोलकाता से लाई जाने वाली गंगा नदी की मिट्टी के साथ स्थानीय तौर पर मिलने वाली काली और लाल मिट्टी भी शामिल है। दुर्गा प्रतिमाओं को रंगने के लिए पौधों, फूलों, सब्जियों, फलों के छिलकों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।
1: मिट्टी हमारा तो कलकत्ता से आता है, 3-4 प्रकार का मिट्टी है, मिक्स करके काम करना पड़ता है। हमारा जो मिट्टी है कोई नुकसान वाली काम नहीं है। हमारा गंगा जी का मिट्टी आधा मिट्टी गंगा जी का है, जो वहाँ कदम पानी के अंदर उठाना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है, तब वहाँ कलकत्ता आता है। कलकत्ता से कलर हमारा नॉर्मल कलर है, ऑयल पेंट कलर नहीं है।
0: साल से इस कार्यशाला में बनने वाली माँ दुर्गा की 90% प्रतिमाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। बंगाली पैटर्न की प्रतिमाओं की मांग झांसी के अलावा बुंदेलखंड के दूसरे इलाकों से भी आती है।
3: इस बार 200 मूर्ति बनाए हैं, ठीक है, लगभग 90% तो बुक ही हो चुका है, अभी 10% चल रहा है, अभी 10 दिन बचा है अभी तक।
2: कितने लोग लगते हैं और कितने दिन से आप काम चालू कर रहे हैं?
3: जब क्या है मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगता है, क्योंकि वो घास बांधना, मिट्टी लगाना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम रहता है, इसीलिए उस टाइम 10-12 आदमी रहता है। इस टाइम जो सिंगर के टाइम पे 8-10 आदमी है।
0: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा के नौ रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए दिल्ली में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्यता के साथ विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे माँ के आगमन से पहले ही शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के मन में उत्साह नजर आता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चीन में इन दिनों संस्कृति और जश्न के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन हो या रात, देश के अलग अलग हिस्सों में त्यौहार सी रौनक है और इसकी वजह है चीन का राष्ट्रीय दिवस, जो वहां के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जिससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है।

0: दिनों उत्सवी माहौल है। एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियों को बनाने के लिए देश भर में खास कल्चरल टूरिज्म इवेंट्स शुरू किए गए हैं। इनमें पुरानी वास्तुकला, लाइट शो, पारंपरिक लालटेन और त्योहारों वाली लाल सजावट का मेल देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को राष्ट्रीय झंडे और फूलों से सजाया गया है और रात में शानदार आतिशबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का शो हुआ। 23 मिनट के इस शो को देखने के लिए शहर के वाटरफ्रंट पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। इन रंग बिरंगी रोशनियों ने हार्बर के आसमान को जगमगा दिया। लोग आतिशबाजी से रंगीन आसमान की तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखे। इसमें स्थानीय लोगों के साथ विदेशों से आए पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के तांगजुए गांव में रोशनी वाली बड़ी बड़ी मछली के आकार की लालटेन का जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस गांव के ऐतिहासिक इलाकों से गुजरा। ये जुलूस गांव की सांस्कृतिक विरासत और रात के समय होने वाले कार्यक्रमों का एक अनूठा संगम है। चीन में एक हफ्ते की नेशनल डे की छुट्टियां दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इस समय को जिन्हें गोल्डन वीक कहते हैं, इस दौरान बड़े पैमाने पर दुनिया भर के सैलानी चीन की यात्रा पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: एशियन गेम्स में चीन को हराकर भारतीय महिला हॉकी ने जीता गोल्ड मेडल। 44 साल बाद देश की बेटियों ने फिर सोने पर जमाया कब्जा। 2028 ओलंपिक के लिए टीम इंडिया ने किया क्वालिफाई। एशियाई खेलों में शुक्रवार को रहा भारत के लिए गोल्डन डे। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की हैट्रिक, कुश्ती और आर्चरी में भी सोना। लंबे वीकेंड के चलते उत्तराखंड में उमड़े श्रद्धालु। जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आधे घंटे का सफर पूरा करने में लग रहे 2-3 घंटे। महाराष्ट्र के अकोला में शारदीय नवरात्रि की जोरदार तैयारी। कुम्भारवाड़ा में माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। भक्तों की डिमांड पर यहां तैयार होती है 125 फीट ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को मिली नई पहचान। सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। अगले 2 महीनों में मिलेंगे 3 और बाघ।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं TNT स्पेशल। इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने कहा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। लेकिन क्या सत्य? कल्पना से दिलचस्प ही होता है। इस सवाल की जड़ में है वो चलन जो हाल ही के दौर में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर नजर आया है। हाल ही के सालों में एक के बाद एक सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में सिनेमा के पर्दे पर आई हैं। कमाल की बात यह है कि दर्शकों का इन्हें दिल खोलकर प्यार भी मिला है। धुरंधर, आर्टिकल 370, उरी, कश्मीर फाइल्स, एक के बाद एक इंसिडेंट्स पर आधारित ये फिल्में पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब कुछ ही दिनों में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम के रूप में, जहां मुंबई हमले की इनसाइड स्टोरी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। आखिर बॉलीवुड में ये चलन कैसे आया और क्यों अब दर्शक असल जिंदगी की घटनाओं को बड़े पर्दे पर जस की तस देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय किसी कल्पना के, चलिए दिखाते हैं आपको।

ये फिल्म काल्पनिक है, इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से आकस्मिक है। लेकिन क्या वाकई सिनेमा की ये घटनाएं आकस्मिक हैं? क्या वाकई ये पात्र, ये कहानी काल्पनिक है? नहीं, क्योंकि वास्तव में ये फिल्म काल्पनिक नहीं है। इसके सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी घटना या स्थान से समानता पूरी तरह से पूर्व निर्धारित और नियोजित है।

0: सिनेमा हमेशा से कल्पनाओं का संसार रहा है, एक ऐसा जादुई पर्दा जहां रंग है, उमंग है, जिंदगी का सेलिब्रेशन है, जहां बड़े शहरों की चमक है।
1: प्यार करना है, टाइम पास करना है।
2: टाइम पास भी ऐसी किसी के भी साथ तो नहीं कर सकती ना, उसके भी लाइक कोई मिलना चाहिए ना।
0: कस्बों गांवों की देसी दमक भी है।
3: समझा, मुझे कुछ काम याद आया।
2: सुनो तो,
0: जहां सब कुछ भुला देने वाली मोहब्बत है।
4: अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना।
0: एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है।
1: रोक तो ले भाई, क्या कर रहा है, एक बार तो रोक।
0: जहां सुपर हीरो उड़ सकते हैं। एलियंस धरती पर आ सकते हैं।
5: कुछ एलियंस के पैरों के निशान जंगल की तरफ गए तो थे, उनमें से एक के पैरों के निशान स्पेसशिप की तरफ वापस नहीं आए।
0: लेकिन यही सिनेमा जब कल्पनाओं का हाथ छोड़ हकीकत के धरातल पर कदम रखता है तो कुछ अद्भुत होता है।
6: हम आर्टिकल 370 हटाएंगे।
0: जब स्क्रीन पर लिखा आता है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो दर्शकों के दिल की धड़कनें बदल जाती
7: है। द वर्ल्ड आल्सो सी के इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारे लिए आतंकवादी के लिए भी संविधान है, और उनके यहाँ पर तो आतंकवाद ही संविधान है।
0: एक कहानी जो कल्पनाओं के बीच से नहीं उगी, कहानी जो बगले नहीं झांकती बल्कि परत दर परत खुद को उघाड़ती चलती है, और देखने वालों के सामने ठीक वैसी ही उतरती है जैसी वो वास्तविक जीवन में घटित हुई थी। यथार्थ से आंखें मिलाती हुई, अतीत के हर जख्म को हरा करती, हमारी बेबसी को अंडरलाइन करती, हमारी उपलब्धियों का बखान करती।
8: 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते।
0: एक फिल्म जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच को उसी धार उसी तलखी के साथ बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए जस का तस हमारे सामने धर देती है, जिसे हमारे आदर्शवाद के सपनों में रंग भरने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बड़े और गहरे सच को ज्यों का त्यों सुनने की सामूहिक असमर्थता और उदासीनता को दरकिनार कर जो हुआ उसे वैसा का वैसा दिखाने के लिए बनाया गया है।
9: कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है।
0: और शायद यही वजह है कि बीते वक्त में असल घटनाओं पर आधारित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया, पर्दे पर प्यार मिला, सोशल मीडिया पर वाहवाही मिली, वर्ड ऑफ माउथ का साथ मिला, और ये फिल्में ब्लॉकबस्टर बन गई। यानी जिस सिनेमा का इजाद ही कभी कहानियां कहने के लिए हुआ था, वहां अब हकीकत पर आधारित फिल्मों का बोलबाला है। आखिर क्यों ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित फिल्मों को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है?
10: योर ऑनर, हाउ कैन यू कॉल मी दैट?
11: आई मीन बाय द टेररिस्ट लॉयर।
0: जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों की इसी लिस्ट में अब शामिल होने वाली है प्रहार। यह फिल्म 26/11 मुंबई हमले पर आधारित है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए हमले को हम सब ने देखा। करीब 18 साल पहले उस घटना की यादें आज भी सबके जहन में हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। अब एक बार फिर यह घटना पर्दे पर आ रही है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से नया है। फिल्म का नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम। दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म मुंबई के गुनहगार अजमल कसाब को अंजाम तक पहुंचाने वाले केस की हर डिटेल को सिनेमा के पर्दे पर खोलकर रख देगी।
13: जिसने आप पर आपकी मां पर गोलियां चलाई थी वो आज है यहाँ इस कोर्ट में।
14: आई उज्ज्वल निकम अस Accused Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death.
15: मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे टॉर्चर करके कबूलनामा साइन करवाया इन्होंने। मैं तो बंबई घूमने आया था जनाब, उधर जू चपाटी पे था तो अमिताभ बच्चन का बंगला देखने चला गया, उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोलता है तू ही है टेररिस्ट। और एक बात साहब, मैं 17 साल का हूँ।
14: बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक ला ही दिया हमने तुझे कसाब।
16: न्याय किताबों में लिखा आसान है, पर अदालत में हर फैसला खून पसीना और साहस मांगता है।
0: यही कहानी है
17: मुंबई पे आतंकी हमला,
16: जिस शहर को डर ने घुटनों पर ला दिया था।
0: यही सार है,
16: उसके लिए एक आदमी अदालत में दीवार बनकर खड़ा हुआ।
0: यही विस्तार है, कसाब को फांसी कैसे दी, कसाब की गिरफ्तारी, सजा का ऐलान और फांसी की खबर टीवी और अखबारों पर खूब देखी और पढ़ी गई थी।
18: लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। That's the foundation of our legal system.
0: लेकिन अब सिनेमा कहानी के भीतर की परतें दिखाएगा। केस के दौरान वकील और कसाब के बीच क्या बात हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी, और उस बात के पीछे जो न्याय की कसौटी पर कसे जाते समय हर ओर से कही गई। सच को सिनेमा के पर्दे पर उतारने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे ताजा और जोरदार एंट्री है प्रहार की। वो फिल्म जो 26/11 हमलों की भयावहता और घटनाक्रम को दिखाने से दो कदम आगे जाकर मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब के फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी पर्दे पर लेकर आ रही है। केस किसने लड़ा, कैसे लड़ा, कोर्ट में क्या हुआ, क्या इंसाफ मिलने में वाकई देर हुई थी या नहीं हुई देर, और हुई तो क्यों, किसकी वजह से, इन सारे सवालों का जवाब देने 16 अक्टूबर को ये फिल्म पर्दे पर आ रही है।
19: नहीं तो दाऊ के घर चले जाइए कराची में।
14: हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था। इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
0: इस फिल्म का नाता हिंदुस्तान से है, हर एक हिंदुस्तानी से है। घटना करीब 18 साल पुरानी है लेकिन आज भी हर भारतवासी के जेहन में ताजा है। जब 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने पूरे 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी को मानो बंधक बना लिया था। भारत के जांबाज जवानों ने 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बस ये फिल्म समझिए उसी के बाद से शुरू होती है। कहानी वही है लेकिन एक नए अंदाज में। नाम है प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम। उज्जवल निकम वही वकील हैं जिन्होंने कसब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। उन्हीं को केंद्र में रखकर उनके जरिए न्याय की इस दास्तां को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है।
20: हमें इसकी इजाजत नहीं देता,
21: हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने।
14: ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा। ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया है।
0: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है, इस बार पर्दे पर सिर्फ गोली बंदूकें और कत्लोगारत नहीं दिखाया जाएगा बल्कि सबूत और सच्चाई को जरिया बनाकर उस खौफनाक मंजर को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके आगाहों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा, असल जिंदगी में जो हुआ उसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। और इस केस को अंजाम तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम का किरदार फिल्म में राजकुमार राव ने निभाया है।
14: ये केस, ये जो प्रहार पिक्चर है, ये मेनली 26/11 का हमला और थोड़ा अंश 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का है, लेकिन ज्यादातर 26/11 का है। एक बड़ी विशेषता ये फिल्म में, इस फिल्म में असली नाम का इस्तेमाल यूज किए गए हैं। मेरे उज्जवल निकम है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। मेरे मिसेस का किरदार है ज्योति, वो वामिका ने निभाया है। ये मेरे लड़के का नाम अनिकेत, वहां भी उसका किरदार है। शर्वरी, उनका भी किरदार है। तो और ये इसलिए उन्होंने ओरिजिनल नाम रखे ताकि इसमें किसी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन नहीं, एक बड़ी अहम जाए।
0: ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बंदूक के बजाय संविधान और सबूतों की ताकत से आतंकवादियों की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया।
3: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ है।
0: और जो वकील इस केस के केंद्र में थे उन्हीं के कानूनी संघर्षों और जीवन की घटनाओं को राजकुमार राव पर्दे पर निभाने वाले हैं।
17: तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
22: सर हैं वो ये फिल्म देखेंगे, उनकी फैमिली है वो ये फिल्म देखेंगी और बहुत सारे उनके जानने वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्ज्वल निकम जी को देखें, तो उसके लिए मेहनत थी। ऑफ कोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: कोर्ट में आतंकी कसाब के वकील बने सिकंदर खैर के साथ राजकुमार राव का टशन और टकराव फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। तो इस्लामाबाद से कसाब को बचाने के लिए इंडिया आए डेलीगेशन को लीड कर रहे जयदीप अहलावत और राजकुमार के बीच कोर्ट में हुई बहस भी जोरदार ढंग से पेश की गई है।
23: सारे जो एक्टर्स है जिस तरह से उन्होंने रोल परफॉर्म किया है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब शूटिंग चलती थी तो कभी कभी मैं खुद शूटिंग के दिनों वहां जाता था, और पर्टिकुलरली जब ये कोर्ट सीन्स शूट हुए जहां पापा का फाइनल आर्गुमेंट हुआ उस समय मैं मौजूद था, मतलब मैं 2008 में भी मौजूद था और इस शूटिंग के समय भी मौजूद था। तो जिस तरह से राजकुमार जी ने निकम जी का कैरेक्टर पकड़ा है तो बहुत ही लाजवाब है, और मैं चाहता हूं कि लोगों को जब ये 16 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी तो निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आएगी।
3: मुझे डर नहीं लगता क्योंकि तू मेरे साथ।
0: फिल्म में उज्जवल निकम की पत्नी का रोल वामिका गब्बी निभा रही हैं। इस हफ्ते मुंबई में प्रहार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया जिसमें एक्टर राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर अविनाश निकम, प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ खुद उज्जवल निकम भी शामिल हुए। तो वही प्रहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
24: उज्जवल निकम जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल किसी आतंकवादी को फांसी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो उन्होंने उसके पीछे की डिजाइन, उसके पीछे की कॉन्स्पिरसी, इसको दुनिया के सामने उजागर किया, और ये जघन्य अपराध करने वाली इस आतंकवाद को पूरे तरीके से मदद करने वाली जो पाकिस्तान की सोच थी, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इसको दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करने का काम ये उज्जवल निकम जी ने करके दिखाया।
25: इस बार अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को
0: बताया जा रहा है कि न्याय के लिए उज्जवल निकम की प्रतिबद्धता और जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी के साथ साथ उन तमाम लोगों के पक्ष को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान अपनी जान की बाजी लगाई थी।
14: जो हमारे जहाबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान दी, तुकाराम मुंडे जी हो, करकरे जी हो, कामटे जी हो, साळसकर और ऐसे कई लोग जो ये हमले में 167 लोग मारे गए थे, आज मैं उनको पूरा तरह से न्याय मिला ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन विशेषता ये कि हमारे ये संविधान की जीत है। ये उज्जवल निकम तो एक चेहरा था इस फिल्म के माध्यम का, लेकिन असली मेहनत हमारे पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने हमारे साथ दी उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए।
19: क्या आप इस केस को सही अंजाम दे पाएंगे?
17: ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसका हर जुर्म, हर क्राइम, हर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब न करूं।
0: इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए है प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम का ट्रेलर। सोशल मीडिया पर इसे रिस्पांस भी खूब मिल रहा है। उम्मीद है कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म भी ट्रेलर जितनी ही जोरदार और असरदार होगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर है कि यह फिल्म उज्जवल निकम की अनसुनी कहानी को सामने लाएगी, मतलब मुंबई अटैक के गुनहगारों और उनके आकाओं की कारगुजारी को उज्जवल निकम ने कैसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। यह फिल्म उन तमाम अनसुनी दास्तानों को सामने लाएगी। फिल्म के रिलीज से पहले गुड न्यूज टुडे की टीम ने उज्जवल निकम से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जिनके बारे में इतने साल गुजर जाने के बाद भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। चलिए सुन लेते हैं आखिर क्या कह रहे हैं वो वकील जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाने की लड़ाई लड़ी थी।
1: जब मेकर्स आए होंगे तो आप लोगों से पूछा ही होगा कि अरे उज्जवल निकम तो बहुत बड़ा नाम है और ज्यादातर सर आपको लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल में सुना है, लेकिन जिस तरीके से आप अदालत रूम में जाकर के बहस करते हैं और थोड़ा सा अपने अंदाज में दूसरों को प्रेशर दे देते हैं, पसीने निकल आते हैं, वो चीजें अब फिल्मों द्वारा होगी, तो राजकुमार राव ही क्यों सर, आपको क्यों लगा कि यही?
14: देखिए मैं अविनाश अरुण को इसका क्रेडिट देता हूँ। 3-4 साल पहले अविनाश अरुण और मैडॉक के जब मुझे मिले थे तो थोड़ा मैं साशंक था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि राजकुमार राव आपका कैरेक्टर, मैं भली भांति ज्यादा पिक्चर नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने राजकुमार राव का नाम सुना तो पहले मेरे जहन में तो यह सवाल आया था कि क्या राजकुमार जी मेरा कैरेक्टर निभा कर सकते हैं। और असल में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और फिल्म तो बन रही थी उस टाइम में, फिर बाद में अभी फिल्म भी मैंने देखी थोड़ी, तो आई वॉज शॉक्ड। राजकुमार राव इज अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, सही ढंग में वो एक्टर है। और जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में, वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ, कॉपी मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे कैरेक्टर में चले गए, इसलिए चले गए कि जिस तरह से संवाद करना, जिस तरह बातचीत करना, जिस तरह से कोर्ट में एक यूनिफॉर्म वॉइस में अपना कंटेंशन सबमिशन रखना, पूरी तरह से अच्छा उन्होंने निभाया।
1: मेरा एक बहुत अहम सवाल है और मेरी तरह बहुत लोग ये सोच भी रहे होंगे, जो अदालत की सीन से 26/11 और जो कसाब के साथ में आपकी बातचीत वगैरह हुई है, ये बाहर लाने की ये ठीक समय है? आपको लगता है कि लोगों को ये बातें जाननी चाहिए कि अदालत में किस तरीके से बहस होती है, कसाब ने क्या कुछ बोला है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी?
14: नहीं देखिये, ये ठीक होना ना ठीक होना ये इसमें कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर हमारे देश पर कोई इस तरह से आतंकवादी करेगा तो उसको हम कानून के माध्यम से भी सबक दे सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद। तीसरी बात तो ये भी अहम है कि बंबई पे इतना इस ट्रायल को वक्त क्यों लगा, एक अजैन सवाल था, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 3 दिन अटैक चल रहा था, उसके लाइव तस्वीरें आ रही थी पेपर में, कसाब का चेहरा आ रहा था, फिर भी उसको जल्दी में फांसी क्यों नहीं है? इसके सारे सवालों का जवाब आपको प्रहार में मिलेगा, आप जरूर प्रहार देखिए।
1: अच्छा, प्रहार का ट्रेलर तो मैंने बताया, 3 बार मैंने देखा, क्या आप भी दिखेंगे इस पूरे फिल्म में, किसी एक सीन में आप और सामने राजकुमार राव को मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा होने वाला है?
14: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म एक्टर है, हम तो एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को न्याय दिया है, ऐसा मैं कहूंगा।
1: सर, जो आपका किरदार है इस दुनिया में और उस पर अब फिल्म भी बन रही है, मतलब एक स्पेशल है आप, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग आप पर फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्मों से कितना जुड़े हैं, पसंद है फिल्में देखते हैं आप?
14: मैं बहुत कम फिल्म देखता हूँ, ये तो बात है।
1: कौन सी देखी थी सर आखिरी फिल्म, आखिरी फिल्म कौन सी देखी?
14: कौन सी देखी थी तो
1: मतलब नहीं देखते, मतलब ना
14: है, देखा है पर इतना मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा, उसी वक्त
23: थिएटर में ज्यादा जाते नहीं है, जो जो नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी पे जो लगती है कभी कभार देख लेते हैं हम सब मिलकर के।
1: अच्छा, नहीं 26/11 पे सर काफी फिल्में बनी हैं, काफी वेब सीरीज बने हैं, आपने कभी ट्राई करा कि नहीं देख लूं भाई कुछ?
14: नहीं, मैंने वो नहीं देखी है, क्योंकि ये देखो ये फिल्म ऐसी है प्रहार, ये रियल उन्होंने इंसिडेंट फैक्ट्स बताए जो मेरे लाइफ में घटना हुई है, चाहे मैं 26/11 के हमले के दिन कहा था, चाहे मेरा अनिकेत तो छोटा था उस वक्त, उसका मेरा बर्ताव घर में कैसा, ज्योति मिसेस जो है वो किस पे थी, क्या थी लड़की शर्वरी, इनका ये दिखाया है, ये ऐसा मेरा लाइफ का एक हिस्सा भी उसमें दिखाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग पे ध्यान ज्यादा गया है, कोर्ट ड्रामा, ये कोई मेरी बायोपिक या कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन इवन फिल्म के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है वही दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ कई बार ऐसा है लोगों को रियल फैक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी रहता, क्या हुआ है इस केस।
1: नहीं होते अगर वकील उज्जवल निकम तो क्या होते?
14: नहीं होते वकील तो बड़ा सवाल, मुश्किल है ये कहना, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा मैं डॉक्टर बनना चाहता था।
1: अच्छा।
14: पिताजी की माँ की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा वकील बनना है।
1: हाँ।
14: फिर इतना ही कहूंगा मैं कि बदले तुमने रंग बहुत बदले बहु नकाब।
1: हाँ।
14: बदले तुमने रंग बहुत बदले बहुत नकाब, फांसी तक लाही दिया हमने तुझे कसाब।
1: क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे ही एक से बढ़कर एक डायलॉग हमने ट्रेलर में भी देखे सर। एक और था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि मैं हनुमान जयंती के दिन ही पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी की कसम सर। वो डायलॉग सिर्फ राजकुमार राव ने कहा है, क्या आप भी कह सकते हैं? आपने सुना देखा क्या कहेंगे?
14: देखिए उस वक्त जो डायलॉग अब तक मुझे याद है पूरी तरह से कि थोड़ा फिल्मी डायलॉग है। कसाब को वकील ऐसी बात करता है तो उस वक्त मैं था, अरे मेरा जन्म भी हनुमान जयंती का है, मैं पूरा दिल फाके दिखा दूंगा। और दूसरा एक था उसका, आई उज्जवल निकम अस एक्यूज उज्जवल अमीर कसाब शुड बी हैंग टिल हिज डेथ। ये जो है जिस अंदाज में मैंने कोर्ट में बयान किया उसी अंदाज में राजकुमार राव ने ये फिल्में देखी।
1: बहुत बधाई फिर से एक बार आपको और आपकी पूरी टीम को। तो 16 अक्टूबर को प्रहार देखने के लिए तैयार हो जाइए, पूरे देश भर में फिल्म ये रिलीज हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
12: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब बात फैशन की कर लेते हैं। पेरिस फैशन वीक का शानदार आयोजन जारी है। लग्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट ने अनोखे अंदाज में अपना कलेक्शन पेश किया है। सेंट लॉरेंट ने अपने कलेक्शन में बोल्ड फैशन के साथ बोल्ड गोल्ड लुक भी क्रिएट किया है, जिसे सबका दिल जीत लिया है।

ये झलक है वर्ल्ड फेमस फ्रेंच लक्जरी फैशन हाउस सेंट लॉरेंट के शानदार डिजाइन की, जो उनके स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन का हिस्सा है। दुनिया भर में फैशन की राजधानी के नाम से मशहूर पेरिस में इन दिनों पेरिस फैशन वीक का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स और फैशन हाउस अपने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। सेंट लॉरेंट का ये खास गोल्ड लुक भी इसी का हिस्सा है। इस कलेक्शन शोकेस में सिर से पैर तक सुनहरे रंग के कलेक्शन को पेश किया गया, जिसमें आकर्षक ड्रेसेस और टेक्सचर टेलरिंग शामिल थी। ये वॉक एक बड़े सुनहरे झूमर के नीचे आयोजित हुआ, जहां मॉडल्स ने उभरी हुई कढ़ाई वाली सुनहरी ड्रेसेस, सुनहरे हॉल्टर टॉप्स, ब्रोकेट स्कर्ट्स, शॉप कॉलर वाली जैकेट्स और सुनहरे ट्रेंच कोट्स पहनकर वॉक की। पेरिस के ट्रोकाडेरो फाउंटेन के पास खुले आयोजित इस शो के बैकग्राउंड में आईफिल टावर भी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। शो के आखिरी लुक्स में बड़े बड़े स्लीव्स, बड़े बो और लंबी ट्रेंस वाले गाउन शामिल थे। सेंट लॉरेंट के इस स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन को क्रिएटिव डायरेक्टर एंथनी वैकारेलो ने शोकेस किया, जो सेंट लॉरेंट के साथ उनके 10 साल पूरे होने का

0: Bureau Report, Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: रणभूमि में उतरेगी आयरन मैन की सेना, सुपर सोल्जर्स बदलेंगे युद्ध की तस्वीर, फ्यूचर वॉर का मेगा ट्रेलर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबर